0: लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें

0: आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मुंबई अकोला से लेकर पठानकोट तक गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर की भव्य सजावट, दीपमाला से जगमगाया श्री हर मंदिर साहिब, रंग बिरंगी आतिशबाजी ने किया मंत्रमुग्ध। ब्रिक्स समिट में ही मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने छेड़ी किशोर कुमार की धुन ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गाने से जीता सभी का दिल, गाने का वीडियो भी शेयर किया। भारत श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से होगी खिताबी जंग, भारत के पास 8वीं बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अफगानिस्तान के बीच आज पहला T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 7 बजे से शुरू होगा मैच, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वुमेन अननोन का जलवा, फिल्म ने जीता प्रतिष्ठित गोल्डन लायन अवार्ड, बेस्ट फिल्म के साथ मेथलेडे आर्सल को बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
4: और मेरे पागल भक्त के 3 लक्षण हैं, हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना, सूत्र है आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर तीन गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा। और भरोसा और भाव और भोलापन तीनों पर यदि विस्तार करे तो भाव हो तो कर्माबाई जैसा, कर्माबाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्माबाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती, क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी, बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी, शर्म नहीं आती, पाप पड़ेगा पाप, नर्क जाएगी नर्क। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने जा कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पटबंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा, ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में यह खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे? तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा, क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला। इधर जल्दी आने की जल्द थी, जिद थी, तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्माबाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया करना। हमको तो वही प्रिय।
5: मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्माबाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता।
4: सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो तीन दिन तो हमने भी नहीं नहाया, महाराज जी को यह बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने यह भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाते। हाँ। और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, तीन दिन ठंडी बहुत थी, बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। तीन दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया। स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत तीन दिन ठोके। राम भगवान बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व तो यहां अलकनंदा में स्नान करने का है।
6: ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है। अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और कोई और ये करते थे यहां? हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे,
5: क्या नाम था उनका बाबा?
6: पूज्य परमानंद अवधूत जी। आह, क्या अद्भुत महात्मा। अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे। महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे, सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए।
5: अच्छा, जा रहे बाबा,
6: इशारे, बहुत कम, कभी कभी बोलते थे। और बोलते भी कब थे? कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके, कल हवेली पे आ जाना। महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो। महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम है भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। और भरोसा कैसा हो, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाए। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदंब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो काहे गो, ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले नहीं उलझाई। तो बोले सुलझाएगा कौन, बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेपिजुली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे, काहे को बेपिजुली में पागल बन रहे, चलो मैं हूं सुलझा दे। ना ना ना, जाओ जाओ, और सुनो छूना लेना, पाप पड़ेगा पाप। सबको भगा दिया और वहीं पर बैठकर राधा कीर्तन गाने लगे, कृष्ण कीर्तन गाने लगे। एक दो रात नहीं, कई महीने बीत गए। बाबा ने जटाई नहीं उलझाई। ध्यान रखना, जिनका भरोसा जल्दी टूटता।
5: ध्यान से सुनना मेरे पागलो, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा।
6: ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए। बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी में,
5: बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए दारी के, छूना लेना। क्यों? बेपिजूली की बातें बतावे, हम जानते हैं। का जानते हो?
6: तू अकेलो नहीं ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना। हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है, बहाने बनाने। हम ना मानेंगे, हम कैसे माने कि तू ठाकुर है? हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया है? भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएं का?
5: कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाए और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी। ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाए रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। बाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा किशोरी जू जल्दी चलो, नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते। अब वो कह रहे तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे जब तक तो किशोरी जी ना आएंगी राधा जी, तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तुम हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो। ठाकुरानी बोली गजब है। और ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले ले बाबा इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुराकर कहा यही ठाकुर जी है बाबा। मस्ती में झूम गए। ठाकुर जी ने एक एक जटाएं लता से सुलझाई, और जब सुलझाई दोनों के चरणों में डूब गए। उनका नाम महात्मा कदम खंडी हुआ। मेरे पागलों, कलयुग में भी ठाकुर उलझे जीवन को सुलझाने आ सकता, बस भरोसा ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा इतना दृढ़ भरोसा होगा, तुम इतनी दृढ़ता के साथ हमारे ठाकुर जी पर भरोसा करोगे तो भगवान आएगा, भगवान सुलझाएगा। और भगवान तो वो उलझे हुए लोगों को ही सुलझाते हैं, भगवान का काम। और मेरे पागलों, हम लोग तो उलझे ही, वो तो सुलझाने का काम। तो भक्त के तीन लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा, और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो? बच्चों की तरह, बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। नामदेव जी के घर पर भगवान स्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते। नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कर बना करके, रोटियां बना करके रखते, और बाहर जाते जल लेने के लिए जलाशय जाते, तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विट्ठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले, घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा, सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी। दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई, जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया, और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए। कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट, ऐसा
7: भोलापन।
5: स्वान में भी भगवान देख ऐसा भोलापन।
7: भक्त के तीन लक्षण,
5: भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो गए तो मेरे पागल
7: तुम भगवान के भगत हो गए।
8: सब कुछ आपके हाथ में है। जो बलवान लोग होते, कद वाले, पद वाले, पैसा वाले, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। सब कुछ आपके हाथ में हो सकता, घर आपके हाथ में हो सकता, गाड़ी, पति, घरवाली, बेटा, बेटी, सब आपके हाथ में हो सकते, पर आपका हाथ ही आपके हाथ में नहीं हो सकता।
5: घड़ी आपके हाथ में है, पर किस घड़ी क्या हो जाए, ये घड़ी थोड़ी आपके हाथ में। समय की घड़ी आपके हाथ में, पर किस समय पर क्या हो जाए, कोई ठिकाना। समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। और समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। समय का खेल, सब समय का खेल है। समय बढ़िया आता है तो वही जो हमने आज पहले ही कहा कि किसी को कुछ नहीं आता, और सच में किसी को कुछ नहीं आता। कोई कहे क्या, हम बहुत इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट है, पता लगे बिना इंटेलिजेंट वाला उससे बेहतर कर गया जी, घर पे ही धरे। अच्छे अच्छे गायक घर पे बैठे हैं और हमारे जैसे बेसुरे मंच पे बजा रहे हैं, गा रहे हैं। बताओ, बड़े बड़े विद्वानों को मंच नहीं मिलता और हमारे जैसे लोग देखो ठलुओं को कथा कहने को मिल रही। साहब उसकी माया, सबई नचावत अपनी क्षमता नहीं। किसकी क्षमता, तो हमने अभी कहा था शुरू में, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। क्या आता है, वक्त आता है। और जिसका वक्त आता है उसे सब आता है, वक्त आ जाए सो सब आ जाए। और हम वो एक दो लाइनें और अच्छी है, वो है ना, समय समय की बात है, समय समय का योग, करोड़ों में बिकते हैं दो कौड़ी के लोग। समय बेहतर हो तो दो कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकने लगते, तो समय खराब हो जाए सीताराम। अब कोरोना में देखो तो सैनिटाइजर वो ही बिक गया, जो कभी केवल अमीरों के घरों पर और फाइव स्टार होटल में रखा जाता था, वो घर घर रखा गया, वो जेब में रखा गया। समय का खेल है, सब फुसफुस करके डाल रहे हर दो तीन मिनट में, और डाले और सूंघे। और हमको तो चार दिन बाद पता लगा कि इसमें जो है दारू मिलाई जाती है। और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने कभी कुछ नहीं छुआ वो ही। हमारे एक बहुत प्रिय है खड़ेसी महाराज, कभी कभी हम जब फ्री होते हैं तो उनके साथ बैठते हैं, खड़ेसी जी के साथ में वो बैठे थे बगल में, वो अब फुसफुस करे कोरोना में। बाद में पता लगा, हमने कहा इसमें तो एल्कोहल है। बोले ये एल्कोहल क्या है, हमने कहा पगुआ साबुन से 40 बार दिन भर में हाथ धोए और छी छी करे ऐसे ले माला, छी छी राम राम राम। अरे हमने कहा आप क्या राम राम करते हो, सूंघ लिए हो गया काम। राम राम राम राम। फिर हमने उन्हें समझाया, मनहीन मत करो, अनजाने में किया हुआ पाप नहीं लगता है, अनजान थे पता नहीं था, हो गया धोखे से हुआ, अनजाने में है, कोई पाप नहीं। अब इसके बाद में बार बार जो है हैंड वॉश से ही हाथ धोना। हाँ, तो समय का खेल है। बताओ एक टाइम पे कितनी, कोरोना के समय पे बताओ जो हवा फ्री है वो भी सिलेंडर में भर के बिकी। समय का खेल है, सिलेंडर में भर के बिकी। और जिन्हें सिलेंडर में लगे वो भाग्यशाली मानते थे, आ हा हम पहुंच वाले हैं। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो पैसे वाले हैं, पैसे धरे रहे पद धरा रहा, एक सिलेंडर नहीं खरीद पाए। और जिन्हें मिल जाए, सिलेंडर मिल गया अब बच जाएंगे, बच जाएंगे। और पड़े हैं बिस्तर पे, बताओ क्या गजब का समय आया कि जो कल तक चिपकने को लोग पागल थे वो दो गज दूरी बहुत जरूरी कह रहे। टाइम का खेल है। आज जो चिपकना चाहे थे, कोरोना आ जाए, घर का मुखिया जिसने घर बनाया, परिवार बनाया, बच्चों को जन्म दिया, वही बेड में जब क्वारंटाइन हो गया 40 दिन,
8: कुत्तों जैसा भोजन दिया, जैसे कुत्तों को देते ना ऐसे हम आंखों से देखे भैया, आंखों थाली में दाल सब्जी में मिल गई और सब्जी अचार में मिक्स हो गया और अचार रोटी से लड़ गया, ऐसे खिसका रहे थाली। समय का खेल है, कल तक जिस आदमी को बिना आवाज किए रोटी परोसी जाती थी उसको भी कुत्तों की तरह थाली फेंक के रोटी दी गई। क्यों क्यों? समय। कल तक जिसकी तूती बोलती थी हवा के लिए, शाम मेरा है, हजारों पेड़ लगाने वाले भी सिलेंडर में ऑक्सीजन भर के लेते रहे। क्यों? समय का खेल।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: और ढैया का प्रभाव, क्या शनि की साढ़े साती हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की साढ़े साती या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: मुंबई समेत देश भर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां। अकोला में बापा की इको फ्रेंडली मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर की भव्य सजावट, दीपमाला से जगमगाया श्री हरमंदिर साहिब, रंग बिरंगी आतिशबाजी ने किया मंत्रमुग्ध। ब्रिक्स समिट में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम पर चढ़ा बॉलीवुड का रंग, किशोर कुमार के गाने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत की छेड़ी धुन, गाने का वीडियो भी शेयर किया। भारत श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खिताबी जंग होगी। भारत के पास 8वीं बार चैंपियन बनने का मौका है। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज पहला T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर शाम 7 बजे से मैच शुरू होगा। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वुमेन अननोन का जलवा बरकरार, फिल्म ने जीता प्रतिष्ठित गोल्डन लायन अवार्ड बेस्ट फिल्म के साथ मैथिल्डे आर्सल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: महाराष्ट्र के अकोला में बापा के स्वागत के 2 रंग, कहीं भजन कीर्तन की धुन तो कहीं ढोल ताशे और डीजे पर झूमे भक्त। 21 फीट ऊंचे लालबाग चौराहा की भव्य शोभा यात्रा, अकोला में सादगी और भक्तिभाव के साथ निकली बापा की यात्रा। भजन कीर्तन से हुआ बापा का भव्य स्वागत, लालबाग चौराहा की शोभा यात्रा में दिखी वारकरी परंपरा की झलक। भक्तों ने खुद थामी रथ की रस्सियां, फूलों की बारिश और आतिशबाजी से बापा का स्वागत किया गया, उमड़ा बापा के भक्तों का सैलाब। 21 साल से अकोला में विराजमान हो रहे लालबाग चौराहा, मुंबई की तर्ज पर हर साल स्थापित होती है 21 फीट की भव्य प्रतिमा।

पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। बारह भाई गणपति के दरबार में उमड़ रही है आस्था, भक्त पूजा पाठ कर हाथ जोड़कर बापा से सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। बापा के चरणों में सिर झुकाकर धन्य महसूस करते हैं भक्त। बारह भाई गणपति के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। पठानकोट में गणपति बप्पा की तैयारियां तेज, राजस्थान से पहुंचे मूर्तिकार गणेश जी की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियों पर जोर, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर केमिकल फ्री मूर्तियां तैयार कर रहे हैं कारीगर। पठानकोट में पिछले 5 महीनों से गणेश प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे मूर्तिकार, पंजाब से हिमाचल प्रदेश तक गणेश प्रतिमाओं की भारी डिमांड। 100 रुपए से 10,000 तक बप्पा की भव्य प्रतिमाएं तैयार, मूर्ति कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं और रंग देने में जुटे हैं। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की बढ़ी डिमांड, बाजारों में गणपति की मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे हैं लोग। मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल के हुए विराट दर्शन, GSB सेवा मंडल में दिखी बप्पा की पहली भव्य झलक। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हुए गजानन के पहले दर्शन, भक्त हुए भाव विभोर। 66 किलो से ज्यादा सोने से सजे बप्पा, 335 किलो से ज्यादा चांदी का श्रृंगार। भव्य स्वरूप में नजर आ रही है गजानन की प्रतिमा। GSB सेवा मंडल ने लिया 703.27 करोड़ रुपए का बीमा। हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद, 5 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों का अनुमान। केले के पत्तों पर भक्तों को मिलेगा अन्नदान प्रसाद। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति की शानदार पहल, मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया शुरू। सूरत में 250 से 300 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बांटने की तैयारी है, लोगों से POP की जगह मिट्टी की प्रतिमा अपनाने की अपील की जा रही है। गणेश उत्सव समिति ने लोगों से की घर के गमले में प्रतिमा विसर्जन करने की अपील, मिट्टी की प्रतिमाएं अपनाएं प्रकृति को बचाएं का संदेश दिया। पुडुचेरी के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाई 5 फुट की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा, लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक कर रही हैं। बच्चों ने मिट्टी और कागज की लुगदी का इस्तेमाल कर बनाई गजानन की मूर्तियां, प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रथम प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर का भव्य सजावट किया गया। अमृतसर में दुल्हन की तरह सजा श्री हर मंदिर साहिब। प्रकाश पर्व पर दीपमाला से जगमगाया श्री दरबार साहिब। स्वर्ण मंदिर की अद्भुत और अलौकिक छटा ने सभी का मन मोह लिया। श्री हर मंदिर साहिब के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी ने समा बांध दिया। दीपमाला के बाद हुई भव्य आतिशबाजी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से दीपमाला की। रात में स्वर्ण मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रोशनी, दीपमाला और आतिशबाजी ने बढ़ाई श्री हर मंदिर साहिब की खूबसूरती। स्वर्ण मंदिर में दिखा धार्मिक श्रद्धा और उल्लास का माहौल। भारत मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भव्य गाला डिनर की मेजबानी, ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं का स्वागत किया। भारत मंडप में ब्रिक्स की सुरमई शाम का नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी के गाला डिनर में कूटनीति के साथ दिखा संस्कृति का संगम। गाला डिनर में दुनिया भर के 100 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया, शानदार सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम पेश किया। गाला डिनर को लेकर भारत मंडपम की भव्य सजावट, शानदार रंगोली ने मेहमानों को आकर्षित किया। ब्रिक्स गाला डिनर के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एक साथ बस में सवार होकर भारत मंडपम पहुंचे, भव्य भोज में शामिल हुए। भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स समिट के पहले दिन की बैठक पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया घोषणा पत्र जारी। ब्रिक्स का दिल्ली डेक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास हो गया। पीएम मोदी बोले संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है। दिल्ली डेक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने जंग और टकराव रोकने की कोशिशों पर जोर दिया, बातचीत और कूटनीति से विवाद सुलझाने का संकल्प लिया। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में पहुंचे ब्रिक्स देशों के सदस्य, दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है आयोजन।

भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में 37 प्रमुख डीप टेक स्टार्टअप्स और वेंचर्स शामिल, एआई से तकनीक और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रदर्शनी का उद्देश्य है। भारत मंडपम के परिसर में ब्रिक्स देश के नेताओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, सभी ने मिलकर पौधारोपण किया। चाइना और रशिया के राष्ट्रपति सहित सदस्य देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए, ब्रिक्स नेताओं के सामने रखे गए कई प्रस्ताव। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम पर की जा रही है बैठक, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और ग्लोबल साउथ पर फोकस। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात की, दोनों देशों की बेहतर रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ब्रिक्स से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की, पीएम मोदी के साथ रशिया और चाइना के राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए नजर आए। ईरान के राष्ट्रपति की बेटी जहरा पहुंची ब्रिक्स मार्केट, पारंपरिक क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल का दीदार किया। न्यू दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में सजाया गया है ब्रिक्स बाजार, लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जहरा का स्वागत किया। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों का भारतीय व्यंजनों से स्वागत किया गया, शुद्ध देसी मसालों और हर्ब से तैयार की जा रही है तरह तरह की डिशेस। दिल्ली के ताज होटल में इंडिया फ्रेंडशिप की थीम पर तैयार किया गया फूड मेन्यू, हर राज्य की पहचान माने जाने वाली डिश मेन्यू में शामिल। केसर, इलायची और व्हाइट चॉकलेट से बना खास एडिबल लोटस बनेगा मेहमानों की खास पसंद, स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। रामबन से हिमाचल के मणि महेश झील के लिए रवाना हुई छड़ी मुबारक, रघुनाथ मंदिर से यात्रा का शुभारंभ हुआ। मणि महेश छड़ी मुबारक यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में यात्रा शुरू हुई। गणेशोत्सव से पहले कोंकण के लिए मुफ्त बस सेवा, बीजेपी नेता नारायण राणे ने श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी बसेस को हरी झंडी दिखाई। कोंकण जाने वाले यात्रियों को मुफ्त बस सुविधा मिलेगी, मुंबई से कोंकण के लिए बस सेवा का शुभारंभ। दिल्ली में ब्रिक्स समिट में पहुंचे मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम, के सुरों ने जीता दिल, लोकप्रिय हिंदी गाना ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गाया।

0: अमेठी में अवधि साहित्य संस्थान के सातवां स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कई देशों से पहुंचे साहित्यकार। लंदन में एक साथ नजर आए तमिलनाडु के सीएम विजय और अभिनेता रेसर अजीत कुमार सिल्वरस्टोन सर्किट में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जामनगर में मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देते हुए सेलिब्रेशन हुआ। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस शरद चंद्र। मां छिन्नमस्तक की विधि विधान से पूजा की गई। प्रयागराज में 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, हुई भव्य आरती, लगे बजरंग बली, जय और श्री राम के नारे। भारत श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से होगा खिताबी मैच। भारत के पास 8वां एशिया कप खिताब जीतने का मौका है। श्रीलंका लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरने वाला है। श्रीलंका से 2024 की हार का बदला लेने के लिए भारत उतरेगा। टीम इंडिया ने लगातार 10वीं बार फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में भारत की बल्लेबाजी पर नजरें रहने वाली हैं। बड़े मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों से दमदार प्रदर्शन।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: क्या है शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव? क्या शनि की 7.5 हमेशा नुकसान करती है या कभी बड़ा लाभ भी दे सकती है? अगर शनि की 7.5 या ढैया से कष्ट है तो क्या उपाय करने से स्थितियां बेहतर हो सकती हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं खूबसूरत तस्वीर। ब्रिक्स बैठक के लिए नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किशोर कुमार का ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गाया। अनवर इब्राहिम ने अपने एक्स अकाउंट पर परफॉर्मेंस का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें किशोर कुमार के क्लासिक गीत को गाते हुए दिखाया गया है, जबकि एक पियानो वादक डिनर के दौरान उस गीत की धुन बजा रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि एक पियानो बजा रहे म्यूजिशियन के पास खड़े हैं और अपने ही अंदाज में सुर से सुर मिला रही हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री पूरे उत्साह के साथ गीत गाते हुए दिखाई दिए। अनवर इब्राहिम इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद हैं और इसी दौरान उनका ये वीडियो सामने आया। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के दौर और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा के बीच मलेशियाई प्रधानमंत्री का ये संगीतमय अंदाज चर्चा का विषय बन गया और लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। सुनिए।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे शनि की साढ़े साती और ढैया के विशेष प्रभाव के बारे में। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि शनि की साढ़े साती के और ढैया के विशेष प्रभाव क्या होते हैं। पहले जानते हैं शनि की साढ़े साती क्या होती है। देखिए, शनि जब किसी राशि पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। साढ़े सात साल तक लगातार शनि आपके जीवन पर असर डालता है। शनि जब भी किसी राशि से बारहवें रहता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे रहता है तो उस राशि पर साढ़े साती चलने लगती है। शनि एक राशि पर ढाई साल तक रहते हैं और एक साथ तीन बार किसी राशि को प्रभावित करते हैं। ढाई ढाई सालों का तीन चरण साढ़े सात साल तक साढ़े साती के रूप में चलता है। पहला ढाई साल जब शनि आपकी राशि से बारहवें हैं, दूसरा ढाई साल जब शनि आपकी राशि में हैं और तीसरा ढाई साल जब शनि आपकी राशि से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। जैसे साढ़े साती आपके ऊपर साढ़े सात साल तक असर डालती है, वैसे ही ढैया आपके ऊपर ढाई साल तक असर डालती है। राशियों पर भ्रमण करने के दौरान जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं या अष्टम भाव में जाते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। जैसे इस समय धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है। ये केवल शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान ही रहता है, यानी कुल मिलाकर केवल ढाई साल रहता है। ढाई साल तक शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर लगातार पड़ता है, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। राशि से सप्तम भाव में शनि के आने पर भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। शनि जब सप्तम में आए, जैसे कन्या राशि से सप्तम में है शनि, तो कन्या के ऊपर भी ढैया जैसे हालात या मेंटल प्रेशर जैसे हालात बने हुए हैं। साढ़े साती का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर साढ़े साती चल रही है तो ये हमेशा बुरा फल देती है, ये हमेशा नुकसान करती है। लेकिन साढ़े साती या ढैया के मामले में ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी पर्सनल दशा क्या है। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी, तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो साढ़े साती चल रही है या जो ढैया चल रही है, इसका फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आम तौर पर अगर शनि कुंडली में अच्छा है, दशा अनुकूल है, तो 7.5 अच्छे परिणाम देती है। अगर शनि निगेटिव है कुंडली में, दशा आपकी अनुकूल नहीं है, तो 7.5 या 2.5 में समस्या होती है। सामान्यतः एक बात देखी गई है कि 7.5 या 2.5 शुरू होने पर लाभकारी होती है और 7.5 या 2.5 जब खत्म होने लगती है तब व्यक्ति के जीवन में समस्या देना शुरू कर देती है। देखिए, लोगों की सामान्य धारणा है कि शनि की 7.5 और 2.5 बुरी होती है। बुरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और अच्छी भी हो सकती है। क्या विशेष परिणाम होते हैं? देखिए, शनि की 7.5 और 2.5 चलने के दौरान अलग फल देती है और उतरने के दौरान अलग फल देती है। इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और इसमें भी कुंभ राशि पर से 7.5 उतर रही है। इस समय सिंह और धनु राशि पर 2.5 भी चल रही है। 7.5 के 2.5 के दौरान रिश्तों में समस्या जरूर होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर आती है और उसमें भी वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। 7.5 जब थोड़ी लेट एज में आए, 30-35 साल के बाद आए, तो ये माता पिता के लिए अच्छी नहीं होती। माता पिता के निधन या देहावसान की संभावना बनती है, खास तौर से 7.5 के उतरते समय। जब आपकी 7.5 चल रही हो, 2.5 चल रही हो, तो माता पिता के स्वास्थ्य का, अपने वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी होता है। कि आम तौर पर 7.5 के 3 चरण होते हैं। नियम ये कहता है, स्थितियां ये कहती हैं कि पहला चरण लाभकारी, दूसरा चरण मध्यम और तीसरा चरण कष्टकारी होता है आम तौर पर। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा भी जाता है कि अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, आपकी दशा फेवरेबल हो, तो शनि की 7.5 में आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और शनि की 7.5 का सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके करियर और आपके रोजगार पर। और अगर शनि की 7.5 आपकी चल रही है, शनि आपका अनुकूल है, तो आप करियर में ऊंचाइयां पा सकते हैं, करियर में बड़ा परिवर्तन ले सकते हैं और करियर में एकदम तेजी से तरक्की भी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री जो हुए हैं, वो ज्यादातर 7.5 के दौरान ही हुए हैं। 7.5 ने ज्यादातर लोगों को जीवन में उच्च पद प्रदान किया है। तो आप ये जान लीजिए कि कभी मत सोचिए कि शनि के 7.5 या 2.5 है तो बुरा ही होगा। अगर ग्रह गोचर ठीक है आपके, आपकी दशा ठीक चल रही है, तो शनि की यही 7.5 आपको जीवन में उच्च पद प्रदान करेगी। अगर आपकी शनि की 7.5 या 2.5 चल रही है, तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे 7.5 और 2.5 का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, नुकसान की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगर आपकी 7.5 चल रही है या आपकी 2.5 चल रही है, इसके परिणाम अशुभ आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः। और अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल का दान करें, छाया दान करें, आपके लिए बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: मुंबई समेत देश भर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, कोला में बापा की इको फ्रेंडली मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कार्यकर, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर की भव्य सजावट, दीपमाला से जगमगाया श्री हर मंदिर साहिब, रंग बिरंगी आतिशबाजी ने किया मंत्रमुग्ध। ब्रिक्स समिट में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम पर चढ़ा बॉलीवुड का रंग, किशोर कुमार के गाने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत की छेड़ी धुन, गाने का वीडियो भी शेयर किया। भारत श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से खिताबी जंग होगी, भारत के पास 8वीं बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अफगानिस्तान के बीच आज पहला T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वुमन अननोन का जलवा, फिल्म ने जीता प्रतिष्ठित गोल्डन लायन अवार्ड, बेस्ट फिल्म के साथ मथिल्डे आर्सल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस खास शो में, एपिसोड में, हम जानने वाले हैं कि शनि की साढ़े साती और ढैया का आपके जीवन पर आपकी राशियों के अनुसार किस तरह से विशेष प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेंगे आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे साढ़े साती और ढैया का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, नुकसान की संभावनाएं कम हो जाएंगी।
0: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 13 सितंबर 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 13 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 7:08 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:07 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के अपने इस खास टॉपिक की, जो है शनि की साढ़े साती। सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि की साढ़े साती आखिर होती क्या है।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि शनि की साढ़े साती के और ढैया के विशेष प्रभाव क्या होते हैं। पहले जानते हैं शनि की साढ़े साती क्या होती है। देखिए, शनि जब किसी राशि पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको साढ़े साती कहते हैं। 7.5 तक लगातार शनि आपके जीवन पर असर डालता है। शनि जब भी किसी राशि से 12वें रहता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे रहता है तो उस राशि पर साढ़े साती चलने लगती है। शनि एक राशि पर 2.5 तक रहते हैं और एक साथ 3 किसी राशि को प्रभावित करते हैं। 2.5 सालों का 3 साढ़े 7 तक साढ़े साती के रूप में चलता है। पहला 2.5 जब शनि आपकी राशि से 12वें हैं, दूसरा 2.5 जब शनि आपकी राशि में हैं और तीसरा 2.5 जब शनि आपकी राशि से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं।
0: और चलिए आगे बढ़े, उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: मेष राशि, आपकी तमाम चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कुछ काम अभी आपके रुक सकते हैं, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, काल्पनिक समस्याओं और चिंताओं से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में पंडित जी ने आपको बताया कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। अब वक्त हो चला है शनि की ढैया के बारे में जान लेने का।
1: जैसे साढ़े साती आपके ऊपर 7.5 साल तक असर डालती है, वैसे ही ढैया आपके ऊपर 2.5 साल तक असर डालती है। राशियों पर भ्रमण करने के दौरान जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं या अष्टम भाव में जाते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। जैसे इस समय धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है। ये केवल शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान ही रहता है, यानी कुल मिलाकर केवल 2.5 साल रहता है। 2.5 साल तक शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर लगातार पड़ता है, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। राशि से सप्तम भाव में शनि के आने पर भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। शनि जब सप्तम में आए, जैसे कन्या राशि से सप्तम में है शनि, तो कन्या के ऊपर भी ढैया जैसे हालात या मेंटल प्रेशर जैसे हालात बने हुए हैं।
0: और चलिए आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का वक्त है।
1: कर्क राशि, तमाम तरीके के तनाव आपके समाप्त होंगे, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, लाभकारी यात्रा होगी, खान पान में सावधानी रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न विजय कुमार जी ने हमें लिखा है। विजय कुमार जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। 25 अप्रैल 1982 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 8:40। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह हो गया है, लेकिन मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है। कुछ न कुछ समस्याएं उसमें लगातार बनी रहती हैं। तो मेरी पुत्री कौन सा उपाय करे जिससे उसका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? विजय कुमार जी, आपकी पुत्री की कुंडली में चीजों के मैरिटल लाइफ के बेहतर होने की बहुत संभावना नहीं है। चीजें एवरेज ही रहेंगी, बहुत एक्सीलेंट होने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा प्रयास करने से ये जरूर है कि एडजस्टमेंट करने से, प्रयास करने से जिंदगी चल जाएगी। आप अपनी पुत्री को कहें कि वो एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को वो एक ओपल धारण करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो चीजें बेहतर होंगी।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल किसका रहने वाला है।
1: जी, अगला प्रश्न मधुर जी ने हमें लिखा है और मधुर जी हमें मेल लिखते हैं देहरादून से। मधुर जी की जन्म की तारीख है 19 जून 1992। जन्म का समय है सुबह के 10:35। जन्म स्थान है देहरादून। मधुर जी कह रहे हैं कि काफी समय से मैं एक प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूं, तो मुझे संपत्ति का लाभ कब तक हो सकता है? मधुर, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की कोशिश करें। इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक जाते जाते आप कोई फ्लैट या मकान खरीद लेंगे और प्रॉपर्टी का आपको पर्याप्त लाभ होगा। आप ऐसा करिए, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और हर मंगलवार को गुड़ का दान करिए। अगर आप लगातार ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है आपके अगले सवाल का। पंडित जी, अगला सवाल किसका रहने वाला है?
1: जी, अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है और विनीता जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मार्च 1999, जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है नासिक महाराष्ट्र। विनीता कह रही हैं कि मैं अभी टेक्निकल फील्ड में एक छोटी सी नौकरी कर रही हूं, क्या टेक्निकल फील्ड मेरे लिए अच्छा है या आगे मुझे मैनेजमेंट की पढ़ाई करके किसी और क्षेत्र में जाना चाहिए। विनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए टेक्निकल फील्ड बिल्कुल ठीक है और अगर आप टेक्निकल फील्ड में कोशिश करें तो इसी क्षेत्र में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, लेकिन अभी बड़ी सफलता पाने में समय है। मई 2028 के बाद से आपका जीवन ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें, सुबह और शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
0: और चलिए, हमने ये जान लिया कि साढ़े साथी और ढैया आखिर होते क्या हैं, और अब जानने का वक्त हो चला है कि साढ़े साथी का सामान्य रूप से हमारी राशि अनुसार क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पर।
1: साढ़े साथी का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर साढ़े साथी चल रही है तो ये हमेशा बुरा फल देती है, ये हमेशा नुकसान करती है। लेकिन साढ़े साथी या ढैया के मामले में ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी पर्सनल दशा क्या है। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी, तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो साढ़े साथी चल रही है या जो ढैया चल रही है इसका फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आम तौर पर अगर शनि कुंडली में अच्छा है, दशा अनुकूल है, तो साढ़े साथी अच्छे परिणाम देती है। अगर शनि निगेटिव है कुंडली में, दशा आपकी अनुकूल नहीं है, तो साढ़े साथी या ढैया में समस्या होती है। सामान्यतः एक बात देखी गई है कि साढ़े साथी या ढैया शुरू होने पर लाभकारी होती है और साढ़े साथी या ढैया जब खत्म होने लगती है तब व्यक्ति के जीवन में समस्या देना शुरू कर देती है।
0: और चलिए, पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से बचाव करिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि शनि की साढ़े साथी और ढैया के विशेष प्रभाव हमारे जीवन पर क्या होते हैं।
1: देखिए, लोगों की सामान्य धारणा है कि शनि की साढ़े साथी और ढैया बुरी होती है। बुरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और अच्छी भी हो सकती है। क्या विशेष परिणाम होते हैं? देखिए, शनि की साढ़े साथी और ढैया चलने के दौरान अलग फल देती है और उतरने के दौरान अलग फल देती है। इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी चल रही है और इसमें भी कुंभ राशि पर से साढ़े साथी उतर रही है। इस समय सिंह और धनु राशि पर ढैया भी चल रही है। साढ़े साथी के ढैया के दौरान रिश्तों में समस्या जरूर होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर आती है और उसमें भी वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। साढ़े साथी जब थोड़ी लेट एज में आए, 30-35 साल के बाद आए, तो ये माता पिता के लिए अच्छी नहीं होती। माता पिता के निधन या देहावसान की संभावना बनती है, खास तौर से साढ़े साथी के उतरते समय। जब आपकी साढ़े साथी चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो माता पिता के स्वास्थ्य का, अपने वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी होता है।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन संपत्ति का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: आ जाएगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी, अगला प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है और अंजलि जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 3 नवंबर 2010, जन्म का समय सुबह के 7 बजे, जन्म स्थान है आगरा। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, हालांकि अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज लाइफ में है, लेकिन पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता। भविष्य में किस क्षेत्र में इसका करियर रहेगा? अंजलि जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इनके नौकरी में जाने की, मैनेजमेंट या फाइनेंस वगैरह में जाने की संभावना नहीं है। इनको व्यापार की तरफ ले चलिए, इनके व्यापार में जाने के योग ज़्यादा प्रबल हैं। अगर ये लोहे का, मशीनरी का, प्रॉपर्टी का, दवाइयों का कोई व्यापार करें तो वो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सुबह और शाम इनके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इनको एक मोती 8-10 रत्ती की बनवा कर चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहना दीजिए, इनके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका आखिरी और चौथा सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल किसका रहने वाला है?
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न विशाल जी ने हमें लिखा है, बिहार से लिखते हैं। विशाल जी की जन्म की तारीख है 19 अप्रैल सन 2000, जन्म का समय शाम के 7:53, जन्म स्थान है मसरख, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी? विशाल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप बीपीएससी की तैयारी करें, प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है, उसमें आप बड़ी आसानी से सफलता पा जाएंगे। साल 2027-28 आपका बेहतर समय है, इस समय सफलता पाने के योग बन रहे हैं। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6-8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो शनि की 7:30 के बारे में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं। अब पंडित जी से ये पूछ लेंगे कि पंडित जी, क्या शनि की 7:30 और ढैया का कोई लाभ भी होता है हमारे जीवन में?
0: जी, देखिए, आम तौर पर 7:30 के 3 चरण होते हैं। नियम ये कहता है, स्थितियां ये कहती हैं कि पहला चरण लाभकारी, दूसरा चरण मध्यम और तीसरा चरण कष्टकारी होता है आम तौर पर। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा भी जाता है कि अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, आपकी दशा फेवरेबल हो, तो शनि की 7:30 में आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और शनि की 7:30 का सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके करियर और आपके रोजगार पर, और अगर शनि की साढ़े साती आपकी चल रही है, शनि आपका अनुकूल है, तो आप करियर में ऊंचाइयां पा सकते हैं, करियर में बड़ा परिवर्तन ले सकते हैं और करियर में एकदम तेजी से तरक्की भी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो ज्यादातर साढ़े साती के दौरान ही हुए हैं। साढ़े साती ने ज्यादातर लोगों को जीवन में उच्च

0: जन्मदिन 13 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कर्ज और धन के मामलों में लाभ होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अविवाहितों के विवाह में इस साल विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज पंडित जी से जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, इसलिए जो लोग सूर्य की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रविवार को नमक और सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि 13 सितंबर 2026 यानी रविवार का शुभ पहर क्या है।
0: दिनांक 13 सितंबर दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में सुंदर कांड का पाठ करिएगा, ऐसा करने से आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 सितंबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए कार्यक्रम के आखिर में अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: आज की गुडलक राशि है धनु। आपके लिए सोना या पीतल धारण करना अनुकूल होगा, ऐसा करने से आपका करियर और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
1: तो हमने पंडित जी से जान लिया कि 7:30 का प्रभाव क्या होता है, ढैया का असर क्या होता है। अब पंडित जी से ये जानने का वक्त हो चला है कि आज का महा उपाय कौन सा है जिससे हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके।
0: जी, अगर आपकी 7:30 चल रही है या आपकी ढैया चल रही है, इसके परिणाम अशुभ आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः। और अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल का दान करें, छाया दान करें, आपके लिए बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: शनि की 7:30 का क्या विशेष प्रभाव होता है? शनि की 7:30 का कैसा असर पड़ता है? इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: और चलिए अब खबर प्रयागराज से, जहां पर संगम से शानदार धार्मिक तस्वीर सामने आई है। 13 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कल 14वें दिन शनिवार को लेटे बजरंगबली मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और गंगा का पानी कम होने के बाद मंदिर की साफ सफाई और धुलाई कराई गई। इसके बाद विधि विधान से बजरंगबली का अभिषेक और फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया और भव्य आरती भी की गई। आरती के दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज और बजरंगबली के जयकार से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। 30 अगस्त को गंगा का पानी मंदिर परिसर में पहुंच गया था। बाढ़ के पानी के चलते मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। इस दौरान भक्त मंदिर के बाहर से ही लेटे बजरंग बली के दर्शन और पूजन अर्चन कर रहे थे। अब गंगा का जलस्तर कम होने के बाद मंदिर परिसर में फिर से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पर्व पर अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्री हरमंदिर साहिब की आभा देखते ही बनती थी। इस मौके पर स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दीपमाला की गई। उसके बाद एजिस पीसी की तरफ से आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर श्री हरमंदिर साहिब में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व सिख समुदाय की ओर से श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वर्ष 1604 में इसी पावन दिन पर अमृतसर के हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में इस पवित्र ग्रंथ का पहला पाठ किया गया था। 1604 में अमृतसर में हुए सबसे पहले और ऐतिहासिक प्रकाश पर्व की याद में ही इसे पहला प्रकाश पर्व कहा जाता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खूबसूरत तस्वीर। ब्रिक्स बैठक के लिए नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किशोर कुमार का ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गाया। अनवर इब्राहिम ने अपने एक्स अकाउंट पर परफॉर्मेंस का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्हें किशोर कुमार के क्लासिक गीत को गाते हुए दिखाया गया है, जबकि एक पियानो वादक डिनर के दौरान उस गीत की धुन बजा रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि एक पियानो बजा रहे म्यूजिशियन के पास खड़े हैं और अपने ही अंदाज में सुर से सुर मिला रही हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री पूरे उत्साह के साथ गीत गाते हुए दिखाई दिए। अनवर इब्राहिम इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद हैं और इसी दौरान उनका ये वीडियो सामने आया। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के दौर और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा के बीच मलेशियाई प्रधानमंत्री का ये संगीतमय अंदाज चर्चा का विषय बन गया और लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। सुनिए।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है।
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: और चलिए अब बात करते हैं गणेश उत्सव की। देश भर में जगह जगह पर सजे पंडालों में बप्पा का आगमन हो रहा है। वहीं कई जगह पर साज सज्जा का काम आखिरी दौर में है। वडोदरा में 72 फीट की प्रतिमा तैयार की जा रही है, तो गुजरात के दाहोद में लालबाग के राजा के तर्ज पर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाई गई है। मुंबई में तो अभी से ही गणपति उत्सव का खुमार चढ़ने लगा है। देखिए तस्वीरें।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह और उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज अ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco friendly ganesh idol which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. In this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात ये है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लालबाग चौराजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुवगिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

शनि की साढ़े साती का क्या विशेष प्रभाव होता है, शनि की साढ़े साती का कैसा असर पड़ता है, इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: ब्रिक्स गाला डिनर में दिखे भारतीय संस्कृति के रंग, पारंपरिक नृत्य के साथ कलाकारों ने संगीत से बांधा समां, भारत की जायकी के मुरीद हुए ब्रिक्स लीडर्स। ब्रिक्स समिट में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम पर चढ़ा बॉलीवुड का रंग, किशोर कुमार के गाने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत की छेड़ी तान, गाने का वीडियो भी शेयर किया। सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां तेज, पवित्र सरयू के घाटों पर रेनोवेशन का काम जारी, भव्य समारोह में दिखेंगे अवध की संस्कृति और आध्यात्म के रंग। मुंबई समेत देशभर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारी, बप्पा की मनमोहक इको फ्रेंडली मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। प्रयागराज में 13 दिनों के बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, गंगा का पानी उतरने के बाद मंदिर में की गई विधिवत साफ सफाई, पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने बजरंग बली की आरती की। भारत और श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, रात 8 बजे से होगी खिताबी जंग, भारत के पास 8वीं बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अफगानिस्तान के बीच आज T20 सीरीज का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: और चलिए अभी वक्त हो चला है GNT एक्सप्रेस का, लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं एक बेहद शानदार तस्वीर। ये तस्वीर है मुंबई के सबसे अमीर गणपति माने जाने वाले GSB मंडल के गणपति की। मुंबई की सबसे अमीर और प्रसिद्ध GSB सेवा मंडल किंग्स सर्कल में महागणपति बप्पा का पर्दा उठ चुका है और उनकी पहली भव्य झलक सामने आ चुकी है। परंपरा के अनुसार बप्पा का ये पहला दिव्य दर्शन 12 सितंबर 2026 को रात ठीक 8 बजे भक्तों को कराया गया। हालांकि औपचारिक रूप से ही महागणपति के दर्शन गणेश चतुर्थी के दिन यानी कल 14 सितंबर से ही होंगे। मुंबई का GSB सेवा मंडल किंग सर्कल गणेशोत्सव अपने सबसे महंगे और भव्य महागणपति के लिए जाना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश के सबसे अमीर गणपति कहे जाने वाले बप्पा को इस बार भक्तों द्वारा चढ़ाए गए 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो से ज्यादा चांदी के बेशकीमती गहनों से सजाया गया है। और इतना ही नहीं, इस साल GSB मंडल ने पूरे आयोजन के लिए 703 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐतिहासिक बीमा कवर कर लिया है। आपको बता दें ये भारत में किसी भी त्योहार के लिए अब तक का सबसे बड़ा बीमा है। बताया जा रहा है कि इस बार बप्पा की मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी से बनी है, और मंडल ने कागज बचाने के लिए रसीदों को डिजिटल यानी QR कोड आधारित कर दिया है। GSB सेवा मंडल की ओर से इस बार 72वां गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं GNT एक्सप्रेस।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: महाराष्ट्र के अकोला में बापा के स्वागत के दो रंग, कहीं भजन कीर्तन की धुन तो कहीं ढोल ताशे और DJ पर झूमे भक्त। 21 फीट ऊंचे लालबाग चौराहे की भव्य शोभा यात्रा, अकोला में सादगी और भक्तिभाव के साथ निकली बप्पा की यात्रा। भजन कीर्तन से हुआ बप्पा का भव्य स्वागत, लालबाग चौराहे की शोभा यात्रा में दिखी वारकरी परंपरा की झलक। भक्तों ने खुद थामी रथ की रस्सियां, फूलों की बारिश और आतिशबाजी से बप्पा का स्वागत किया गया, उमड़ा बप्पा के भक्तों का सैलाब। 21 साल से अकोला में विराजमान हो रहे लालबाग चौराहा, मुंबई की तर्ज पर हर साल स्थापित होती है 21 फीट की भव्य प्रतिमा। अकोला का मांचा बारा भाई गणपति बना आकर्षण का केंद्र। करीब 250 साल पुरानी परंपरा आज भी कायम। बापा के दरबार में उमड़ रही है श्रद्धा। बारा समाजों की साझी आस्था का प्रतीक है बारा भाई गणपति। तो वहीं पेशवा काल में बारा समाजों ने मिलकर की थी गणपति की स्थापना। पीढ़ियां बदली लेकिन बापा की सेवा नहीं बदली। दिंडी और ढोल पथक की सेवा आज भी परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। बारा भाई गणपति के दरबार में उमड़ रही है आस्था। भक्त पूजा पाठ कर हाथ जोड़कर बापा से सुख समृद्धि की मांग कर रहे हैं। बापा के चरणों में सिर झुकाकर धन्य महसूस करते हैं भक्त। बारा भाई गणपति के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। पठानकोट में गणपति बापा की तैयारियां तेज। राजस्थान से पहुंचे मूर्तिकार गणेश जी की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियों पर जोर। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर केमिकल फ्री मूर्तियां तैयार कर रहे हैं कारीगर। पठानकोट में पिछले 5 महीनों से गणेश प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे मूर्तिकार। पंजाब से हिमाचल प्रदेश तक गणेश प्रतिमाओं की भारी डिमांड। 100 रूपये से 10,000 तक बापा की भव्य प्रतिमाएं तैयार। मूर्ति कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं और रंग देने में जुटे हैं। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की बढ़ी डिमांड। बाजारों में गणपति की मूर्तियां खरीदने पहुंच रहे हैं लोग। मुंबई के सबसे अमीर गणपति मंडल के हुए विराट दर्शन। GSB सेवा मंडल में दिखी बापा की पहली भव्य झलक। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हुए गजानन के पहले दर्शन। भक्त हुए भाव विभोर। 66 किलो से ज्यादा सोने से सजे बप्पा। 335 किलो से ज्यादा चांदी का श्रृंगार। भव्य स्वरूप में नजर आ रही है गजानन की प्रतिमा। GSB सेवा मंडल ने लिया 703.27 करोड़ रुपए का बीमा। हर दिन 40,000 से ज्यादा भक्तों को प्रसाद। 5 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों का अनुमान। केले के पत्तों पर भक्तों को मिलेगा अन्नदान प्रसाद। सूरत में श्री गणेश उत्सव समिति की शानदार पहल। मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं का वितरण किया शुरू। सूरत में 250 से 300 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बांटने की तैयारी है। लोगों से POP की जगह मिट्टी की प्रतिमा अपनाने की अपील की जा रही है। गणेश उत्सव समिति ने लोगों से की घर के गमले में प्रतिमा विसर्जन करने की अपील। मिट्टी की प्रतिमाएं अपनाएं प्रकृति को बचाएं का संदेश दिया। पुडुचेरी के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाई 5 फुट की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा। लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक कर रही हैं। बच्चों ने मिट्टी और कागज की लुगदी का इस्तेमाल कर बनाई गजानन की मूर्तियां। प्राकृतिक रंगों का किया जा रहा है इस्तेमाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रथम प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर का भव्य सजावट किया गया। अमृतसर में दुल्हन की तरह सजा श्री हर मंदिर साहिब। प्रकाश पर्व पर दीपमाला से जगमगाया श्री दरबार साहिब। स्वर्ण मंदिर की अद्भुत और अलौकिक छटा ने सभी का मन मोह लिया। श्री हर मंदिर साहिब के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी ने समा बांध दिया। दीपमाला के बाद हुई भव्य आतिशबाजी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से दीपमाला की। रात में स्वर्ण मंदिर का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रोशनी दीपमाला और आतिशबाजी ने बढ़ाई श्री हर मंदिर साहिब की खूबसूरती। स्वर्ण मंदिर में दिखा धार्मिक श्रद्धा और उल्लास का माहौल। भारत मंडप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की भव्य गाला डिनर की मेजबानी। ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं का स्वागत किया। भारत मंडप में ब्रिक्स की सुरमई शाम का नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी के गाला डिनर में कूटनीति के साथ दिखा संस्कृति का संगम। गाला डिनर में दुनिया भर के 100 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। शानदार सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम पेश किया। गाला डिनर को लेकर भारत मंडपम की भव्य सजावट। शानदार रंगोली ने मेहमानों को आकर्षित किया। ब्रिक्स गाला डिनर के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एक साथ बस में सवार होकर भारत मंडपम पहुंचे। भव्य भोज में शामिल हुए। भारत की मेजबानी में 18वें ब्रिक्स समिट की पहले दिन की बैठक पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया घोषणा पत्र जारी। ब्रिक्स का दिल्ली डेक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास हो गया। पीएम मोदी बोले संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है। दिल्ली डेक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने जंग और टकराव रोकने की कोशिशों पर जोर दिया। बातचीत और कूटनीति से विवाद सुलझाने का संकल्प लिया। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में पहुंचे ब्रिक्स देशों के सदस्य। दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है आयोजन। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी में 37 प्रमुख डीप टेक स्टार्टअप्स और वेंचर्स शामिल। एआई से तकनीक और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना प्रदर्शनी का उद्देश्य है। भारत मंडपम के परिसर में ब्रिक्स देश के नेताओं ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सभी ने मिलकर पौधारोपण किया। चाइना और रशिया के राष्ट्रपति सहित सदस्य देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए। ब्रिक्स नेताओं के सामने रखे गए कई प्रस्ताव। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण की थीम पर की जा रही है बैठक। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म और ग्लोबल साउथ पर फोकस। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद से मुलाकात की। दोनों देशों की बेहतर रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ब्रिक्स से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर की। पीएम मोदी के साथ रशिया और चाइना के राष्ट्रपति मुस्कुराते हुए नजर आए। ईरान के राष्ट्रपति की बेटी जहरा पहुंची ब्रिक्स मार्केट। पारंपरिक क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल का दीदार किया। न्यू दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में सजाया गया है ब्रिक्स बाजार। लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जहरा का स्वागत किया। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों का भारतीय व्यंजनों से स्वागत किया गया। शुद्ध देसी मसालों और हर्ब से तैयार की जा रही है तरह तरह की डिशेस। दिल्ली के ताज होटल में इंडिया फ्रेंडशिप की थीम पर तैयार किया गया फूड मेन्यू। हर राज्य की पहचान माने जाने वाली डिश मेन्यू में शामिल। केसर, इलायची और व्हाइट चॉकलेट से बना खास एडिबल लोटस बनेगा मेहमानों की खास पसंद। स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है। रामबन से हिमाचल के मणि महेश झील के लिए रवाना हुई छड़ी मुबारक। रघुनाथ मंदिर से यात्रा का शुभारंभ हुआ। मणि महेश छड़ी मुबारक यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में यात्रा शुरू हुई। गणेशोत्सव से पहले कोंकण के लिए मुफ्त बस सेवा। बीजेपी नेता नारायण राणे ने श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी बसेस को हरी झंडी दिखाई। कोंकण जाने वाले यात्रियों को मुफ्त बस सुविधा मिलेगी। मुंबई से कोंकण के लिए बस सेवा का शुभारंभ। दिल्ली में ब्रिक्स समिट में पहुंचे मलेशिया आईपीएम अनवर इब्राहिम। के सुरों ने जीता दिल लोकप्रिय हिंदी गाना ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गाया।

0: अमेठी में अवधि साहित्य संस्थान की 7वां स्थापना दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। कई देशों से पहुंचे साहित्यकार। लंदन में एक साथ नजर आए तमिलनाडु के सीएम विजय और अभिनेता रेसर अजीत कुमार। सिल्वर स्टोन सर्किट में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। जामनगर में मंत्री रिवाबा जडेजा के जन्मदिन पर समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देते हुए सेलिब्रेशन हुआ। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस शरद चंद्र। मां छिन्नमस्तक की विधि विधान से पूजा की गई। प्रयागराज में 13 दिन बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट। हुई भव्य आरती, लगे बजरंग बली, जय और श्री राम के नारे। भारत श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल मैच। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से होगा खिताबी मैच। भारत के पास 8वां एशिया कप खिताब जीतने का मौका है। श्रीलंका लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के इरादे से उतरने वाला है। श्रीलंका से 2024 की हार का बदला लेने के लिए भारत उतरेगा। टीम इंडिया ने लगातार 10वीं बार फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में भारत की बल्लेबाजी पर नजरें रहने वाली हैं। बड़े मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद है। टूर्नामेंट में अजय रहा है भारत। टीम इंडिया ने अब तक अपने सभी 4 मैचेस जीते हैं। फाइनल को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। भारत अफगानिस्तान के बीच आज पहला T20 मैच होगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा ये मैच। श्रेयस अय्यर संभालेंगे टीम इंडिया की कैप्टनसी। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी 3 मैचेस की T20 सीरीज। टीम इंडिया सीरीज में जीत के साथ करना चाहेगी आगाज। भारत और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक टक्कर की उम्मीद है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भी निगाहें रहेंगी। 15 सितंबर को दूसरा और 17 सितंबर को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान के स्पिनर्स का सामना करने के लिए तैयार है भारत। अफगानिस्तान को हराकर दबदबा कायम करना चाहेगा भारत। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर सितारों का जलवा बरकरार। क्लोजिंग सेरेमनी और अवार्ड से पहले ग्लैमर का रंग दिखा है। रेड कार्पेट पर दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और कलाकार नजर आए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी प्रेसिडेंट मैगी गिलनहाल ने फोटो सेशन कराया। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वुमेन अननोन का जलवा देखने को मिला। डैनिश फिल्म मेकर माई एल टूखी का की फिल्म ने जीता प्रतिष्ठित गोल्डन लायन। पोस्ट वॉर ड्रामा वुमेन अननोन की डबल जीत हुई। वुमेन अननोन बनी वेनिस की बेस्ट फिल्म। मैथिल्डे आर्सल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। कोरियन फिल्म मेकर ली चांग डोंग ने हासिल किया दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। कोरियन फिल्म प्रॉमिस लव को मिला सिल्वर लायन। इटली के मिसानो में सैन मरीनो जीपी में मार्क मार्केज का जलवा देखने को मिला। डुकाटी स्टार ने स्प्रिंट रेस जीतकर बाजी मारी। मार्केज ने बिज़ेकी को पछाड़ कर जीता खिताब। सैन मरीनो स्प्रिंट में मार्केज पहले आए, बिज़ेकी दूसरे स्थान पर रहे। मार्क मार्केज की शानदार शुरुआत बनी जीत की वजह। टर्न 1 पर बढ़त बनाकर मार्केज ने रेस पर कब्जा जमाया। जॉर्ज मार्टिन तीसरे स्थान पर रहे स्प्रिंट में पोडियम हासिल कर मार्टिन ने चैंपियनशिप लीड बरकरार रखी। डी जियान एंटोनियो ने चौथा स्थान हासिल किया जबकि एलेक्स मार्केज सैन मरीनो स्प्रिंट में 5वें पायदान पर रहे। रैली चिली में ओलिवर सोलबर्ग का दबदबा देखने को मिला। सोलबर्ग ने 10 सेकंड की बढ़त बचाई। टोयोटा ड्राइवर ने रैली चिली में अपनी लीड बरकरार रखी। रैली चिली में एल्फिन एवांस दूसरे स्थान पर कायम। एंड्रियानो फोमो का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेबेस्टियन ओजियो को पछाड़ कर तीसरे नंबर पर पहुंचे। हुंडई ड्राइवर का सबसे सुबह के पहले स्टेज में हुआ बड़ा हादसा। थियोरी न्यूविल की कार पलटी, रैली चिली से बाहर हुई। रैली चिली में फिर दिखी खतरनाक ट्रैक। फोर्ड ड्राइवर जॉन आर्मस्ट्रांग भी दुर्घटना का शिकार हुए। आर्मस्ट्रांग ने क्षतिग्रस्त कार से फिनिश किया। चिली की सड़कों पर जारी रोमांचक जंग। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की कड़ी परीक्षा हुई। सोलबर्ग की बढ़त पर सभी की नजर थी। एनरिक मास ने स्पेन में साइकिल रेस वुएल्टा में जीत लगभग पक्की की। स्टेज 20 की कठिन पहाड़ी रेस में बढ़त बरकरार रखी। स्पेन को 12 साल बाद मिलेगा वुएल्टा चैंपियन। बेहद कड़े मुकाबले में स्लोवियानाई राइडर रोजल के दूसरे स्थान पर कायम रहे, जबकि ऑस्ट्रिया के फेलिक्स गोल तीसरे नंबर पर मौजूद। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में अमेरिका का दबदबा देखने को मिला। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में अमेरिकी एथलीट्स ने गोल्ड जीता। अमेरिकी महिला एथलीट्स मेलिसा जेफरसन वुडन बनी संयुक्त चैंपियन, जबकि पुरुष वर्ग में अमेरिकी स्टार केनी बेडनारिक ने जीत हासिल की। महिला वर्ग में जूलियन एल्फ्रेड को सिल्वर और शाकारी रिचर्डसन को ब्रॉन्ज मिला। पुरुष वर्ग में एल्बिक सेविल को सिल्वर, रॉनी बेकर को ब्रॉन्ज मिला। डकार पहुंची यूथ ओलंपिक की मशाल। सेनेगल की राजधानी में ओलंपिक फ्लेम का भव्य स्वागत हुआ। अफ्रीका में पहली बार यूथ ओलंपिक की तैयारी की गई। सेनेगल के राष्ट्रपति ने किया ओलंपिक मशाल का स्वागत। संगीत और नृत्य की परफॉर्मेंस ने मंत्रमुग्ध किया। 100 महिलाओं ने निकाला खास जुलूस। चाइना के इनर मंगोलिया में डेजर्ट पोलो का रोमांच देखने को मिला है। रेगिस्तान में दौड़े ऊंट, पोलो खेला गया। ऊंटों पर सवार खिलाड़ियों का जोरदार मैच हुआ। चाइना में डेजर्ट पोलो को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला। डेजर्ट पोलो के साथ हुई तीरंदाजी, चरवाहों ने पारंपरिक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो वहीं नादाम उत्सव में दिखी पुरानी खेल परंपरा। वॉशिंगटन के नेशनल जू में पांडा किंग बाओ के चौथे जन्मदिन का जश्न मनाया गया। पांडा के लिए फल और सब्जियों से खास फ्रूट सिकल केक तैयार किया गया। पांडा ने चट किया बर्ड देखे। एक जन्मदिन पर गुब्बारों से खेली पांडा किंग बाओ। तोहफे में मिली पसंदीदा शकरकंद। चाइना के गुइझोउ में बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1835 लोगों ने एक साथ कॉकटेल शेक किया। एक साथ कॉकटेल और मॉकटेल तैयार किए गए। चाइना में शुरू हुई रोबोट बनाने वाली रोबोट फैक्ट्री। गुआंगशी में रोबोट अब खुद बनाएंगे। हर 10 मिनट में तैयार होगा एक रोबोट। 40,000 साल पुराने घोड़े को मिला नया रूप। चाइना और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया 3D मॉडल। विलुप्त तो घोड़े की पहली पूरी तस्वीर आई सामने।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में ब्रिक्स गाला डिनर के दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां। कल शाम न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी की मेजबानी में हुए ब्रिक्स लीडर समिट के गाला डिनर की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस नाम का एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी वन रिदम मेनी कल्चर्स यानी कि एक लय कई संस्कृतियां नाम का शो भी शामिल था, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के संगीतकारों ने एक अनोखे और मिलकर किए गए म्यूजिकल परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस के जरिए संस्कृति, विविधता और हमारी साझा इंसानियत का शानदार जश्न मनाया गया, जिसमें ब्रिक्स देशों के कलाकार और परंपराएं एक साथ आईं। ये इस बात को याद दिलाता है कि सरहदों से परे संस्कृति लोगों को जोड़ती है और देशों को एक दूसरे के करीब लाती है।

0: और अब खबर रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या में मंदिरों और धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है और इसी क्रम में अयोध्या के आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। शाम होते ही यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। लोग घाट की खूबसूरती को निहारने के साथ साथ इस आकर्षक संरचना के साथ तस्वीरें भी लेते हुए नजर आते हैं। आरती घाट का वातावरण धार्मिक आस्था और आधुनिक सौंदर्य का अनूठा संगम पेश करता है। घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु कुछ समय रुककर यहां के शांत और आकर्षक वातावरण का आनंद लेते हैं। खासकर शाम के समय जब घाट रोशनी से जगमगाता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के दर्शन के साथ सरयू घाटों का सैर सपाटा भी अब यात्रा का खास हिस्सा बनता जा रहा है। जहां घाटों पर श्रद्धालु मुख्य रूप से पूजा पाठ और स्नान के लिए पहुंचते थे, वहीं अब सुंदर और व्यवस्थित घाट पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जोधपुर की। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित मंदिर में बाबा रामदेव प्राकट्य उत्सव पर हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को बेहद श्रद्धा और धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इस बार भी इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और मंदिर में भव्य आरती की गई। बाबा रामदेव जी की पीरों के पीर रामसा पीर और भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ इलाके में इस उत्सव को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से जोधपुर के प्रसिद्ध मसूरिया पहाड़ी में स्थित मंदिर से होती है। मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी के आध्यात्मिक गुरु योगी बालीनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। प्राचीन मान्यता है कि जैसलमेर के रामदेवरा और रुनिचा जाने वाले पैदल तीर्थयात्रियों के लिए पहले मसूरिया आकर गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करना जरूरी होता है और इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: ब्रिक्स काला डिनर में दिखे भारतीय संस्कृति के रंग, पारंपरिक नृत्य के साथ कलाकारों ने संगीत से बांधा समा, भारत के जायके के मुरीद हुए ब्रिक्स लीडर्स। ब्रिक्स समिट में मलेशिया आईपीएम अनवर इब्राहिम पर चढ़ा बॉलीवुड का रंग, किशोर कुमार के गाने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत की छेड़ी तान, गाने का वीडियो भी शेयर किया। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां तेज, पवित्र सरयू के घाटों पर रेनोवेशन का काम जारी, भव्य समारोह में दिखेंगे अवध की संस्कृति और आध्यात्मिक रंग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: क्रेबुज पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खुमर रही काय जिद कर रही काय खुमर रही ऐसे वर खेलाने काय

आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन

0: जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीव करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीम करौली बाबा की कृपा है। पहली सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली है, लेकिन महाराज जी की कहानी है। जिस कहानी को बोल के बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई, और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीव करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीव करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में, तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाकये के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीव करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन नीव करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
1: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना, यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान

0: चालीस साल पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी, तो इसलिए सब सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर को ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मनस्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली काउ होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाले इस फिल्म के 4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
2: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3rd दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के 2nd असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए, और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहे उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे, हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर की, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप, कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था। इसको मैंने वही तुलसी घाट से मैंने चंदन
3: लिया,
2: बहुत ही फेमस वो चौपाई है, चंदन गिठे हैं जैसे, और तिलक
3: करे
2: रघुवीर इसका, वहीं पे उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, और शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
4: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
5: जब

0: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
1: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
0: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने 3 शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: ब्रिक्स गाला डिनर में दिखे भारतीय संस्कृति के रंग, पारंपरिक नृत्य के साथ कलाकारों ने संगीत से बांधा समा, भारत के जायके के मुरीद हुए ब्रिक्स लीडर्स। ब्रिक्स समिट में मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम पर चढ़ा बॉलीवुड का रंग, किशोर कुमार के गाने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत की छेड़ी तान गाने का वीडियो भी शेयर किया। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां तेज, पवित्र सरयू के घाटों पर रेनोवेशन का काम जारी, भव्य समारोह में दिखेंगे अवध की संस्कृति और आध्यात्म के रंग। मुंबई समेत देशभर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारी, बप्पा की मनमोहक इको फ्रेंडली मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। प्रयागराज में 13 दिनों के बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, गंगा का पानी उतरने के बाद मंदिर में की गई विधिवत साफ सफाई, पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने की बजरंग बली की आरती। भारत और श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से होगी खिताबी जंग, भारत के वापस 8वीं बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अफगानिस्तान के बीच आज T20 सीरीज का पहला मैच, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम मैदान में उतरेगी।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे शनि की 7.5 और ढैया के विशेष प्रभाव के बारे में, इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 सितंबर 2026 दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 7:08 तक, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:07 तक, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि शनि की 7.5 के और ढैया के विशेष प्रभाव क्या होते हैं। पहले जानते हैं शनि की 7.5 क्या होती है। देखिए, शनि जब किसी राशि पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो एक विशेष तरह का प्रभाव डालते हैं। जब ये प्रभाव किसी राशि के ऊपर शनि की स्थितियों की वजह से पड़ता है तो इसको 7.5 कहते हैं। 7.5 साल तक लगातार शनि आपके जीवन पर असर डालता है। शनि जब भी किसी राशि से 12वें रहता है, उसी राशि में रहता है या उस राशि से दूसरे रहता है तो उस राशि पर 7.5 चलने लगती है। शनि एक राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं और एक साथ 3 बार किसी राशि को प्रभावित करते हैं। 2.5 सालों का 3 चरण 7.5 साल तक 7.5 साती के रूप में चलता है। पहला 2.5 साल जब शनि आपकी राशि से 12वें हैं, दूसरा 2.5 साल जब शनि आपकी राशि में हैं और तीसरा 2.5 साल जब शनि आपकी राशि से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहे हैं। मेष राशि, आपकी तमाम चिंताएं इस समय समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, करियर की रुकावट दूर होगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, सूर्य देव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, कुछ काम अभी आपके रुक सकते हैं, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, काल्पनिक समस्याओं और चिंताओं से बचें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, तमाम तरीके के तनाव आपके समाप्त होंगे, धन की समस्या हल होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जैसे 7.5 साती आपके ऊपर 7.5 साल तक असर डालती है, वैसे ही ढैया आपके ऊपर 2.5 साल तक असर डालती है। राशियों पर भ्रमण करने के दौरान जब शनि किसी राशि से चतुर्थ भाव में जाते हैं या अष्टम भाव में जाते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। जैसे इस समय धनु राशि पर और सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, ये केवल शनि के एक राशि पर भ्रमण के दौरान ही रहता है, यानी कुल मिलाकर केवल 2.5 साल रहता है। 2.5 साल तक शनि का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर लगातार पड़ता है, इसलिए इसको ढैया कहा जाता है। राशि से सप्तम भाव में शनि के आने पर भी ढैया जैसी स्थिति बन जाती है। शनि जब सप्तम में आए, जैसे कन्या राशि से सप्तम में है शनि, तो कन्या के ऊपर भी ढैया जैसे हालात या मेंटल प्रेशर जैसे हालात बने हुए हैं। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, लाभकारी यात्रा होगी, खान पान में सावधानी रखें, भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, चोट चपेट से दुर्घटनाओं से बचाव करिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। साढ़े साती का सामान्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर साढ़े साती चल रही है तो ये हमेशा बुरा फल देती है, ये हमेशा नुकसान करती है। लेकिन साढ़े साती या ढैया के मामले में ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी व्यक्तिगत दशा क्या चल रही है, आपकी पर्सनल दशा क्या है। इसके बाद कुंडली में शनि की स्थिति देखनी होगी, तब जाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो साढ़े साती चल रही है या जो ढैया चल रही है, इसका फल बुरा होगा या अच्छा होगा। आम तौर पर अगर शनि कुंडली में अच्छा है, दशा अनुकूल है, तो साढ़े साती अच्छे परिणाम देती है। अगर शनि निगेटिव है कुंडली में, दशा आपकी अनुकूल नहीं है, तो साढ़े साती या ढैया में समस्या होती है। सामान्यतः एक बात देखी गई है कि साढ़े साती या ढैया शुरू होने पर लाभकारी होती है, और साढ़े साती या ढैया जब खत्म होने लगती है तब व्यक्ति के जीवन में समस्या देना शुरू कर देती है। धनु राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, धन संपत्ति का लाभ होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, लोगों की सामान्य धारणा है कि शनि की साढ़े साती और ढैया बुरी होती है। बुरी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए और अच्छी भी हो सकती है। क्या विशेष परिणाम होते हैं? देखिए, शनि की साढ़े साती और ढैया चलने के दौरान अलग फल देती है और उतरने के दौरान अलग फल देती है। इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है और इसमें भी कुंभ राशि पर से साढ़े साती उतर रही है। इस समय सिंह और धनु राशि पर ढैया भी चल रही है। साढ़े साती के ढैया के दौरान रिश्तों में समस्या जरूर होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर आती है और उसमें भी वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा समस्या होती है। साढ़े साती जब थोड़ी लेट एज में आए, 30-35 साल के बाद आए, तो ये माता पिता के लिए अच्छी नहीं होती। माता पिता के निधन या देहावसान की संभावना बनती है, खास तौर से साढ़े साती के उतरते समय। जब आपकी साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो माता पिता के स्वास्थ्य का, अपने वैवाहिक जीवन का और रिश्तों का ध्यान देना विशेष रूप से जरूरी होता है। कि आम तौर पर साढ़े साती के तीन चरण होते हैं। नियम ये कहता है, स्थितियां ये कहती हैं कि पहला चरण लाभकारी, दूसरा चरण मध्यम और तीसरा चरण कष्टकारी होता है आम तौर पर। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा भी जाता है कि अगर कुंडली में शनि अनुकूल हो, आपकी दशा फेवरेबल हो, तो शनि की साढ़े साती में आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और शनि की साढ़े साती का सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके करियर और आपके रोजगार पर। और अगर शनि की साढ़े साती आपकी चल रही है, शनि आपका अनुकूल है, तो आप करियर में ऊंचाइयां पा सकते हैं, करियर में बड़ा परिवर्तन ले सकते हैं और करियर में एकदम तेजी से तरक्की भी कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री जो हुए हैं, वो ज्यादातर साढ़े साती के दौरान ही हुए हैं। साढ़े साती ने ज्यादातर लोगों को जीवन में उच्च पद प्रदान किया है। तो आप ये जान लीजिए कि कभी मत सोचिए कि शनि के साढ़े साती या ढैया है तो बुरा ही होगा। अगर ग्रह गोचर ठीक है आपके, आपकी दशा ठीक चल रही है, तो शनि की यही साढ़े साती आपको जीवन में उच्च पद प्रदान करेगी। अगर आपकी शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे साढ़े साती और ढैया का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, नुकसान की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अगर आपकी साढ़े साती चल रही है या आपकी ढैया चल रही है, इसके परिणाम अशुभ आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िए 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः। और अगर कष्ट ज्यादा हो रहा है तो सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर तेल का दान करें, छाया दान करें, आपके लिए बेहतर होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और मेरे पागल भक्त के 3 लक्षण है हमारी, हमने एक महापुरुष के मुंह से सुना, भक्त के 3 लक्षण। उसके बताने के पहले हम आपको बताएं कि भक्त कौन है, ये थोड़ा सा आज की कथा बहुत ध्यान से समझना, सूत्र है। आप भक्त हुए या नहीं इसका आप खुद निराकरण कर पाओगे शायद आज की कथा सुनकर। भक्त के अंदर 3 गुण होते हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। अभाव है, भरोसा है और भोलापन है, समझ जाना भक्ति उतर गई तुम्हारे जीवन। हाँ, ये तीनों तुम्हारे अंदर घटने लगे तो समझ जाना तुम्हारे अंदर भक्ति उतर गई है, तुम्हारे अंदर भगवान की कृपा और भरोसा और भाव और भोलापन तीनों पर यदि विस्तार करे तो भाव हो तो कर्मा बाई जैसा। कर्मा बाई भगवान को खिचड़ी खवाती, खिचड़ी बना के खिलाती। तो कर्मा बाई जब भगवान को खिचड़ी बना के खिलाती ना, जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी को जब खिचड़ी खिलाती तो वो नहाती नहीं, नहाती नहीं, बिना नहाए खिला देती। क्योंकि नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे और लेट हो जाएंगे तो भगवान भूखे रहेंगे, सुबह से लोगों की लाइन लग जाएगी। बिना नहाए खिचड़ी बना देती और ठाकुर को जगन्नाथ जी को भोग लगा देती। एक दिन घर में कुछ महात्मा आए और महात्माओं ने कहा कि तू बिना नहाए जगन्नाथ जी को भोग लगा देती, अरे बाबरी शर्म नहीं आती, पाप पड़ेगा पाप, नर्क जाएगी नर्क। उसने कहा भगवान हमें पता नहीं था, क्षमा करो क्षमा करो। भगवान ने जा कर्माबाई ने क्षमा मांगी। दूसरे दिन बिचारी स्नान ध्यान करके और बढ़िया चौका चूल्हा करके गंगाजल छिड़क के खिचड़ी बनाई तो लेट हो गई, लेट हो गई। उसकी आदत थी भगवान जगन्नाथ जी रोज भोग खाने आते थे, खिचड़ी खाने आते थे। पट बंद किया, पर्दा लगाया और जैसे ही पर्दा लगाया भगवान आए जगन्नाथ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाने लगे। इतने में मंदिर के पट खुल गए तो भगवान बिना पानी पिए बिना मुंह धोए ही मंदिर में चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के होठों के पास खिचड़ी लगी है। तो पहले जगन्नाथ जी से बात करते थे पुजारी जी, तो जगन्नाथ जी से पूछा ठाकुर क्या बात है, आज तुम्हारे बगल में ये खिचड़ी लगी, सुबह सुबह किसका भोग पकड़ लिया, किसका भोग मसक दिया, किसका भोग पा रहे। तो ठाकुर जगन्नाथ ने कहा क्या बताएं, कुछ बाबरे पागल आ गए थे बाबा, हमारी भक्तनी कर्माबाई को नहाने का ज्ञान दे गए, उस चक्कर में गरम खिचड़ी खाई और ऊपर से पानी भी पीने नहीं मिला। इधर जल्दी आने की जल्द थी, जिद थी, तो पानी भी नहीं पी पाए और गरम गरम खिचड़ी खाई। यदि तुम हमारी बात मानो पुजारी जी तो एक काम करो। बोले क्या? बोले कर्मा बाई के घर जाओ और जाके कहना भाड़ में जाए नहाना, जैसे पहले बना दी थी वैसे ही बनाया कर। हमको तो वही प्रिय।
7: मेरे पागलो, भाव का अर्थ है कर्मा बाई, उसमें फिर नेम नहीं लगता।
6: सच बोले ये बात हमको बोलते हुए तो बिल्कुल बुरी नहीं, जैसे ही साधना करने आए तो तीन दिन तो हमने भी नहीं नहाया। महाराज जी को ये बात पता है और हमने सुना है कि कहने से पाप कट जाते, और हमने ये भी सुना कि जिसको कह दो जो जो सुन ले तो पाप उसमें बट जाता है। हाँ, और इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे इनके सामने कहेंगे तो शायद हमारा जीरो ही हो जाए। हाँ, सच बता रहे, तीन दिन ठंडी बहुत थी और बर्फ भयंकर थी और हमको ठंड बहुत लगती, बंदरों को वैसे ही लगती, उनके चेले के चेले हैं तो थोड़ा गुण तो होगा ना, तो हमको ठंड बहुत लगती। तीन दिन अपने राम ने स्पर्श स्नान, नहाए धोए आदमी को छू लिया, मतलब हमने नहा लिया। और स्नान के मामले में बद्रीनाथ वाले महाराज जी आगे हैं, 3:30 बजे ही ये नहा लेते, तो हम सुबह सुबह इनको ही दंडवत तीन दिन ठोके। राम भगवान बता भी दिया कि वैसे आप लोग यहां तप्त कुंड में स्नान करते हो, महत्व यहां अलकनंदा में स्नान करने का है। ऐसा हमने शास्त्र में पढ़ा है, अलकनंदा जी के स्नान का बड़ा महत्व है। और कोई और ये करते थे यहां? हाँ, महाराज जी ने बहुत वर्षों तक किया। एक यहां अवधूत महात्मा रहे, क्या नाम था उनका बाबा? पूज्य परमानंद अवधूत जी। आह, क्या अद्भुत महात्मा। अवधूत महात्मा पूज्य श्री परमानंद बाबा एक लंगोट में रहते थे, महाराज जी का खाक चौक है, उसके सामने में उनकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहते थे। सुबह सुबह उठते थे, बहुत कम बोलते थे, बैठे रहते थे, भारी पेट, अवधूत थे। ऐसे कोई आए भी, बड़े से बड़े चेला आते थे उनके पास, ऐसे बैठे रहते थे। कुछ बात किसी ने कही, आ गए, अच्छा जा रहे बाबा, सारे बहुत कम कभी कभी बोलते थे, और बोलते भी कब थे, कोई बात किसी की बुराई कर रहा तब वो बोलते थे, बेटा अध्याय चेंज करो, बस अध्याय चेंज, इतना बोलते थे। सुबह सुबह जब वो उठते थे 3-4 बजे, महाराज जी की झोपड़ी नीचे थी, उनकी ऊपर थी, तो महाराज जी की झोपड़ी में टीन डल गया था, चद्दर होता ना, तो उनको स्नान करने जब अलकनंदा जी जाना होता था तो सुबह सुबह एक पत्थर उठा के महाराज जी के टीन पे पटकते, कि मतलब हम जग गए, रेडी हैं, यू कम हियर। वो पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं का होता था ना, लेटर को पत्थर में फंसा करके, कि कल हवेली पे आ जाना। तो महाराज जी का भी प्रेम था, बहुत प्रेम था, अवधूत थे वो, महाराज जी हाथ पकड़ते थे, केवल लंगोट में रहते थे। अलकनंदा जी जाते थे, कम से कम 30 मिनट अलकनंदा जी में खड़े होकर वो स्नान करते थे, 30 मिनट। आप एक बार डुबकी लगाओ तो 2.5 मिनट तक ये होश नहीं रहेगा कि हम हैं भी कि नहीं। सुबह सुबह मुंह धोने के लिए हाथ लो तो पहले नंबर पर हाथ गायब हो जाता, पर वो 30 मिनट तक स्नान करते थे। बड़े अद्भुत परमहंस हुए, बहुत अद्भुत महात्मा हुए। और भरोसा कैसा हो, एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, भरोसा तब टूटना चाहिए जब पृथ्वी फट जाए और आकाश फट जाए, तब टूटना चाहिए। भक्त का भरोसा तब तक पक्का रहना चाहिए जब तक पृथ्वी फट ना जाए और आकाश भी फट ना जाए। जब पृथ्वी में भूकंप आ जाए और आकाश फट जाए तब भरोसा तोड़ना के भगवान नहीं है, वरना तब तक भरोसा मत तोड़ना। वो है, समय की देर है, वो समय आएगा, एक झटके में सब हो जाएगा, एक झटके में सब हो जाएगा। भरोसा को, वृंदावन में एक महात्मा हुए, भरोसा पर हम आपको कथा सुनाएं। वृंदावन में एक संत हुए, उनका नाम था कदंब खंडी जी महाराज, बड़े सिद्ध महात्मा। उनकी महाराज जटाएं बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी जटाएं थी। एक दिन मस्ती में रहते थे, अब महात्मा तो मस्ती में ही रहते हैं, मस्ती में चले जा रहे थे, जटाएं बड़ी बड़ी थी, तो वृंदावन की लता पताओं में धोखे से अचानक से एक घटना हुई कि उनकी जो जटाएं थी वो जटाएं लताओं में उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वहीं बैठ के भजन करने लगे, सुलझाई नहीं, बैठ गए भजन करने लगे। तो कुछ ब्रजवासी बालक आए, छोटे छोटे बच्चे आए, बाबा बाबा काहे गो काहे गो, ब्रजवासी निकले, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं, ना ना ना, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो कोई पूछे कि किसने उलझाई, बोले हम तो ठाकुर जी का भजन कर रहे थे, इस बंसी वाले नहीं उलझाए। तो बोले सुलझाएगा कौन, बोले वही सुलझाएगा। बाबा पागल हो, बेफिजूली में मर जाओगे, रात बहुत होती है, भूखे मर जाओगे।

0: जल्दी टूटता।
1: ध्यान से सुनना मेरे पागलों, कई महीने बीत गए लेकिन उन्होंने जटाएं नहीं सुलझाई। बोले जिसने उलझाई वही सुलझाएगा।
0: ठाकुर जी ने देखा कहीं ये मर ना जाए बाबरा, तो हमारे गोविंद छोटा सा बालक का रूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके आ गए। बड़ी तोतली वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी,
1: बाबा ला मैं तोरी जटाएं सुलझा दूं। तू कौन है भैया? बाबा मुंह को ना पहचानो, मैं हूं तो ब्रज को छोरा, नंद को छोरा हूं, मैं ही तो कृष्ण कन्हैया हूं, जाको तू कीर्तन गा रहा। बाबा बोले छूना लइए दारी के, छूना लेना। क्यों? बेफिजूली की बातें बतावे, हम जानते हैं। का जानते हो?
0: तू अकेलो नी ब्रज में डोले, जब तक किशोरी जू ना रहे तू अकेलो डोले ही ना। हमको उल्लू बनाने के चक्कर में तू आयो है बहाने बनाने। हम ना मानेंगे, हम कैसे माने कि तू ठाकुर है? हम कैसे माने कि कृष्ण कन्हैया? भगवान जी बोले हमका आधार कार्ड दिखाएगा,
1: कैसे मानोगे कि हम ठाकुर जी हैं? बाबा बोले अब तुम्हारी पहचान को तो एक ही उपाय है, साथ में किशोरी जू आ जाएं और वो कह दें यही ठाकुर जी हैं, तो हम मान लेंगे तुम ठाकुर जी। ठाकुर जी बरसाने गए, किशोरी जी विराजमान थी, सखियां अष्ट सखियां ललिता विशाखा आदि सखियों के मध्य में विराजमान थी। दोपहरी का समय था, सभी सखियां बैठ करके श्री किशोरी जी को मधुर मधुर वार्तालाप सुनाई रही थी, पान को बीड़ा खिलाई रही थी। बाई समय पर ठाकुर जी तपती दोपहरी में जून के महीने में पहुंच गए। अरे ओ देवी, तो किशोरी जी ने देखा, अरे आप? ठाकुर जी ने कहा किशोरी जू जल्दी चलो, नहीं तो वो बाबा निपट जाएगा। कौन बाबा? पूरी घटना बताई। एक बाबा है, बाकी जटाएं लताओं में उलझ गई कीर्तन करते करते। अब वो कह रहे हो तभी सुलझाएंगे जब ठाकुर जी सुलझाने आएंगे। तो किशोरी जी बोली हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले हम गए थे, वो मान ही नहीं रहे कि हम ठाकुर जी। तो बोले मानेंगे कैसे? बोले वो कह रहे जब तक तब किशोरी जी ना आएंगी राधा जी, तब तक हम ना मानेंगे तुम ठाकुर जी हो। बाबा बोले इसलिए तुम हमारी प्रमाण पत्र के लिए साथ में चलो।
0: ठाकुरानी बोली गजब है। और ठाकुरानी जी ने कहा ऐसा भगत है तब तो हमें भी देखना है। तो ठाकुरानी भी गई, और जैसे ही गई तो ठाकुर जी बोले ले बाबा इनते पूछ लो हम हैं ठाकुर जी के नहीं। तो जैसे ही किशोरी जी को देखा, किशोरी जी ने मुस्कुरा कर कहा यही ठाकुर जी हैं बाबा। मस्ती में झूम गए। ठाकुर जी ने एक एक जटाएं लता से सुलझाई, और जब सुलझाई दोनों के चरणों में डूब गए। उनका नाम महात्मा कदम खंडी हुआ। मेरे पागलो, कलयुग में भी ठाकुर उलझे जीवन को सुलझाने आ सकता, बस भरोसा ऐसा होना चाहिए।
1: तुम्हारा इतना दृढ़ भरोसा होगा, तुम इतनी दृढ़ता के साथ हमारे ठाकुर जी पर भरोसा करोगे तो भगवान आएगा, भगवान सुलझाएगा। और भगवान तो वो उलझे हुए लोगों को ही सुलझाते हैं, भगवान का काम। और मेरे पागलों, हम लोग तो उलझे ही है, वो तो सुलझाने का काम। तो भक्त के तीन लक्षण हैं, पहला भाव, दूसरा भरोसा, और तीसरा भोलापन। भोलापन कैसा हो?
0: बच्चों की तरह,
1: बच्चों की तरह भोलापन होना चाहिए, नामदेव की तरह होना चाहिए। नाम जी के घर पर भगवान स्वान बन करके, कुत्ता बन करके आते। नामदेव जी भोजन बना करके, टिक्कड़ बना करके, रोटियां बना करके रखते, और बाहर जाते जल लेने के लिए जलाशय जाते, तब तक कोई ना कोई रोज आकर के रोटी खा जाता। एक दिन नामदेव जी ने देखा कि कोई रोटी रोज खा जाता, आज चुपके से देखना है कौन खा जाता। देखा एक कुत्ता आया, रोटी मुंह में दबाई भागने लगा। नामदेव जी ने घी का डब्बा लिया, पीछे पीछे भागने लगे। अरे गोविंद, हे विट्ठलनाथ, हे ठाकुर, सूखी रोटी मत खा, कम से कम घी तो लगा ले, घी तो लगा, घी तो लगा, घी तो लगा के खा, घी तो लगा के खा। सूखी खाएगा गले में अटक जाएगी। दौड़ते दौड़ते गिर पड़े, गिर के फिर उठे, डब्बा उठाया और फिर पीछे पीछे भागे। लंबी दूर तक श्वास फूल गई। जब श्वास फूली तो भगवान से भी नहीं रहा गया, और कुत्ते के बीच ही गोविंद प्रकट हो गए। कुत्ते के बीच में भगवान प्रकट, ऐसा भोलापन। स्वान

भी भगवान देख, ऐसा भोलापन भक्त के तीन लक्षण, भाव, भरोसा और भोलापन। और तुम्हारे अंदर ये तीनों घटित हो गए तो मेरे पागलो तुम भगवान के भगत हो गए। सब कुछ आपके हाथ में है। जो बलवान लोग होते, कद वाले, पद वाले, पैसा वाले, उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। सब कुछ आपके हाथ में हो सकता, घर आपके हाथ में हो सकता, गाड़ी, पति, घरवाली, बेटा, बेटी, सब आपके हाथ में हो सकते, पर आपका हाथ ही आपके हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी आपके हाथ में है, पर किस घड़ी क्या हो जाए, ये घड़ी थोड़ी आपके हाथ में। समय की घड़ी आपके हाथ में, पर किस समय पर क्या हो जाए, कोई ठिकाना। समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। और समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। समय का खेल, सब समय का खेल है। समय बढ़िया आता है तो वही जो हमने आज पहले ही कहा कि किसी को कुछ नहीं आता, और सच में किसी को कुछ नहीं आता। कोई कहे क्या, हम बहुत इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट है, पता लगे बिना इंटेलिजेंट वाला उससे बेहतर कर गया जी, घर पे ही धरे, अच्छे अच्छे गायक घर पे बैठे हैं और हमारे जैसे बेसुरे मंच पे बजा रहे हैं, गा रहे हैं। बताओ, बड़े बड़े विद्वानों को मंच नहीं मिलता और हमारे जैसे लोग देखो ठलुओं को कथा कहने को मिल रही। साहब उसकी माया, सबई नचावत, अपनी क्षमता नहीं, किसकी क्षमता। तो हमने अभी कहा था शुरू में, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। क्या आता है, वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे सब आता है, वक्त आ जाए सो सब आ जाए। और हम वो एक दो लाइनें और अच्छी है, वो है ना, समय समय की बात है, समय समय का योग, करोड़ों में बिकते हैं दो कौड़ी के लोग। समय बेहतर हो तो दो कौड़ी के लोग भी करोड़ों में बिकने लगते, तो समय खराब हो जाए सीताराम। अब कोरोना में देखो तो सैनिटाइजर वही बिक गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
1: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
4: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
5: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
0: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
7: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
8: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
8: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ,
10: अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
4: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
7: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
2: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
17: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
18: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
19: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
3: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनु जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
6: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।

0: कौन सी राशि वाले लोगों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है? कौन सी राशि वाले लोगों के घर में सीलन जल्दी आ जाती है? और कौन सी राशि के लोग अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए रहते हैं? अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में क्या हो सकता है वास्तु दोष और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन ओपन सेशन से पहले भारत मंडपम में सदस्य देशों का ग्रुप फोटो शूट, समावेशी वैश्विक विकास का भविष्य विषय पर चर्चा। ब्रिक्स गाला डिनर में दिखे भारतीय संस्कृति के रंग, पारंपरिक नृत्य के साथ कलाकारों ने संगीत से बांधा समा, भारत के जायके के मुरीद हुए ब्रिक्स लीडर्स। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां तेज, पवित्र सरयू के घाटों पर रेनोवेशन का काम जारी, भव्य समारोह में दिखेंगे अवध की संस्कृति और आध्यात्म के रंग। मुंबई समेत देश भर में गणेशोत्सव की जोरदार तैयारी, बप्पा की मनमोहक इको फ्रेंडली मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। प्रयागराज में 13 दिनों के बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, गंगा का पानी उतरने के बाद मंदिर में की गई विधिवत साफ सफाई, पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने बजरंग बली की आरती की। भारत और श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल मुकाबला, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से होगी खिताबी जंग, भारत के पास 8वीं बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अफगानिस्तान के बीच आज T20 सीरीज का पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए,

0: ये तैयारी है दुश्मन से 100 कदम आगे चलने की। ये रणनीति है दो दो मोर्चों पर घात लगाए दुश्मन को पटखनी देने की। ये हुंकार है चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों को कुचलने की। LAC से लेकर LOC तक भारतीय सेना को पावरफुल बनाने के लिए भारतीय सेनाओं के हाथ ऐसे ऐसे नए हथियार लगने वाले हैं जो बिना शोर मचाए दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। डिफेंस एक्सपोजिशन काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ भारत आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और इसीलिए 98% डील ऐसी हुई है जिसमें डील सीधे तौर पर भारतीय उद्योगों के साथ ही होगी, यानी भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और सेना को भी इससे मजबूती मिलेगी। भारत के सामने एक साथ दो तरह की सैन्य चुनौतियां हैं, चीन के साथ लंबी और कठिन पहाड़ी सीमा, जबकि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर अलग तरह की सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सेना को उन रक्षा उपकरणों और हथियारों की जरूरत है जो विषम चुनौतियों के बीच भी दुश्मन पर बढ़त दिलाने का काम करें। सेना के लिए इस खरीद पैकेज में CBRN रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक्स, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, आरुद्रा रडार, मरीन गैस टोबाइन, ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स, डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम, तमाम चीजें शामिल हैं।
1: ये हम ईयरमार्क कर रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है और इसके जो स्पेसिफिक राइट्स हैं जो बेचने के या हमारे खरीदने के, वो होगी हमारी घरेलू इंडस्ट्री। और घरेलू इंडस्ट्री का मतलब क्या निकल कर आएगा? सीधी बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव करेगी, इकोनॉमी में हम सेव करेंगे, हमारे जो वेपन सिस्टम्स, क्योंकि हम अकेले वो कंट्री हैं जिसके वेपन सिस्टम वॉर टेस्टेड माने जाते हैं, और अगर वॉर टेस्टेड वेपन जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, इवन आकाश स्पीर हो गया, आप देख रहे हैं कि दुनिया में तहकला मचा हुआ है कि जनाब हमें यही वेपन सिस्टम चाहिए। सो मुझे सीधे सीधे लगता है टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक सेविंग, और आज नहीं तो कल जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक ट्रेड और इकोनॉमिक एनहांसमेंट, तीनों ही चीजें होंगी।
0: एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद प्रस्तावों में सबसे पहला नाम आता है CBRN रेकी व्हीकल का। इसकी खरीद का मुख्य मकसद युद्ध या फिर आपातकाल के दौरान सैनिकों को अदृश्य और जानलेवा खतरों से बचाना और उनकी मारक क्षमता को बनाए रखना है। इसका पहला काम है खतरों का पता लगाना। ये वाहन युद्ध क्षेत्र या फिर प्रभावित इलाकों में छिपे हुए हानिकारक रसायनों, खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया और न्यूक्लियर रेडिएशन का रियल टाइम में पता लगा सकते हैं। अगर किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो परमाणु विस्फोट के बाद का माहौल सबसे अधिक घातक हो सकता है, क्योंकि परमाणु धमाके के बाद बड़े पैमाने पर अदृश्य रेडियो एक्टिव फॉल आउट हवा और जमीन में फैल जाएंगे। ऐसे विनाशकारी समय में सामान्य वाहनों या फिर पैदल सैनिकों का जाना तुरंत मौत को बुलावा देना है। किसी भी तरह की परमाणु हमले के बाद सबसे पहले भारतीय सेना के पास मदद पहुंचाने में सबसे अव्वल होते हैं CBRN व्हीकल्स। ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो परमाणु हमले के तुरंत बाद सेना को पूरी ताकत से मदद भी पहुंचाते हैं और उन्हें सेफ गार्ड भी देते हैं। युद्ध क्षेत्र में CBRN रेकी व्हीकल्स सिर्फ रासायनिक गैस जैसे सरीन या मस्टर्ड गैस या खतरनाक वायरस या न्यूक्लियर रेडिएशन का पता नहीं लगाएंगे, बल्कि ये सेना को आगे बढ़ने या फिर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता भी तैयार कर सकते हैं। CBRN रेकी व्हीकल्स की एक और जिम्मेदारी है सुरक्षित रास्तों की मैपिंग करना। ये दूषित इलाकों में जाकर सुरक्षित और असुरक्षित रास्तों को मार्क करते हैं ताकि पीछे से आ रही मुख्य सेना और टैंक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। सीबीआरएम रेकी व्हीकल्स का तीसरा काम है सैनिकों को ब्लास्ट इफेक्ट से बचाना। इसमें ओवर प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी सीबीआरएम रेकी व्हीकल्स के केबिन के अंदर हवा का दबाव बाहरी वातावरण से अधिक रखा जाता है, जिससे बाहर की कोई भी जहरीली गैस या रेडियो डस्ट अंदर प्रवेश न कर पाए। चौथा बेहद खास काम है कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा भेजना। ये वाहन आधुनिक सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं। जैसे ही इन्हें किसी खतरे का पता चलता है, ये तुरंत कमांड सेंटर को भेज देते हैं।
1: आज से पहले हमारे पास होता था न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल कैपेबिलिटी। जब हम सीबीआरएन की बात करते हैं, दैट इज केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। सीवी अगर बातें करें जाए तो ये हमारे पास एक ट्रैक्ड व्हीकल होगी, एक व्हील्ड व्हीकल होगी। ये हमारे अनकन्वेंशनल वॉर के लिए है, क्योंकि हमें मालूम है दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है जो हमारा एडवर्सरी है, जो अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। अगर सीधी तौर पर बात करी जाए तो ये एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा कि जहां पर आप रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको रियल टाइम में डिटेक्ट कर मैप कर पाएंगे कि कहां से लेके कहां तक है, और जो उसके अंदर क्रू है उसको प्रोटेक्शन दे पाएंगे। सो सीधी बात करेंगे, आप जिस चीज को जितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं उतनी जल्दी ही उसके खिलाफ आप एक्शन ले पाते हैं।
0: चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना को ताकत का बूस्टर दिया जा रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर सैनिकों और भारी हथियारों की फौरन तैनाती के लिए बड़ी तादाद में नए स्वदेशी हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सही रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत है एचएमवी व्हीकल्स। भारत को दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ती है, एक तरफ है चीन और एक तरफ है पाकिस्तान। ऐसे में एचएमवी व्हीकल्स भारत के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। एलएसी पर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। चीन के लिहाज से देखें तो हमारी सेना के लिए निगरानी, पहाड़ी इलाकों में सैन्य रसद और तेज आवाजाही बेहद जरूरी हो जाती है। लिहाजा पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की मोबिलिटी और निगरानी बढ़ाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मल्टी व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, जैसे कि 4x4, 6x6 या 8x8। इन वाहनों के सभी पहियों को इंजन से सीधे पावर मिलती है। इससे ये भारी वजन उठाने के बाद भी कीचड़, गहरी रेत और खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ सकते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की पावरफुल M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, धनुष और K9 वज्र तोपों को पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाने के लिए 6x6 और 8x8 हैवी हाई मोबिलिटी ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके बिना भारी हथियारों को पहाड़ों पर ले जाना नामुमकिन माना जाता है। चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत को चंद घंटों में हजारों सैनिकों को सीमा पर तैनात करना पड़ सकता है। ऐसे में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स सामान्य ट्रकों के मुकाबले दुगनी रफ्तार से सैनिकों को बिना थकाए सीधे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं। युद्ध के समय फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ रहे सैनिकों को लगातार गोला बारूद, राशन, मेडिकल किट और ईंधन की जरूरत होती है। दुश्मन अक्सर मुख्य रास्तों और पुलों को बमबारी करके तबाह कर देता है। ऐसे समय में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स नदी नालों को पार करके कच्चे रास्तों से होते हुए फॉरवर्ड पोस्ट तक रसद की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देते। यही नहीं, सर्दियों में जब लद्दाख और सिक्किम में भारी बर्फबारी होती है, तब हाई मोबिलिटी व्हीकल्स -30 डिग्री तापमान में भी सेना के काम में जुटे रहते हैं। हाई मोबिलिटी व्हीकल में सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम लगा होता है, जिसमें व्हीकल के अंदर बैठे ड्राइवर के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो टायरों की हवा को कम या ज्यादा कर सकता है। और ये उस स्थिति में होता है जब ड्राइवर या तो दलदली जमीन की तरफ अपने व्हीकल को बढ़ा रहा हो या फिर पहाड़ी रास्तों में। इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से वो सड़क पर भी आसानी से इसे चला सकेगा और इतना ही नहीं दलदली जमीन में भी ये अपने रण कौशल का बाखूबी प्रदर्शन कर पाएगा।
1: ये हाई मोबिलिटी व्हीकल जो है अपने आप में लकीली हमने अपने आर्टिलरी में इसे इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं जरा अच्छे से बता पाऊंगा कि जो हमारी हैवी ड्यूटी लॉजिस्टिक व्हीकल्स होती हैं जिनके अंदर जो कि हमें अलग अलग टेरेन पर चलाना पड़ता है, तो उसमें हाई मोबिलिटी सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन से फायदा ये होता है कि टायर का प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मुझे टायर का प्रेशर कम चाहिए डेजर्ट्स में, मुझे चाहिए स्नो के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक बटन दबाने से उसका टायर प्रेशर कम हो जाएगा, टायर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से उसका जो जमीन से ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर सेम गाड़ी जब मेन रोड्स पर आती है, प्लेन्स में आती है, रगेड टेरेन में आती है, तो उस प्रेस ऑफ बटन से वो टायर इन्फ्लेट हो जाएगा।
0: चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारतीय सेना की आक्रामक और त्वरित जवाबी कार्रवाई यानी शूट एंड स्कूट रणनीति हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ही टिकी हुई है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ब्रह्मोस और पिनाका जैसी घातक मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से फिट किए जाते हैं।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल शूट एंड स्कूट का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि जब आप एक आर्मर्ड गाड़ी के अंदर आप हाई मोबिलिटी एबिलिटी रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो सीधी सीधी बात है, एक तो सब तरह के टेरेन्स के ऊपर चल सकता है, चाहे वो स्नो हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे वो डिफिकल्ट टेरेन के लिए बात करें, और उसके ऊपर जो लगे हुए हैं ड्रोन्स और यूएवी वो उसको फायर कर सकता है, जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स हैं वो भी जो लगे हैं वो एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनिमी को डिटेक्ट कर वहां से गायब हो सकते हैं, दूसरा आप उसके ऊपर फायर कर उसका वापसी फायर आने से पहले स्कूट कर जाएंगे। शूट का मतलब होगा आपने फायर किया, स्कूट का मतलब होगा आप वहां से फायर करते ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपके ऊपर एक एडवर्सरी भी वापस अटैक करेगा।
0: अगर चीन या पाकिस्तान सीमा पर अचानक तनाव बढ़ता है तो मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को ट्रेनों या फिर बड़े मालवाहक जहाजों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये हाई मोबिलिटी ट्रक खुद सड़क मार्ग से कुछ ही घंटों में सीधे फ्रंट लाइन तक पहुंच सकते हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा ताकत पर बनाने के लिए धड़ल्ले से हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल सैन्य रणनीति में एक जगह स्थिर रडार या फिर मोबाइल बेस को दुश्मन के सैटेलाइट आसानी से ट्रैक करके उसे तबाह कर सकते हैं, और इसीलिए वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ट्रकों पर माउंट करके एक चलता फिरता किला बना सकती है ताकि दुश्मन को ट्रैक किया जाए और उस पर नजर रखी जा सके। भारतीय वायुसेना अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए 6x6 और 8x8 और 10x10 वाहनों का रणनीतिक उपयोग करती है। वायुसेना के बेड़े में शामिल आकाश और समर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम 8x8 और 6x6 ट्रकों पर तैनात है। वायुसेना के अत्याधुनिक अरुद्रा और अश्विनी रडार भी हाई मोबिलिटी वाहनों पर फिट होते हैं। दुश्मन के हमले की आशंका होने पर यह रडार 15 मिनट में पैक होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। भारत का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस 400 ट्रायंफ भारी भरकम 8x8 और 10x10 वाहनों पर तैनात है।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल एक्चुअली देखा जाए तो एयरफोर्स और आर्मी के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों ही जगहों पर बड़े डिफिकल्ट और वेरिड टेरेन है। एयरफोर्स को भी ऑपरेट करना पड़ता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, डिफिकल्ट एरियाज में, डेजर्ट एरिया में वगैरह वगैरह। सो इन सब जगहों पर अगर आपके पास एक हाई टेरेन व्हीकल है, हाई मोबिलिटी व्हीकल है, आप उसके ऊपर अपने रडार्स लगा सकते हो, आप अपने उसके ऊपर मिसाइल्स लगा सकते हो, एयर डिफेंस रिलेटेड आइटम्स लगा सकते हो, और उन्हें उस जगह पर पहुंचा पाते हो जहां पर एनिमी आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। मेरा कहने का मतलब होगा स्पीड और सरप्राइज हाई मोबिलिटी व्हीकल डेफिनेटली एयरफोर्स को एक एज देगा कि आप फॉरवर्ड एरियाज में जो बिल्कुल LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, आप वहां से दुश्मन को न केवल मॉनिटर कर पाओगे रडार्स द्वारा, बट इवन एंगेज कर पाओगे अपनी मिसाइल्स द्वारा।
0: भारतीय नौसेना मुख्य रूप से समंदर में युद्धपोतों पर लड़ती है, लेकिन तटीय सुरक्षा और समुद्री हवाई स्टेशनों की सुरक्षा के लिए भी वो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करती है। नौसेना अपनी लंबी बाउंड्री की रक्षा के लिए ब्रह्मोस तट रक्षक सुरक्षा मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादा करती है। ये मिसाइल 8x8 मोबाइल ऑटोनमस लॉन्चर ट्रकों पर तैनात होती है। इन्हें समुद्र तट के पास किसी झाड़ीदार इलाके में तैनात कर दिया जाता है, जहां से ये दुश्मन पर लगातार नजर रखती है और मौका पड़ने पर ये एक्शन में भी आ सकती है। सात सितंबर 2026 को रक्षा खरीद में नौसेना के हवाई स्टेशन के लिए नए अरुद्रा रडार को मंजूरी मिली। नौसेना इन रडार्स को मोबाइल ट्रकों पर रखती है ताकि नेवल एयरफील्ड पर आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और टोही ड्रोनों पर लगातार नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर रडार की पोजीशन बदली जा सके।
1: अगर अरुद्रा रडार की बात करें तो बेसिकली हम नेवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मीडियम पावर्ड मीडियम रेंज एयर सर्वेलेंस सिस्टम है जो दूरी तक हमारे को सर्वेलेंस का अब एबिलिटी देता है, जो के जो नेवल हमारा एयर स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर इसके अंदर देखा जा सकता है। कोस्टल डिफेंस के लिए जो ट्रैकिंग है, जो डिफेंसिव ट्रैकिंग सिस्टम है कोस्टल एरियाज में, ये उसको स्ट्रेंथन करता है और टोटल जिसको बोलते हैं ना एयर डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैरिटाइम बॉर्डर्स हमारे लंबे चौड़े हैं, इलाका टू बी मॉनिटर्ड बहुत लंबा चौड़ा है और रडार अरुद्रा टाइप हमारे पास होने से ऑब्वियस एडवांटेज नेवी को पूरी तरह मिलती है।
0: भारत की 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद से ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि भारत किसी खास युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये ज्यादा व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण का हिस्सा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स भी खरीद रही है। भारत सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर खरीदने का भी मन बना रहा है। दरअसल पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में जहां पर थल सेना सबसे ज्यादा मोर्चा संभालती है, ये वहां पर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइल बिछाने के लिए भी होता है, जिससे दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती है और उस पर हमला भी सटीक किया जा सकता है। पहले के समय में सैनिकों को फावड़े लेकर हाथ से जमीन खोदनी पड़ती थी और बारूदी सुरंगें चबानी पड़ती थी, जिससे बहुत ज्यादा समय लगता था और जवानों की जान का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब मशीनों के जरिए एंटी टैंक माइंस बिछाई जा सकती हैं। अब ये तकनीक कैसे काम करती है ये भी जान लीजिए। सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट होती है। इसके पीछे एक विशेष मैकेनिकल आर्म लगा होता है जो चलते चलते जमीन को खोदता है और उसमें एंटी टैंक माइन को सटीक दूरी पर रखता जाता है, उसे एक्टिव करता है और वापस मिट्टी से ढक देता है। जहां हाथ से माइन बिछाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स महज कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर लंबा बारूदी सुरंग का अभेद जाल बिछा सकता है।
1: MMLSP जिसको बोलते हैं मैकेनिकल माइन लेयर सेल्फ प्रोपेल्ड जो है हमारा, वो एक मल्टीपल यूज प्लेटफॉर्म है जो कि मैकेनिकल है और माइन लेइंग का मतलब है कि मैकेनिकली ऑटोमेटिकली आप कैनिस्टर्स के अंदर से माइन जमीन के ऊपर लगाते चले जाएं, क्योंकि आपके पास जो अदरवाइज जमीन का जो वैरायटी अवेलेबल है, रगेड टेरेन है जहां डिफिकल्ट है, वहां पर आपको एफर्ट ज्यादा लगता है, एनिमी ऑब्जर्व कर पाता है, मे बी एनिमी आपको डिसरप्ट कर पाता है। सो तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ माइंस अगर कभी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऑपरेशनल एरिया में जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
0: चीन और पाकिस्तान सीमा पर सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के साथ पंजाब और राजस्थान के मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध की स्थिति में दुश्मन के टैंक तेजी से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं तनाव की स्थिति में LAC पर चीन भी अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर बेहद कम समय में रक्षात्मक घेरा यानी कि माइन फील्ड तैयार कर सकते हैं, जिससे पार करने का मतलब है कि दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही। सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइनलर्स केवल बारूदी सुरंगें नहीं बिछाता, बल्कि कहां कहां सुरंगें बिछी हैं इसका पूरा डेटा इसके पास होता है, यानी कि पूरी GPS लोकेशन इसके पास होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि युद्ध खत्म होने के बाद या फिर युद्ध के समय जब दुश्मन आगे बढ़ जाता है तो भारतीय सेना यदि आगे बढ़ती है तो उसे अपनी ही बिछाई हुई माइंस का ट्रैक पूरी तरह से पता होगा, जिससे वो खुद की बिछाई माइंस के दायरे से बाहर रह सकेंगे और युद्ध लड़ सकेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। मल्टी रोल क्षमता से लैस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर सैनिकों के परिवहन, घायलों को निकालने, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने में भी सक्षम है।

0: चीन और पाकिस्तान जैसी दुर्गम पहाड़ियां जहां पर कई रास्ते ऐसे हैं जो सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं, जहां पर सड़क का नामो निशान तक नहीं रहता, वहां पर ALH ध्रुव सबसे कारगर साबित होता है, क्योंकि ऐसे समय में ALH ध्रुव ही वहां तक राशन, दवाइयां, गोला बारूद सही समय पर पहुंचाता है।
1: मल्टी रोल क्षमता से लैस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर कितना दमदार है और भारतीय सेना इस पर क्यों सबसे ज्यादा भरोसा करती है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। ALH ध्रुव की सबसे बड़ी खासियत इसका शक्तिशाली शक्ति इंजन है, जो 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारी वजन के साथ उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम है, जो पायलट को रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक उड़ान भरने में मदद करता है। सीमा पर किसी भी घुसपैठ या आपातकालीन स्थिति के दौरान ये हेलीकॉप्टर 12 से 14 सशस्त्र सैनिकों को दुश्मन की नजरों से बचाकर सीधे युद्ध क्षेत्र में उतार सकता है।
2: ALH ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मेरा भारतीय है, हमने अपने आप बनाया है। जो चीज आप अपने आप बनाते हैं ना, उसका कहीं कोई पैरेलल नहीं होता, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ALH ध्रुव हमारा एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो मेरे हिसाब से सर्वेलेंस के बड़ा काम आता है, इवन ट्रुप्स के लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, कॉम्बैट और आर्मर्ड रोल में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी ये बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसे एक बहुत अच्छी सेफ्टी देती है।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: कौन सी राशि वाले लोगों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है? कौन सी राशि वाले लोगों के घर में सीलन जल्दी आ जाती है? और कौन सी राशि के लोग अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए रहते हैं? अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में क्या हो सकता है वास्तु दोष और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
8: और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की भागा दौड़। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खोलकर नदी या फिर खाई पर टिका देता है। सर्वत्र का एक सिंगल ट्रक 15 मीटर लंबा पुल बिछा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐसे 5 ट्रकों को आपस में जोड़कर बहती हुई चौड़ी नदी पर 75 मीटर लंबा एक मजबूत पुल तैयार किया जा सकता है। एलओसी पर कई छोटी नदियां, नहरें और एंटी टैंक खाइयां हैं। युद्ध के समय भारतीय सेना के भारी भरकम अर्जुन और T-90 भीष्म जैसे टैंकों को सीमा पार भेजने के लिए सर्वत्र ब्रिज रातों रात तैयार किया जा सकता है। सर्वत्र सिस्टम मिलिट्री लोड क्लास 70 के मानकों को पूरा करता है। इसका मतलब ये है कि ये 70 टन वजनी टैंक है और मिसाइल लॉन्चर के वजन को भी आसानी से झेल सकता है। यानी भारत का मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A जिसका वजन 68 टन है और T-90 भीष्म टैंक जिसका वजन 46.5 टन है वो आसानी से सर्वत्र सिस्टम पार कर सकते हैं।
1: सर्वत्र सिस्टम एक ब्रिजिंग सिस्टम है जो हमारे इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं लड़ाई के दौरान। इसका अगर बेसिक कंसेप्ट देखा जाए तो आगे इसके एक ट्रॉल टैंक चलता है जो एक सेफ लेन बनाता है, उसके इमीडिएट पीछे ये चलता है जो कि जाकर जो भी आपके सामने ऑब्स्टेकल है, चाहे वो डिच है या एक शेलो डिच है, किसी भी तरह का जो ऑब्स्टेकल है जिसके ऊपर से टैंक्स और इन्फेंट्री ने क्रॉस करना है, ये उसके ऊपर एक 75 मीटर का ब्रिज बना सकता है अगर हम इसके 5 के 5 स्पैन को इस्तेमाल कर पाए। दैट अमाउंट्स टू के अगर कोई भी क्रॉसिंग करनी है, चाहे कैनाल क्रॉसिंग ले लीजिए या डिच क्रॉसिंग ले लीजिए, वो उसको बहुत तेजी से क्रॉस करा पाता है। 75 मीटर जो कि 100 मिनट से 150 मिनट के अंदर हम अचीव कर पाते हैं। अदरवाइज जनरली इट टेक्स अबाउट 5 to 6 आवर्स टू डू सच क्रॉसिंग।
0: भारतीय सेना सिर्फ हथियार ही नहीं खरीद रही बल्कि दुश्मन से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी खुद को मजबूत करने में जुटी है। इंडियन एयर स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स की भी खरीद हो रही है। ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स दुश्मन के हवाई और जमीनी रडार सिग्नल्स को पकड़ता है और उन पर प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करता है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जैम हो जाते हैं और वो लड़ाकू विमानों की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते। जहां परंपरागत जैमर्स सिर्फ एक विशेष फ्रीक्वेंसी या फिर सिर्फ संचार को ही बाधित कर सकते हैं, इसके उलट मल्टीपर्पज जैमर्स एक साथ कई तरह के खतरों से निपट सकते हैं। ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स दुश्मन की टैक्टिकल कम्युनिकेशन यानी सामरिक रेडियो बातचीत को ब्लॉक करता है। लड़ाकू विमान अर्ली वार्निंग सिस्टम और ग्राउंड कंट्रोल रूम के बीच के डेटा ट्रांसफर को रोकता है। साथ ही आधुनिक ड्रोन के नेविगेशन और कंट्रोल सिग्नल्स को भी जाम कर देता है। यानी ये सिस्टम बिना एक भी मिसाइल या फिर गोली चलाए दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को पंगु कर देता है।
1: ग्राउंड बेस होने के वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं, जिससे आप सरप्राइज अचीव कर पाते हैं और इवन इफेक्टिवनेस ऑफ कवरेज को आप बढ़ा सकते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राउंड बेस्ड जैमर्स के द्वारा। जैमर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को अपने लिए इस्तेमाल करने देता है और दुश्मन को उसे डिनाई करता है। तो अगर उसके 3D का कंसेप्ट अगर हम लगाने की कोशिश करें कि वो एनिमी को डिसरप्ट करता है, डिग्रेड करता है और डिले करता है, जबकि अपने लिए वो इस चीज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने देता है। सबसे बड़ी बात होगी कि कम्युनिकेशन, रडार्स, ड्रोन्स जो एनिमी के हैं वो इनको इनइफेक्टिव बना सकता है और मोबिलिटी के ग्राउंड बेस्ड होने के वजह से, क्योंकि इसे आप मूव कर पाते हैं, आप इसे बॉर्डर के उतना ही नजदीक ले जा पाते हैं जिससे कि एनिमी आपके तरफ आने से पहले डिग्रेड, डिसरप्ट और डिले हो पाए।
0: थल सेना और वायुसेना को बूस्टर डोज देने के साथ साथ नौसेना की ताकत को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के अलग अलग नेवल एयर स्टेशन पर लगे पुराने L2 सवलांस रडार को बदलने के लिए एक्स्ट्रा अरुदा रडार की खरीद को मंजूरी दी गई है। अरुदा भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित 4D मीडियम पावर रडार है। 4D मल्टी फंक्शन क्षमता से लैस है, यानी किसी भी हवाई लक्ष्य की 4 सटीक जानकारियां देता है। पहला रेंज, दूसरा दिशा, तीसरा ऊंचाई और चौथा स्पीड। अरुदा रडार जमीन से 100 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई से लेकर 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 100 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन उड़ते हैं, वहीं 30 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। अरुद्रा की सबसे खास बात यह है कि दुश्मन

0: ब्रह्मांड के शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स के बीच भी इसे जाम नहीं किया जा सकता।
1: अरुतर रडार एक्चुअली नेवी के लिए आया है और सबसे बड़ी बात यह है कि फोर डायमेंशनल है और मल्टी फंक्शनल रोटेटिंग है, मतलब चारों ही डायरेक्शंस में ये रोटेट कर पाता है। दैट मींस नॉट ओनली 360 डिग्रीज आगे पीछे दाएं बाएं, इवन ऊपर और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इफेक्टिव सिस्टम है जो कि नेवी के एयर डिफेंस रोल में एक बहुत बड़ा काम करेगा, जहां पर के जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स जो इनकमिंग है ये उनको डिटेक्ट कर पास ऑन कर पाएगा, जो एयर डिफेंस एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।

भारत अपने मेन बैटल टैंकों को बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए ट्रॉल सिस्टम लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रॉल असेंबली सिस्टम टैंकों के सामने लगाया जाता है, जो युद्ध के दौरान माइंस वाले इलाकों में टैंक को सुरक्षित बनाने में मदद करता है।

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सेना के मेन बैटल टैंक T-72 और T-90 के लिए BEML और इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ 975 करोड़ के ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऑर्डर ट्रकों के ट्रॉल असेंबली सप्लाई करेगा।

0: डील के तहत T-72 और T-90 टैंकों में ट्रॉल नाम का एक सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रॉल एक तरह की मशीन है जिसे टैंक के अगले हिस्से में फिट किया जाता है और इसका काम रास्ते में दबी बारूदी सुरंगों को ढूंढकर उन्हें हटाना है। ट्रॉल का पहला हिस्सा एक रोलर होता है। ये वजन में बहुत भारी होता है। ये टैंक के आगे की जमीन पर दबाव डालता है जिससे जमीन के नीचे बिछी माइंस पहले ही फट जाती हैं। ट्रॉल का दूसरा हिस्सा माइन प्लाउड कहलाता है। प्लाउड यानी कि खेत जोतने वाला हल। ये हिस्सा मिट्टी को हटाता है या धकेलता है। इससे जमीन के नीचे छिपी माइंस रास्ते के साइड में चली जाती है। आमतौर पर ट्रॉल में एक बार में एक सिस्टम का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसके दोनों हिस्सों को एक साथ ऑपरेट किया जा सकता है। T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी ट्रॉल सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिलने से मेक इन इंडिया मिशन को नई ताकत मिलेगी। इस समझौते का मुख्य मकसद युद्ध की स्थिति में सेना की गतिशीलता को बढ़ाना और जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ट्रॉल असेंबली इंडियन आर्मी की माइनफील्ड रीचिंग यानी बारूदी सुरंगों को तोड़ने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। साथ ही ये प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज वाली एंटी टैंक बारूदी सुरंगों से भरे इलाकों के बीच भी सुरक्षित रास्ता बनाएगा। जंग के मैदान में जब एक टैंक उतरता है तो इसके विध्वंसक प्रहार की क्षमता इसे जमीनी जंग की सबसे पावरफुल हथियार बनाता है। ना तो रेतीली धरती इसकी रफ्तार को रोक पाती और न ही दलदली जमीन या फिर पहाड़ी इलाका टैंकों की राह में बाधा बनता है। टैंक अपने सामने आने वाली हर चीज को रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं और दुश्मन की सरजमी पर अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। जंग के हालात में अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल हथियार होता है टैंक। टैंक अपनी रक्षा भी खुद ही करता है और टैंक दुश्मन को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन एक चीज है जो कि टैंक को तबाह कर सकती है और वो होती है एंटी टैंक माइंस। और इन्हीं से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 975 करोड़ की डील साइन की है।
1: युद्ध के समय सबसे बड़ी चुनौती कम समय में दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ना है। अगर रास्ते में बारूदी सुरंगें हों तो सेना की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। नया ट्रॉल सिस्टम इसी देरी को खत्म कर देगा और ये तकनीक रात के अंधेरे में खराब मौसम में भी सटीक तरीके से काम कर पाएगी। इसके इस्तेमाल से युद्ध क्षेत्र में हताहत होने वाले सैनिकों की संख्या में भारी भरकम कमी आएगी।
0: ट्रॉल सिस्टम का ये पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को साफ कर दिया है कि ट्रॉल पूरी तरह से भारत निर्मित ही है, यानी रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO इसे बना रहा है। इसके वैज्ञानिक लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं और ये एक तरीके से दिखाता भी है दुनिया को कि किस तरीके से भारत अपने रक्षा के लिए खुद ही हथियार तैयार कर रहा है। यहाँ तक कि कई देश अब भारत पर भी अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर निर्भर है।
1: थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए संतुलित तरीके से क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। स्वदेशी उद्योग को प्राथमिकता देकर भारत वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। आने वाले वर्षों में सेना के लिए खरीदे जा रहे सिस्टम सशस्त्र बलों की तैयारियों को नई ऊंचाई देंगे और साथ ही साथ राष्ट्र की सुरक्षा को और पुख्ता करेंगे।
0: रणक्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। वंदे में है दम शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: अब खबर लद्दाख से ही, जहां के लेह में मैराथन दौड़ का शानदार आयोजन किया गया है। इसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर और सबसे कठिन मैराथन माना जाता है। इसका शुभारंभ 10 सितंबर को ही किया गया और आज इसका तीसरा दिन है। लद्दाख मैराथन में इस बार करीब 8,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें फुल मैराथन में 1600 और हाफ मैराथन में लगभग 2100 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा दूसरे इवेंट्स में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मैराथन में शामिल होने के लिए लोग कई महीने पहले से ही यहां पहुंचकर तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान 122 किलोमीटर की सिल्क रूट अल्ट्रा और 72 किलोमीटर की खारदुंग ला चैलेंज का भी आयोजन होता है। लोगों का उत्साह और जोश इसमें देखते ही बनता है। और चलिए अब आपको एक अच्छी खबर दे दें केरला से। केरला का मशहूर गुरुवायूर मंदिर एक साथ करीब 450 जोड़ों की शादियों का गवाह बना है। आपको बता दें, मान्यताओं के अनुसार मलयालम महीने चिंगम का आखिरी रविवार शादियों के लिए शुभ दिन माना जाता है और इसलिए इस बार गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में जोड़े ब्याह रचाने के लिए पहुंचे और देखते ही देखते यहां 444 जोड़ों की शादी कराई गई। मंदिर प्रशासन अनुसार शादियां सुबह 4 बजे शुरू हुई और शुरुआती 2.5 घंटों में ही 150 शादियां संपन्न हो गई। हालांकि मंदिर परिसर में भीड़ को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन के साथ आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी गई। इससे पहले चिंगम महीने के पहले रविवार 23 अगस्त को भी मंदिर में 400 से ज्यादा शादियां हुई थी। मंदिर में विवाह की थाली केट्टू रस्म के लिए 6 मंडप बनाए गए हैं और शादी की जगह पर रस्मों में मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। वहां पारंपरिक संगीत मंडली भी मौजूद है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें वेनिस फिल्म फेस्टिवल की। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं ने अपनी कामयाबी का शानदार जश्न मनाया। डेनमार्क की फिल्म मेकर में अल तुखी ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म वुमन अननोन के लिए गोल्ड लायन अवार्ड जीता और इस फिल्म की स्टार मैथिल्डे आर्सल ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। दोनों शख्सियतों के लिए ये डबल जीत के जश्न का मौका था। तो वहीं साउथ कोरिया के फिल्म मेकर ली चांग डोंग ने प्रॉमिस्ड लव के लिए रनर अप सिल्वर लायन अवार्ड भी जीता, जबकि रशिया में जन्मे फिल्म मेकर इलिया ने डाउ के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। इसके अलावा इसराइल के डायरेक्टर यूवल अब्राहम और राहिल जोर की जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री नाजा ने स्पेशल ज्यूरी प्राइज जीता। फेस्टिवल में स्टीफन ब्रिज और कोराली एमिदाओ और ओलिवियर ग्रोर्स को उनके लोकप्रिय फ्रेंच वर्कप्लेस ड्रामा अ गुड लिटिल सोल्जर के लिए स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला, जबकि मालू खेबीजी को एक और लोकप्रिय फ्रेंच फिल्म अ प्लेस टू हील में उनकी भूमिका के लिए बेस्ट इमर्जिंग यंग एक्टर चुना गया। 83वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इटली के वेनिस लिडो द्वीप पर 2 सितंबर से 12 सितंबर 2026 तक आयोजित किया गया। ये दुनिया का सबसे पुराना और सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रेस्क्यू की एक शानदार तस्वीर जो आई है अमेरिका से। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 15 साल के एक लड़के को समुद्र में जान गंवाने से बचा लिया। ये घटना अलास्का के पास हुई, जहां पर एक नाव पलटने के बाद यहां लड़का उसके पिछले हिस्से पर किसी तरह से टिका हुआ था। 2 दिनों तक इसने नाव पर इसी तरह से वक्त गुजारा और इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। बताया जाता है कि लड़का अपने भाइयों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। हादसे के बाद केवल यही बचने में कामयाब रहा। कोस्ट गार्ड के जवानों ने इसे देखा तो बचाव अभियान चलाकर इसे रेस्क्यू किया और फिर बीमार हालात में इलाज के लिए भेजा गया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: कौन सी राशि वाले लोगों के लिए घर में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है? कौन सी राशि वाले लोगों के घर में सीलन जल्दी आ जाती है, और कौन सी राशि के लोग अपने घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा किए रहते हैं? अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में क्या हो सकता है वास्तु दोष, और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की भागा दौड़। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: समिट के दूसरे दिन ओपन सेशन से पहले भारत मंडपम में सदस्य देशों का ग्रुप फोटोशूट, समावेशी वैश्विक विकास का भविष्य विषय पर चर्चा। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.0 का आयोजन, मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट गवर्नेंस के साथ कृषि और चिकित्सा में एआई के इस्तेमाल पर मंथन। यूपी के संभल में गणेश चतुर्थी मेले का शुभारंभ, सर्वधर्म संभाव का संदेश देते हुए हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म गुरुओं ने किया उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां तेज, पवित्र सरयू के घाटों पर रेनोवेशन का काम जारी, भव्य समारोह में दिखेंगे अवध की संस्कृति और आध्यात्म के रंग। प्रयागराज में 13 दिनों के बाद खुले लेटे हनुमान मंदिर के कपाट, गंगा का पानी उतरने के बाद मंदिर में की गई विधिवत साफ सफाई, पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने की बजरंग बली की आरती। भारत श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फाइनल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से होगी खिताबी जंग, भारत के पास 8वीं बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अफगानिस्तान के बीच आज T20 सीरीज का पहला मैच, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मैदान में उतरेगी टीम इंडिया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के बारे में, घर के वास्तु के बारे में। कौन सी बातों का आपको अपने घर में ध्यान देना है, घर का कौन सा स्थान कैसे रखना है, और आपको राशियों के अनुसार बताएंगे कि आपके घर में वास्तु की कैसी गड़बड़ियां हो सकती हैं और उनको बेहतर करने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है, नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिर्तप प्रभो। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिर्तप प्रभो। मद्गृहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। मद्गृहं धन धान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। अगर आपके घर में कोई दोष है, कोई वास्तु की समस्या है, घर में कोई वास्तु के हिसाब से गलत निर्माण हो गया है, घर में कोई बड़ा वास्तु दोष आ गया है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए। ये जो मंत्र आपको बताया है, रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जप करिए। ज्यादा प्रभाव के लिए सामने एक लोटे में जल भर करके रख लें। मंत्र जप करने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़कें। आपके घर में कैसा भी, कितना भी बड़ा वास्तु दोष होगा, अगर वास्तु पुरुष का ये मंत्र आप नियमित रूप से जपेंगे तो वास्तु दोष की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, वैसे तो घर का कोना कोना महत्वपूर्ण है, घर के हर स्थान का अपना बहुत महत्व होता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कौन कौन से स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरा घर महत्वपूर्ण होता है, घर का हर कोना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, परंतु इसमें भी घर के अलग अलग हिस्से का अपना महत्व है, घर का अलग अलग हिस्सा अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। और घर का जो अलग अलग स्थान है, बेडरूम है, रसोई है, ड्राइंग एरिया है, बाथरूम है, हर स्थान का किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है, और अगर आप उस स्थान को बेहतर करते हैं, उस स्थान को बेहतर बनाते हैं, तो अपनी कुंडली के ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो घर का मुख्य द्वार, रसोई और पूजा घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और मान लिया कि आपकी कुंडली का कोई ग्रह खराब है, उस ग्रह का जो स्थान आपकी कुंडली में है, घर से जुड़ा हुआ है, उस स्थान को अगर आप बेहतर करेंगे तो आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। देखिए, घर का जो मेन डोर है, मुख्य द्वार है,
वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से घर में खुशियां भी आती हैं और समस्याएं भी आती हैं। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक रखते हैं, मुख्य द्वार को ठीक बनाए रखते हैं, तो अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। इस द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, घर के मेन डोर पर गंदगी मत रखिए, घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा बनाइए। यहां पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करिए, घर के मुख्य द्वार पर पर्याप्त लाइट होनी चाहिए और मेन डोर पर एक नेम प्लेट भी लगाइएगा, और नेम प्लेट काले रंग की नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार में शुभता रहे और मुख्य द्वार से आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी ना आए, कोई नकारात्मक ऊर्जा ना आए, इसके लिए मुख्य द्वार पर शनिवार की शाम को निकलते समय लेफ्ट साइड में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर मेन डोर पर शनि

समस्या दूर होगी और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। ये तो हो गया घर का मुख्य द्वार। अब जानते हैं घर के लिविंग एरिया के बारे में, जिसको ड्राइंग रूम भी कहते हैं। जो घर का लिविंग एरिया है, उस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। घर में खुशियां कितनी रहेंगी, घर के लोग कितने चैन से और कितने सुकून से रहेंगे, वो आपके घर के लिविंग एरिया से, आपके घर के ड्राइंग रूम से जाना जा सकता है। अगर आप अपने घर के लिविंग एरिया को ठीक बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, तो जीवन के अवसाद को, डिप्रेशन को और तनाव को दूर कर सकते हैं। जो आपके घर का लिविंग एरिया है, उस स्थान को भी प्रकाशित रखें, वहां लाइट की अच्छी व्यवस्था करें। यहां पर अगर संभव हो तो हल्की सुगंध की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं और अपने लिविंग एरिया को बहुत अच्छा, बहुत शुभ और बहुत अच्छी तरंगों वाला बनाने के लिए या तो ढेर सारे फूल रखें या ढेर सारे फूलों के अगर चित्र लगाएं तो काफी बेहतर होगा। घर के लिविंग एरिया में जूते चप्पल मत रखिएगा। घर के लिविंग एरिया में जूते चप्पल रखने का स्थान ना बनाएं। वहां पर प्रकाश अच्छा रहे, खुशबू आती रहे, फूलों का चित्र लगा रहे या रेगुलर फूल बदलते रहे, नए फूल लगाते रहे। अगर ऐसा करेंगे तो लिविंग एरिया आपका बहुत अच्छा होगा और वहां जाने से, वहां बैठने से आपको आनंद मिलेगा, आपको खुशियां मिलेंगी। अब जानते हैं आपके घर की रसोई के बारे में, किचन के बारे में क्या महत्व है इसका। घर की जो रसोई है, जो घर का किचन है, इस स्थान से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है कि घर के लोग जीवन में कितने स्वस्थ रहेंगे। घर में बीमारियां तो ज्यादा नहीं है। रसोई घर में थोड़े ही समय, आधे घंटे, 40 मिनट अगर सूर्य का थोड़ा प्रकाश आए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखें, चीजों को संभाल करके सिस्टम में बनाए रखें और रसोई घर में सबसे जल्दी निगेटिव एनर्जी आ जाती है। इसीलिए रसोई घर में हर व्यक्ति को प्रवेश ना करने दें। रसोई घर पर्सनल है, इसीलिए घर के लोग ही रसोई घर में जाएं तो बेहतर होगा। रसोई घर को साफ रखिए, पवित्रता बनाए रखिए, भोजन को भगवान का प्रसाद समझ के बनाइए और खाइए।
रसोई घर में अगर शुद्धता पवित्रता रहती है तो घर में बीमारियां नहीं होंगी। और जब आप शाम के समय पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो उस धूप बत्ती को पूरे घर में घुमाएं और पूजा के बाद धूप बत्ती रसोई में जरूर घुमाइए ताकि रसोई में शुभता और पवित्रता आ जाए। अब जानते हैं आपके बेडरूम के बारे में, जिसको आप कहते हैं शयन कक्ष। तो आपके बेडरूम का महत्व क्या है और बेडरूम में किन बातों का ध्यान देंगे? जो आपके घर का बेडरूम है, जो आपके घर का शयन कक्ष है, उस स्थान से सुख और समृद्धि देखी जाती है। आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे, आप जीवन में कितने संपन्न रहेंगे, ये आपके घर के बेडरूम से देखा जा सकता है। शयन कक्ष का रंग अपने बेडरूम का रंग लाइट शेड का हल्का रखिएगा। हल्का हरा रंग या गुलाबी रंग या सफेद रंग या क्रीम रंग, हल्का हरा, गुलाबी, सफेद या क्रीम रंग अगर आप अपने बेडरूम में रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शयन कक्ष में टीवी न लगाएं। बेडरूम में टीवी लगाना बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं, रेडियो रख सकते हैं, हल्के संगीत की व्यवस्था कर सकते हैं। जहां तक हो सके, मजबूरी है, कोई बीमार है तो बात दूसरी है, अदरवाइज अपने बेडरूम में खाना मत खाइए और बिस्तर पर खाना बिल्कुल मत खाइए। इससे धन की हानि होती है, धन का नुकसान होता है। तो जहां तक हो सके बेडरूम में खाना ना खाएं और पलंग पर चाहे कपड़ा बिछाकर चाहे अखबार बिछाकर पलंग पर भोजन ना करें। शयन कक्ष में अगर सूर्य का प्रकाश आए, हवा आए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सुबह उठने के साथ भले ही आप रात में एयर कंडीशन में सोते हों, लेकिन सुबह उठकर घर के सारे खिड़की दरवाजे कुछ समय के लिए खोलने चाहिए ताकि आपके घर में पॉजिटिव तरंगें आएं, घर की निगेटिव तरंगें बाहर निकल जाएं और घर में धीरे धीरे शुभता आनी शुरू हो जाए। जो घर हमेशा बंद रहते हैं, जिनमें वेंटिलेशन नहीं आता, जिनमें सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर बीमारियां जरूर आती हैं। अब बात करते हैं बाथरूम की। बाथरूम ये बताता है आपके घर का कि आपके जीवन में प्रॉब्लम कितनी है, आपके जीवन में समस्या कितनी है, कैसे आएगी और आप उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। बाथरूम को हमेशा साफ रखिए, बाथरूम में गंदगी मत फैलाइए और बाथरूम में
पानी की बर्बादी मत करिएगा। जब भी बाथरूम में नहा लेते हैं, पानी का काम कर लेते हैं, बाथरूम के पानी को सुखा लीजिए, वाइपर की सहायता से पानी किनारे कर दीजिए ताकि पानी बर्बाद ना हो, इधर उधर बिखरा ना रहे। बाथरूम में नीले रंग का प्रयोग, पर्पल कलर यानी बैंगनी रंग का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। अगर कोई रंग समझ में नहीं आ रहा तो बाथरूम की दीवारों का रंग आपको सफेद रखना चाहिए। बाथरूम में अगर हल्की सुगंध आती रहे तो काफी अच्छा होगा, यानी बाथरूम में पानी की बर्बादी ना हो, बाथरूम का रंग नीला, पर्पल या सफेद हो और बाथरूम में हल्की सुगंध आती रहे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं सीढ़ियों के बारे में। देखिए, सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी ले आती हैं आपको, इसीलिए सीढ़ियां आपके घर की उन्नति से संबंध रखती हैं कि आप जीवन में ऊंचाई पर जाएंगे या ऊंचाई पर जा करके नीचे आ जाएंगे। आपके घर की, घर के लोगों की उन्नति कैसे होगी ये सीढ़ियों से पता चलता है। सीढ़ियां जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं और ज्योतिष के हिसाब से आप देखें तो कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध आपकी कुंडली के राहु और केतु से होता है। अगर आपके घर में गलत सीढ़ियां बन गई हैं, गलत सीढ़ियां आ गई हैं, तो इनकी वजह से आकस्मिक समस्याएं पैदा होंगी, सडन प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम के कोने में, साउथ वेस्ट के कोने में सीढ़ियां सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियां जो बने वो उत्तर की तरफ से होती हुई दक्षिण की तरफ जानी चाहिए या पूरब की तरफ से होती हुई पश्चिम की तरफ आनी चाहिए। ऐसा होने से सीढ़ियों का प्रयोग करने पर आपको जीवन में उन्नति मिलेगी। सीढ़ियों को बहुत ज्यादा घुमावदार नहीं बनाना चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ज्यादा बेहतर होगा, उतनी ज्यादा तरक्की आप अपने जीवन में कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार आपके घर में किस तरह का वास्तु दोष सामान्यतः होता है और उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के घर में अक्सर सूर्य का प्रकाश कम होता है या नहीं आता है, तो अगर आपकी मेष राशि है तो घर में सूर्य का प्रकाश होना थोड़ा ही सही, लेकिन अगर घर में सूर्य का प्रकाश आए तो ये बहुत जरूरी है। इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान
आपको देना चाहिए। घर में अगर सूर्य का प्रकाष आएगा तो मेष वालों को जिंदगी में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए रसोई घर में अग्नि के प्रयोग में। रसोई में आग से संबंधित खतरा होने की समस्या ज्यादा होती है, इसीलिए मेष वाले रसोई घर में गैस चूल्हे का, बिजली के उपकरणों का अगर ध्यान दें तो बेहतर होगा। और ऐसे घर में रहें जहां थोड़ा बहुत ही सही सूर्य का प्रकाश आता रहे। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि वाले अपने घर के रंगों पर बहुत ध्यान देंगे। आपके घर में किस जगह पर कैसा रंग लगा है, कैसा पेंट आपने करवाया है, इसका ध्यान दीजिए। और घर में खुशबू आती रहे, घर में सुगंध आती रहे, इसका ध्यान देना भी जरूरी है। अगर आप अपने घर में सही जगह पर सही रंग लगाते हैं, बाथरूम में, बेडरूम में, पूजा स्थान पर, रसोई में सही जगह पर सही रंग लगाएंगे तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा। और घर में कूड़ा पात्र सही तरीके से रखें। शुरुआत में ही बताया कि मेन डोर पर कूड़ा पात्र नहीं रखना चाहिए। वृषभ वाले अक्सर मेन डोर पर कूड़ा पात्र रख देते हैं, जिसकी वजह से जीवन में मुश्किल आनी शुरू हो जाती है। तो वृषभ वालों को अपने घर के कलर पर, पेंटिंग पर बहुत ध्यान देना है। और घर में कूड़ा पात्र, डस्टबिन सही जगह पर अगर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, आपके घर में हवा का वेंटिलेशन, हवा का आगमन हमेशा सही होना चाहिए। घर में हवा पर्याप्त मात्रा में ठीक तरीके से आनी चाहिए। ऐसे घर में मत रहें जो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो, जिसमें आलमारियां ऐसी बनी हो, घर ऐसा बना हो कि घर में वेंटिलेशन ना हो, घर में हवा ना आए। तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड जगह से आपको बचना चाहिए और घर में हवा का आगमन आपको सही रखना चाहिए। घर में हमेशा धूप बत्ती के माध्यम से या परफ्यूम डिफ्यूजर के माध्यम से हमेशा सुगंध बनाए रखें, क्योंकि घर में अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा और सुगंध अच्छी आती रहेगी तो आपके घर के दोष दूर हो जाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को अपने घर में पानी के स्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाहे रसोई का पानी हो, बाथरूम का पानी हो, बालकनी में पानी हो, पानी पर विशेष ध्यान दें। पानी की बर्बादी बिल्कुल ना होने दें। एक तो आप वैसे ही बड़े इमोशनल हैं, आपको मेंटल परेशानियां परेशान करती हैं, और अगर उसमें भी अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे
तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ईशान कोण में घर के पूरब उत्तर वाले कोने में थोड़े से पानी की व्यवस्था जरूर करिएगा। पूरब उत्तर के कोण में थोड़ा सा पानी भर करके रखें या पानी का एक टैप लगवा लें, पानी की टोटी लगवा लें, जिससे नियमित रूप से पानी का प्रयोग करते रहें। कर्क वालों के घर में पानी की बर्बादी खतरनाक होती है, इसलिए पानी की बर्बादी ना करें और ईशान कोण में पानी जरूर रखना चाहिए। सिंह राशि सूर्य की राशि है, बिना सूर्य के इनका जीवन नहीं चलेगा, तो घर में सूर्य के प्रकाश का विशेष ध्यान रखिए। घर में पर्याप्त मात्रा में अगर सूर्य का प्रकाश आता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिजली के जो सामान घर में लगे हुए हैं, स्विच बोर्ड, पंखा, एसी, फ्रिज, इनका ध्यान दीजिए। और घर में जहां जहां बिजली के उपकरण लगाए गए हैं उन स्थानों का ध्यान रखिएगा। अक्सर सिंह वालों के घर में बिजली के सामान बिगड़ जाते हैं या बिजली के सामानों की वजह से समस्या हो जाती है। और सिंह राशि वालों को ऐसे रोशनदान बनवाने चाहिए, ऐसी खिड़कियां बनवानी चाहिए कि घर में ज्यादा अंधकार न रहे, घर में रोशनी और वेंटिलेशन पर्याप्त मात्रा में आता रहे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले ध्यान दें अपने घर के दक्षिण दिशा पर, अपने घर के साउथ डायरेक्शन पर। आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ क्या रखा गया है इसको देखिए और दक्षिण दिशा को थोड़ा भारी बनाइए और दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके मत रखिएगा। दक्षिण दिशा में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना करें। और आपके घर में अक्सर सामान अस्त व्यस्त तरीके से फेंके रहते हैं, घर में सामान सही तरीके से नहीं रखे होते, तो घर में सामानों को हमेशा करीने से, सलीके से लगाइए, सलीके से रखिए। और अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ घर में कूड़ा कबाड़ रखेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन, आपकी फैमिली लाइफ खराब हो जाएगी। तुला राशि, तुला राशि वालों को घर में हवा के प्रवाह का, वेंटिलेशन का बहुत ध्यान देना है कि घर में पर्याप्त हवा आती रहे। और घर के स्थानों का रंग कैसा है, घर के स्थानों का कलर कैसा है, इस पर भी ध्यान दीजिए। और घर को हमेशा सुगंधित बनाए रखें। देखिए, तुला वालों को चमकदार और खूबसूरत रंगों का प्रयोग अपने घर में करना चाहिए। और सबसे अच्छा होगा कि अगर तुला वाले घर में सफेद रंग का या क्रीम रंग का प्रयोग करें तो उनको लाभ अवश्य होगा। वृश्चिक राशि, घर के जो जल के स्थान हैं, रसोई घर और बाथरूम खास तौर से, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
वृश्चिक वालों के घर में सीलन जल्दी आती है और अक्सर पानी का लीकेज भी होता है, पानी वेस्ट भी होता है। तो घरों में सीलन का और पानी का लीकेज ना हो, घर में सीलन ना आए, पानी बर्बाद ना हो, इसका ध्यान दें। और आपके घर में जो ईशान कोण है, पूरब उत्तर का कोना है, उसको साफ सुथरा और अच्छा रखें। वहां किसी छोटे से मटके में या कलश में अगर आप जल भर करके रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, अक्सर ऐसे घर में किस्मत की वजह से पहुंच जाते हैं जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं आता, तो शीशा लगाकर, रोशनदान निकलवाकर किसी भी तरीके से ऐसी व्यवस्था करें कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आए। और ये भी ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियां ठीक से बनी हों, क्योंकि धनु वाले याद रखें उनके जीवन में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी होता है। तो अगर इनके घर की सीढ़ियां ठीक बनी हों और घर में थोड़ा बहुत भी अगर सूर्य का प्रकाश आता हो तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। घर के बीचों बीच का जो स्थान है, जिसको ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है, इसको पवित्र रखें, यहां पर सफाई रखें और यहां पर

कपड़े, जूते, टीन, डब्बे, ये कबाड़ आप इकट्ठा कर लेते हैं और इसकी वजह से सेहत की समस्या आपको परेशान करती है। तो घर में अनुपयोगी सामान ये बिल्कुल इकट्ठा ना करें। बाथरूम को अपने घर में साफ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि अगर आप कबाड़ इकट्ठा करेंगे, बाथरूम में गंदगी फैलाएंगे, आपकी स्वास्थ्य की स्थिति बार बार खराब होगी। और मकर वाले इस बात का ध्यान रखें कि अपने घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल भारी ना करें, उत्तर दिशा को कम भारी करें, दक्षिण दिशा को ज्यादा भारी बनाएंगे। कुंभ राशि। कुंभ वाले लापरवाह बहुत होते हैं, इसलिए घर जैसा है, जिस स्थिति में है, वैसा ही बना रहता है। तो कुंभ वाले घर में रंग का और सुगंध का विशेष ध्यान रखेंगे और पूजा स्थान की रोज सफाई करिए, वहां रोज दीपक जलाइए, पूजा स्थान की पवित्रता को बनाए रखें। घर में अगर हमेशा खुशबू आती रहे, घर आपका साफ सुथरा रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। कपूर जलाकर उसकी खुशबू आए या अलग अलग परफ्यूम और पाउडर डिफ्यूजर में लगाए जाते हैं जिससे खुशबू आती रहती है, ये आप अपने घर में लगाएं ताकि घर में हमेशा सुगंध बनी रहे। मीन राशि। आपके घर में जो पानी वाली जगह है, आपकी रसोई, आपका किचन, आपकी बालकनी जहां आप कपड़े धोते हैं, जल के स्थानों को ठीक रखें और रसोई घर में पानी की जगह और चूल्हा ये बिल्कुल आस पास या साथ साथ न रखें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी। और देखिए, महीने में एक बार अमावस्या को घर की गहरी सफाई करिए और घर के कोनों कोनों की विशेष रूप से अगर आप सफाई करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: सास बहू और बेटिया में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की भागा दौड़। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में ब्रिक्स गाला डिनर के दौरान हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां। कल शाम न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी की मेजबानी में हुए ब्रिक्स लीडर समिट के गाला डिनर की ये तस्वीरें हैं। इस दौरान नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस नाम का एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी वन रिदम मेनी कल्चर्स यानी कि एक लय कई संस्कृतियां नाम का शो भी शामिल था, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के संगीतकारों ने एक अनोखे और मिलकर किए गए म्यूजिकल परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया। नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस के जरिए संस्कृति विविधता और हमारी साझा इंसानियत का शानदार जश्न मनाया गया, जिसमें ब्रिक्स देशों के कलाकार और परंपराएं एक साथ आईं। ये इस बात को याद दिलाता है कि सरहदों से परे संस्कृति लोगों को जोड़ती है और देशों को एक दूसरे के करीब लाती है।

0: और चलिए अब आपको दिखाते हैं खूबसूरत तस्वीर। ब्रिक्स बैठक के लिए नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किशोर कुमार का ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत गाया। अनवर इब्राहिम ने अपने एक्स अकाउंट पर परफॉर्मेंस का एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्हें किशोर कुमार के क्लासिक गीत को गाते हुए दिखाया गया है, जबकि एक पियानो वादक डिनर के दौरान उस गीत की धुन बजा रहा था। वीडियो में दिख रहा है कि एक पियानो बजा रहे म्यूजिशियन के पास खड़े हैं और अपने ही अंदाज में सुर से सुर मिला रही हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री पूरे उत्साह के साथ गीत गाते हुए दिखाई दिए। अनवर इब्राहिम इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद हैं और इसी दौरान उनका ये वीडियो सामने आया। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के दौर और ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा के बीच मलेशियाई प्रधानमंत्री का ये संगीतमय अंदाज चर्चा का विषय बन गया और लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। सुनिए।
1: Yeah.

0: और अब खबर रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या में मंदिरों और धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है और इसी क्रम में अयोध्या के आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। शाम होते ही यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ जाती है। लोग घाट की खूबसूरती को निहारने के साथ साथ इस आकर्षक संरचना के साथ तस्वीरें भी लेते हुए नजर आते हैं। आरती घाट का वातावरण धार्मिक आस्था और आधुनिक सौंदर्य का अनूठा संगम पेश करता है। घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु कुछ समय रुककर यहां के शांत और आकर्षक वातावरण का आनंद लेते हैं। खासकर शाम के समय जब घाट रोशनी से जगमगाता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर के दर्शन के साथ सरयू घाटों का सैर सपाटा भी अब यात्रा का खास हिस्सा बनता जा रहा है। जहां घाटों पर श्रद्धालु मुख्य रूप से पूजा पाठ और स्नान के लिए पहुंचते थे, वहीं अब सुंदर और व्यवस्थित घाट पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। और चलिए अब खबर प्रयागराज से, जहां पर संगम से शानदार धार्मिक तस्वीर सामने आई है। 13 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कल 14वें दिन शनिवार को लेटे बजरंगबली मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और गंगा का पानी कम होने के बाद मंदिर की साफ सफाई और धुलाई कराई गई। इसके बाद विधि विधान से बजरंगबली का अभिषेक और फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया और भव्य आरती भी की गई। आरती के दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज और बजरंगबली के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। 30 अगस्त को गंगा का पानी मंदिर परिसर में पहुंच गया था। बाढ़ के पानी के चलते मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। इस दौरान भक्त मंदिर के बाहर से ही लेटे बजरंग बली के दर्शन और पूजन अर्चन कर रहे थे। अब गंगा का जलस्तर कम होने के बाद मंदिर परिसर में फिर से पूजा अर्चना शुरू हो गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जोधपुर की। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित मंदिर में बाबा रामदेव प्राकट्य उत्सव पर हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय को बेहद श्रद्धा और धूमधाम से इसे मनाया जाता है। इस बार भी इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और मंदिर में भव्य आरती की गई। बाबा रामदेव जी की पीरों के पीर रामसा पीर और भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ इलाके में इस उत्सव को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से जोधपुर के प्रसिद्ध मसूरिया पहाड़ी में स्थित मंदिर से होती है। मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी के आध्यात्मिक गुरु योगी बालीनाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। प्राचीन मान्यता है कि जैसलमेर के रामदेवरा और रुनिचा जाने वाले पैदल तीर्थयात्रियों के लिए पहले मसूरिया आकर गुरु बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करना जरूरी होता है और इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। और अब खबर लद्दाख से, जहां के लेह में मैराथन दौड़ का शानदार आयोजन किया गया है। इसे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर और सबसे कठिन मैराथन माना जाता है। इसका शुभारंभ 10 सितंबर को ही किया गया और आज इसका 3रा दिन है। लद्दाख मैराथन में इस बार करीब 8,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसमें फुल मैराथन में 1600 और हाफ मैराथन में लगभग 2100 लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा दूसरे इवेंट्स में भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस मैराथन शामिल होने के लिए लोग कई महीने पहले से ही यहां पहुंचकर तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान 122 किलोमीटर की सिल्क रूट अल्ट्रा और 72 किलोमीटर की खारदुंग ला चैलेंज का भी आयोजन होता है। लोगों का उत्साह और जोश इसमें देखते ही बनता है। और चलिए अब आपको एक अच्छी खबर दे दें केरला से। केरला का मशहूर गुरुवायूर मंदिर एक साथ करीब 450 जोड़ों की शादियों का गवाह बना है। आपको बता दें, मान्यताओं के अनुसार मलयालम महीने चिंगम का आखिरी रविवार शादियों के लिए शुभ दिन माना जाता है और इसीलिए इस बार गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में जोड़े ब्याह रचाने के लिए पहुंचे और देखते ही देखते यहां 444 जोड़ों की शादी कराई गई। मंदिर प्रशासन अनुसार शादियां सुबह 4 बजे शुरू हुई और शुरुआती 2.5 घंटों में ही 150 शादियां संपन्न हो गई। हालांकि मंदिर परिसर में भीड़ को रोकने के लिए दूल्हा दुल्हन के साथ आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी गई। इससे पहले चिंगम महीने के पहले रविवार 23 अगस्त को भी मंदिर में 400 से ज्यादा शादियां हुई थी। मंदिर में विवाह की थाली केट्टू रस्म के लिए 6 मंडप बनाए गए हैं और शादी की जगह पर रस्मों में मदद के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। वहां पारंपरिक संगीत मंडली भी मौजूद है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें वेनिस फिल्म फेस्टिवल की। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं ने अपनी कामयाबी का शानदार जश्न मनाया। डेनमार्क की फिल्म मेकर में अल तुखी ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म वुमेन अननोन के लिए गोल्ड लायन अवार्ड जीता और इस फिल्म की स्टार मैथिल्डे आर्सल ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। दोनों शख्सियतों के लिए ये डबल जीत के जश्न का मौका था। तो वहीं साउथ कोरिया के फिल्म मेकर ली चांग डोंग ने प्रॉमिस्ड लव के लिए रनर अप सिल्वर लायन अवार्ड भी जीता, जबकि रशिया में जन्मे फिल्म मेकर इलिया ने डाउ के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अपने नाम किया। इसके अलावा इसराइल के डायरेक्टर युवल अब्राहम और राहिल जोर की जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री नाजा ने स्पेशल ज्यूरी प्राइज जीता। फेस्टिवल में स्टीफन ब्रिज और कोराली एमिदाओ और ओलिवियर ग्रोर्स को उनके लोकप्रिय फ्रेंच वर्कप्लेस ड्रामा अ गुड लिटिल सोल्जर के लिए स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला, जबकि मालू खेबीजी को एक और लोकप्रिय फ्रेंच फिल्म अ प्लेस टू हील में उनकी भूमिका के लिए बेस्ट इमर्जिंग यंग एक्टर चुना गया। 83वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इटली के वेनिस लिडो द्वीप पर 2 सितंबर से 12 सितंबर 2026 तक आयोजित किया गया। ये दुनिया का सबसे पुराना और सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रेस्क्यू की एक शानदार तस्वीर जो आई है अमेरिका से। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 15 साल के एक लड़के को समुद्र में जान गंवाने से बचा लिया। ये घटना अलास्का के पास हुई, जहां पर एक नाव पलटने के बाद यहां लड़का उसके पिछले हिस्से पर किसी तरह से टिका हुआ था। 2 दिनों तक इसने नाव पर इसी तरह से वक्त गुजारा और इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। बताया जाता है कि लड़का अपने भाइयों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था। हादसे के बाद केवल यही बचने में कामयाब रहा। कोस्ट गार्ड के जवानों ने इसे देखा तो बचाव अभियान चलाकर इसे रेस्क्यू किया और फिर बीमार हालात में इलाज के लिए भेजा गया।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की भागा दौड़। एक बजकर 28 मिनट से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश उत्सव की भव्य तैयारी। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह। झांसी में ढोल नगाड़ों के साथ मानिक चौक के राजा का भव्य स्वागत। शानदार लाइटिंग के बीच डीजे की धुन पर गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। शहर में दिखे आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। उत्तर प्रदेश के संभल में गणेश चतुर्थी मेले का शुभारंभ। सर्वधर्म संभाव के संदेश के साथ हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म गुरुओं ने उद्घाटन किया सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। सात नवंबर को होने वाले दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या में तैयारियां तेज। पवित्र सरयू के घाटों पर रेनोवेशन का काम जारी। भव्य समारोह में दिखेंगे अवध की संस्कृति और आध्यात्म के रंग। ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन सदस्य देशों का ओपन सेशन, समावेशी वैश्विक विकास का भविष्य विषय पर चर्चा। ग्रुप फोटोशूट में एकजुटता का दिया संदेश।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: और चलिए अब बात करते हैं गणेश उत्सव की। देश भर में जगह जगह पर सजे पंडालों में बप्पा का आगमन हो रहा है। वहीं कई जगह पर साज सज्जा का काम आखिरी दौर में है। वडोदरा में 72 फीट की प्रतिमा तैयार की जा रही है तो गुजरात के दाहोद में लालबाग के राजा के तर्ज पर विघ्नहर्ता की मूर्ति बनाई गई है। मुंबई में तो अभी से ही गणपति उत्सव का खुमार चढ़ने लगा है, देखिए तस्वीरें।

0: पापा के स्वागत की भव्य तैयारी लगभग पूरी हो गई है। धूमधाम के साथ बप्पा का आगमन भी हो रहा है। विघ्नहर्ता को भोग लगाने के लिए उनको प्रिय मोदक बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर गणेशोत्सव को लेकर अभी से ही दिव्य और भव्यता दिखने लगी है। उत्साह उल्लास का माहौल बनने लगा है। मुंबई के मशहूर गणेश पंडालों में बस श्रद्धा का मेला लगने वाला है और आस्था के सागर में ये शहर और यहाँ के निवासी गोते लगाने वाले हैं। लंबे समय से महाराष्ट्र की परंपरा में गणेश उत्सव रचा बसा चला आ रहा है, लेकिन अब ये महोत्सव देश के अलग अलग राज्यों तक अपनी पहुंच बना चुका है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गणपति उत्सव की खास तैयारियां की जा रही हैं। यहां पर भगवान गणेश की 72 फीट ऊंची मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है।
1: मेक एवरीवन अवेयर दैट इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस हेवी गणेश आइडल विच इज अ 72 फीट इन इको फ्रेंडली वे, सो एवरी अपार्टमेंट, एवरी स्ट्रीट, एवरीवन कैन पुट in every home also an eco friendly ganesh idol which is possible, which is healthy and which is natural, which will not harm our environment. In this is the main motto of our organization.
0: ढूंढे गणेश सेवा समिति इसी तरह से 2015 से विशाल गणपति प्रतिमाओं का निर्माण और पूजन करता आ रहा है। गुजरात के दाहोद जिले के लिमड़ी नगर में भी इस बार गणेशोत्सव पर विशेष तैयारियां हो रही हैं। इस साल यहां के लिमड़ी चौराजा की खास बात यह है कि मुंबई के सुप्रसिद्ध लालबाग चौराजा के मूर्तिकार संतोष कामली ने खुद अपने हाथों से प्रतिमा बनाई है। लिमड़ी बाल गणेश मित्र मंडल की इस खास पहल के चलते मुंबई का लालबाग वाला एहसास अब सीधे गुजरात के लिमड़ी में उतर आया है।
2: 20-20, 25-25 घंटों लाइन में कतार रह के जो राजा के दर्शन नहीं होते, वो इस साल हमारे यहाँ लिमड़ी शहर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहे हैं।
0: लिमड़ी में अब ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकली तो पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा और हजारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों का उत्साह चरम पर था, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला पल वो था जब शेषनाग के विशेष स्वरूप में बप्पा की भव्य आरती की गई। मुंबई के लाल बागचा राजा की झलक लिमड़ी में देख भक्त खुशी से भाव विभोर हो रहे हैं और पूरा इलाका भक्ति के रंग में सराबोर होने लगा है। दाहोद से गोस्वामी ध्रुव गिरी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

बहू और बेटियां में आज देखिए टेलीविजन की दुनिया में रिश्तों की भागा दौड़। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है, वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है। बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी, आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है, जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है, तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है, तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीज़ें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड, बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं ये वही जीरा है, ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारी, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे भव्य पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह। झांसी में ढोल नगाड़ों के साथ मानिक चौक के राजा का भव्य स्वागत, शानदार लाइटिंग के बीच डीजे की धुन पर गणपति बप्पा मोरिया की जयकार, शहर में दिखे आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। उत्तर प्रदेश के संभल में गणेश चतुर्थी मेले का शुभारंभ सर्वधर्म संभाव के संदेश के साथ हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म गुरुओं ने उद्घाटन किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
5: नमस्कार, मैं हूँ रिंकी भाभी और लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालेदार खबरें। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सास बहू और बेटियां। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
6: मैं सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार।
7: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, प्रथम और राध्या के घर पर होगा सरोगेसी के मुद्दे पर बवाल। छुपके छुपके मिलेंगे नए प्रेमी यानी कि मायरा और कबीर, अरमान को होगा शक।

0: नहीं निकल रही आपकी, पूरा पूरा वीक में आप
1: सलमान करेंगे घर वालों संग मस्ती।
2: पहले तो सर ये कहूँगा पहली बार
0: नहीं, वही सिखाओ और मुझे कुछ ज्यादा सीखना है।
2: अच्छा सर पहले ये बोल दीजिए जल्दी, आई लव यू सर।
0: ओके थैंक यू वेरी मच।
3: आई एम अ रॉक स्टार बेबी।
1: शाइनी दोषी की बर्थडे पार्टी में होगा पांड्या स्टोर का रियूनियन, नजर आएंगे ढेर सारे कलाकार।

चलेंगे आपको अयोध्या, जो कि मुंबई से कुछ दूर कर्जत में स्थित है, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या की सैरोगेसी प्लान को लेकर घर में हंगामा मचा है। दरअसल राध्या को ये आइडिया दादी ने दिया है ताकि राध्या के जरिए अंतरा को सैरोगेट मदर बनाया जा सके। अब इस बात पर घर में क्या हंगामा मचा है, चलिए देखते हैं।
1: मैं सैरोगेट मदर बनने के लिए तैयार।
2: अंतरा का ऐलान।
3: इनकार
2: दादी का फैसला।

0: टीवी के सीरियल मनहती सुंदर में मयूचप से ही दादी ने प्रथम और राध्या के दिमाग में ये बीज बोया है कि राध्या कभी बीमार नहीं बन सकती है। कई राध्या हर मुमकिन कोशिश कर रही है अपने जीवन और संसार को सुखी बनाने की। तभी तो उसने बेबी के लिए सिरोदिसी वाला रास्ता भी अपनाने का सोचा है, जिसके बाद आज घर में शुरू हो गया है नया हंगामा। ऐसे में सभी घर वाले इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोई क्यों सरोगेट मदर बनकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा।
1: किसी और के बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखना और इतने महीनों के दर्द सहना और फिर उस बच्चे को पैदा करके किसी और के हाथों सौंप देना, ये कोई आसान फैसला नहीं है। ये तो वही औरत करेगी जिसको पैसों की सख्त जरूरत है।
2: तो राधा और प्रथम, जैसे मैं अपनी शादी का सपना भूल गई हूँ, वैसे तुम भी अपने बच्चे होने का सपना छोड़ी।
0: ऐसे में इन्हीं सबके बीच एकता की बहना अंतरा ने ये फैसला लिया है कि वो राध्या और प्रथम के लिए सैरोगेट मदर बनेगी, जिसे सुनकर तो वही उसकी खुद की बहन एकता भी हैरान है, जो देखिए कैसे उसे डांट और फटकार लगा रही है।
3: दिमाग खराब हो गया है, कैसे बेटी की बातें कर रही हो? इतना बड़ा फैसला ऐसे बिना सोचे समझे कैसे ले सकती हो तुम? मेरा नहीं कहा था मम्मी पापा का तो ख्याल रखो।
0: वही इस फैसले से कोई खुश हुआ हो या ना हुआ हो, प्रथम की दादी एकदम खुशी से झूम उठी है। देखिए कैसे कल उसने तो सबसे पहले लाकर राध्या का मुंह मीठा करवा दिया, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि राध्या जैसे तैसे प्रथम की जिंदगी से आउट हो जाए। और अब तो उन्हें अंतरा मिल गई है, जो प्रथम की जिंदगी को बच्चा भी दे सकती है और उसके लाइफ पार्टनर बनकर उसे सुख भी कर सकती है। इसीलिए तो वही दादी ने झटपट से हामी भर दी, लेकिन राध्या ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई भी इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में करे, और आज उसका साथ दे रही है प्रथम भी।
4: तब भी वो बच्चा मेरा और राध्या का ही होगा, उसमें अंश मेरा और राध्या का ही होगा। अंतरा का नहीं।
0: ऐसे में अंतरा आकर भी राध्या को समझाती है, लेकिन राध्या ने अभी कुछ समय मांगा है और इन्हीं सबके

0: अपने पैर पीछे ले लिए और जाकर मांगी उनसे माफी। और ताहिने उसने अंतरा के सरोगेट मदर बनने पर हामी भी भर दी है, जिसके बाद सभी परिवार वाले हो गए हैं खुश। हालांकि प्रथम ने राध्या को रोकने की कोशिश की कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना करे, लेकिन भाई दादी के इस नकली ड्रामे ने उसे इस फैसले को करने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा क्या होगा कहानी का अंजाम। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 20 के पहले वीकेंड के वॉर में लगी सलमान की क्लास, लेकिन इस क्लास में बहुत ही कूल अंदाज में नजर आए सलमान। एक तरफ जहां सलमान ने घर वालों का हौसला बढ़ाया, तो वहीं वो उनके साथ मस्ती करते भी नजर आए।
2: इस घर में कितने भी स्टार्स हैं, रॉक स्टार तो एक ही है। कौन है वो?
3: काजी। सर काजी।
4: काजी भाई।
5: काजी भाई।
3: काजी जी।
2: काजी तौकीर।
3: यस सर।
6: हाय सर।
2: अभी आवाज नहीं निकल रही आपकी, पूरा पूरा वीक में आप
6: नहीं नहीं सर सर आप
2: आउ करके चल रहे थे। आज पहला वीकेंड का बार है तो मुझे भी वो फीलिंग चाहिए।
6: जी
2: आई एम ऑल्सो रॉक स्टार। तो मुझे सिखा दो ना यार वो एक आई एम रॉक स्टार, खड़े होके सिखाओ मुझे।
6: सर सर
2: सर
6: ये पहले तो सर ये कहूँगा पहली बार
2: इससे वही सिखाओ और मुझे कुछ ज्यादा सीखना है।
6: अच्छा सर सर पहले ये बोल के जल्दी आई लव यू सर।
2: ओके थैंक यू वेरी मच।
7: आई एम अ रॉक स्टार बेबी।
2: ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सब लोग करो, जो बेस्ट करेगा उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा एंड आई एम नॉट जोकिंग।
7: ओह माय गॉड। या
2: कम ऑन एवरीबॉडी स्टैंड अप, आई एम वाचिंग ऑल ऑफ यू।
7: वेट वेट वेट वेट मैं बता दूं एक मिनट।
6: आ जाओ
7: 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3: ओके
7: आई एम अ रॉक स्टार बेबी।
2: द विनर इज यंग डीएसए। कांग्रेट्स यंग, कांग्रेट्स, आपने सबसे बेस्ट किया है। तो आपको प्राइज मिलता है एक कैंडल लाइट डिनर विद काजी तौकीर हिमसेल्फ।
6: अरे वाह, यस सर भाई बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात,
4: थैंक यू भाई।
6: अरे क्या,
4: थैंक यू सर।
2: आइए मेरी कॉम जी। ये से भाई
8: नमस्ते, भाई साहब
2: नमस्ते। नमस्ते मेरी कॉम जी, कैसी हो आप?
8: मैं अच्छी हूँ।
2: बहुत अच्छा गाती हैं आप, बॉक्सिंग में भी है मोहम्मद अली की तरह
8: जी,
2: और रफी साहब की तरह आप सिंगिंग में भी है
6: जी सर।
2: बहुत अच्छा गाती हैं आप, गाएंगी आप कुछ?
8: अजीब दास्ता है ये।
2: So everyone together.
8: कहां शुरू कहां खत्म,
6: क्या बात है,
8: ये मंजिलें है कौन सी,

0: यहाँ आ जाओ, गिरा दो कुछ बार्स।
1: कुछ लोगों ने हमारे भाई को नकली समझा, हमने पहाड़ समझा। कुछ लोगों ने हमारे भाई को नकली समझा, हमने पहाड़ समझा। लेकिन एक बात है काजी भाई, जो पूरे जनता ने भी जाना है और हमारे लोग भी जान जाएंगे कि तुम्हारे भाई ने हमेशा तुमको बहुत हार समझा।
0: अरे क्या बात है सर, क्या बात है, वाह मस्त शॉट दिया है। अरे तो पूरे हफ्ते काजी और यंग ने एक दूसरे को शॉट दी है, लेकिन ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ना ही शॉर्ट स्टोरी है, ये इन दोनों का लव एंड हेट रिलेशनशिप है और जनता को पसंद आ रहा है ये। और होता ना कि जब कोई ज्यादा बचता है तो घर वाले इरिटेट हो जाते हैं, नहीं क्या? तो आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि काजी और यंग में से कौन ज्यादा ही बच रहा है और उसका माइक म्यूट करने का मन करता है। तो आपको एक एक करके आना है और इसमें से जिसको आप म्यूट करना चाहते हैं उसके सामने रखे हुए माइक का म्यूट बटन दबाएं। लब आ जाओ।
2: सर सब रात को समटाइम सोना चाहते हैं क्योंकि सुबह उठना होता है एंड बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हम स्लीप साइकिल पूरा नहीं कर पा रहे, सिर्फ यही रीजन है।
0: चलो नेक्स्ट अमरपाली आइए।

0: सर गाने के अलावा ये जो भी बोलते हैं मुझे इरिटेट ही होता है, पता नहीं क्यों।
1: चलिए सामने सामने काजी। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कनिका
2: सर यंग, बिकॉज मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं। ऑफकोर्स कैप्टन बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो फालतू में मॉनिटर गिरी चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रही है इनकी। गुड मॉर्निंग।
1: नाइस। नेक्स्ट।
3: मैं काजी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और मुझे एक्चुअली उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती है, तो सॉरी।
1: नेक्स्ट।
4: काजी जैसे इसने बताया कि इतने साल कुछ नहीं बोला, अब इसको मौका मिला है, सबको इतना खुश रखता है, तो इसको म्यूट करके तो सब परेशान हो जाएंगे। तो फिर
1: नेक्स्ट।
5: यंग का म्यूट से वो इसलिए है क्योंकि काजी को म्यूट करके हमें मजा नहीं आएगा सर। तो दिस इज फॉर काजी मोर देन एनीथिंग एल्स।
1: नहीं आइए
6: काजी, मुझे डरा देते हैं रात को तो मैं डर के सोती हूँ कभी कभी, मतलब मस्ती मजाक करते हैं, आई रियली एंजॉय हिज कंपनी, बट कभी कभी ये रात को मुझे बहुत डरा देते हैं। तो
1: आप दोनों कुछ बोलना चाहेंगे रिटर्न में किसी के बारे में?
7: जैसा इन्होंने कहा मैं तो रात को ही फिर बात करूंगा अच्छे से।
1: यंग,
8: अगर भाई को म्यूट कर डालेंगे तो भाई मेरे को भी खुद पर्सनल अच्छा नहीं लगेगा। मैं अगर खुद इधर रहता तो मैं खुद पे पानी डालता, क्योंकि मेरे को भाई मतलब पहले मेरे को नहीं सही लगते थे पर अभी मेरे को बहुत सही लगते। बट जो कनिका का रीजन रह रहा ना सर कि मॉनिटर गिरी कर रहा, मेरे को किधर किधर लेम लगता नहीं क्या सर, क्योंकि जो बिग बॉस ने मेरे को काम दिया रह रहा, अगर मैं वॉच नहीं करेंगा तो फिर मैं क्या करेंगा सर। तो गुड इवनिंग।
1: कहने का कुछ कहना आपको?
2: इनको हर बात में आंख बंद क्यों करी, ये यहाँ क्यों रख दिया, इनको लग रहा है यही बिग बॉस ने बोला है, तो ठीक है आप कंटिन्यू रखें, मैं अपना कंटिन्यू रखूंगी, खेलते हैं।
1: अनिश्वा,
2: गुड इवनिंग।
9: जी सर, काजी सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और मुझे उनकी वाइब बहुत अच्छी लगती है और मैं उनसे ही सबसे ज्यादा बात करती हूँ। स्टार्टिंग में थोड़े लगते थे कि क्या हरकतें कर रहे हैं ये रातों में, बट फिर उसके बाद समझ में आ गया ये जो भी है जैसे भी है बहुत फन। सो सॉरी।
1: नेक्स्ट।
2: काजी जी, तो उनका मेरे साथ बहुत लव हेट रिलेशनशिप है, वो जब गाते हैं तो सब सही है, कभी कभी कुछ बोलते हैं मुझे हंसा भी देते हैं, बट पता है बक बक नहीं करेंगे तो फिर मुझे हंसी नहीं आती। तो यंग मेरे भाई, बस क्या भाई, चल पानी ले ले थोड़ा तू अब मुंह पे।
1: ईशा आइए।
10: काजी, क्योंकि वो भी सोने का और थोड़ा उनका कॉन्वर्सेशन करना उनके साथ अभी भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है।
1: नेक्स्ट।
11: काजी जी को चूज करूंगा क्योंकि पहला दिन मुझे ये बहुत अच्छे लगे, दूसरा दिन बुरा लगे, फिर तीसरा दिन फिर से अच्छे लगे, लेकिन इन तीनों दिनों में इन्होंने मुझे तीन बार डराया और रात में तोरे मेरे भाई।
1: आसिफ आइए।
12: काजी भाई और मैं, हमारा थोड़ा झगड़ा वगड़ा होता है साथ में, लेकिन रात होते होते हम पैचअप कर लेते हैं, लेकिन ये कि इनको रात को 3-3:30 बजे मुझे ही चुप करके बेड पे ले जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं इसलिए इनको म्यूट करना चाहता हूँ।
5: काजी को बताइए हमारा रिलेशन कैसा है, बट वही है जो 3 बजे वाली बात है, काजी भाई को 3 बजे का सुलाना पड़ता है, बस वो थोड़ा ध्यान देने के लिए।
7: नहला दो पूरा।
5: और थोड़ा
1: अमेरिकम कम
13: कभी कभी। हाँ, ये हमारा मेरा भाई जैसा थोड़ा लोग तंग करता है, तो फिर उससे बुरा तो मन मानो, प्यार तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा झकने के लिए। ओए ओए नहीं जा रहा।
1: काजी, घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी 3-3 बजे तक आप लोगों को सोने नहीं दे रहे हो, वहां पर भी आई एम अ रॉक स्टार। आओ, अरे मजाक कर रहा हूँ, पीपल आर एंजॉयिंग इट।
14: थैंक यू
1: सर। यंग,
15: यस सर,
1: आप तो छा गए हो यार, ये डेंजर शॉट है नहीं क्या आपके वन लाइनर?
15: थैंक यू सर।
1: मैं भी एक वन लाइनर कर दूं तो घर वालों, अर्ज किया है इस घर में आपकी होनी चाहिए चालो चीता एंड नजर ऑफ बाज। यार कोई बाबा ही नहीं बोल रहा।
15: थैंक यू।
1: इस घर में आपकी होनी चाहिए चाल ऑफ चीता एंड नजर ऑफ बाज। आप में से किस किस ने देखी है राज? आम्रपाली जी,
16: गलती हो।
1: आपने देखी है?
16: देखी।
1: आपने देखी है माही?
16: हाँ जी सर।
1: यंग आपने देखी है राज?
4: थोड़ी बार देख ली सर, पैदा नहीं हुआ था।
1: नाम ही आपका यंग है तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा क्या मैं आपको बच्चा बोल रहा हूँ?
4: नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।
1: तो फिर अमरपाली
14: जी,
1: नाउ आई एम टोटली कन्विंस्ड
14: क्या
1: कि आपने कुछ गलत तरीके से बोला होगा, इसीलिए अरिशफा बुरा मान गई। क्यों अरिशफा, एम आई राइट और एम आई राइट?
9: जी सर, उसके पहले मैंने बहुत बार उनको मना किया था, इसलिए मुझे और ज्यादा बुरा लग गया था।
0: सर मेरा कॉन्टेक्स्ट वो था ही नहीं, टू मेक अ फील लाइक अ बच्ची।
1: अरिशफा वैसे आपकी उम्र क्या है?
9: 23 सर।
1: तो 23 में आप ग्रोन अप हो गई?
9: मतलब सर मेरा यही कहना था कि घर में सब बराबर है तो मुझे बच्चे जैसा फील नहीं कराओ।
1: बच्चे वो तो फिर यंग आपसे छोटा है।
9: पर उसको कोई नहीं कराता।
1: और उसको जब कोई नहीं बोल रहा है तो कुछ तो ऐसा बचकांडी फीलिंग आ रही होगी आप में, जो ये आपको बच्चा बुला रहे हैं।
9: हो सकता है सर।
1: हो सकता है जैसे कि मैच्योरिटी लेवल शायद
9: जी सर,
1: या फिर जो आपकी वॉइस क्वालिटी है एकदम बच्ची जैसी है, बच्चे जैसा फेस है, जो आपका अपीयरेंस है
9: जी सर,
1: वो हो सकता है। लेकिन ये जो अभी है ना ये बाद में जाके बहुत काम आएगा।
9: नहीं सर, बस मुझे ये फील होता है वो बच्चा बोलना चलेगा एक बारी, बट वैसा ट्रीट ना करे और ग्रांटेड ना ले।
1: ये यहाँ पर आपको ग्रांटेड कोई नहीं ले रहा, और अगर आपको बच्चा बुला ही रहे हैं तो उसका फायदा उठाओ ना। हमेशा इस घर में लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, आपके पास तो बेस्ट कार्ड है, चाइल्ड कार्ड।
9: जी सर, मैं ध्यान दूंगी आपकी बातों पर।
1: काजी, वो कौन सा गाना था जो आप गा रहे थे राज का?
7: जो भी

0: तेरा क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है।
1: क्या बात है, राज ने एक और भी गाना था, ये शहर अमन का। कौन है वो रोंदू जिसके आवाज से इरिटेशन हो रही है?
2: फाइट के टाइम मुझे लगता है अमरपाली, क्योंकि वो सुनती कम है और वो बोलती ज्यादा है, और मुझे लगता है वो बहुत लाउड हो जाती हैं।
1: Is that right, अमरपाली?
2: सर मुझे लगता है कुछ लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती, तो उनको इसी भाषा में जवाब देना पड़ता है।
1: डाइपर उठाइए। कौन है जिसके पेट में कोई बात नहीं टिकती? यहाँ की बात यहाँ बोल देता है, यहाँ की बात वहाँ बोल देती है।
2: आई थिंक लव, क्योंकि मैंने उनको काफी बार देखा है कि ये दोनों बैठ के ना सिर्फ चुगलियाँ ही करती रहती है, सो आई थिंक वो डिजर्व करती है
1: लव।
3: जी सर, चुगलियाँ हम कम, जो फैक्ट घर पर बातें हो रही है हम वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मौन व्रत धर कर बैठ जाएं तो लोग क्या देखेंगे अगर हम चुप चुप ही रहेंगे।
2: हम तो सुख दुख बांटते हैं,
3: सुख दुख बांटते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, झुंझुना उठाइए। कौन है जो आसानी से किसी से भी मैनिपुलेट हो जाता है?
2: काजी जी, मुझे वो बहुत पसंद है, बट देन मुझे लगता है कि वो बहुत इजी टारगेट है, उनको कोई भी मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर सकता है, सो यस।
1: लास्ट में वो वाला क्या है जो उधर है, उठाइए।
2: टोला।
1: हाँ, प्रेम। कौन है वो जो खुद नहीं चल सकता जिसको किसी और की जरूरत पड़ती है?
2: आई थिंक आसिफ जी सर। जी, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है ये लोग का एक ग्रुप बना हुआ है और ये चारों
1: जब बेइज्जती है यार
2: ये चारों एक दूसरे के अलावा मतलब कहीं और दिखते ही नहीं है, तो मुझे लगता है इनको बहुत जरूरत है एक दूसरे की, सो मैं इनको देना चाहूंगी।
4: थैंक यू, आपको भी चलाऊंगा।
2: Let's see. Yeah. देखते हैं।
4: Yes.
1: मलसांग, बिग लॉस कौन है?
5: सर बिग लॉस तो इधर मेरे को और पूरे मंडल को मालूम है, मित्र मंडल को, कि बिग लॉस रे रही हमारी कनिका मैम, क्योंकि उनको कुछ भी बोलो तो ऐसा लगता अरे मेरे को टारगेट कर रहा, मेरे कुछ बोल रहा, अभी उनको लगता कि मैं मॉनिटर बन गया रह रहा, पर मैं अभी सबको मालूम है कि मैं सबको प्रॉपर काम दे रहा, तो मेरे लिए
1: तो लगा दे
5: एंडिंग तलज बिग लॉस वो छिरेंगे। और सबको गुड इवनिंग नहीं क्या दोस्तों?
1: कनिका आपने कुछ बोला नहीं?
6: सर अगर इस रीजन से मैं शो के लिए बिग लॉस होती हूँ तो ओके, वो हम देख लेंगे। सर मैं ही हूँ यहाँ पर जो रूल सबसे पहले पढ़ी थी, और मैं यहाँ सब रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। मैंने 10 सेकंड अपनी आंख बंद की थी, इंसान कुछ एक 10 सेकंड सोच भी सकता है, उसमें इन्होंने टोकना शुरू कर दिया। इतना मॉनिटर मत करो, मुझे पता है घर में कैसे रहना है, मुझे पता है जीवन कैसे जीना।
1: लेकिन आपको पता है, उनको पता नहीं है ना?
6: जी तो मैं फॉलो कर रही हूँ वो चीज को, तो इनको लगता है कि
1: लेकिन इनको ये नहीं पता ना कि आप वो फॉलो कर रही हो, तो इनके हिसाब से कैप्टन के हिसाब से इनको आपको बताना जरूरी है।
6: हाँ लेकिन सर मुझे लगता है पोकिंग हो रही
1: है।
4: अमन भाई जो है वो एकदम जब भी बात करते हैं सर तो ऐसा लगता है बिल्कुल कि 50 किलो मक्खन साथ में लेके घूमते हैं हर बात पे।
7: सर मेरे को ना ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगती है कि किसी की काइंडनेस को ये मक्खनबाजी क्या होता है सर? और मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ, मैं आराम से प्यार से पोलाइटली ही बात करता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि अमन इतनी ना प्यार से अंदर जाके बात मत करियो लोगों से।
4: मैं बोल रहा हूँ सर कि प्यार से बात करने में और खुशामद करने में थोड़ा डिफरेंस दिखता है वो।
7: पर मैं ऐसे ही हूँ सर, अगर सिचुएशन खराब होगी तो मैं लड़ता भी हूँ, सिचुएशन खराब होगी तो मैं अग्रेसिव भी होता हूँ, पर इनको अगर मक्खन लगाना लग रहा है वो तो सर सॉरी, बट मेरा नेचर यही है, मैं ऐसे ही रहूंगा।
8: मनोरंजन की सारी रॉकिंग और शॉकिंग खबरों को हम लेकर आए हैं आपके लिए, तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग न्यूज।
9: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबरों में बात करते हैं जी रिश्तों का मेला की, भाई जहां बहुत जल्द सबकी इच्छाएं होंगी पूरी, क्योंकि बप्पा लेकर आएंगे बाल अवतार।
10: थिरकेंगे कदम रिश्तों की ताल पर, थोड़ी टांग खिंचाई,
11: मैंने अगर पुश कर दिया
12: मैं पा नहीं बन पाऊंगा।
10: प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई,
12: ये सब हिंसा नहीं चलान कटेगा, चांद में डांस सिखाऊंगा। किसके ज्यादा फैन हो आप?
13: अजीता।
14: बेस्ट बहू का खिताब मैंने वसुधा को दिया है।
10: माँ के कदमों में दुनिया है समा।
15: आपको
10: देखिए
9: स्टार प्लस के सीरियल सैराब का लास्ट डे शूट हो गया है। ऐसे में मदिराक्षी और टीना कश्यप ने शेयर किए हैं ये पोस्ट।

बीती शाम हुआ कुमार जी का जन्मदिन, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंचे अशनूर कौर, रोहन मेहरा, डब्बू मलिक, रिवाबा जडेजा और अनिल शर्मा।

शुरू हो चुकी है इंडियन गेम शो की आने वाले एपिसोड की शूटिंग, और इस हफ्ते खास मेहमान बनकर पहुंची हैं अर्चना गौतम। वही इसके अलावा नजर आए प्रिंस नरूला, युविका चौधरी, श्रेया कारला और आप सबके प्यारे भारती और हर्ष।

0: लीजिए पुष्पा इम्पॉसिबल का ये प्रोमो, जहाँ टाइगर का कौन सा सच करेगा पुष्पा के अनदेखे अतीत को बेनकाब, ये देखना दिलचस्प होगा।
1: टाइगर का यहाँ आना ये किस्मत का संकेत नहीं तो और क्या है?
2: अतीत के उलझे धागों को सुलझाने चली है पुष्पा।
1: इसका मतलब वो जिंदा है। 28 साल पहले का
2: इस गणेश चतुर्थी देखिए टाइगर का कौन सा सच करेगा पुष्पा के अनदेखे अतीत को बेनकाब।
0: रोहित चांडल को 2 महीनों बाद मिल गई है बेल। ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार अपने फैंस के लिए शेयर किया है ये पोस्ट।

साई केतन राव और उनकी आने वाली सुराग 2.0 की पूरी टीम पहुंच गई है शिरडी लेने साई बाबा का आशीर्वाद उनके शो के रिलीज के पहले। प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी में अब शामिल हो गए हैं जतिन गुलाटी।

जॉन अब्राहम अब काम करते हुए नजर आएंगे डायरेक्टर रिभु दास गुप्ता के साथ उनके आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म में, जिसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है।

चलिए अब चलते हैं राम मंदिर में दर्शन करने। लेकिन खास बात यह है कि ये राम मंदिर अयोध्या में नहीं है, ये राम मंदिर मुंबई में है, जिसे बनाया है सीरियल रामायण बनाने वाली सागर फैमिली ने। तो चलिए करते हैं मुंबई में बने इस राम मंदिर के दर्शन।

0: मुंबई में राम नाम का जप।
1: सिया राम जय जय राम,
2: सिया राम सिया राम।
0: मुंबई में राम धाम की ध्वनि।
2: राम सिया राम जय जय राम।
0: क्योंकि आ गया है मुंबई से थोड़ा दूर करजत में एक राम मंदिर जो है टूट माउंटेन रिजॉर्ट में।
3: ओ मंगल भवन अमंगल हारी।
0: और इसे लेकर आया है वो परिवार जिसने घर घर में रामायण को पहुंचाया, सागर वर्ल्ड यानी रामानंद सागर का परिवार। और उनके पोते शिव सागर लेकर आए हैं मुंबई से थोड़ी दूर करजत में

पूरे भव्य तरीके से हुई इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जहां पर सागर वर्ल्ड की लेटेस्ट रामायण काकशुडी रामायण के सारे कलाकार मौजूद हैं। पूरे पारंपरिक अंदाज में इस राम मंदिर को करजत में स्थापित किया गया और इस मौके पर सभी कलाकार भी शामिल हुए। तो आइए हम भी चलते हैं मुंबई से 1.5 घंटे दूर करजत के टूथ माउंटेन फार्म में, जो अब बन गया है मिनी अयोध्या, जहां पर राम जी का मंदिर है और साथ साथ आप एक सात्विक जीवन भी यहां पर जी सकते हैं।

0: तो आज काकशुटी रामायण के विभीषण यानी अनमोल हमें घुमाएंगे कि राम मंदिर और कामधेनु गौ माता का किरदार निभाने वाली हलील रेखी भी आज हमें दूत माउंटेन फार्म के दर्शन कराएंगी, यहाँ का सात्विक खाना खिलाएंगी और साथ साथ यहाँ के नजारे दिखाएंगी। इसी के साथ हम मिलेंगे रामानंद सागर के पोते शिव सागर भी, जो अपने पिता प्रेम सागर का सपना इस राम मंदिर बनाकर पूरा कर रहे हैं और साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों से भी मिलेंगे। तो सीधा चलते हैं मुंबई से 1.5 घंटा दूर टूथ माउंटेन फार्म पे, जो बन गया है अयोध्या। तो सबसे पहले मिलते हैं अनमोल सोनी से, जो आज हमें मुंबई की इस मिनी अयोध्या में लेकर चलने वाले हैं।
1: हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अनमोल सोनी और अभी मैं हूँ यहाँ पर करजत में टूथ माउंटेन फार्म हाउस। आप देखिए जैसा कि मेरे पीछे आजू बाजू चारों तरफ घुमाकर कैमरे को, खूब सारी हरियाली है, झरने हैं, आप एकदम अपने आप को नेचर के करीब महसूस करेंगे। अच्छे सारे यहाँ पे फ्लैट्स बने हैं, घर बने हैं, रहने के लिए रूम्स हैं। अभी जो मेन बात है वो ये है कि आप सभी लोगों ने सोचा होगा कि जो राम मंदिर है वो हमारा अयोध्या में है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही सोचा है, वो राम मंदिर अयोध्या में ही है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को राम मंदिर के दर्शन यहीं करजत में इसी टूथ माउंटेन के फार्म हाउस पे करवाने वाला हूं। तो आइए मेरे साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।
0: करजत के राम मंदिर की हुई प्राण प्रतिष्ठा, जहां पर पूरे पारंपरिक तरीके से मंदिर की स्थापना की गई, यानी हुई इसकी प्राण प्रतिष्ठा। तो अनमोल संग चलिए हम इस मंदिर का एक टूर लेते हैं।

जी ये है राम मंदिर। पहले तो आप राम मंदिर को दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये बनवाया है हमारे शिव सर जी ने, जो सागरवड़ परिवार से हैं। एक्चुअली उनके पिताजी का ये ड्रीम था, सपना था कि उनको राम मंदिर बनवाना है, और रिसेंटली कुछ डेज पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए शिव सागर सर ने यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाया है। आज इस मंदिर में मूर्ति पूजा हुई है, मंत्र उच्चारण के साथ में प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है, और हम लोग सुबह से ही यहाँ मौजूद हैं, पूजा पाठ में सहभागी बने हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का मौका है। और शायद मैं अपने आप को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लकी महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला। तो बिना देर किए मैं अभी आपको राम जी के दर्शन करवाता हूँ, तो आइए मेरे साथ में। नॉट ओनली कलाकार जिनके साथ मैंने काम किया था, यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन की पूरी टीम है जिनके साथ में हमने पूरे 2 साल तक शूट किया है। और जैसा कि आपको बताऊं, इनकी काकभूषुंडी रामायण में मैंने विभीषण प्ले किया है, और एक और शो था इनका कामधेनु गो माता, इसे मैंने महादेव प्ले किया है। और आइए अभी हम राम मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी आप आइए मेरे साथ में, मैं आपको सागरवड़ परिवार के पूजनीय श्री रामानंद सागर जी के दर्शन कराने जा रहा हूँ। आइए। ये हमारे प्रेम सागर जी।

0: हाँ, तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर मंदिर के दर्शन कर लिए, श्री राम जी के दर्शन कर लिए, तो अभी बिना प्रसाद और बिना मुंह मीठा किए करके जाएंगे। जय सीता।
1: अनोल संघ इस राम मंदिर के स्टोर में हमें मिले शिव सागर, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया है और अपने दादा रामानंद सागर और पिता प्रेम सागर के सपने को पूरा किया है, जिन्होंने पूरे देश को अपने सीरियल रामायण से रामायण का पाठ करना सिखाया।
0: आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, जो मित्र हैं हमारे और सबका ध्यान रखने वाले वन एंड ओनली वन मिस्टर शिव सागर सर। तो लीजिए, मिलिए और उनके दर्शन कीजिए।
2: जय श्री राम।
0: जय श्री राम।
2: क्या बोल, क्या बताइए, क्या पूछना
0: आप बताइए, जिस हिसाब से आपकी ये लेगेसी रही है रामायण को लेकर और राम मंदिर को लेकर, जैसे पापा जी का सपना था इस राम मंदिर को लेकर और आपने बखूबी उस चीज को पूरा किया है, आज हम सभी लोग उस चीज के साक्षी बने हैं।
2: बहुत बड़ा दिन है सागर परिवार के लिए, क्योंकि आज राम मंदिर की स्थापना हुई है, आज पुनर्वसु नक्षत्र भी है और ये पूर्ण तिथि पे मेरे पूज्य पिताजी प्रेम सागर जी वो स्वर्गवास हो गए थे लास्ट ईयर, एंड उनका संकल्प था इधर करजत में राम मंदिर उनको बनाना था, तो वो आज संकल्प पूरा हुआ, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं आज कि ये अच्छी तरह से पूरी मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, ये सारी कार्य आज हुए। हम लोग पिछले 3 हफ्ते से पूजा ही कर रहे थे, बिकॉज बहुत एक्सटेंसिव रिचुअल्स थे ये मंदिर की स्थापना करने के लिए, तो आज ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है और इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं राम जी से और मेरे पिताजी के ब्लेसिंग्स की, ऐसा हम लोग उन्होंने उन प्रेरणा दी ऐसा एक राम मंदिर बनाने के लिए, बिकॉज शायद अगर वो ये संकल्प नहीं करते तो आज हम लोग ये नहीं बनाते, ये उनका संकल्प था तो हम लोग आज ये बना पाए।
1: टून माउंटेन फॉर्म के इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज यहाँ पर ढेर सारे कलाकार आए हैं जो सीरियल काकशुंडी रामायण और कामधेनु गौ माता में काम कर चुके हैं, साथ ही इस सीरियल से जुड़े हुए बाकी लोग भी हैं, जैसे इस शो के डायरेक्टर। तो अनमोल संग मिलते हैं इन मेहमानों से।
0: के ये हमारे काकशुंडी रामायण के जो 3rd सीजन है उनको डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर है, हमारे हेड है, ये चेयर ऑफ द हेड, और इनके साथ काम करके ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मजे हुए हैं वो ऑफकोर्स, और बहुत हम्बल हैं और काफी नॉलेजेबल पर्सन हैं, और इसके अलावा ऑलरेडी ही नो अबाउट श्री राम जी और उनकी जर्नी के बारे में, जैसा कि हम बड़ों से सुनते आ रहे हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा खासा ज्ञान है जो हमको देखने को मिला जब हम रामायण शूट कर रहे थे। तो छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं कि जहाँ पे एक्ट्रेस गलती कर सकता है या फिर हमसे कुछ गलत हो सकता है, चाहे वो किसी शब्द को लेकर हो, चाहे वो किसी रिएक्शन को लेकर हो, चाहे एक्शन को लेकर हो, हर एक चीजों में उन्होंने बखूबी उस चीज को आकर हमसे अच्छे से करवाया और हमसे अच्छे से निकलवाया।
3: 1 साल से सोच रहे थे कब होगा रेडी, कब होगा, आज हो गए दर्शन। फिलहाल प्रेम जी बहुत खुश होंगे ऊपर से, और हम सबको ब्लेस कर रहे होंगे कि उनके अभी 1 हफ्ते बाद ही है उनकी पुण्यतिथि, तो उसके लिए हमें बहुत, हम सब इमोशनल भी हैं, खुश भी हैं, तो कि फाइनली उनका ड्रीम एक पूरा हो गया, इन शिव जी पे उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होगी, वी वेरी हैप्पी विद शिव जी।
1: इसके बाद अनमोल ने इस मंदिर में पूजा की। बतौर कलाकार अनमोल ने काकशुंडी रामायण में विभीषण की भूमिका और कामधेनु गौ माता में महादेव की भूमिका निभाई थी, इसलिए सारे किरदार उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और इस मौके पर उनके लिए एक दिव्य अनुभूति थी।
0: बेसिकली मैं पंजाबी फैमिली से हूँ और जो मुंबई का सफर है मेरा यहाँ पर फरवरी 2012 से शुरू हुआ था, काफी मशक्कत के बाद में आफ्टर 5 मंथ 8 डेज के बाद में मुझे यहाँ पर काम मिलना शुरू हुआ, जैसा कि एक्टर की डेस्टिनी होती है, एक जर्नी होती है, आप लोग बखूबी समझेंगे उस चीज़। और सागर वर्ल्ड परिवार से मैं 2024 में जुड़ा हूँ, इनका एक प्रोजेक्ट आया था काकशुंडी रामायण जो दूरदर्शन पर आया है, उसमें मैंने विभीषण प्ले किया एंड एक और शो जिसमें कामधेनु गौ माता में मैंने महादेव का प्ले किया है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मेरा वो बचपन का ड्रीम था कि मैं कभी महादेव प्ले करूँ, हालांकि मेरी हिम्मत नहीं है उनको प्ले करने की क्योंकि वो शून्य के परे हैं और सुनने के परे तो वी डोंट नो क्या होता है, बट शायद जब हम कोई डिवाइन कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो कुछ चीजें शायद ऊपर से चैनलाइज होती हैं आपके साथ, और वही है जो आपसे सब कुछ करवा भी देते हैं। क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था मुझे अच्छे से याद है, मुझे गूज़बम्प्स आते थे, और मैं नहीं करता था, वो प्रभु ही करते थे और उन्हीं की लीला थी और वो सब कुछ हो जाता।
1: तो ये था मुंबई से थोड़ी दूर करजत के टूथ माउंटेन फार्म का राम मंदिर। तो कभी आप मुंबई आए तो राम मंदिर के दर्शन आप यहाँ भी कर सकते हैं, जो आज अभिनेता अनमोल ने हमें कराए।
0: कहते हैं श्री राम जी हमारे कण कण में बसे हैं, सागर परिवार की यही एक कोशिश है कि श्री राम भगवान इस मंदिर के माध्यम से हम सभी लोगों के कण कण में विराजमान रहे। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो जाने इस मंदिर के माध्यम से, आए दर्शन करें और जाने कि हमारे रूट्स कहाँ से जुड़े हुए और अपने जीवन को सफल बनाएं श्री राम के दर्शन। जय श्री।
1: मुंबई से थोड़ी दूर करजत के इस राम मंदिर में अब पहुंच चुकी हैं हरलीन रेखी, जिन्होंने कामधेनु गौ माता में गौ माता का किरदार निभाया था और साथ साथ कांगशुली रामायण में भी इनका एक अहम किरदार था, लेकिन आज ये आई हैं इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में खास मेहमान बनने। भाई इन्होंने न सिर्फ मंदिर में पूजा की, भाई पूरे नाच गाकर राम जी को इस मंदिर में स्थापित किया सागर वर्ल्ड के परिवार संग। तो चलिए हरलीन संग लेते हैं टूथ माउंटेन फार्म का एक टूर और साथ साथ देखते हैं कि यहाँ पर राम मंदिर के अलावा और क्या क्या है।
4: जय श्री राम। तो आज सोच रहे होंगे कि मैंने जय श्री राम क्यों कहा। वेल, जय श्री राम कहने के लिए कोई मौका या कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, लेकिन आज हम सागर वर्ल्ड और उनके पूरा परिवार, हम सारे आर्टिस्ट एकत्रित हुए हैं करजत राम मंदिर की स्थापना के लिए। जी हाँ, राम मंदिर आज यहाँ पर स्थापित हुआ है, सारे पूजा हुई है, यहाँ पे हवन हुए हैं और यहाँ पे की बहुत अद्भुत फीलिंग जिसको कह सकते हैं इनॉग्रेशन हुआ है। यहाँ पे राम जी हैं, यहाँ पे विट्ठल जी हैं, रुक्मणी जी हैं, और यहाँ मतलब मैं सुबह 9 बजे से हूँ एंड यू वोंट बिलीव मी कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का ही मन नहीं हो रहा है इस प्रमाइसिस से। इट्स सो पीसफुल, डिवाइन। और आप देख सकते हैं ये जगह मुंबई से केवल 1.5 घंटा दूर करजत में स्थित है टूथ माउंटेन फार्म्स के नाम से, और आप सब लोग आए एंड ये बिल्कुल पहाड़ों में लोकेटेड है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी जब बारिश हो जाती है तो और भी सुहावना हो जाता है मौसम, और अभी भी सुहावना है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ इस टूथ माउंटेन फार्म्स का एक टूर पे।
1: हरलीन यहाँ के सात्विक और ऑर्गेनिक माहौल का मजा उठा रही है, फिर चाहे यहाँ की हरियाली हो या फिर हो यहाँ का सात्विक माहौल।
4: मतलब इट्स हार्डली व्हाट 1.5 घंटे 2 घंटे दूर है, बट बहुत ही पीसफुल है। अगर आप यहाँ आ जाओगे तो आई कैन बेट आप यहाँ से जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। और यहाँ पे इतनी डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पे मंदिर स्थापित हो गया तो और डिविनिटी और सीरेनिटी एनहांस होगी इस जगह की। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि स्पा है, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे हमारी एक गौशाला है, गौ माता भी हैं और गौ माता के साथ साथ उनके बछड़े भी हैं जो मैंने सीरियल किया था कामधेनु गौ माता, तो वो मुझे रिकग्नाइज कर लेती हैं आज भी। और आज एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जैसा हमें पता है कि सागर वर्ल्ड जो हैं, जो उनकी लेगेसी है, जो परिवार की जो रूट्स हैं, इतने ट्रेडिशनल हैं कि आज तक उन्होंने जो ट्रेडिशन को बरकरार रखा है और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इट्स रियली अ माइलस्टोन। और उसी का एक उदाहरण अभी मैं आपको दूंगी। सी ये कमल, पीछे ही यहाँ पे हमारे स्विमिंग पूल भी है, आप वहाँ पे योगा मेडिटेशन सेंटर भी है, स्पा भी है। सो कहीं ना कहीं शहर से दूर होते हुए भी यहाँ पे पहाड़ों के बीच में वो सारी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर आप कभी सुकून से 2 या 3 दिन या मतलब गेट अवे वीकेंड स्पेंड करना चाहें या यहाँ पे आप पीसफुल रहना चाहें तो आप आराम से आ जाएंगे। चिड़ियों की चहचहाहट आप सुनेंगे जो कि आमतौर पे आपको शहरों में सिर्फ सुबह सुनने को मिलेंगी अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो।
1: टूथ माउंटेन फार्म का खास अट्रैक्शन है यहाँ का कैफे, जहाँ पर मिलता है सात्विक फूड, और देखिए आज हरलीन हमें इस कैफे में लेकर चल रही है।
4: तो अभी आपको मैं लेके चल रही हूँ टूथ माउंटेन फार्म कैफे में, और यहाँ पे जैसे अभी आप देख सकते हैं आप शाम के वक्त या सुबह आप अपनी चाय पी सकते हैं यहाँ पीसफुली बैठ के, एंड शाम के वक्त भी यू कैन एंजॉय योर टी एंड हैव अ गाला टाइम। एंड देखिए देखिए देखते बच्चा आ गया, बच्चा। सो अभी ये पूरा एयर कंडीशन हो गया है अंदर जो अपना रेस्टोरेंट है, एंड प्लस द वन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट लेगेसी को कैसे बरकरार रखते हैं, ट्रेडिशंस को कैसे भूलते नहीं हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सिखाते हैं, उसका उदाहरण यहाँ से।
1: इस कैफे में रोज लगता है भोज, जहाँ पर बिल्कुल पारंपरिक तरीके से लोग बैठकर खाना केले के पत्ते में खाते हैं। और फ्रलिन का आज व्रत है, लेकिन आज वो सात्विक खाना खाएंगी और साथ साथ अब बताएंगी कि सात्विक जीवन का क्या महत्व होता है।
4: पापा जी, इनके आशीर्वाद से ही आज राम मंदिर स्थापित हो पाया है और अभी मैं लेके चलूंगी आपको फूड एरिया में। और कहते हैं द बेस्ट वे टू ईट चौकड़ी मार के नीचे जमीन पे बैठ के, और देखिए अच्छे से खाना डाइजेस्ट भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी पुरानी चीजें फॉलो करेंगे तो ना आपको कोई डिजीज होगी एंड यू विल बी मोर हैप्पी कंटेंट विद योर लाइफ।
1: जीवन की आपाधापी में लोग आजकल ज्यादातर लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन इस कैफे की खास बात है कि आज यहाँ पर बिल्कुल इंडियन स्टाइल में खाना सर्व किया जा रहा है केले के पत्ते पर, जैसे भारत में पारंपरिक तरीके से होता था। और आज कुछ इसी तरह चौकड़ी मारकर हरलीन रेखी भी यहाँ का सात्विक भोजन खाने वाली है।
4: तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है, अब बहुत जगह लोग फॉलो भी करने लग गए हैं कि ऐसे तो प्रसाद लेना, नेवर टेक विद वन हैंड, और जितना आपको भूख है आप उतना लें या पहले कम ही लें, और अगर जितना लें उसको वेस्ट ना करें, एक चावल खाना भी नहीं। सुशी, सोमवार का उपवास होता है तो उसमें फलाहार, अभी दही और साबूदाना खिचड़ी, आलू, तो अभी यहाँ पे जो भी प्रभु ने लिखा होगा वो खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट बनाना लीफ भी जब मैं जाती हूँ, सो आपको ये मैं बता रही हूँ ना, आपको आप जितनी अपनी पुरानी एंसेस्टर्स वाली चीजों को फॉलो करेंगे ना, यू विल फील वेरी हैप्पी विद योर लिमिटेड थिंग्स आल्सो। और जितना आप, मैं ये नहीं कह रही मैं वेस्टर्नाइज के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो हम हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये जो पत्ते पे खाने वाली फीलिंग है, एंड द बेस्ट पार्ट इज जब आप ऐसे हाथ से खाते हो तो लोग ऐसा बोलते हैं हाथ से खाने से आपके जो ये पांच सेंसर्स होते हैं, पांच इंद्रियां होती हैं, वो भी एक्टिवेट होती है। यू शुड ऑलवेज ईट सपोजिटली लाइक दिस, प्रॉपर सात्विक भोजन। और ये मैं घर पे भी करती हूँ, व्हेनेवर आई ईट समथिंग लाइक अ मील और समथिंग, ये साबूदाना खिचड़ी है, और तो मैं ऐसे प्रणाम करती हूँ एंड आई थैंक गॉड फॉर गिविंग इट दिस लाइफ एंड गिविंग इट फूड।
1: तो ये थी हरलीन रेखी जो आज यहाँ पर आई हैं टूथ माउंटेन फार्म के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खास मेहमान बनकर। और देखिए ना सिर्फ ये प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का हिस्सा बनी, बल्कि यहाँ के टूथ माउंटेन फार्म के सात्विक माहौल को भी इन्होंने पूरा एंजॉय किया।
4: तो जैसा कि राम जी कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और मैं इस फिलॉसफी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, जितना और जितने मैंने माइक्रो शोज किए हैं, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई वुड से पहले से भी थी। मेरे नाम में भी हरलीन है, कहीं ना कहीं हरी में लीन नाम का मतलब होता है। और जैसे जैसे मैंने शोज किए, स्पिरिचुअल किए और रिलीजियस और होती गई, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमें जुड़े रहना चाहिए जमीन से, जिसको कहते हैं, और पंजाबी में कहावत भी है नीविया नु फल लग दे रहे, जमीन को जुड़े रहो, मतलब जो पेड़ सबसे ज्यादा यू नो हम्बल रहता है लाइफ में, एंड उसके साथ हमेशा सब अच्छा ही होता है, फल उसी में लगते हैं, और हमेशा जमीन से जुड़े रहो। कितना भी कुछ आप हासिल कर लो लाइफ में, लेकिन बी डाउन टू अर्थ, बी पोलाइट एंड हम्बल, सो आई बिलीव इन दैट। एंड आप लोग भी ट्राई करिए, थोड़ी सी सादगी जीवन में लेकर आइए, लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। जय श्री राम।
1: वैसे यहाँ पर काकशुंडी रामायण के बाकी कलाकार भी आए हैं, जैसे काकशुंडी रामायण के रावण और दशरथ भी, और इन सभी ने भी टूथ माउंटेन फार्म और इस राम मंदिर के समारोह का पूरा आनंद उठाया।
2: आज प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है यहाँ पर टूथ माउंटेन गर्जत में, लेट श्री रामानंद सागर, लेट श्री प्रेम सागर और शिव सागर जी और उनके पूरे परिवार की मेहनत की बदौलत हमें अयोध्या का रूप यहाँ देखने को मिला। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था और मुझसे रहा नहीं गया। मैं पहले भी ये कई लोगों को बता चुका हूँ कि हमारे हिमाचल में कुल्लू दशहरा होता है, जो कि श्री राम पर ही आधारित है पूरा, 400-500 देवी देवता उस स्थल पर आते हैं, तो एक अयोध्या का रूप बन जाता है वहाँ पर। ऐसी देवभूमि से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वही भाव वही फीलिंग मुझे आज यहाँ गर्जत में आके हुई श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर।
5: हम लोग हैं करजत में, जो मुंबई के पास एक जगह है, और यहाँ पर टूथ माउंटेन फार्म नाम की जगह पर शिव सागर जी ने श्री राम मंदिर की स्थापना की है। आज कृष्ण एकादशी के दिन बहुत ही पवित्र त्यौहार है। यहाँ शिव सागर जी डॉक्टर रामानंद सागर के पौत्र हैं और प्रेम सागर जी के सुपुत्र हैं।

तो जब वो देखेंगे कि ये चीज वर्क करती है, राम नाम वर्क करता है, इट इज नॉट ए एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, इट्स ए प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग, तो आई एम श्योर कि वो इसको अपनाएंगे भी और इस मार्ग पर आगे भी बढ़ेंगे।

तो ये था करजत का राम मंदिर और शिव सागर और उनकी पूरी फैमिली ने मिलकर अपने परिवार का सपना पूरा किया। जिन लोगों ने रामायण की कहानी को घर घर टेलीविजन के माध्यम से पहुंचाया और अब वही राम जीवन को इस मंदिर और इस रिजॉर्ट के माध्यम से भी कोशिश की जा रही है कि ये नई जनरेशन आगे लेकर जाए। करजत से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: हम आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग, जो है थोड़ी छटपटी, थोड़ी मसालेदार। तो चलिए देखते हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
1: भाई आखिरकार आप सभी को मिलने वाला है आपका खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है इसका फिनाले और आज मुंबई में हो रही है ग्रैंड फिनाले की शूटिंग। जहाँ पर नजर आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी, डर का नया दौर के सभी कलाकार। तो भाई देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कौन मारेगा इस बार बाजी।

बीती शाम हुई मुंबई में मिसमैच की रैपअप पार्टी। ऐसे में यहाँ पर नजर आए रोहित और प्राजक्ता, भाई ये दोनों ही फैंस की धड़कन है। ऐसे में इसका लास्ट सीजन दर्शकों के लिए काफी एंटरटेनिंग होने वाला है।

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा, जी हाँ, उनके बेटे अबीर सिंह करने वाले हैं बॉलीवुड डेब्यू, जिसमें उनके साथ होंगे सूरज पंचोली और इस फिल्म का नाम होगा टार्ज़न।

0: देख लीजिए टू जूलियट जड्डी का ये प्रोमो, क्या नवाब कभी जान पाएगा कि हीर की हालत के पीछे कौन छुपा है और ये क्या राज है।
1: बजा देना नवाब के परफॉर्मेंस की बैंड।
2: नहीं नहीं पास बताना, मेरे छोड़ दो।
3: तो हीर क्या हुआ? हीर
4: कुछ है जो हीर में से छुपा रही है, मुझे पता लगाना होगा।
0: स्टार प्लस लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है संयोनी। ऐसे में क्या इस साथी के आने से जीत पाएगी सानवी अपनी माँ का प्यार?
5: आज आपके घर में जगह मिली है, जब ने चाहा तो कल आपका प्यार भी मिल जाएगा।
6: नाम क्या है तुम्हारा?
5: जी सानवी।
6: पूरा नाम? तुम्हें अपना पूरा नाम पता ही कहाँ होगा, आश्रय से जो आई थी। गॉड नोस कैसी माँ होगी वो जो तुम्हें ऐसे छोड़कर चली गई। जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो ना, तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती। इसे हमेशा याद रखना।
5: आपकी दवाई।
6: ये क्या पहन रखा है तुमने? अरे फैशन शो नहीं।
5: जिसकी नजरों में प्यार ढूंढ रही थी, आज उसी माँ की नजरों में मैं बदनाम हूँ। काश कोई आ जाए उन्हें समझाए। उसे
0: बहुत जल्द सभी के घर बप्पा विराजने वाले हैं। ऐसे में आज अंकिता लोखंडे पहुंच गई हैं गणपति पंडाल अपने बापा को घर ले जाने के लिए।
7: ये रिश्ता क्या कहलाता है में तीज सेलिब्रेशन के बीच चल रहा है। मायरा और कबीर में रोमांस, और इस रोमांस के बीच हो जाती है अरमान की एंट्री, जहां अपने पापा को देख मायरा कबीर को छिपा देती है, लेकिन अरमान को हो गया है मायरा पर शक। अब ऐसे में आगे क्या होता है देखना मजेदार होगा।
0: गहरा होता मायरा और कबीर का रिश्ता।

क्या ये है एक नए प्यार का आगाज? स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई आज मायरा पहुंच गई है अरमान के साथ मार्केट। लेकिन भाई वो आई तो शॉपिंग के बहाने से है, लेकिन असल काम तो कबीर से मिलने का है। और कबीर भी अपने ताऊ के साथ छुप छुपाते पहुंच गया है मार्केट। और भाई देखिए कैसे ये दोनों ही एक दूसरे से मिलने का मौका ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जब अरमान मार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है भाई मायरा पहुंच जाती है कबीर की कार के पास उसका इंतजार करते हुए। और देखिए कैसे कबीर उसे डरा देता है। और बस फिर क्या शुरू होती है यहाँ पर इनकी खट्टी मीठी नोक झोंक।

इतना कुछ मैं कभी नहीं हुआ, इनफैक्ट इतना कुछ कोई नहीं हुआ। तो मेरे लिए केवल एक मतलब

0: गलत खा लेंगे तो मुझे जज करते हैं ना।
1: पहले सब पता कर लेंगे।
0: हाँ मेरी रिलेशनशिप के बारे में बड़ा पता है। हाँ व्हाटएवर सुबह सुबह तुमसे मिलने आ गया फिर टाइम ही नहीं मिला। खुशी मिल रही है
1: ये देख के बाय चांसेस थे तुमने भी आज कर
2: मायराम ने व्रत रखा है कबीर के लिए और कबीर ने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है तो मतलब उसका भी व्रत हो गया तो दोनों ने एक दूसरे के लिए व्रत रखा है।
3: भाई वाह तीज के मौके पर तो मायरा और कबीर ने एक दूसरे के लिए फास्ट कर लिया है और यहाँ जब इनकी प्यार भरी बातें चल ही रही होती है कि अरमान आ जाता है और देखिए कैसे डर के मारे मायरा फिर एक बार कबीर को डिक्की में बंद कर देती है और जैसे तैसे उस सिचुएशन से निकलकर अरमान के साथ आगे बढ़ जाती है। लेकिन भाई किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो तो यही चाहती थी कि अरमान कबीर को देख ले। तभी तो देखिए कैसे अरमान कबीर को डिक्की से बाहर निकलते हुए देख लेता है और इस बात को लेकर बेहद कंफ्यूजन में आ जाता है कि आखिर माजरा क्या है।
2: हाँ तो कबीर डिक्की से निकल के मायरा को डराता है एंड लास्ट में कबीर और मायरा की बातचीत होने के बाद मायरा देखती है कि पापा आ रहे हैं और वो फट से डिक्की बंद करके कबीर को उसके अंदर डाल के छुपा देती है।
3: भाई वैसे आने वाले वक्त में अबीरा को भी बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि कबीर और मायरा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि तीज के मौके पर कबीर पोद्दार हाउस जो पहुँच गया है।
4: पूजा करें?
5: यस मैं घर से सारे स्टेप सीख के आया हूँ।
3: ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या होगा नया हंगामा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: मम्मा आपको
6: आपका कोई बॉयफ्रेंड है?
4: हाँ आपको कैसे पता चला?
7: सीरियल पंड्या स्टोर फेम एक्ट्रेस शाइनी दोषी की बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला।

पार्टी में हुआ पांड्या परिवार का रियूनियन। एक शॉन, शाइनी दोषी और उनके दोस्तों के नाम। बीती शाम मुंबई में शाइनी दोषी ने मनाया अपना जन्मदिन। भाई शाइनी दोषी टेलीविजन की जानी मानी कलाकार है जिन्हें दर्शक बेहद प्यार करते हैं। ऐसे में उन्होंने रखी अपनी बर्थडे पार्टी जहां वो इस गोल्डन कलर के ड्रेस में चमचमाती हुई पहुंची। भाई आज तो शाइनी के तेवर बेहद ही कमाल है और वो लग रही बेहद खूबसूरत भी है। ऐसे में आइए चलते हैं सीधा इस बर्थडे पार्टी में और सभी खास नजारे। भाई आज शाइनी दोषी की बर्थडे पार्टी पर नजर आए पांड्या स्टोर के कलाकार। जी हाँ, भाई शाइनी दोषी पांड्या स्टोर में अहम भूमिका निभा रही थी और उनके सीरियल में नजर आने वाले पति यानी कि किंचुक महाजन आज अपनी रियल लाइफ पार्टनर संग पहुँचे है। उसके अलावा यहाँ पहुँचे कन्वर ढिल्लो अपनी गर्लफ्रेंड एलिस कौशिक के साथ।

ਜੀ ਕੌਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਰਾਫ।

0: इसके अलावा विशाल सिंह, जिसकी बम में है दम, और इसके अलावा गौरव बजाज भी नजर आए अपनी वाइफ संग।
1: चाय कुमारी है, सारे थके बैठ गए पर।
0: तो भाई आइए चलते हैं शाइनी की बर्थडे पार्टी में, करते हैं केक कटिंग, जहाँ शाइनी ने अपने सभी करीबी दोस्तों संग केक काटा और सभी का करवाया मुंह मीठा।
1: पार्टी जारी है, अरे पंगा तो कोई शुरू करे, अपनी भी गरारी है, जुम्मी चुकी नोक पर, रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी है।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है,
0: शाइनी दोषी को सास बहू और बेटिया की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: सीरियल्स की दुनिया में आते हैं ढेर सारे ट्विस्ट और जितनी कहानियां उतनी

0: इतने सारे ट्विस्ट, तो चलिए देखते हैं कि कौन से सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट।
1: मोदी आर्मी में है, पूरे देश की रक्षा करते हैं।
2: स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में मैं अनुपमा फिर एक बार नई जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इस बार धोखा उसके अपनों ने नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स ने दिया है जिसने अनुपमा के सपने को भी चूर चूर करके रख दिया।
1: मोदी आर्मी में है, पूरे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन अपने घर की रक्षा नहीं कर पाए।
3: मेरी जिंदगी का सारा चला गया, अब मैं जिक्र भी क्या करूँगा?
4: पास बताना मेरे।
5: पावर ऑफ अ कॉमन मैन, सुना है ना? तो हम सब के पास वो पावर है कि हम अपनी एक उंगली से सरकार बदल सकते हैं। अरे इसीलिए तो हमें जनता जनार्दन कहा गया है, क्योंकि आम इंसान अगर एक बार ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो सब लड़ेंगे ना मेरे साथ?
3: हाँ, हम लड़ेंगे।
2: अनुपमा और उसका पूरा परिवार झूमकर जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। जरा देखिए तो कैसे भाई इस त्योहार में चार चांद डांस के साथ लग रहे हैं।

0: लेकिन इस त्योहार के बीच अनुपमा को क्या पता था कि उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगने वाला है।
1: और कोई ऐसे ऐसे हरम से ठग लेता है। किसी के बरसों की कमाई को बिल्डर ऐसे ऐसे ठग के चला जाता है। इससे तो अच्छा कि पैसे चोरी हो जाए, कम से कम तब हम किस्मत को तो कोस सकते हैं। लेकिन जब ऐसे होता है तो फिर अपने आप को ही कोसते हैं कि काश मैंने मैंने और अच्छी तरह से इस पर ध्यान दिया होता, काश मैंने और थोड़ी पूछताछ की होती, काश मैंने और इंतजार किया होता, काश मैंने सर नहीं था उस दिन फिर भी ऐसे ऐसे जाके चेक साइन करके आ गई। अरे पहले और पता लगाना चाहिए था, मैंने ऐसे कैसे गलत बिल्डर पे भरोसा कर लिया, मुझे और पता लगाना चाहिए था।
2: आपकी कोई गलती नहीं, आप प्लीज शांत हो जाइए, आपकी कोई गलती नहीं है।
1: 5 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैंने बहुत मुश्किल से कमाए थे।
3: तुम देना साथ मेरा।
0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में भाई अब शुरू हो चुकी है अपराजिता और आराध्या में नई जंग। भाई घर में गृह प्रवेश तो हो गया लेकिन असली तशनबाजी तो अब शुरू होगी।
4: वाह मम्मी जी, देखिए विवान का मुंह दिखाई गिफ्ट।
5: वाह सुधा जी, बहू तो बहुत सुंदर ढूंढ कर लाई हैं आप अपने विवान के लिए।
4: रक्षक सर आ गए?
5: नहीं, पर आपके लिए गिफ्ट भेजा।
6: ये रक्षित की बीवी है? रक्षित ने कब शादी की और मुंह दिखाई भी तूने एक ही बहू की रखी है, हम सबसे कुछ छुपाना चाहती है क्या?

0: वही रक्षित की मम्मी ने अपराजिता को घर में बहू बनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अपने टूटते और बिखरते रिश्तों के आगे मजबूर होकर देखिए कैसे रक्षित की मम्मी ने अपराजिता और आराध्या दोनों का ही गृह प्रवेश किया। हालांकि ये गृह प्रवेश बेमन था, लेकिन फिर भी रस्में थी जो कि निभानी पड़ी।
1: सुधा जी, दहलीज दिखाई कि नेक भूल गया?
2: भूली नहीं हूँ मैं। अपराजिता इस नेक के लायक नहीं है। बहू जब घर में आती है तो अपने साथ रौनक, खुशियाँ, मान लेकर आती है, लेकिन अपराजिता इस घर में रौनक की बजाय रिश्तों में दरारें लेकर आई है। खुशियों की बजाय मेरी जिंदगी में गम लेकर आई है, और मान की बजाय एक माँ का दिल तोड़कर आई है। इसीलिए वो इस नेक के लायक नहीं है, और रही तुम्हारी बात आराध्या, तो परिवार के कभी हिस्से नहीं होते। एक की अच्छी किस्मत का लाभ पूरा परिवार उठाता है, वैसे ही किसी एक की गलती का भुगतान भी पूरे परिवार को करना पड़ता है। तुम्हें तो पता है ना, शादी में मेरी एक शर्त थी कि तुम्हारी बहन अपराजिता मेरे बेटे रक्षित से दूर रहेगी। शर्त तो इसने धोखे से तोड़ दी। इस गलती की सजा तो तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी, इसीलिए तुम भी इस नेक के लायक नहीं बची। रखे हैं कलश, दोनों लड़कियां गिरा दो और आ जाओ दोनों अंदर।

0: क्या है मतलब? तेरा प्यार, वही प्यार जिसने मुझे मौत के मुंह से खींच लाया, जिसने वक्त और हालात से लड़कियां हम दोनों को ना दोबारा मिलाया।
1: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में भाई मन्नत और विक्रांत इतने टेंशन भरे माहौल में भी एक दूसरे के साथ रोमांटिक पलों को बिताना नहीं भूलते। और देखिए कैसे भाई ये मियां बीवी आज भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ढेरों बातें। लेकिन इनके प्यार को फिर एक बार लगने वाली है धैर्य की नजर, जो चोरी चोरी छुपके छुपके इन्हें देख रहा है। और इस बात का एहसास मन्नत को हो गया है।
2: कैसे कैसे कर लेते हैं आप?
0: फ्लावर्स रखे मैंने, बड़ी बात नहीं है।
2: इतना कुछ चल रहा है घर में, आपके पैर में चोट लगी है और आपको रोमांस सूझ रहा है।
0: वो क्या है ना कि जब तुम पास होती हो ना तो तकलीफ महसूस नहीं होती। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इट्स लाइक पीस, सुकून। तुम हो ना सब कुछ है।

0: Ja, Nagy. Rocky, मैं मैसेज बता दूं तुम्हें, आज मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी ने मुझे गले लगाया एंड मुझसे कहा कि मैं दुनिया का बेस्ट पापा हूँ. सो मैं सोच रहा था क्योंकि मैं बेस्ट पापा हूँ तो मुझे बेस्ट हस्बैंड बनना पड़ेगा.
1: तो वहीं दूसरी ओर बेकाबू हो गई है अभिमन्यु के लिए मान्यता, जो किसी के भी संभाले नहीं संभल रही है.

0: 讲可以吗？
1: ऐसे में सम्राज्ञी ने भी ये तय कर लिया है कि वो अपने बहन की खुशियों को वापस लाकर ही रहेगी। तभी तो देखिए कैसे वो पहुंच गई है विक्रांत और मन्नत के घर, विक्रांत के पास फिर एक बार मान्यता की शादी का ऑफर लेकर।
2: आप पहली नहीं है सम्राज्ञी जी जिसने मेरे और विक्रांत के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। मैं और विक्रांत इस जन्म से लेकर आगे आने वाले हर जन्म में साथ रहेंगे।
3: ये गलत फहमी बहुत जल्द दूर भी हो जाएगी जब अपनी आंखों के सामने
4: दुनिया की कोई भी ताकत ना हमें अलग नहीं कर सकती।
3: मैं हूँ और हमेशा रहूँ और ये लड़ाई हम दोनों की है और हम जीतेंगे इस लड़ाई को।
5: रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में सितारे एक से एक खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। एक तरफ जहां सितारों में एक दूसरे से अच्छा करने की होड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ गेम के दौरान सितारे कर रहे हैं डर का सामना। ऐसे में आज किस सितारे ने मारी बाजी, चलिए देखते हैं।

0: के खिलाड़ी।
1: तो ये जो अब जो स्टंट होने वाला है, ये व्हील पे हम बांध देते हैं और इस स्टंट ने स्टार्स बनाए, ये स्टार मेकर स्टंट है। तो आपके साथ जाएंगे फराना और जाएंगी रुबीना। तो भाई सबसे एक्सपीरियंस कौन है यहाँ पर? हमारी मम्मी।
2: मम्मी
1: तो माँ पहले आप जाओगे, फिर भट्ट साहब आप, एंड फिर भाई आप।
3: जी सर।
1: तैयार?
3: मैं सर तैयार हूँ।
1: आइए रुबीना।
4: ऑल द बेस्ट।
5: ऑल द बेस्ट।
6: Tension on your legs. Standing. Then stretch.
7: Good luck,
8: Ruby. Come on, Ruby.
9: Done, Ruby.
1: Ready, Ruby? Going for a stunt. And 3, 2, 1, go.
6: Go, Ruby, go.

0: Very nice, Ruby.
1: Vabbè, però, Nicola.
0: Nicola,

0: एक पॉइंट आएगा जब हम नाक नहीं पकड़ पाओगे।
1: अभी पहला नहीं खुला।
2: तो आप ऊपर आते हो तो ही खोलने का ट्राई करो।
3: नहीं नहीं, पानी के अंदर भी कर सकते हो आप।
4: अंदर भी कर सकते हैं
3: बाबा, अगर तुम खोलोगे नहीं ना तो 8-10 राउंड के बाद ना डिसओरिएंट हो जाओगे तुम।

0: वेरी गुड
1: रूबी,
2: नाइस
3: गुड रूबी गुड।
0: ये चाबी अटकी है, हाथ में लटकी है चाबी।
3: नहीं कुरा ना भाई
4: तुम। कम ऑन रूबी, ये
5: ये अंदर खोलना ही पड़ेगा,
6: खोलना ही पड़ेगा आपको।

0: गया रूबी।
1: आज के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सफर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: गुजरात के नवसारी, भरूच, सूरत सहित कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां। मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह। झांसी में ढोल नगाड़ों के साथ माणिक चौक के राजा का भव्य स्वागत, शानदार लाइटिंग के बीच डीजे की धुन पर गणपति बप्पा मोरिया की जयकार। शहर में दिखे आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। उत्तर प्रदेश के संभल में गणेश चतुर्थी मेले का शुभारंभ, सर्वधर्म संभाव से संदेश के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं ने किया उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
8: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां ने रफ्तार पकड़ ली है। 7 नवंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या में इस वर्ष जो है आयोजित होने वाला दीपोत्सव भव्यता, आध्यात्मिकता और अवध की सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत संगम का साक्षी बनने जा रहा है। एक ओर जहां पर दीपोत्सव के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, वहीं पर दूसरी ओर सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति कराने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
9: रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से लाखों दीपों की भव्य छटा देखने को मिलेगी। एक बार फिर से यहां पर सरयू नदी के घाट दीपों से जगमग होंगे। जब लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दशरथपुरी में वापसी की याद में दीपावली मनाने के लिए यहां पर अनगिनत दीप जलाकर शानदार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में लगातार 10वीं बार यहां पर दीपोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
10: अयोध्या के इस बार के दीपोत्सव को खास रंग और रूप और रेखा तैयार कर दी गई है। यही वह स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहां पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे। तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है।
9: हर साल की तरह इस बार भी दीपावली से एक दिन पहले अयोध्या में सरयू किनारे दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस बार 7 नवंबर को दीपोत्सव होगा। इसे भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी जारी है।
11: तो अभी हम लोग इसको धीरे धीरे उसको आगे बढ़ेंगे जिस तरह के निर्देश आते रहे।
9: इस बार दीपोत्सव के सिलसिले में राम की पैड़ी से लेकर सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट के पूरे इलाके को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट अलौकिक नजर आएगा। दीपोत्सव की तैयारियों के लिए 2 महीने से भी कम समय बचा है, लिहाजा प्रशासन की ओर से तेजी से इंतजाम किए जा रहे हैं।
12: घाट के रिनोवेशन का कार्य, एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था जिसको UPPCL कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा। और साथ ही साथ वहां पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है। और उम्मीद है कि दीपोत्सव इस बार बहुत भव्य तरीके से होगा। विश्वविद्यालय से हम लोगों ने टाई अप किया है, जो वॉलंटियर्स उनके प्रोवाइड किए जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से आते हैं, ये सभी व्यवस्थाएं कराई जा रही है।
9: आपको बता दें, अयोध्या में सरयू तट पर दीपोत्सव मनाने का सिलसिला 2017 से शुरू किया गया था। तब यहां पर लगभग 2.25 लाख दिए जलाए गए थे। वहीं साल दर साल इस आयोजन में दीपों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले साल 2025 में यहां पर 26 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया। माना जा रहा है कि इस बार के दीपोत्सव में भी नया रिकॉर्ड बनेगा।
12: देखिए, अयोध्या का दीपोत्सव अब पूरे दुनिया में एक अयोध्या की पहचान बनकर उभरा है। पूरी दुनिया को उत्सुकता रहती है अयोध्या के दीपोत्सव की, दीपों की वह श्रृंखला, दीपों की वह संख्या, उसकी व्यवस्था, ये सारी चीजें कुल मिला के एक अद्भुत वातावरण अयोध्या में बनाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का दीपोत्सव और दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न होगा। हम लोगों की सारी टीमें, सबका गठन हो चुका है, सब अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ सारी चीजों को कर रहे हैं।
9: दीपोत्सव के अवसर पर सरयू की लहरों के बीच जगमगाते हजारों दीप श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होंगे। इस दौरान सरयू के घाटों पर भव्य महाआरती भी होने वाली है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और हजारों दीपों की जगमगाहट के बीच महाआरती में अयोध्या की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। ऐसे में अयोध्या का दीपोत्सव इस बार सिर्फ रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और भव्यता के दिव्य संगम का शानदार आयोजन बनने जा रहा है, जो एक बार फिर से सबके लिए यादगार हो सकता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने दोस्त से मुलाकात। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से मुलाकात हुई। मुंबई में मीरा रोड के रहने वाले 81 साल के असगर अली वोहरा ने गुजरात के वडनगर के प्रधान बीएन स्कूल में नरेंद्र मोदी के साथ पढ़ाई की थी। वो 8 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। हालांकि ये मुलाकात व्यक्तिगत थी और इस दौरान असगर अली वोहरा ने प्रधानमंत्री से कुछ मदद भी मांगी, लेकिन खास बात इसमें यह रही कि लंबे अरसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब अपने स्कूल के सहपाठी से मिले तो काफी गर्मजोशी देखने को मिली। तस्वीर देखिए।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी दृढ़ पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में ये है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: गुजरात के नवसारी, भरूच, सूरत सहित कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों में गजब का उत्साह। झांसी में ढोल नगाड़ों के साथ माणिक चौक के राजा का भव्य स्वागत, शानदार लाइटिंग के बीच डीजे की धुन पर गणपति बप्पा मोरिया की जयकार, शहर में दिखे आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। उत्तर प्रदेश के संभल में गणेश चतुर्थी मेले का शुभारंभ सर्वधर्म संभाव के संदेश के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं ने किया उद्घाटन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ ब्रिक्स समिट 2026 का हुआ समापन, दुनिया में बढ़ते तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता, ग्रुप फोटो शूट में एकजुटता का संदेश। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.0 का आयोजन, मॉडर्न एकजुटता एजुकेशन, स्मार्ट गवर्नेंस के साथ कृषि और चिकित्सा में एआई के इस्तेमाल पर मंथन। नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए पंजाब की पहली टीम तैयार, अमृतसर की नहर में जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी, 17 सितंबर को उत्तराखंड के देवप्रयाग होगा टूर्नामेंट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। कोई भी मंगल कार्य हो सबसे पहले मंगल मूर्ति को ही पूजा जाता है। आने वाले हैं एक दंत, भक्तों के जीवन में भरने हर्ष और आनंद। कल से गणेश उत्सव का आरंभ होने जा रहा है। श्री गणेश के आगमन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भक्तों में अपार उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है। कल से घरों पंडालों में गणपति मेहमान बनकर विराजमान हो जाएंगे। आज अपनी इस खास पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं कि भक्त अपने बप्पा को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, विघ्नहर्ता के इस दिव्य उत्सव का शुभ लाभ आपको कैसे मिल सकता है, देखिए हमारी इस खास पेशकश में।

गणेश चतुर्थी संग बना है हरितालिका तीज का संयोग। शिव परिवार की उपासना से बनेंगे शुभ लाभ के योग। गणेश चतुर्थी यानी जब गजानन कैलाश छोड़कर धरती पर भक्तों के बीच 10 दिनों तक रहते हैं, आ चुकी है वो मधुर वेला जब 10 दिनों तक आपकी अर्जी सुनेंगे दुख हरता, दूर करेंगे सारे संकट। गणपति की उपासना का महापर्व गणेशोत्सव का आरंभ अब बस होना ही वाला है। साथ ही चतुर्थी तिथि पर ही पूजन होगा देवाधिदेव महादेव संग गौरा पार्वती का। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये तिथि बहुत ही मंगलकारी रहने वाली है, क्योंकि इस शुभ तिथि पर शिव परिवार का एक साथ ही धरती पर हो रहा है अवतरण। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे कि गणेशोत्सव के समय किन महा उपायों को करके आप मनवांछित फल पा सकते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं ये गणेशोत्सव की क्या महिमा है। गणेश चतुर्थी

0: हैं गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस पूरी अवधि को गणेश महोत्सव कहा जाता है।
1: गणेश जी का सनातन परंपरा में प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता और बुद्धि विवेक के देवता माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है। गणेश उत्सव का सबसे बड़ा संदेश है अपने जीवन में बुद्धि विवेक, विनम्रता और शुभ कार्यों का संकल्प लेना। यह केवल पूजा नहीं, पूरे परिवार को भक्ति और सकारात्मकता से जोड़ने वाला पर्व है।
0: विघ्नहर्ता हैं श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हैं गणेश। शुभ लाभ के पिता भी श्री गणेश ही हैं, यानी जीवन में शुभ लाभ रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के लिए गणपति की उपासना अनिवार्य है। माना जाता है कि गणपति की उपासना से कुंडली की बाधाओं का भी अंत किया जा सकता है। गणपति की उपासना की महिमा, भगवान गणेश को मंगलमूर्ति कहा जाता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। संतान, शिक्षा, बुद्धि और भाग्य के लिए भगवान गणेश की उपासना सबसे उत्तम है। गणपति की उपासना से कुंडली के अशुभ योग भी नष्ट हो जाते हैं। गणपति की पूजा बहुत सरल है और केवल पत्तों से भी गणपति की उपासना की जा सकती है।
1: धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की आराधना कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति, सफलता में शिक्षा में सफलता, व्यापार और कार्य क्षेत्र में उन्नति, शुभ कार्यों के निर्विघ्न पूर्ण होने में, परिवार में सुख शांति के लिए, इन जैसी कामनाओं के लिए भगवान गणेश जी की पूजा किया।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गणेश उत्सव में गणपति का पूजन करने रिद्धि और सिद्धि की कृपा भी बरसती है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी पूजा से प्रसन्न होंगे पार्वती नंदन और कैसे आप पा सकते हैं सुख और संपन्नता का वरदान। साथ ही आपको बताएंगे गणपति की उपासना का सबसे उत्तम विधान। गणपति के दिव्य उत्सव की शुरुआत के साथ आपका ये समझना भी जरूरी है कि गणपति की पूजा उपासना में संपूर्ण श्रद्धा के साथ क्या अर्पित करें, जिससे आपकी पूजा सफल हो सके। गणेश जी की उपासना में क्या जरूर अर्पित करें? गणेश जी को दूध और मोदक जरूर अर्पित करें। पीले वस्त्र और सिंदूर अर्पित करना शुभ होगा। गणेश जी को पीले फूलों की या फलों की माला अर्पित करें। गणेश जी की उपासना जितने भी दिन चलेगी अखंड घी का दीपक जलता रहेगा।
1: तो दर्शकों, गणेश जी के पूजन में मोदक, लड्डू, फल, गुड़ और नारियल, ये सब अर्पण किए जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मोदक। मोदक का अर्थ है आनंद और मिठास से जुड़ा हुआ माना जाता है। पौराणिक परंपराओं में मोदक को ज्ञान और आनंद का प्रतीक मनाया गया है। मोदक का बाहरी आवरण साधारण दिखाई देता है, लेकिन अंदर मीठा सार छिपा होता है। इसी से एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि मनुष्य को भी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अपने भीतर के ज्ञान और सद्गुणों से महान बनना चाहिए। इसलिए गणपति पूजा में मोदक का विशेष स्थान माना जाता है।
0: अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ शुभ और मंगलकारी हो, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गणेश महोत्सव में ऐसा क्या करें जिससे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। गौर से देखिए, गणेश महोत्सव में हर दिन संध्या काल गणेश जी की पूजा जरूर करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें दुर्वा और लड्डू अर्पित करें। इसके बाद गंग अक्षर का यथाशक्ति जप करें। अंत में आरती करके पूजा की समाप्ति करें। गणेश महोत्सव में जितने ज्यादा दिन ये कार्य करेंगे, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तो देखा आपने गणपति के भोग की सारी सामग्री के साथ ही आपको ज्योतिष में बताए महा उपाय तो करना ही है, साथ ही 10 दिनों तक कैसे करनी है आपको गणपति का पूजन, ये भी आपको बताते हैं।
1: गणपति जी की पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को स्वच्छ करें। गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, पुष्प अर्पण करें,

0: दुर्वा चढ़ाएं, सिंदूर अर्पण करें, फल चढ़ाएं, नारियल अर्पण करें, मोदक या अन्य सात्विक नैवेद्य का भोग लगाएं। इसके बाद गणपति मंत्र का जप करें और आरती करें। यदि संभव हो तो गणपति अथर्वशीष का पाठ भी अवश्य करें और पूजा के अंत में भगवान से अपने परिवार के लिए सद्बुद्धि, सुख और मंगल की प्रार्थना करें।
1: तो आप भी गणपति को प्रसन्न करने के उपाय कीजिए, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो एक ऐसी सरल पूजा है, ऐसा प्रयोग है जिससे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं गणपति। तो आप भी कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: हर कार्य की शुरुआत से पहले गणपति का आह्वान करने की परंपरा रही है। गणेश महोत्सव के शुभ अवसर पर बप्पा की असीम कृपा बरसती है। मंगल मूर्ति गणेश को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक, पुष्प और सुगंध तो आप अर्पित करते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी पत्तों से की पार्वती नंदन की पूजा? गणपति की पूजा पत्तों से करने से आपके जीवन में खुशियों का शुभारंभ हो सकता है। देखिए कैसे पत्तों से प्रसन्न होंगे गणपति बप्पा।

एक पत्ता चमका सकता है आपकी तकदीर। पत्तों के प्रयोग से मधुर होगी जीवन की तस्वीर। गणेशोत्सव में पत्तों के प्रयोग से प्रसन्न होंगे गजानन। मंगल मूर्ति की कृपा से जीवन में होगा खुशियों।

0: आज हम आपको बताने वाले हैं कि पत्तों के चढ़ावे से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं गणपति, क्योंकि गणपति को प्रसन्न करने के लिए मोदक, पुष्प, सुगंध का पूजा उपासना में प्रयोग हम करते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्तों से भी प्रसन्न होते हैं गणपति? क्या आपने कभी पत्तों से की है पार्वती नंदन की पूजा? ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि भोग में पत्तों के अर्पण से की गई उपासना से गणपति प्रसन्न होते हैं।
1: गणपति पूजा में विभिन्न पत्र पुष्प अर्पित करने की परंपरा भी मिलती है। कई परंपराओं में 21 प्रकार के पत्र अर्पित करने का विधान बताया जाता है। इसका उद्देश्य केवल पूजा की सामग्री बढ़ाना नहीं, प्रकृति के अलग अलग रूपों को भगवान को अर्पित करके हम यह संदेश देते हैं कि ईश्वर और प्रकृति का संबंध अभिन्न है। इसलिए गणेश उत्सव के दौरान पूजा में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करके करने की परंपरा को महत्व दिया जाता है।
0: चलिए आपको बताते हैं कि पत्तों के उपयोग से जीवन में कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। हर पत्ते का अलग रंग और अलग गंध होती है। पत्तों के अलग अलग रंग और गंध अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं। यही पत्ते अलग अलग मंत्रों के साथ गणपति को अर्पित किए जाते हैं। खास तरीके से गणपति को पत्ते अर्पित करने से मनवांछित फल मिलते हैं। तो देखा आपने, ज्योतिषी मानते हैं कि पत्तों के प्रयोग से प्रसन्न होते हैं गणपति, लेकिन गणपति को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता है। इसके पीछे कौन सी कथा है वो भी आपको बताते हैं।
1: कथा के अनुसार तुलसी देवी ने गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया। गणेश जी ने विवाह से इनकार कर दिया। इससे तुलसी देवी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को दो विवाह होने का श्राप दे दिया। इसके उत्तर में गणेश जी ने भी तुलसी को एक असुर से विवाह होने का श्राप दिया। बाद में दोनों को अपने अपने श्राप का बोध हुआ। इसी कथा के कारण गणेश पूजा में सामान्यतः तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाता।
0: आस्था कहती है कि भगवान चढ़ावे के भूखे नहीं होते हैं, उनके लिए तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण का भाव सबसे जरूरी है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी समस्या के लिए किस पत्ते से करनी होगी बप्पा की उपासना। संतान प्राप्ति के लिए उमा पुत्राय नमः कहकर बेलपत्र अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लंबोदराय नमः कहकर बेर का पत्ता अर्पित करें। कार्य बाधा दूर करने के लिए वक्रतुंडाय नमः कहकर सेम का पत्ता अर्पित करें। आर्थिक लाभ के लिए विनायकाय नमः कहकर आग का पत्ता अर्पित करें। शनि की पीड़ा को शांत करने के लिए सुमुखाय नमः कहकर शमी का पत्ता अर्पित करें। माना जाता है कि भक्तों के सुख के कारक हैं गणपति, जिनकी कृपा से हर दुख हर कष्ट का अंत हो जाता है। मान्यता है कि जिसके ऊपर बप्पा मेहरबान होते हैं उसे जीवन की समस्त बाधाओं से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। गणपति को पत्ते अर्पित करने की उत्तम विधि क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। गणेश उत्सव के दौरान बप्पा को किसी भी दिन अर्पित करें। सुबह नहाकर गणपति के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर उन्हें मोदक का भोग लगाएं। अपनी मनोकामना के अनुसार मंत्रों के साथ अलग अलग पत्ते गणपति को अर्पित करें। एक बार में कम से कम 9 पत्ते अर्पित करें, 108 पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। धर्मशास्त्री मानते हैं कि अगर आप सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा उपासना करें तो जीवन की सारी विपत्तियां सारी समस्याएं एक एक करके नष्ट होने लगती हैं और जीवन में शुभता और संपन्नता का आगमन होने लगता है। तो आप भी गणेश उत्सव से लेकर अनंत चतुर्दशी तक कीजिए ये ज्योतिषीय महा उपाय। अगर आप सच्ची श्रद्धा से गजानन को पत्ते अर्पित करेंगे तो बप्पा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कैसे करें गणपति बप्पा को प्रसन्न।
2: माना जाता है कि विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। गणेश महोत्सव में छोटे छोटे उपायों से जीवन के हर कोने में शुभता और संपन्नता बसाई जा सकती है। गजानन मान गए तो खुल जाएंगे सुख संपन्नता के द्वार। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि गणपति उत्सव के दौरान किए गए छोटे छोटे महा उपायों से कैसे आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं।

भक्तों को देने वरदान, पधारने वाले करुणा निधि थान भगवान। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया का लगेगा जयकारा। गणपति को समर्पित कर दीजिए अपना दर्द सारा।

0: क्योंकि ये 10 दिवसीय आराधना है भक्तों की कामना पूर्ति की, जब आपको मिल सकता है संतान का वरदान। साथ ही इन दोनों के पूजन से हो सकता है विवाह की बाधा का समाधान। मंगल मूर्ति के आशीर्वाद से मिलेगा रोजगार, बप्पा की कृपा से पूरा होगा आपके घर का अरमान, क्योंकि जीवन में सारा ऐश्वर्य भरने वाले हैं गणपति। चलिए आपको वो ज्योतिषीय महा उपाय बताते हैं जो आप गणेशोत्सव में किसी भी दिन कर सकते हैं।
1: पहला उपाय, 21 दुर्वारपण करना चाहिए। गणपति जी को श्रद्धा पूर्वक दुर्वारपण करें और ओम गंग गणपतये नमः का जप करते हुए करें। दूसरा उपाय, मोदक का भोग लगाएं। गणपति जी को मोदक अर्पण करने और परिवार के साथ प्रसाद भी ग्रहण करें। तीसरा उपाय विद्यार्थियों के लिए विशेष है, ध्यान रखें गणेश जी के सामने अपनी पुस्तक या अध्ययन सामग्री रख करके प्रार्थना करें और नियमित अध्ययन का संकल्प लें। चौथा उपाय, कार्य के बाधा के लिए किसी नए कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी का स्मरण करें और वक्रतुंड महाकाय का पाठ करें। पांचवा उपाय, दीपदान करें, यानी गणेश जी के सामने दीप जला करके मन में संकल्प लें कि हे गणपति महाराज, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और अपने कर्मों में सफलता प्रदान करें।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गणपति की कृपा से ही जीवन में बहार है, लेकिन अगर आपके आंगन में संतान की खिलकारी नहीं गूंजी तो घर सूना सूना लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं गणेशोत्सव में संतान प्राप्ति के ज्योतिषीय महा उपाय। भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित करें, इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें या ओम उमा पुत्राय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित किए हुए फलों की माला के फल बच्चों में बांट दें। ये प्रयोग गणेश महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक करें। विवाह की हो चुकी है उम्र और नहीं हो रहे हैं हाथ पीले, नहीं बज रही है घर में शहनाई, तो इन 10 दिनों की उपासना से पूर्ण हो सकता है मन चाहे जीवन साथी का सपना। चलिए जानते हैं वो कौन सा महा उपाय है जो आपके जीवन की इस कमी को पूरा कर सकता है। मन चाहे विवाह के लिए क्या उपाय करें? भगवान गणेश का श्रृंगार करें, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल और मोदक अर्पित करें। ओम विघ्नहर्त्रे नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद उस पीले वस्त्र को सहेज कर अपने पास रख लें। ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन प्रातः करें। माना जाता है कि गणपति बुद्धि और ज्ञान का वरदान तो देते ही हैं, साथ ही रोजगार की बाधा भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गणपति की कृपा से कैसे पूरी हो सकती है आपकी नौकरी की तमन्ना। नौकरी पाने के लिए क्या उपाय करें? भगवान गणेश को उतने ही लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। हर लड्डू के साथ कहें ओम नमो भगवते लंबोदराय। एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लोगों में बांट दें। ये उपाय गणेश महोत्सव में किसी भी दिन शाम को करें। हर कोई चाहता है कि उसके पास अपना घर हो, तो इस गणेशोत्सव में की गई गणपति की आराधना से आपकी ये कामना भी पूरी हो सकती है। गौर से देखिए ये ज्योतिषीय महा उपाय। मकान बनाने के लिए क्या उपाय करें? भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करें, इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का भी अर्पित करें। ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः का 108 बार जाप करें। लाल वस्त्र में सिक्का बांधकर अपने पास रख लें। आपकी मकान बनाने की इच्छा शीघ्र पूरी होगी। ये उपाय गणेश महोत्सव में एक बार प्रातः काल करें। गणपति को कहा ही जाता है मंगल मूर्ति, जिनकी कृपा से हर विघ्न और बाधा दूर हो सकती है। प्रथम पूज्य भगवान दूर कर सकते हैं आपके जीवन की सभी अड़चने, लेकिन किन मंत्रों के जाप से बरसेगी आप पर कृपा, अब ये भी जान लीजिए।
1: भगवान गणेश का सबसे सरल और प्रसिद्ध मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इसका श्रद्धा पूर्वक जप करें। इसके अलावा पूजन के प्रारंभ में यह बोल सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और यदि संभव हो तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करें।
0: तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए ये सभी महाप्रयोग आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, आपके जीवन से कष्टों का अंत कर सकते हैं और आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो आप भी विधि विधान से इन महा उपायों को अपना लीजिए और पा लीजिए गणपति से वरदान, जिससे आपकी भी प्रार्थना होगी स्वीकार।
2: तो हम तो यही आशा करेंगे कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद आप पर यूं ही बना रहे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: और चलिए अब आपको दिखाते हैं रेस्क्यू की एक शानदार तस्वीर जो आई है अमेरिका से। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 15 साल के एक लड़के को समुद्र में जान गंवाने से बचा लिया। ये घटना अलास्का के पास हुई, जहां पर एक नाव पलटने के बाद यहां लड़का उसके पिछले हिस्से पर किसी तरह से टिका हुआ था। 2 दिनों तक इसने नाव पर इसी तरह से वक्त गुजारा और इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे बचाने में कामयाबी हासिल कर ली। बताया जाता है कि लड़का अपने भाइयों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गया था, के बाद केवल यही बचने में कामयाब रहा। कोस्ट गार्ड के जवानों ने इसे देखा तो बचाव अभियान चलाकर इसे रेस्क्यू किया और फिर बीमार हालात में इलाज के लिए भेजा गया।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: गुजरात के नवसारी, भरूच, सूरत सहित कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों में उत्साह। झांसी में ढोल लगाड़ों के साथ माणिक चौक के राजा का भव्य स्वागत, शानदार लाइटिंग के बीच डीजे की धुन पर गणपति बप्पा मोरिया की जय का, शहर में देखे आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बैठक, कहा ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं समाधान का इकोसिस्टम। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.2 का आयोजन, मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट गवर्नेंस के साथ कृषि और चिकित्सा में एआई के इस्तेमाल पर मंथन। नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए पंजाब की पहली टीम तैयार, अमृतसर की नहर में जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी, 17 सितंबर को उत्तराखंड के देवप्रयाग में होगा टूर्नामेंट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और हमारी इस खास पेशकश में मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। शास्त्रों में जिन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है, जिनकी ताकत का कोई अंत नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान का एक रूप चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सड़क के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने मंदिर की दीवारों को तोड़ गिराया, लेकिन जब बारी हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की आई तो सब कुछ फेल हो गया। प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
1: यह मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन, वो शहर जिसके रग रग में जय महाकाल की गूंज है, वो सिद्ध शहर जिसके कणकण में महाकाल बसते हैं, जहाँ की हवाओं में आध्यात्म और भक्ति की शक्ति महसूस होती है। महाकाल की इसी पावन नगरी में है खड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। शास्त्रों में इस जगह को अतुलित बल का धाम कहा गया है। महाबली का ये रूप यहाँ वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन खड़े हनुमान जी के इसी प्राचीन मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान किया है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अतुलित बल यानी ताकत का कोई अंत नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान जी की एक प्रतिमा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। उज्जैन में विकास कार्यों के दौरान खड़े हनुमान जी के प्राचीन मंदिर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियमों के तहत मंदिर के ऊपरी और आसपास के ढांचे को हटा भी दिया गया, लेकिन जब बात आई खड़े हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा को वहां से हटाने की तो हालात पूरी तरह बदल गए।
2: हम आगे दर्शन करने के लिए कोई मनोकामना लेके, लोगों की मनोकामना या श्रद्धा है पूरी होती है, हम भी आगे अपनी मनोकामना लेने के।
3: शिवपुर जिले मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर से आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि प्रशासन इसको हटाने की कोशिश कर रहा है, पर हनुमान जी का बिल्कुल मन नहीं है। यहीं रहना चाहिए ये मूर्ति और इसका विकास होना चाहिए, यही हमारा कहना है।
4: हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, 60 मंदिर वो ले चुके हैं, एक मंदिर वो रहने दे, प्रशासन से निवेदन है।
1: हनुमान जी ने जैसे अपनी जगह न छोड़ने का प्रण ले लिया हो, मशीनों की मदद ली गई, अलग अलग तरीकों का सहारा लिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हनुमान जी की ये प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
5: हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए 4-5 दिन से मीडिया के स्तर से, और उज्जैन के वासी हैं तो सब जगह देखिए हनुमान जी का चमत्कार इस समय दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को 3 बार उठाने का प्रयास किया गया, फिर भी हनुमान जी अपनी जगह से अडिग है, नहीं उठे। तो इसी सोच करके आए कि देखिए हनुमान जी का चमत्कार क्या है। अपने सनातन में चमत्कार होते रहते हैं, भगवान समय समय पर चमत्कार दिखाते रहते हैं, और बार बार उनको उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब चमत्कार 1 या 2 बार 3 बार चमत्कार होता है, अब बार बार चमत्कार थोड़ी होता है। इसलिए शासन प्रशासन से साधु संत प्रार्थना समझ लीजिए या अनुरोध करते हैं कि अब जैसे हैं बाबा उनको यथावत स्थान पर रहना चाहिए। नहीं, अभी कोई बात नहीं है।
1: प्रशासन ने मंदिर की दीवारें तो हटा दी, लेकिन प्रतिमा जस की तस है, एक इंच भी नहीं हिली है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि ये सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और रील वायरल की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हमने अब तक प्रतिमा को हटाने के लिए बल की कोशिश नहीं की है।
6: प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भावनाएं, प्रतिमा की सुरक्षा और उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सर्वोपरि है। खड़े हनुमान जी से संबंधित विषय में प्रशासन सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की भावनाओं और आस्था का पूर्ण सम्मान करता है। सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं और को ध्यान में रखे बिना प्रशासन कोई भी निर्णय अथवा कदम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है।
1: दरअसल अगले सिंहस्थ महापर्व 2028 को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए उज्जैन में बड़े पैमाने पर विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत सड़क की जद में आ रहे इस मंदिर को प्रशासन टंकी चौक पर शिफ्ट करना चाहता है। प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने के लिए उज्जैन ही नहीं इंदौर से भी विशेष इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। प्रशासन इस मामले में पुरातत्व विभाग की सहायता ले रहा है और IIT इंदौर से स्कैनिंग करवा रहा है।
7: पूरा के पूरा मामला श्रद्धा और दर्शनार्थियों से जुड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चीज हो रही है उससे अब यहाँ देश भर के लोग आने लग गए हैं और एक इस चीज को भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट बना लिया गया है, क्योंकि जो भी महाकाल आ रहा है वो यहाँ पर जरूर आने लगा है।
1: हालांकि इस बीच हनुमान मंदिर की नई जगह को लेकर भी विवाद सामने आ गया है। मौजूदा स्थान पर हनुमान जी दक्षिणमुखी है, जबकि टंकी चौक पर जिस नए मंदिर का ढांचा तैयार किया जा रहा है वहां प्रतिमा की स्थापना होने पर उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। खड़े हनुमान जी का ये रूप सद विपरीत यानी सदैव सेवा और रक्षा की मुद्रा को दर्शाता है। माना जाता है कि स्थान पर स्थापित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विशेष विधि विधान और सिद्ध मंत्रों के साथ की गई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हनुमान जी की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। मंदिर से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ऐसे में अगर भगवान के स्थान या स्वरूप को लेकर कोई बदलाव होता है तो लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
8: चारों युग में जिनके प्रताप से उजारा हुआ है उसको अंधकार में धकेलने की कोशिश अभी तक प्रशासन की नाकाम हो चुकी है, सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तो अब हम अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि आप बाबा को पुनः यहीं पर रहने दें और कहीं नहीं ले जाएं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था का सवाल है उसका आदर करें।
9: ईश्वर की कृपा के बिना संसार नहीं चलता है। अगर हनुमान जी की इच्छा नहीं है कि उनको नहीं हटना है तो इस विषय में विचार करना चाहिए। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है, बाकी इच्छा नहीं है, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
10: खड़े मान का स्थान कोई आज का नहीं, वर्षों पुराना स्थान है और जब भगवान की इच्छा है कि यहाँ से नहीं हटे तो नहीं हटना चाहिए। जो कोई प्रकार की प्रशासन या शासन अगर इस प्रकार का प्रयास कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पूर्व में लोगों ने कहा है कि अभी हनुमान जी का स्थान हमारा या उज्जैन वालों का नहीं होते हुए सर विश्व की आस्था का केंद्र है और जहाँ आस्था होती है वहाँ सारी ताकत झुकती है। वो हनुमान जी जैसे बता अजर अमर है, तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान है जहाँ कल था, जहाँ आज है, कल भी वहीं रहे, ये हम सबकी प्रार्थना है शासन प्रशासन।
1: हनुमान मंदिर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे हनुमान जी का हठ योग करार दे रहा है। लेकिन इस बीच मंदिर के पास अचानक लंगूर भी पहुंचने लगे हैं।
11: उज्जैन के जिस खड़े हनुमान मंदिर को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है वहां अचानक से दोपहर को कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से लोगों के मन में हनुमान भगवान के प्रति आस्था और बढ़ा दी है। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के पास में अचानक से वानरों का एक झुंड आ गया है और ये इसने आसपास की जो तमाम इमारतें हैं जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया था वहाँ पे इस वक्त डेरा डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं जो काले लंगूर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल ठीक उसी खड़े हनुमान मंदिर के सामने की तस्वीर है जहाँ इस वक्त जो इमारतें चौड़ीकरण के लिए तोड़ी गई थी उस पे आकर के तमाम वानर यहाँ बैठ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, हैरानी इसलिए हो रही है कि ये कोई वन क्षेत्र नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यह उज्जैन शहर के बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई वन क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई चिड़ियाघर है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से वानर या लंगूर यहाँ आ पाए। लेकिन सामने आप तस्वीरों में देखिए भगवान हनुमान का वो मंदिर जो इस वक्त सुर्खियों में है और उसके ठीक सामने की इमारतों में ये वानर जो हैं ये आकर के बैठे हैं, बड़ी संख्या में आकर के बैठे हैं और लोग इसे कहीं ना कहीं जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या ये भगवान हनुमान का चमत्कार तो नहीं।
12: पूरा बाजार है यहाँ पर, ये हनुमान जी के भगत है सब, ये सब हनुमान जी के भगत है। ऊपर भी पूरी सेना बैठी है, उनकी पूरी सेना है।
13: अंदर तो पहली बार देख रहे हैं इधर।
11: अच्छा, आप यहीं रहते हो क्या?
13: हाँ, मैं उज्जैन से रहता हूँ और ये मतलब इतने सारे पहली बार, जबकि पेड़ भी नहीं आते।
1: शास्त्रों में विधान है कि जब किसी सिद्ध स्थान पर प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उसकी जड़ें केवल कंक्रीट से नहीं बल्कि उस भूमि के आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाती है। प्रशासन ने मंदिर का कंक्रीट का ढांचा भले ही हटा दिया हो लेकिन वर्षों की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों से सींच कर स्थापित की गई ये प्रतिमा आज भी अपने मूल स्थान पर वैसे ही विराजमान है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: महाकाल की नगरी उज्जैन में खड़े हनुमान जी को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी रास्ते में आने वाले खड़े हनुमान जी मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह अडिग है। ऐसे में क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है या फिर वैज्ञानिक तौर से इसकी कहानी कुछ और भी हो सकती है?
14: उज्जैन की सिद्ध धरा पर हर मंदिर, हर प्रतिमा और हर मार्ग का अपना एक विशिष्ट पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में सड़क के चौड़ीकरण के दौरान खड़े हनुमान मंदिर का ढांचा हटने के बाद भी प्रतिमा का अपने स्थान पर अडिग रहना केवल एक घटना नहीं, बल्कि स्थान के समृद्ध इतिहास और धार्मिक आस्था से जुड़ा गहरा विषय बन गया है। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, जहाँ श्रद्धालु इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं इस घटना के पीछे के इंजीनियरिंग पहलुओं को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं। सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी भारी संरचना की स्थिरता उसकी नींव और बेस ग्रिप पर निर्भर करती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि उज्जैन में स्थापित खड़े हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा जिस पत्थर या सामग्री से बनी है, उसका वजन और उसका निचला आधार बेहद गहरा और मजबूत है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का जमीन के अंदर बेस करीब 5 फीट गहराई तक है। मूर्ति की लंबाई करीब 8 फीट की बताई जा रही है। 170 साल पुराने मंदिर की ये मूर्ति भी करीब उतनी ही पुरानी बताई जा रही है। लिहाजा इस प्राचीन मंदिर की अहमियत काफी ज्यादा है और इस पर भक्तों का भरोसा उतना ही ज्यादा।
15: प्रशासन विस्थापन करना चाहता है, आपका क्या कहना है?
16: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम चाहते बाबा यही है, वर्षों 1000 वर्ष पुराने बाबा, और यहाँ के चमत्कार तो पूरी भारत में दुनिया में सबको पता है।
14: खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी के मुताबिक बजरंगबली की प्रतिमा इसलिए टस से मस नहीं हो रही है क्योंकि मंदिर की बनावट के साथ इसे इंटरलॉक किया गया है।
17: आस्था के सैलाब में यहाँ जो भक्ति मूर्तिमंत होकर के दिख रही है, तो इसमें कहीं संदेह या संशय की बात नहीं है, क्योंकि सप्तैते चिर जीवनः श्री हनुमान जी को अमर अजर अमर गुणनिधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक शोहु। श्री हनुमान जी महाराज तो आस्था के प्रतीक हैं। समाज समस्त जो सनातन धर्म की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसके कुलाधिपति।
14: जानकारों के मुताबिक जब किसी प्रतिमा को गहराई के साथ जमीन में स्थापित किया जाता है तो ऊपरी ढांचे को हटाने से उसकी मुख्य नींव पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी बीच इतिहासकार भी हनुमान जी की प्रतिमा को बेहद प्राचीन बता रहे हैं। अनुमान के मुताबिक हनुमान जी की प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया के दौरान उसके खंडित होने का डर है और आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाना जरा मुश्किल है। अभी निर्माण की मजबूती हो या फिर हनुमान जी का चमत्कार, उज्जैन की ये घटना आज हर किसी के लिए अध्ययन और कौतूहल का विषय बन गई है। कंक्रीट का ढांचा हटने के बाद भी ये प्रतिमा अपने मजबूत आधार के साथ उसी स्थान पर खड़ी है। उज्जैन से संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: भारत के कई प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ मंदिर और निर्माण ऐसे भी हैं जिनसे जुड़े रहस्य आज भी लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मंदिर और विनिर्माण के बारे में।

0: का इतिहास गौरवशाली रहा है। मठ, मंदिर, सिद्ध पीठ, ज्योतिर्लिंग और गुफाएं सब अपने में एक चमत्कारिक कहानी संजोए हुए है। ऐसे ही चमत्कारों से रूबरू कराने की कोशिश में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की ज्वाला देवी मंदिर की। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। इस मंदिर में अनंत काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। देवी के शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर ज्वाला निकलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह है गोरख डिब्बी, जो कि एक जल कुंड है। इस कुंड में गर्म खौलता हुआ पानी है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती और ईंधन के प्राकृतिक रूप से जल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के ज्वाला के बीच में है, इसे महाकाली कहा जाता है। ये ज्वालाएं अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवियों का प्रतीक है। ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना करते थे। वो माता के परम भक्तों में शामिल थे। एक बार गोरखनाथ को काफी तेज भूख लगी और उन्होंने माता से बोला कि आप आग जलाकर पानी गर्म करो, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता ने गोरखनाथ के कहने पर आग जला दी। काफी समय बीत जाने के बाद भी गोरखनाथ नहीं लौटे, इसलिए कहा जाता है कि तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग आने पर ही गोरखनाथ मंदिर लौटेंगे, तब तक ये ज्वाला इसी तरह जलती रहेगी। कहा तो ये भी जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने एक बार लोहे के ढक्कन से आग को ढककर और पानी की व्यवस्था करके उसे बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने सभी प्रयासों में बुरी तरह असफल हुआ। तब अकबर ने मंदिर में सोने का एक छाता भेंट किया। हालांकि देवी की शक्ति के प्रति उनके संदेह के कारण सोना एक अज्ञात धातु में बदल गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद अकबर ने मन में देवी के प्रति आस्था और मजबूत हो गई। केदारनाथ मंदिर भी एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है, ये हमेशा से जैसा का तैसा खड़ा है। कहते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी, उसके बाद भी मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ। इस जल प्रलय में जब पानी और मलबा सब कुछ बहा कर ले जा रहा था, तब मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान जिसे भीमशिला कहा जाता है आकर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मुख्य मंदिर सुरक्षित बच गया। यही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार लिटिल आइस एज लगभग 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान ये मंदिर करीब 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। इसके बावजूद इसकी मजबूत संरचना और पत्थरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। केदारनाथ मंदिर करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सीमेंट या कंक्रीट के विशाल ग्रेनाइट और एशलर पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया है। यही वजह है कि ये भारी भूकंप और तूफानों को झेलने में सक्षम है। कहा तो ये भी जाता है कि शीतकाल में 6 महीने के लिए जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं और भगवान को उखीमठ शिफ्ट किया जाता है, तब अंदर जलने वाला अखंड दीपक लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहता है और कपाट खुलने पर वैसा ही जलता हुआ मिलता है। पूरी दुनिया में एकमात्र राम सेतु का स्थान ऐसा है जहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं। राम सेतु भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में फैली चूना पत्थर के टीलों और पत्थरों की एक श्रृंखला है, जिसे आस्था और विज्ञान दोनों के बीच एक बड़ा रहस्य माना जाता है। वैज्ञानिक भी राम सेतु के पत्थरों में चमत्कार की बात मानते हैं। राम सेतु की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया था जिन पर राम नाम लिखा था और वे पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम और आसपास के कुछ मंदिरों में आज भी ऐसे पत्थर रखे हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक राम सेतु को एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे बनाने में प्यूमाइस स्टोन का उपयोग किया गया होगा। ये ऐसे पत्थर हैं जो ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। इनमें कई सारे छिद्र होने के कारण ये स्पंजी या खांकरा रूप ले लेते हैं और पानी में डूबते नहीं है। इस तरह के पत्थरों का वजन सामान्य से कम होता है। फिर भी इस पुल के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बारे में जानने के लिए लोगों में आज भी जिज्ञासा है। ओडिशा के नगरपुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर भी कई चमत्कारी बातें होती हैं। इस मंदिर को प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके अलावा इसके गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी इन रहस्यों का खुलासा नहीं हो सका है। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। ऐसे ही कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने की परंपरा है। इसकी वैज्ञानिक जांच भी हुई कि आखिर ये मदिरा कहाँ जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। मदिरा पिलाने की प्रथा की वजह से भक्त यहाँ भगवान को मदिरा चढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: गुजरात के नवसारी, भरूच, सूरत सहित कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों में उत्साह। झांसी में ढोल नगाड़ों के साथ माणिक चौक के राजा का भव्य स्वागत, शानदार लाइटिंग के बीच डीजे की धुन पर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे, शहर में दिखे आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बैठन, कहा ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं, समाधान का इकोसिस्टम। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय एआई मंथन 2.2 का आयोजन, मॉडर्न एजुकेशन स्मार्ट गवर्नेंस के साथ कृषि और चिकित्सा में एआई के इस्तेमाल पर मंथन। नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए पंजाब की पहली टीम तैयार, अमृतसर की नहर में खिलाड़ी कर रहे हैं प्रैक्टिस, 17 सितंबर को उत्तराखंड के देवप्रयाग में होगा टूर्नामेंट।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
9: अयोध्या में 7 नवंबर को भव्य दीपोत्सव की तैयारियां तेज, सरयू घाटों की सजावट और रोशनी बनेगी खास आकर्षण। दीपोत्सव पर सरयू तट का बदलेगा भव्य स्वरूप, पुल से लक्ष्मण घाट तक 1 किलोमीटर तक का सजेगा क्षेत्र। हजारों दीपों से जगमगाएगा अयोध्या का सरयू घाट, महाआरती में दिखेगा अवध की धार्मिक परंपरा का रंग। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजेंगे सरयू घाट, शाम ढलते ही अलौकिक नजर आएगा रामनगरी का तट। दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां। घाटों का रेनोवेशन पूरा होते ही दिखेगा भव्य स्वरूप। संभल में गणेश चतुर्थी और गणेश चौथे मेले का शानदार आगाज। पांच विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुभारंभ। गणेश चौथा मेला पिछले 66 सालों से किया जा रहा है आयोजित। सभी वर्गों के लिए बढ़ चढ़ कर लेते हैं साल। 2 अक्टूबर तक चलेगा गणेश चौथ मेला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। हैदराबाद में विकसित भारत 2047 थीम पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा। गणेश चतुर्थी समारोह की 50वीं वर्षगांठ को लेकर भव्य समारोह। गणेश जी की प्रतिमा को दिया जा रहा है विशेष रोबोटिक आकार। आधुनिक और तकनीक के रूप में उन्नत भारत का बनी प्रतीक। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा झांसी शहर। गजानन के स्वागत में 20 से 25 हजार श्रद्धालु। ढोल लगाड़े बैंड और डीजे के धुन पर झूमे युवा। झांसी की सड़कों पर दिखे मुंबई जैसी गणपति की झलक। झांसी शहर के 12 से 15 इलाकों में गणपति प्रतिमाओं का आगमन। मानिक चौक समेत कई जगहों पर हुआ भव्य स्वागत। माणिक चौक के राजा गजानन का आगमन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। सागर से लाई गई विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़। मुरादाबाद में छात्रों ने बनाई गजानन की इको फ्रेंडली प्रतिमा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। महाराष्ट्र का कोलम बापा के स्वागत के लिए 2 रंग। कहीं भजन कीर्तन की धुन तो कहीं पर ढोल ताश और डीजे पर झूमे भक्त।

0: राव दीपमाला से जगमगाया श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर की अद्भुत और अलौकिक छटा। श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी ने बांधा समा। दीपमाला के बाद भव्य आतिशबाजी। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से दीपमाला रात में स्वर्ण मंदिर का अद्भुत नजारा। रोशनी दीपमाला और आतिशबाजी ने बढ़ाई हर मंदिर साहिब की खूबसूरती। रामबन से हिमाचल के मणि महेश झील के लिए रवाना हुई छड़ी मुबारक। रघुनाथ मंदिर से यात्रा का शुभारंभ। मणि महेश छड़ी मुबारक यात्रा में बड़ा आस्था का चला। बाबा देवीदास महाराज की अगुवाई में शुरू हुई यात्रा। गणेशोत्सव से पहले कुंकड़ के लिए मुफ्त बस सेवा। बीजेपी नेता नारायण राणे ने श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी बसों की दिखाई हरी झंडी। कुंकड़ जाने वाले यात्रियों को मुफ्त बस सुविधा मिलेगी। मुंबई से कुंकड़ के लिए बस सेवा का शुभारंभ हुआ। दिल्ली में ब्रिक्स समिट पहुंचे मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के सुरों ने जीत लिया सभी का दिल। लोकप्रिय हिंदी सॉन्ग ख्वाब हो तुम या हकीकत गाया। कानपुर विश्वविद्यालय में AI 2.2 मंथन को लेकर सम्मेलन। स्मार्टफोन से कैंसर की पहचान से लेकर TB उन्मूलन तक चर्चा। प्रयागराज में ठीक हुआ राम वन गमन मार्ग। कुछ दिन पहले आई थी दरार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चला जाएगा सेवा संकल्प अभियान। 19 से लेकर वडनगर तक निकाली गई बाइक यात्रा। दिल्ली में विधि विधान से श्री रघुनंदन लीला समिति का भूमि पूजन हुआ। मुरादाबाद के सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ। भारत श्रीलंका के बीच आज T20 महिला एशिया कप का फिनाले। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। भारत के पास 8वां एशिया कप खिताब जीतने का मौका है। श्रीलंका लगातार दूसरी बार चैंपियंस बनने के इरादे से उतरेगा। श्रीलंका से 2024 की हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। फिनाले में भारत की बल्लेबाजी पर रहेगी नजरें। बड़े मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद। टूर्नामेंट में अजय रहा भारत। टीम इंडिया ने अब तक अपने सभी 4 मैचेस जीते हैं। फिनाले को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह। भारत अफगानिस्तान के बीच आज पहला T20 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। श्रेयस अय्यर संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी 3 मैचों की T20 सीरीज। टीम इंडिया सीरीज में जीत के साथ करना चाहेगी आगाज। भारत और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक टक्कर की उम्मीद। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी निगाहें। 15 सितंबर को दूसरा और 17 सितंबर को तीसरा मैच। अफगान स्पिनर्स का सामना करने को तैयार है भारत। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर सितारों का जलवा। क्लोजिंग सेरेमनी और अवार्ड से पहले देखा ग्लैमर। रेड कारपेट पर दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और कलाकार आए नजर। वेनिस फिल्म फेस्टिवल की जूरी प्रेसिडेंट मैगी ने कराया फोटो सेशन। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वुमन अननोन का जलवा। पोस्ट वॉर ड्रामा विमेन अननोन की डबल जीत। विमेन अननोन बनी वेनिस की बेस्ट फिल्म। कोरियन फिल्म मेकर ली चांग डोंग ने हासिल किया दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। इटली के मेसानो में सैन मैरिनो जीपी में मार्क ऑफ मार्केज का जलवा ख्याल। मार्केज ने बेजेकी को पछाड़कर जीत लिया खिताब। सैन मैरिनो स्प्रिंट में मार्केज पहले पायदान पर। मार्क मार्केज की शानदार शुरुआत बनी जीत की वजह। टर्न वन पर बढ़त बनाकर मार्केज ने रेस पर कब्जा जमाया। जॉर्ज मार्टिन तीसरे पायदान पर आए। स्प्रिंट में पोडियम हासिल कर चुके मार्टिन ने चैंपियनशिप लीड बरकरार रखी। डी जियान टोनियो ने चौथा स्थान हासिल किया जबकि एलेक्स सेन ने पांचवा पायदान। पहली श्री में ओलिवर सोलबर्ग का दबदबा कायम। सोलबर्ग ने 10 सेकंड्स में बढ़त बचाई। रैली चिली में एल्फिन एवांस दूसरे पायदान पर रहे। एड्रियन का शानदार रहा प्रदर्शन। हुंडे ड्राइवर का सुबह से पहले स्टेज में हुआ बड़ा हादसा। थियरी न्यूविल की कार पलटी। रैली चिली में फिर देखा खतरनाक ट्रैक। फूड ड्राइवर जॉन भी दुर्घटना का हुए शिकार। चिली की सड़कों पर जारी रोमांचक जंग। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की कड़ी हुई परीक्षा। एनरिके मास ने स्पेन में साइकिल रेस वुएल्टा में जीत लगभग हुई पक्की। बहुत कड़े मुकाबले में स्लोवेनियाई राइडर रोजिल्क दूसरे पायदान पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में अमेरिका का दबदबा कायम। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में अमेरिकी एथलीट्स ने जीता गोल्ड। अमेरिकी महिला एथलीट्स मैसिला बनी संयुक्त चैंपियन। महिला वर्ग में जूलियन को सिल्वर और शाकारी को मिला ब्रॉन्ज। डकार पहुंची यूथ ओलंपिक की मशाल। सेनेगल की राजधानी ओलंपिक फ्लिम में हुआ भव्य स्वागत। सेनेगल के राष्ट्रपति ने ओलंपिक मशाल का किया भव्य स्वागत। चीन के इनर मंगोलिया में डेजर्ट फूलों का रोमांच। रेगिस्तान में दौड़े ऊंट। ऊंटों पर सवार खिलाड़ियों का जोरदार मुकाबला। चीन में डेजर्ट फूलों को मिला सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। डेजर्ट फूलों के साथ हुई तीरंदाजी। चरवाहों ने पारंपरिक प्रतियोगिता में लिया भाग। वॉशिंगटन के नेशनल जू में पांडा किंग बाओ के चौथे जन्मदिन पर मनाया शानदार जश्न। पांडा ने चट किया बर्थडे केक। जन्मदिन पर गुब्बारों से खेली पांडा किंग बाओ। चीन के गुइझोउ में बना नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1835 लोगों ने एक साथ किया कॉकटेल शेक। चीन में शुरू हुई रोबोट बनाने वाली रोबोट फैक्ट्री ग्वानक्षी में रोबोट अब खुद बनाएंगे रोबोट्स। चालीस हजार साल पुराने घोड़े को मिला नया रूप। चीन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया 3D मॉडल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: शानदार खबर आपको बता दें। देखिए जूनियर महिला हॉकी एशिया कप के फिनाले में भारत ने दमदार खेल दिखाते हुए चीन को हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। भारत की ओर से मैच के 17वें मिनट में सानिका चंद्रकांत माने ने गोल दागा और ये कप जो है हिंदुस्तान के हाथ में आ गया। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बड़ी खबर, भारतीय टीम लगातार तीसरी बार चैंपियन बन गई है। फिनाले में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हरा दिया और इसी के साथ हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए इनामी राशि की भी घोषणा कर दी है। शानदार खबर आपको बता रहे हैं। देखिए महिला एशिया कप में लगातार तीसरी बार चैंपियन बन गई है भारतीय जूनियर टीम। फिनाले में चीन को 1-0 से हार के बाद जैसे ही ये मैच हुआ हिंदुस्तान के सिर ताज सज गया और भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: लागत 2 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़ के पार। संयोग या नीब करौरी बाबा का चमत्कार। अनुपम शाहकार के शिल्पकारों की दास्तान। हनुमान अंश के चमत्कार की अनसुनी कहानियां। बंदे में है दम, शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: भारत ने लगातार तीसरी बार जीता जूनियर महिला हॉकी एशिया कप खिताब, फिनाले में चीन को 1-0 से हराया। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बैटन, कहा ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं समाधान का इकोसिस्टम। गुजरात के नवसारी, भरूच, सूरत सहित कई इलाकों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट। जोरहाट के लोगों को मिली नई फ्लाईओवर की सौगात, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेकर खुश हुए। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में रघुनंदन लीला समिति ने भूमि पूजन के साथ शुरू की रामलीला की तैयारियां, इस साल एआई तकनीक से जीवंत होंगे रामलीला के दृश्य। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेशोत्सव की भव्य तैयारियां, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खो मर रही काय जिद कर रही काय खो मर रही ऐसे वर खेलाने काय

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीम करौली बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है, ये हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई। और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाक्य के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो ना समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली काउ होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाले इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय

0: किरदार में अपनी सहज सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा
1: क्या कहे उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनव सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनव सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनव सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनव सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनव सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया तो बस उनकी कृपा से।
1: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनव सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनव सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनव सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
3: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर की, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आती जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
4: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप, कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
3: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था। इसको मैंने वही तुलसी घाट से मैंने चंदन लिया, बहुत ही फेमस वो चौपाई है, चंदन गिठे हैं जिसे, और
4: तिलक करे रघुवीर,
3: इसका वहीं को उसी से चंदन किया।
1: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनव सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी। कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूरता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, पर शोभिनव सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा

0: की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
2: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
3: जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती ही पार्वती, समझाने पहुंचे सप्तऋषि सब।

0: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबा पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: मिलान।
1: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
2: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
1: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: दो करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे मेहदम में आज आपने तीन शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भारत ने लगातार तीसरी बार जीता जूनियर महिला हॉकी एशिया कप खिताब, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बैटन, कहा ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं, समाधान का इकोसिस्टम भी। जोरहाट के लोगों को मिली नए फ्लाईओवर की सौगात, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेकर खुश हुए लोग। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में रघुनंदन लीला समिति ने भूमि पूजन के साथ शुरू की रामलीला की तैयारियां, इस साल एआई तकनीक से जीवंत होंगे रामलीला के दृश्य। महाराष्ट्र सहित देश भर में गणेश उत्सव की भव्य तैयारियां, मुंबई में अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, विघ्नहर्ता के दर्शन पूजन के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
2: जूनियर महिला हॉकी एशिया कप से भारत के लिए शानदार खबर, लगातार तीसरी बार जीता खिताब। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने फिनाले में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर, सानिका चंद्रकांत ने 7वें मिनट में किया मैच का एकमात्र गोल। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम का FIH जूनियर विश्व कप में खेलने का ये शानदार मौका, शानदार जीत के साथ क्वालिफाई किया। हॉकी इंडिया ने की विजेता टीम के लिए 3-3 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड की घोषणा। फाइनल मैच तक बहुत दबदबे वाली रही भारत की यात्रा, दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर भारत ने किया था जीत का आगाज। अयोध्या में 7 नवंबर को भव्य दीपोत्सव तक की तैयारियां तेज, सरयू घाटों पर सजावट का काम तेज। दीपोत्सव पर सरयू तट पर बदलेगा भव्य स्वरूप, पुल से लक्ष्मण घाट तक किलोमीटर तक का सजेगा क्षेत्र, हजारों दीपों से जगमगाएगा अयोध्या का सरयू तट, रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजेंगे सरयू घाट, शाम ढलते ही अलौकिक दृश्य। दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां, घाटों का रेनोवेशन पूरी तरीके से देखेगा भव्य स्वरूप। संभल में गणेश चतुर्थी और गणेश चौथ मेले का शानदार आगाज, 5 विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुभारंभ। गणेश चौथ मेला पिछले 66 सालों से किया जा रहा है आयोजित, सभी वर्गों के लिए लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। 2 अक्टूबर तक चलेगा गणेश चौथ मेला, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कड़े इंतजाम। हैदराबाद में विकसित भारत 2047 थीम पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा, गणेश चतुर्थी समारोह की 50वीं वर्षगांठ को लेकर भव्य समापन। गणेश जी की प्रतिमा को दिया गया एक विशेष रोबोटिक आकार, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत भारत का प्रतीक। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज, झांसी शहर में गजानन के स्वागत में 20-25 हजार श्रद्धालु उमड़े। ढोलनगाड़ी बैंड और डीजे की धुन पर झूमे युवा, झांसी की सड़कों पर दिखी मुंबई जैसी गणपति झलक। झांसी शहर के 12 से 15 इलाकों में गणपति प्रतिमाओं का आगमन, मानिक चौक समेत कई जगहों पर हुआ भव्य स्वागत। माणिक चौक के राजा गजानन का आगमन बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, सागर से लाई गई विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। मुरादाबाद में छात्रों ने बनाई गजानन की इको फ्रेंडली प्रतिमा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। महाराष्ट्र के कोला में बाबा के स्वागत करने के लिए 2 रंग का, कहीं पर भजन कीर्तन की धुन तो कहीं पर ढोल ताश और डीजे की झूम। 21 फीट ऊंचे लालबाग चौराहे राजा की भव्य शोभा यात्रा, कोला में सादगी और भक्ति भाव के साथ निकली बप्पा की यात्रा, भजन कीर्तन से हुआ बप्पा का भव्य स्वागत, लालबाग चौराहे राजा की शोभा यात्रा में देखी वारकरी परंपरा की झलक। भक्तों ने खुद थामी रथ की रस्सियां, फूलों की बारिश और आतिशबाजी से बप्पा का भव्य स्वागत। 21 साल से अकोला में विराजमान हो रहे लालबाग चौराजा, मुंबई की तर्ज पर साल स्थापित होती है 21 फीट की भव्य प्रतिमा। अकोला का मानाचा बाराभाई गणपति बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, करीब 250 साल पुरानी है परंपरा। बारह समाजों की साझी आस्था का प्रतीक बना है बाराभाई गणपति, पेशवा काल में 12 समाजों ने मिलकर की थी स्थापना। पीढ़ियां बदली लेकिन बप्पा की सेवा नहीं बदली, दिंडी और ढोल पथक से भव्य स्वागत। बाराभाई गणपति के दरबार में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, भक्त पूजा पाठ करके हाथ जोड़कर बप्पा से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। बप्पा के चरणों में सिर झुकाकर धन्य महसूस करते हैं भक्त, बाराभाई गणपति के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। पठानकोट में गणपति बप्पा की तैयारियां तेज, राजस्थान में पहुंचे मूर्तिकार गणेश जी की प्रतिमाओं को दे रहे हैं अंतिम रूप। इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियों पर जोर और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केमिकल फ्री मूर्तियां तैयार कर रहे हैं कारीगर। पठानकोट में पिछले 5 महीनों से गणेश प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हुए मूर्तिकार, पंजाब से हिमाचल तक गणेश प्रतिमाओं की डिमांड। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की प्रतिमाएं, मूर्ति कलाकार दिन रात प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की बड़ी डिमांड, बाजार में गणपति मूर्तियों की खरीदने के लिए लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में भी गणेश चतुर्थी को लेकर मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं की बड़ी मांग, पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। आंध्र प्रदेश में पौधों से बना अनोखे गणपति तैयार किए जा रहे हैं, 2 साल की मेहनत से किसान ने खड़ा किया 9 फीट लंबा गणेश प्रतिमा का पुतला।

अर्रा पौधों को दिया गया गणेश का आकार, किसान ने 2 साल की मेहनत से तैयार किया। नौ फीट ऊंचे लिविंग गणेश को देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग। किसान धनराजू डिप्टी सीएम पवन कल्याण को भेंट करना चाहते हैं वृक्ष गणपति। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कॉलेज छात्रों की अनोखी पहल, बीजों और फूल पत्तियों से मिलाकर बनाया गजानन की प्रतिमाओं को। लद्दाख मैराथन 2026 का भव्य आगाज, एलजी मनोज कुमार सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। लद्दाख की ऊंचाइयों पर दौड़े 5,000 से ज्यादा धावा, 3 कैटेगरी में हुआ मुकाबला। दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन में दिखा जोश, देश विदेश के धावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनमोहक पर्वतीय रास्तों, प्राचीन मठों और झील के किनारे से गुजरते हुए धावकों को दिखता है शानदार नजारा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चोरी हुए मोबाइलों के मालिकों से जुड़ी हुई अच्छी खबर, मालिक को लौटाए गए मोबाइल, पुलिस ने 40 लाख रुपए की कीमत के 200 मोबाइल लौटाए। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश जारी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास पानी भरा। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू, डांग में कई इलाकों में झमाझम बारिश। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के अभी भी ऊपर है, एसडीआरएफ की टीम ने 300 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बढ़ा गागर नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ की आशंका।

जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ सुहाना, डल झील में पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। मलयालम महीने चिंगम का अंतिम रविवार विवाह के लिए माना जाता है बहुत शुभ। केरलम के गुरुवायूर मंदिर में चिंगम पर 400 से ज्यादा जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुंबई गणेश ज्ञानार्थी प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शिवम पुराण का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने शिरकत की। अमृतसर में तैयार हो रही है पंजाब की पहली रिवर राफ्टिंग टीम, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर की भव्य सजावट, अमृतसर में दुल्हन की तरह सजा श्री हरमंदिर साहिब। प्रकाश पर्व पर दीपमाला से जगमाया श्री दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर में अद्भुत छटा। श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी से बंधा समा, दीपमाला के बाद आतिशबाजी। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से दीपमाला, रात में स्वर्ण मंदिर का अद्भुत नजारा। रोशनी दीपमाला और आतिशबाजी ने बढ़ाई श्री मंदिर साहिब की रौनक। कानपुर विश्वविद्यालय में AI 2.0 मंथन को लेकर सम्मेलन, स्मार्टफोन से कैंसर की पहचान से लेकर टीबी उन्मूलन तक की चर्चा हुई। प्रयागराज में ठुकुआ राम वन गमन मार्ग कुछ दिन पहले आई थी दरार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान, 19 से लेकर फटनगर तक निकाली गई बाइक रैली। दिल्ली में विधि विधान के साथ श्री रघुनंदन लीला समिति का भूमि पूजन हुआ, साल 11 अक्टूबर को होगा रामलीला का भव्य मंचन। मुरादाबाद के सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ। भारत अफगानिस्तान के बीच आज पहला T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। श्रेयस अय्यर संभालेंगे टीम इंडिया की कमान, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगी 3 मैचों की श्रृंखला। टीम इंडिया सीरीज में जीत के साथ करना चाहेगी आगाज, भारत और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक टक्कर की उम्मीद। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें, 15 सितंबर दूसरा, 17 सितंबर को तीसरा, 20 सितंबर को खेला जाएगा मैच। अफगान स्पिनर्स का सामना करने के लिए तैयार

भारत अफगानिस्तान को हराकर दबदबा कायम करना चाहेगी भारत। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर सितारों का जलवा, क्लोजिंग सेरेमनी और अवार्ड से पहले देखा ग्लैमर। रेड कारपेट पर दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और कलाकार नजर आए। वेनिस फिल्म फेस्टिवल की जूरी प्रेसिडेंट मैगी भी नजर आई। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में विमेन अननोन का जलवा, डैनिश माय अल्लाह टूकी की फिल्म ने जीता प्रतिष्ठित गोल्डन लायन। पोस्ट वॉर ड्रामा विमेन अननोन की डबल जीत, विमेन अननोन बनी वेनिस की बेस्ट फिल्म। कोरियन फिल्म मेकर ली चांग डोंग ने हासिल किया दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, उनको मिला सिल्वर लायन। इटली के मिसानो में सैन मेरिनो जीपी में मार्क मार्केस का जलवा कायम। मार्केस ने बेज़ेकी को पछाड़कर जीत लिया खिताब। सैन मेरिनो स्प्रिंट में मार्केस पहले पायदान पर रहे। मार्क मार्केस की शानदार शुरुआत बनी जीत की वजह। टर्न वन पर बढ़त बनाकर मार्केस ने रेस पर कब्जा जमाया। जॉर्ज मार्टिन तीसरे पायदान पर रहे और स्प्रिंट में पोडियम हासिल करके मार्टिन ने जीता खिताब। डी जियान एंटोनियो ने चौथा स्थान हासिल किया जबकि एलेक्स सेन और मेरिनो ने पांचवें पायदान हासिल किया। रैली चिली में ओलिवर सोलबर्ग का दबदबा कायम है। सोलबर्ग ने 10 सेकंड्स की बढ़त बचाई। रैली चिली में एल्फिन एवांस दूसरे पायदान पर रहे। हंडे ड्राइवर का सुबह के पहले स्टेज में हुआ बड़ा हादसा, थीरी न्यूवेयर की कार पलट गई। रैली चिली में फिर से देखा खतरनाक ट्रैक, फोर्ड ड्राइवर जॉन भी दुर्घटनाग्रस्त हुए। चिली की सड़कों पर जारी रोमांच की जंग, मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स की कड़ी मेहनत। हेनरिक मास ने स्पेन में साइकिल रेस वुएल्टा में जीत लगभग पक्की की। बहुत कड़े मुकाबले में स्लोवेनियाई राइडर रोजिल दूसरे पायदान पर रहे जबकि ऑस्ट्रिया के सेलेक्स रहे तीसरे पायदान पर। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में 100 मीटर की रेस में अमेरिका का दबदबा कायम, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में जीता गोल्ड। अमेरिकी महिला एथलीट्स मेलिसा जेफ्रन बनी संयुक्त चैंपियन जबकि पुरुष वर्ग में अमेरिकी स्टार कैनी ने जीता। महिला वर्ग में जूलियन अल्फ्रेड को सिल्वर और शिकारी को मिला ब्रॉन्ज। डकार पहुंची यूथ ओलंपिक की मशाल, सेनेगल की राजधानी में ओलंपिक का फ्लेम का हुआ भव्य स्वागत। सेनेगल के राष्ट्रपति ने किया ओलंपिक का मशाल का स्वागत, संगीत और नृत्य का शानदार परफॉर्मेंस। चीन के इनर मंगोलिया में डेजर्ट पोलो का रोमांच, रेगिस्तान में दौड़े ऊंट, खेला गया पोलो। ऊंटों पर सवार खिलाड़ियों का जोरदार मुकाबला, चीन में डेजर्ट पोलो को मिला सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। डेजर्ट पोलो के साथ हुई तीरंदाजी, चरवाहों ने पारंपरिक प्रतियोगिता में लिया भाग। वॉशिंगटन के नेशनल जू में पांडा किंग बाओ के चौथे जन्मदिन पर बना जश्न, पांडा के लिए फल और सब्जियां बनी। पांडा ने चट कर दिया बोर्ड, देखे का जन्मदिन पर गुब्बारों से खेली गई पांडा किंग बाओ।
چین کے گوئنگ جو میں بنا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ، 1835 لوگوں نے ایک ساتھ کاکٹیل کو شیک کیا۔ چین میں شروع ہوئی روبوٹ بنانے والی روبوٹ فیکٹری، گوانگشی میں روبوٹ اب خود بنائیں گے روبوٹس۔ چالیس ہزار سال پرانے گھوڑے کو ملا نیا روپ، چین امریکہ کے ویگیانکوں نے بنایا 3D ماڈل۔

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: देखिए गणेशोत्सव का शुभारंभ होने में अभी ज्यादा वक्त नहीं है, शहर शहर इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। तो उसी सिलसिले में अब आपको दिखाते हैं खबर अकोला की। अकोला में बप्पा के स्वागत के दो रंग नजर आए, कहीं भजन कीर्तन की धुन तो कहीं पर ढोल ताशे और डीजे पर जमकर झूमे भक्त। गणपति स्थापना से कुछ घंटे पहले अकोला में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई, तो भक्तों में जबरदस्त उत्साह रहा।
4: नाचते गाते और भक्ति में झूमते हुए बप्पा का स्वागत, कोई डमरू बजा रहा है, शंखनाद कर रहा है, तो तमाम लोग मंजीरे बजाते हुए और भजन गाते हुए बप्पा के आगमन पर खुशियां व्यक्त कर रहे हैं।

0: ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अकोला की। यहाँ पर मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के दर्ज पर पिछले 21 साल से अकोला में विराजमान होने वाले 21 फीट ऊंचे लाल बागचा राजा की शोभा यात्रा शानदार तरीके से निकाली गई और भक्तों का उल्लास चरम पर नजर आया। इस दौरान महाराष्ट्र की वारकारी धार्मिक परंपरा के भजन कीर्तन की धुन सुनाई देती रही।
1: अकोला में जो है अकोला का लाल बाग का राजा जो है इसकी एंट्री हुई। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ सादगी के साथ जो है यहाँ पर लाल बाग के राजा की जो है सवारी बड़े जल्लोष के साथ और धूम के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। अब बाप्पा आने के बाद में जो है, क्योंकि बाप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, विघ्न जो सबसे बड़ा विघ्न था बारिश नहीं थी, वो कल से जो है हमारे बारिश जो है वो शुरू हुई है।
0: अकोला के लाल बागचा राजा पीताम्बर धारी हैं। उनका एक हाथ और दोनों पांव चांदी के हैं। प्रतिमा का श्रृंगार और सजावट देखते ही बनते हैं। लाल बागचा राजा की सवारी को भक्त खुद अपने हाथों से खींचते हुए लाते नजर आए। भक्तों ने खुद रथ की रस्सियां थामी और पूरे भक्ति भाव के साथ बप्पा के रथ को आगे बढ़ाया। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया का एक ही जय घोष गूंजता रहा।
1: पारंपरिक आगमन सोहरा है और ये 23 फुट की लाल बाग के राजा की मूर्ति स्थापना होती है और लालबाग अकोला में आने के 20 साल हो चुके हैं।
0: वहीं दूसरी तरफ अकोला के ही कल्याण गणेश उत्सव मंडल की भी शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकली। इस दौरान भक्त ढोल ताशे और डीजे की धुन पर जमकर नाचते झूमते नजर आए। बच्चे हों, युवा हों या महिलाएं या बुजुर्ग, हर कोई बप्पा के आगमन की खुशी में झूमता दिखा।
2: उत्साह तो बहुत है, जैसे सब है, सबके चेहरे पे खुशी है। आप देख रहे हो कल्याण गणेश उत्सव मंडल है, सब बाप्पा को एकदम धूमधाम से लेके आ रहे, बारिश भी लेके आए बाप्पा साथ में। काफी आनंद की बात है, बड़ा संकट था जो बाप्पा अपने साथ हरने की बात कर रहे हैं।
1: अगले 10 दिन कितनी खुशी है, कितना जल्लोष होगा?
2: अगले 10 दिन तो ऐसी खुशी है जैसे ये 10 दिन खत्म ही ना हो, काफी आनंद है।
0: अकोला में गणपति स्थापना से कुछ घंटे पहले निकली गणपति की इन शोभा यात्रा ने भक्ति के दो खूबसूरत रंग दिखाए। कहीं सादगी में श्रद्धा तो कहीं संगीत और नृत्य के साथ जश्न का माहौल, लेकिन मंजिल एक ही, सब गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज के बीच पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: भारत ने लगातार तीसरी बार जीता जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी बैटन, कहा ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं समाधान का इकोसिस्टम। पश्चिम बंगाल में देवदूत बने बीएसएफ के जवान, 10 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाया, रेस्क्यू किए गए लोगों में एक नवजात और दो बच्चे भी शामिल। जोरहाट के लोगों को मिली नए फ्लाईओवर की सौगात, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मुख्यमंत्री के साथ ली लोगों ने सेल्फी। देशभर में गणेश उत्सव की जबरदस्त तैयारियां, कोला में सजे बाजार, बाल गणपति से लेकर सेल्फी और माखन चोर तक के कई रूपों ने जीता दिल, इंदौर में 200 साल पुरानी विरासत में सजे बप्पा। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में रघुनंदन लीला समिति ने भूमि पूजन के साथ शुरू की रामलीला की तैयारियां, साल एआई तकनीक से जीवंत होंगे रामलीला के दृश्य।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति की। घर घर में विनायक विराजेंगे। मुंबई सहित महाराष्ट्र और देश के भी तमाम शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाल सज चुके हैं। आम लोग भी अपने घरों में गणपति को लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए भरपूर उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाई जा रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं हम कि 10 दिनों के उत्सव के दौरान गणपति को किस तरह से दिव्य भोग लगाने की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है, कितनी रौनक चारों ओर इस उत्सव के सिलसिले में देखने को मिल रही है। तो वहीं अपने स्पेशल शो में हम आपको विघ्नहर्ता सुखकर्ता मंगल मूर्ति की महिमा भी बताएंगे, और बताएंगे कि आखिरकार वो क्यों प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनकी पूजा क्यों की जाती है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में है, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उससे अलौकिक मायने क्या है, और क्या वो हमारे जीवन से किस प्रकार से गहरे जुड़े हुए हैं, देखिए।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी मां पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार, कर्तव्य, सरलता, ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है, यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को ये संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए वो स्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी बिनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूल काय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती हैं? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया, इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी है, और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा है, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व तो आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम है शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी का आह्वान किए बगैर सनातन का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि चाहे राम कृष्ण हो या जगत जननी माँ जगदम्बा, सबकी पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान क्यों है? गणपति बप्पा की पौराणिक कथाओं के माध्यम से आप ये बात शायद जानते भी हो, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसका बेहद ही गूढ़ और अलौकिक रहस्य। दरअसल गणपति के प्रथम पूज्य होने का हमारे शरीर के भीतर गुप्त रूप से मौजूद चक्रों का बहुत अद्भुत रिश्ता है। गणपति का स्थान हमारे मूलाधार चक्र में भी माना जाता है और मूलाधार को जागृत किए बगैर मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है।

0: मौजूदा युग में हम भगवान गणेश के लौकिक स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। अपने मौजूदा स्वरूप में गणपति बप्पा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धि प्रदायक हैं और शुभ और लाभ के अधिष्ठाता हैं। पर गणेश का पारलौकिक स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। शास्त्र कहते हैं कि गणपति की पूजा से हम ज्ञानवान होते हैं, लेकिन योग शास्त्र के मुताबिक गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे स्थूल शरीर में 7 चक्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, जिनका स्थान हमारी रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक माना गया है।
1: ये जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। ये चक्र शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं, शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित रहता है, संतुलित व्यवहार करता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की संतुलन के लिए इन केंद्रों का, इन ऊर्जाओं का, इन चक्रों का सक्रिय होना बहुत आवश्यक होता है।
0: अगर किसी इंसान को अपने जन्म का मूल हेतु जानना है तो उसे बाह्य जगत से विमुख होकर अंतर की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जाना होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 7 चक्र का स्थान कहाँ है और कौन उनके स्वामी हैं। इनमें से पहला है मूलाधार चक्र, जिसका स्थान है बॉटम स्पाइन यानी रीढ़ का निचला हिस्सा। गणपति इस चक्र के देवता माने जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका स्थान है जननांग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इसके स्वामी माने जाते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान है नाभि के ठीक पीछे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र, जिसका स्थान हृदय के बीचों बीच है। भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। पांचवा है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान गले के बीचों बीच कंठ के पास है। माँ सरस्वती इस चक्र की स्वामिनी मानी जाती हैं। छठा है आज्ञा चक्र, जिसका स्थान दोनों भौहों के ठीक बीच में है। ये वही स्थान है जहाँ शिव का तीसरा नेत्र है, इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती को इस चक्र का स्वामी माना जाता है। सातवा और अंतिम है सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसका स्थान मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में माना गया है और साक्षात शिव इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी इंसान को मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो उसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है। क्योंकि गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, इसलिए मूलाधार को जागृत करने के लिए गणपति के रूप स्वरूप का ध्यान और उनकी वंदना अनिवार्य मानी जाती है। यही वजह है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है।
1: भगवान गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। अगर किसी कारण से यह चक्र असंतुलित है तो भगवान गणेश का चिंतन करने से, भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश के मूल मंत्रों का जप करने से, भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है तथा मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र संतुलित होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं, मूलाधार चक्र के जो देवता हैं, वो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश पृथ्वी तत्व को निरूपित करते हैं और मूलाधार चक्र भी इस पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। इस कारण से जब भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उसमें स्थिरता आती है, जागृति आती है और मूलाधार चक्र में संतुलन बना रहता है।
0: मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी गुप्त रूप में विद्यमान है। मूलाधार चक्र की साधना से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत ऊर्जा का स्रोत से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होते ही इस संसार की निस्सारता और परम तत्व के महात्म का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कुंडलिनी जागरण गणपति की कृपा के बिना संभव नहीं है।
1: मोक्ष का जो पहला द्वार बताया गया है, वह बताया गया है भगवान गणेश जी को। कारण क्या है कि जब तक भगवान गणेश जी की साधना पूर्ण नहीं होगी, भगवान गणेश जी का ध्यान पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम आगे के चक्रों में कुंडलिनी के अग्र भाग में नहीं पहुंच सकते, ऊपरी भाग में नहीं पहुंच सकते। चूंकि यह मूल है, प्रथम है, इसलिए इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो सातों चक्रों में प्रथम सोपान जो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी हो गए गणेश जी, और गणेश जी की आराधना बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता है। इसलिए मोक्ष के प्रथम द्वार के जो अधिष्ठाता है वो भगवान गणेश जी है। तो व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग जब प्रशस्त करना हो, उस मार्ग पर चलना है या जीवन चक्र के बंधन से मुक्त होना है, तो उसमें भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है।
0: यह अत्यंत गूढ़ विषय है। दरअसल इस सृष्टि के मूल में प्रणव तत्व है, जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में ओमकार रूप में प्रकट होता है। शब्दाकार ओम का स्वरूप भगवान गणपति के स्वरूप से काफी मिलता है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम भी कहा गया है। इस एक अक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला हिस्सा भगवान गणपति का मस्तक माना जाता है, नीचे का भाग उदर यानी पेट माना जाता है। चंद्रबिंदु मोदक स्वरूप है और मात्रा ही सूंड है। यही वजह है कि गणेश जी को सृष्टि का अनादि देव माना गया है।
1: ओम शब्द का जो स्वरूप भी है वह भगवान गणेश के स्वरूप से मिलता जुलता है, और यह जो ओमकार है, ओम शब्द है, यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि मंत्र है। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश के बड़े पेट में इनकी आकृति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेशन है। इसी कारण से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा जो मूलाधार चक्र है वह एक्टिव हो, सक्रिय हो, जिससे कि हम कुंडलिनी जागरण करके अगले चक्र में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। इस कारण से भगवान गणेश की ऊर्जा के स्रोत है, ज्ञान के स्रोत है, विवेक के स्रोत है।
0: हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी गहन साधना और तपस्या के दौरान अनुभूति की कि ओम के जप से मूलाधार चक्र में हलचल शुरू हो जाती है। ओमकार के निरंतर जप से मूलाधार चक्र जागृत होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। इसे आप साधना का प्रथम सोपान मान सकते हैं, यानी मूलाधार चक्र के बिना ऊपर की यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हुए बिना आपका चिंतन शुद्ध या सात्विक नहीं हो सकता, वासना रहित नहीं हो सकता। इसका साफ मतलब है कि गणपति की कृपा के बिना द्विगुणात्मक संसार के सुख दुख, मान सम्मान, राग द्वेष, जन्म मृत्यु जैसे बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है।
1: ओम शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ध्वनि मंत्र है। इसको किसी भी मंत्र के आरंभ में लगाने से यह माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम सहजता से एक मंत्र के सहारे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भगवान गणेश के मंत्र के साथ यदि हम ओम शब्द का जप करते हैं या ओंकार का जप करते हैं या ब्रह्मांडी मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्रोत भगवान गणेश जी हैं। मूलाधार चक्र मूल चक्र के स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, और ब्रह्मांडी ऊर्जा के जो ध्वनि मंत्र है उसका जब जप करेंगे तो दोनों का संतुलन बन जाता है। ऐसे में भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
0: अंतर की यात्रा बाह्य जगत के आडंबरों से बिल्कुल अलग होती है। परम तत्व यानी ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। इस यात्रा का श्री गणेश जी की आराधना से ही होता है। मूलाधार से शुरू कर और बीच के पांचों चक्र को भेद कर जब हम सहस्रार चक्र यानी ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्म परमेश्वर यानी शिव तत्व का साक्षात्कार होता है और भगवान गणपति लौकिक जगत में शिव के पुत्र माने जाते हैं जो शिव की पावन गोद में विराजमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पारमार्थिक मार्ग के पथिक की यात्रा की शुरुआत गणेश जी की साधना से होती है और जब ये परम लक्ष्य तक पहुंचता है तो वहां भी साध्य के रूप में गणपति ही विद्यमान रहते हैं।
1: इस प्रकार देखा जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चक्रों में भगवान गणेश की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ भी किया जाता है, गणेश जी की आराधना माता सरस्वती के साथ भी किया जाता है और गणेश जी की आराधना भगवान शिव के साथ परिवार के रूप में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सभी चक्रों में कहीं ना कहीं भगवान गणेश का महत्व सबसे ज्यादा दिखता है।
0: गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसीलिए माना गया है क्योंकि एक बार मूलाधार चक्र की साधना संपन्न होते ही वे आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो जाते हैं। अपने दिव्य प्रकाश से पारमार्थिक यात्रा की बाधाओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। मन में गणपति का ध्यान करने से मानसिक विकारों की दुर्धर्ष सत्ता तिरोहित होने लगती है और जब मन से विकार तिरोहित होने लगते हैं तो आनंद, उमंग और उत्साह का संचार होने लगता है। संसार के माया मोह में फंसा इंसान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आनंद की ही तलाश कर रहा है लेकिन सत्पथ का ज्ञान उसे नहीं है। विघ्नहर्ता विनायक अपने ज्ञान प्रकाश से उसे सत्पथ का पता बता देते हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: भारत ने लगातार तीसरी बार जीता जूनियर महिला हॉकी एशिया कप खिताब, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का समापन, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले मेजबान चीन को सौंपी पैटर्न, कहा ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं समाधान का इकोसिस्टम है। पश्चिम बंगाल में देवदूत बने बीएसएफ के जवान, 10 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाया, रेस्क्यू किए गए लोगों में एक नवजात और 2 बच्चे शामिल। देशभर में गणेशोत्सव की जबरदस्त रौनक, अकोला में सजे बाजार, बाल गणपति से लेकर सेल्फी और माखन चोर तक कई रूपों में जीता दिल, इंदौर में 200 साल पुरानी विरासत में सजे बप्पा। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में रघुनंदन लीला समिति ने भूमि पूजन के साथ शुरू की रामलीला की तैयारियां, साल एआई तकनीक से जीवंत होंगे रामलीला के दृश्य।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: संभल में गणेश चतुर्थी और गणेश चौथ मेले का शानदार आगाज, 5 विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुआ शुभारंभ। गणेश चौथ मेला पिछले 66 सालों से किया जाता है आयोजित, सभी वर्गों के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 2 अक्टूबर तक चलेगा गणेश चौथ मेला, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद इंतजार। हैदराबाद में विकसित भारत 2047 थीम पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा, गणेश चतुर्थी समारोह की 50वीं वर्षगांठ को लेकर भव्य समारोह। गणेश जी की प्रतिमा को दिया गया एक विशिष्ट रोबोटिक आकार, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत भारत का प्रतीक। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज, झांसी शहर में गजानन के स्वागत करने के लिए 20-25 हजार श्रद्धालु उमड़े। ढोल नगाड़े बैंड बाजे और डीजे की धुन पर जमकर थिरके युवा। झांसी शहर के 12 से 15 इलाकों में गणपति प्रतिमाओं का आगमन, मानक चौक समेत कई जगहों पर भव्य स्वागत। माणिक चौक के राजा गजानन का आगमन बना, आकर्षण के मुख्य केंद्र सागर से लाई गई विशाल प्रतिमा के दर्शन करने के लिए उमड़ी श्रद्धालु। मुरादाबाद में छात्रों ने बनाई गजानन की इको फ्रेंडली प्रतिमा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हरिद्वार में भीषण चतुर्थी को लेकर जबरदस्त रौनक, मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं की बढ़ी डिमांड, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आंध्र प्रदेश में पौधों से बना अनोखा गणपति हुए तैयार, रात 2 साल की मेहनत से किसान ने खड़ा किया 9 फीट का गणेश। लोहे के ढांचे पर 4 पौधों को किया गया गणेश का आकार, किसान ने 2 साल की कड़ी मेहनत। 9 फीट ऊंचे लिविंग गणेश को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, किसान धनराजू डिप्टी सीएम को देना चाहते हैं वृक्ष। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कॉलेज छात्रों के अनोखी पहल, बीजों और फूल पत्तियों से मिलाकर बनाए गए गजानन की प्रतिमाएं। अकोला में सजा गणपति बप्पा का भव्य बाजार, बाल गणपति से सेल्फी और माखन चूर की प्रतिमाएं। बप्पा के आगमन से पहले अकोला में झमाझम बारिश, भक्तों में उत्साह का माहौल, उत्साह खरीदार। अकोला के ACC ग्राउंड के गणपति बाजार में उमड़ी भारी भीड़, केक काटते और सेल्फी लेते हुए नजर आ गणपति बप्पा, अनोखे रूपों में बच्चों को खूब भा रहे हैं। बप्पा की स्थापना को लेकर भक्तों में खासा उत्साह, परिवार के साथ बाजार पहुंचे लोग, पसंद की प्रतिमा खरीदी। मुंबई के किंग्स सर्कल में GSP महागणपति दर्शन को मड़ रहे हैं भक्त, 66 किलो से ज्यादा सोने की सजे हैं गजानन। GSP महागणपति को मिला 703 करोड़ का रिकॉर्ड इंश्योरेंस कवर। सोने चांदी की चमक के साथ वैदिक परंपरा भी, खास पूजा सेवा और अन्नदान से जुड़ा GSP महागणपति उत्सव। 21 फीट ऊंचे लालबाग चौराहे राजा की भव्य शोभा यात्रा सादगी और भक्तिभाव के साथ निकली यात्रा। इंदौर में 200 साल पुरानी विरासत में सजे बप्पा, आकर्षण का मुख्य केंद्र, होलकर अंदाज में पगड़ी भी बनाई गई। अयोध्या में 7 नवंबर को भव्य दीपोत्सव, तैयारियां तेज, सरयू घाटों की शानदार सजावट। दीपोत्सव पर सरयू तट पर बदलेगा भव्य स्वरूप, पुल से लक्ष्मण घाट तक 1 किलोमीटर तक सजेगा क्षेत्र, हजारों दीपों से जगमगाएगा अयोध्या का सरयू तट, महाआरती में दिखेगा अवध की धार्मिक परंपरा का रंग। रंग बिरंगी रोशनी और पूरे से सजेंगे सरयू घाट, शाम ढलते ही अलौकिक नजर आएगा रामनगरी का तट। दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां, घाटों का रेनोवेशन पूरी तरीके से दिखेगा भव्य स्वरूप। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप से भारत के लिए शानदार खबर, लगातार तीसरी बार जीता खिताब। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हरा दिया, सानिक चंद्रकांता ने 17वें मिनट में किया मैच का एकमात्र गोल। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम का FIH जूनियर विश्व कप में खेलने का मौका, शानदार जीत के साथ क्वालिफाई। हॉकी इंडिया ने विजेता टीम के लिए 3-3 लाख रुपए कैश रिकॉर्ड का घोषणा की।

राजीव ने कुमार सक्सेना ने हरी झंडी दिखाई। लद्दाख की ऊंचाइयों पर रात दौड़े 5,000 से ज्यादा धावक, 3 कैटेगरी में हुआ मुकाबला। दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली मैराथन में दिखा जोश, देश विदेश के धावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनमोहक पर्वतीय रास्तों, प्राचीन मठों और झील के किनारे गुजरते धावकों को शानदार दृश्य देखने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में चोरी हुए मोबाइलों के लिए शानदार खबर, पुलिस ने 40 लाख रुपए के 200 से ज्यादा मोबाइल वापस लौटाए। मुंबई के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश जारी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास पानी भरा। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, एसडीआरएफ की टीम ने 300 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बढ़ा गागन नदी का जलस्तर, कई इलाकों में पानी ही पानी। जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ सुहाना, डल झील में पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। मलयालम महीने चिंगम का अंतिम बार रविवार विवाह के लिए माना जाता है शुभ। केरल के गुरुवायूर मंदिर में चिंगम पर 400 से ज्यादा जोड़ों का विवाह। मुंबई गणेश ज्ञानार्थी प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शिवम महापुराण का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने शिरकत की। अमृतसर में तैयार हो रही है पंजाब की पहली रिवर राफ्टिंग टीम, खिलाड़ियों को दिया गया प्रशिक्षण। जैसलमेर पहुंची विश्व प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत। राजस्थानी गीत, ढोल नगाड़े और रेड कारपेट पर पर्यटकों का भव्य स्वागत किया गया। नए पर्यटन सीजन में पैलेस ऑन व्हील्स का अंदाज, 6 कमरों में मार्बल फ्लोरिंग और मेटल क्राफ्ट की सजावट। मेल में देखा राजस्थानी शिल्प और आधुनिक लग्जरी का मेल, पर्यटक सोनार दुर्ग और रेगिस्तान के धोरों की करेंगे दीदार। चर्चित फिल्म हनुमानंश की युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर पहुंची कैंची धाम, बाबा नीम करौरी महाराज का आशीर्वाद लिया। कानपुर विश्वविद्यालय में AI 2.0 मंथन को लेकर सम्मेलन, स्मार्टफोन से कैंसर की पहचान से लेकर टीवी उन्मूलन तक की चर्चा। प्रयागराज में ठीक हुआ राम वन गमन मार्ग, कुछ दिन पहले दरार आई थी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। दिल्ली में विधि विधान के साथ श्री रघुनंदन लीला समिति का भूमि पूजन किया गया, इस साल 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा रामलीला का भव्य मंचन। मुरादाबाद के सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ। भारत अफगानिस्तान के बीच आज पहला T20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा मैच। श्रेयस अय्यर संभालेंगे टीम की कमान, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जाएगी 3 मैचों की श्रृंखला। टीम इंडिया सीरीज में जीत के साथ करना चाहेगी आखास, भारत और अफगानिस्तान के बीच रोमांचक टक्कर की उम्मीद। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सभी की निगाहें, 15 सितंबर को दूसरा और 17 सितंबर को तीसरा, जबकि T20 का तीसरा मुकाबला होगा 20। अफगान स्पिनर्स का सामना करने को तैयार है भारत, अफगानिस्तान को हराकर दबदबा कायम करना चाहेगी भारत की टीम। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर सितारों को जलवा कायम, क्लोजिंग सेरेमनी और अवार्ड्स से पहले दिखा ग्लैमर। रेड कारपेट पर दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और कलाकार नजर आए, वेनिस फिल्म फेस्टिवल की जूरी प्रेसिडेंट मैगी।

0: ने कराया फोटो सेशन। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वुमन अननोन का जलवा देखने को मिला। डेनिश फिल्मेकर माय एल टूकी की फिल्म ने जीत प्रतिष्ठित गोल्डन लायन। पोस्ट वॉर ड्रामा वुमन अननोन की डबल जीत। वुमन अननोन बनी वेनिस की बेस्ट फिल्म। कोरियन फिल्मेकर ली चांग डोंग ने हासिल किया दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, मिला सिल्वर लायन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रकाश पर्व को लेकर स्वर्ण मंदिर की भव्य सजावट। अमृतसर में दुल्हन की तरह सजकर तैयार हुआ हरमंदिर साहिब। प्रकाश पर्व पर दीप माला से जगमगाया श्री दरबार साहिब। बाद में हुई आतिशबाजी। श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर रंग बिरंगी आतिशबाजी ने बांध दिया समा। दीप माला के बाद हुई भव्य आतिशबाजी। प्रकाश पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से दीपमाला की। रात में स्वर्ण मंदिर का अद्भुत दृश्य। रोशनी दीपमाला और आतिशबाजी ने बढ़ा दी हरमंदिर साहब की रौनक। इटली के मेसानो में सैन मैरिनो जीपी में मार्क मार्केस का जलवा खाया। मार्केस ने बेज़ेकी को पछाड़कर जीत लिया खिताब। मार्क मार्केस की शानदार हुई शुरुआत बनी जीत की वजह। टर्न वन पर बढ़त बनाई। जॉर्ज मार्टिन तीसरे पायदान पर रहे। स्प्रिंट में पोडियम हासिल करके मार्टिन ने चैंपियन को बरकरार रखा। डी जियान एंटोनियो ने चौथे स्थान पर हासिल किया कब्जा जबकि एलेक्स को मिला पांचवा पायदान। रैली जिले में ओलिवर सोलबर्ग का दबदबा खाया। सोलबर्ग ने 10 सेकंड्स की बढ़त। रैली श्री में एल्फिन एवांस दूसरे पायदान पर रहे। एड्रियन को तीसरा पायदान। हंडे ड्राइवर का सुबह से पहले स्टेज में हुआ बड़ा हादसा। थियरी न्यूविल की कार पलटी। रैली चिली में फिर से देखा खतरनाक ट्रैक का। फोर्ड ड्राइवर शॉन भी दुर्घटनाग्रस्त हुए। चिली की सड़कों पर जारी रोमांचक जंग। मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवरों की परीक्षा। हेनरी गेवास ने स्पेन में साइकिल रेस वर्ल्ड में जीत। लगभग उनकी बाकी स्टेज 20 के गठन पहाड़ों से रेस बढ़त बरकरार रखी। बहुत कड़े मुकाबले में स्लोवेनियाई राइडर रोजिल का दूसरे पायदान पर रहे। वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में 100 मीटर रेस में अमेरिका का दबदबा खा। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में गोल्ड। अमेरिकी महिला एथलीट्स मेलिसा बनी संयुक्त चैंपियन। महिला वर्ग में जूलियन अल्फ्रेड को सिल्वर और शकारी रिचर्डसन को मिला ब्रॉन्ज। दकार पहुंची यूथ ओलंपिक की मशाल। सेनेगल की राजधानी में ओलंपिक का फ्लेम का भव्य स्वागत किया गया। सेनेगल के राष्ट्रपति ने किया ओलंपिक मशाल का भव्य स्वागत। चीन के नर मंगोलिया में डेजर्ट फूलों का रोमांच। रेगिस्तान में दौड़ते हुए नजर आए ऊंट। ऊंटों पर सवार खिलाड़ियों का जोरदार हुआ मुकाबला। चीन में डेजर्ट पोलो का मिला सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। डेजर्ट पोलो के साथ हुई तीरंदाजी। चारवाहों ने पारंपरिक प्रतियोगिता में भाग लिया। वॉशिंगटन के नेशनल जू में पांडा किंग बाओ के चौथे जन्मदिन का जश्न। पांडा के लिए फल और सब्जियों से खास फ्रूट सिकल केक तैयार किया गया। पांडा ने छट कर दिया बर्थडे केक। जन्मदिन पर गुब्बारों से खेली पांडा किंग बाओ। चीन के गुएंगझाओ में बना नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1835 लोगों ने एक साथ कॉकटेल को शेक किया। चीन में शुरू हुई रोबोट बनाने वाली रोबोट फैक्ट्री ग्वांगशी में। रोबोट अब खुद बनाएंगे रोबोट्स। 40,000 साल पुरानी घोड़े को मिला नया रूप। चीन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया 3D मॉडल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें वेनिस फिल्म फेस्टिवल की। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के विजेताओं ने अपनी कामयाबी का शानदार जश्न मनाया। डेनमार्क की फिल्म मेकर मी अल तूखी ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म वुमेन अननोन के लिए गोल्ड लायन अवार्ड जीता, और इस फिल्म की स्टार मथिल्डे ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम कर लिया। दोनों शख्सियतों के लिए ये डबल जीत के जश्न का मौका था। वहीं प्रत्येक दक्षिण कोरिया के फिल्म मेकर ली चांग डोंग ने प्रॉमिस्ड लव के लिए रनर अप सिल्वर लायन अवार्ड अपने नाम कर लिया, जबकि रूस में जन्मे फिल्म मेकर इलिया ने डाओ के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत लिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इजरायली डायरेक्टर युवल और राहिल जोर की जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री नाजा ने स्पेशल जूरी प्राइज भी जीता है। फेस्टिवल में स्टीफन ब्रिज कोराली और ओलिवर कोर्स को उनके लोकप्रिय फ्रेंच वर्क्स प्ले ड्रामा अ गुड लिटिल सोल्जर के लिए स्क्रीन प्ले अवार्ड दिया गया, जबकि मालू खेबीजी ने एक लोकप्रिय फ्रेंच फिल्म अ प्लेस टू हील में उनकी भूमिका के लिए बेस्ट इमर्जिंग यंग एक्टर चुना गया है उनको। 83वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इटली के वेनिस लिडो द्वीप पर 2 सितंबर से 12 सितंबर 2026 तक आयोजित किया गया है, और ये दुनिया के सबसे पुराने और सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक है। हम आपको दिखाते हैं रेस्क्यू की एक शानदार तस्वीरें जो आई हैं अमेरिका से। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 15 साल के एक लड़के को समुद्र में जान गंवाने से बचा लिया। ये घटना है अलास्का के पास, जहां पर एक नाव पलटने के बाद ये लड़का उसके पिछले हिस्से पर किसी तरीके से टिका हुआ था। 2 दिन तक इसने नाव पर इसी तरीके से वक्त गुजारा, और इसके बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे बचाने में कामयाबी हासिल की। बताया ये जा रहा था कि लड़का जो है अपने भाइयों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया था। हादसे के बाद केवल यही बचने में कामयाब रहा। कोस्ट गार्ड के जवानों ने इसे देखा तो बचाव अभियान चलाकर इसे रेस्क्यू किया गया, और फिर बीमार हालत में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया। अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फेरी की तस्वीरें। पूरी तरीके से बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक फेरी चाइना जोरेला ऑस्ट्रेलिया से रोगवे तक का लंबा सफर पूरा करने के बाद शनिवार को रोगवे के नोएवा पालमेरा बंदरगाह पर पहुंच गई और इस जहाज को तस्मानिया में बनाया गया था। रोगवे की शिपिंग कंपनी बुके बस ने इसे खरीदा है। बुके बस का कहना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक जहाज है जो ट्रांसपोर्टेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। इसे ब्यूनस आयर्स और कोलोनिया के बीच कमर्शियल सर्विस के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस जहाज की लंबाई 130 मीटर है और इसका निर्माण जो है पूरी तरीके से मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम से किया गया है। इस जहाज में 2100 यात्री और 225 गाड़ियां आ सकती हैं। इसका नाम उरुग्वे की एक्ट्रेस कॉन्सप्लिसियन चाइना जोरिला के सम्मान में रखा गया है। अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जोधपुर की। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित मंदिर में बाबा रामदेव प्राकट्य उत्सव का हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बहुत श्रद्धा और धूमधाम से इसको मनाया जाता है और इस बार भी इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और मंदिर में दिव्य आरती भी की गई। बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर राम सा पीर और भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। मारवाड़ इलाके में इस उत्सव को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है जिसकी शुरुआत जो है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जोधपुर के प्रसिद्ध मसूरिया पहाड़ी स्थित मंदिर से होती है और मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी के आध्यात्मिक गुरु योगी बालीनाथ जी महाराज का समाधि स्थल भी है और प्राचीन मान्यता ये है कि जैसलमेर के रामदेवरा और रूणीचा जाने वाले पैदल तीर्थ यात्रियों के लिए पहले मसूरिया आकर गुरु बालीनाथ जी की समाधि पर दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: भारत ने लगातार तीसरी बार जीता जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। रमजान सीजन के आगाज पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचा पैलेस ऑन व्हील्स का शाही काफिला, तिलक फूलमाला और सांस्कृतिक रंगों के साथ हुआ विदेशी मेहमानों का स्वागत। पश्चिम बंगाल में देवदूत बने बीएसएफ के जवान, 10 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाए, रेस्क्यू किए गए लोगों में एक नवजात और 2 बच्चे शामिल। देशभर में गणेश उत्सव की जबरदस्त तैयारियां, कोला में सजे बाजार, बाल गणपति से लेकर सेल्फी और माखन छोड़ तक कई रूपों में जीता दिल। इंदौर में 200 साल पुरानी विरासत में सजे पप्पा। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में रघुनंदन लीला समिति ने भूमि पूजन के साथ शुरू की रामलीला की तैयारियां, साल AI तकनीक से जीवंत होंगे रामलीला के दृश्य।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। और हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। शास्त्रों में जिन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है, जिनकी ताकत का कोई अंत नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान का एक रूप चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 4 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर सड़क के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने मंदिर की दीवारों को तोड़ गिराया, लेकिन जब बारी हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने की आई तो सब कुछ फेल हो गया। प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
1: यह मध्य प्रदेश की पावन नगरी उज्जैन, वो शहर जिसके रग रग में जय महाकाल की गूंज है, वो सिद्ध शहर जिसके कण कण में महाकाल बसते हैं, जहाँ की हवाओं में आध्यात्म और भक्ति की शक्ति महसूस होती है। महाकाल की इसी पावन नगरी में है खड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। शास्त्रों में इस जगह को अतुलित बल का धाम कहा गया है। महाबली का ये रूप यहाँ वर्षों से आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन खड़े हनुमान जी के इसी प्राचीन मंदिर से जुड़ी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान किया है, सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अतुलित बल यानी ताकत का कोई अंत नहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में उन्हीं महाबली हनुमान जी की एक प्रतिमा आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। उज्जैन में विकास कार्यों के दौरान खड़े हनुमान जी के प्राचीन मंदिर को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियमों के तहत मंदिर के ऊपरी और आसपास के ढांचे को हटा भी दिया गया, लेकिन जब बात आई खड़े हनुमान जी की इस विशाल प्रतिमा को वहां से हटाने की तो हालात पूरी तरह बदल गए।
2: हम आगे दर्शन करने के लिए कोई मनोकामना लेके, लोगों की मनोकामना या श्रद्धा है पूरी होती है, हम भी आगे अपनी मनोकामना लेने के।
3: शिवपुर जिले मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर से आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि प्रशासन इसको हटाने की कोशिश कर रहा है, पर हनुमान जी का बिल्कुल मन नहीं है। यहीं रहना चाहिए ये मूर्ति और इसका विकास होना चाहिए, यही हमारा कहना है।
4: हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, 60 मंदिर वो ले चुके हैं, एक मंदिर वो रहने दे, प्रशासन से निवेदन है।
1: हनुमान जी ने जैसे अपनी जगह न छोड़ने का प्रण ले लिया हो, मशीनों की मदद ली गई, अलग अलग तरीकों का सहारा लिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी हनुमान जी की ये प्रतिमा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली।
5: हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए, 4-5 दिन से मीडिया के स्तर से और उज्जैन के वासी हैं तो सब जगह देखिए, हनुमान जी का चमत्कार समय दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को 3 बार उठाने का प्रयास किया गया, फिर भी हनुमान जी अपनी जगह से अडिग है, नहीं उठे। तो इसी सोच करके आए कि देखे हनुमान जी का चमत्कार क्या है। अपने सनातन में चमत्कार होते रहते हैं, भगवान समय समय पर चमत्कार दिखाते रहते हैं और बार बार उनको उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब चमत्कार 1 या 2 बार 3 बार चमत्कार होता है, अब बार बार चमत्कार थोड़ी होता है। इसलिए शासन प्रशासन से साधु संत प्रार्थना समझ लीजिए या अनुरोध करते हैं कि अब जैसे हैं बाबा उनको यथावत स्थान पर रहना चाहिए। नहीं, अभी कोई बात नहीं है।
1: प्रशासन ने मंदिर की दीवारें तो हटा दी लेकिन प्रतिमा जस की तस है, एक इंच भी नहीं हिली है। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और रील वायरल की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि हमने अब तक प्रतिमा को हटाने के लिए बल की कोशिश नहीं की है।
6: प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भावनाएं, प्रतिमा की सुरक्षा और उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सर्वोपरि है। खड़े हनुमान जी से संबंधित विषय में प्रशासन सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की भावनाओं और आस्था का पूर्ण सम्मान करता है। सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं और को ध्यान में रखे बिना प्रशासन कोई भी निर्णय अथवा कदम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है।
1: दरअसल अगले सिंहस्थ महापर्व 2028 को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए उज्जैन में बड़े पैमाने पर विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत सड़क की जद में आ रहे इस मंदिर को प्रशासन टंकी चौक पर शिफ्ट करना चाहता है। प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने के लिए उज्जैन ही नहीं इंदौर से भी विशेष इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई। प्रशासन इस मामले में पुरातत्व विभाग की सहायता ले रहा है और IIT इंदौर से स्कैनिंग करवा रहा है।
7: पूरा जो पूरा मामला श्रद्धा और दर्शनार्थियों से जुड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चीज हो रही है उससे अब यहाँ देश भर के लोग आने लग गए हैं और एक इस चीज को भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट बना लिया गया है, क्योंकि जो भी महाकाल आ रहा है वो यहाँ पर जरूर आने लगा है।
1: हालांकि इस बीच हनुमान मंदिर की नई जगह को लेकर भी विवाद सामने आ गया है। मौजूदा स्थान पर हनुमान जी दक्षिण मुखी है, जबकि टंकी चौक पर जिस नए मंदिर का ढांचा तैयार किया जा रहा है वहाँ प्रतिमा की स्थापना होने पर उनका मुख उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। खड़े हनुमान जी का ये रूप सद विपरीत यानी सदैव सेवा और रक्षा की मुद्रा को दर्शाता है। माना जाता है कि स्थान पर स्थापित प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विशेष विधि विधान और सिद्ध मंत्रों के साथ की गई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी हनुमान जी की प्रतिमा टस से मस नहीं हुई। मंदिर से लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। ऐसे में अगर भगवान के स्थान या स्वरूप को लेकर कोई बदलाव होता है तो लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
8: चारों युग में जिनके प्रताप से उजारा हुआ है उसको अंधकार में धकेलने की कोशिश अभी तक प्रशासन की नाकाम हो चुकी है, सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तो अब हम अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि आप बाबा को पुनः यहीं पर रहने दें और कहीं नहीं ले जाएं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था का सवाल है उसका आदर करें।
9: ईश्वर की कृपा के बिना संसार नहीं चलता है। अगर हनुमान जी की इच्छा नहीं है कि उनको नहीं हटना है तो इस विषय में विचार करना चाहिए। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है, बा की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।
10: खड़े मान का स्थान कोई आज का नहीं वर्षों पुराना स्थान है और जब भगवान की इच्छा है कि यहाँ से नहीं हटे तो नहीं हटना चाहिए। जो कोई प्रकार की प्रशासन या शासन अगर इस प्रकार का प्रयास कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पूर्व में लोगों ने कहा है कि अभी हनुमान जी का स्थान हमारा या उज्जैन वालों का नहीं होते हुए सर विश्व की आस्था का केंद्र है और जहां आस्था होती है वहां सारी ताकत झुकती है। वो हनुमान जी जैसे बता अजर अमर है तो हनुमान जी का सिद्ध स्थान है, जहां कल था जहां आज है कल भी वहीं रहे, ये हम सबकी प्रार्थना है शासन प्रशासन।
1: हनुमान मंदिर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे हनुमान जी का हठ योग करार दे रहा है। लेकिन इस बीच मंदिर के पास अचानक लंगूर भी पहुंचने लगे हैं।
11: उज्जैन के जिस खड़े हनुमान मंदिर को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है वहां अचानक से दोपहर को कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से लोगों के मन में हनुमान भगवान के प्रति आस्था और बढ़ा दी है। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के पास में अचानक से वानरों का एक झुंड आ गया है और ये इसने आसपास की जो तमाम इमारतें हैं जिन्हें सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा गया था वहाँ पे इस वक्त डेरा डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं जो काले लंगूर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल ठीक उसी खड़े हनुमान मंदिर के सामने की तस्वीर है जहाँ इस वक्त जो इमारतें चौड़ीकरण के लिए तोड़ी गई थी उस पे आकर के तमाम वानर यहाँ बैठ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, हैरानी इसलिए हो रही है कि ये कोई वन क्षेत्र नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यह उज्जैन शहर के बिल्कुल बीचों बीच का इलाका है। यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई वन क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई चिड़ियाघर है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से वानर या लंगूर यहाँ आ पाए। लेकिन सामने आप तस्वीरों में देखिए भगवान हनुमान का वो मंदिर जो इस वक्त सुर्खियों में है और उसके ठीक सामने की इमारतों में ये वानर जो हैं ये आकर के बैठे हैं, बड़ी संख्या में आकर के बैठे हैं और लोग इसे कहीं ना कहीं जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या ये भगवान हनुमान का चमत्कार तो नहीं।
12: पूरा बाजार है यहाँ पर, ये हनुमान जी के भगत है सब, ये सब हनुमान जी के भगत है। ऊपर भी पूरी सेना बैठी है, उनकी पूरी सेना है।
13: अंदर तो पहली बार देख रहे हैं इधर।
11: अच्छा, आप यहीं रहते हो क्या?
13: हाँ, मैं उज्जैन से रहता हूँ और ये मतलब इतने सारे पहली बार, जबकि पेड़ भी नहीं आते।
1: शास्त्रों में विधान है कि जब किसी सिद्ध स्थान पर प्रतिमा स्थापित की जाती है तो उसकी जड़ें केवल कंक्रीट से नहीं बल्कि उस भूमि के आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाती है। प्रशासन ने मंदिर का कंक्रीट का ढांचा भले ही हटा दिया हो लेकिन वर्षों की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों से सींच कर स्थापित की गई ये प्रतिमा आज भी अपने मूल स्थान पर वैसे ही विराजमान है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: महाकाल की नगरी उज्जैन में खड़े हनुमान जी को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने हैं। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी रास्ते में आने वाले खड़े हनुमान जी मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी है, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह अडिग है। ऐसे में क्या ये सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है या फिर वैज्ञानिक तौर से इसकी कहानी कुछ और भी हो सकती है?
14: उज्जैन की सिद्ध धरा पर हर मंदिर, हर प्रतिमा और हर मार्ग का अपना एक विशिष्ट पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में सड़क के चौड़ीकरण के दौरान खड़े हनुमान मंदिर का ढांचा हटने के बाद भी प्रतिमा का अपने स्थान पर अडिग रहना केवल एक घटना नहीं, बल्कि स्थान के समृद्ध इतिहास और धार्मिक आस्था से जुड़ा गहरा विषय बन गया है। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, जहाँ श्रद्धालु इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं इस घटना के पीछे के इंजीनियरिंग पहलुओं को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं। सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी भारी संरचना की स्थिरता उसकी नींव और बेस ग्रिप पर निर्भर करती है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि उज्जैन में स्थापित खड़े हनुमान जी की ये विशाल प्रतिमा जिस पत्थर या सामग्री से बनी है, उसका वजन और उसका निचला आधार बेहद गहरा और मजबूत है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का जमीन के अंदर बेस करीब 5 फीट गहराई तक है। मूर्ति की लंबाई करीब 8 फीट की बताई जा रही है। 170 साल पुराने मंदिर की ये मूर्ति भी करीब उतनी ही पुरानी बताई जा रही है। लिहाजा इस प्राचीन मंदिर की अहमियत काफी ज्यादा है और इस पर भक्तों का भरोसा उतना ही ज्यादा।
15: प्रशासन विस्थापन करना चाहता है, आपका क्या कहना है?
16: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम चाहते बाबा यही है, वर्षों 1000 वर्ष पुराने बाबा, और यहाँ के चमत्कार तो पूरी भारत में दुनिया में सबको पता है।
14: खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी के मुताबिक बजरंगबली की प्रतिमा इसलिए टस से मस नहीं हो रही है क्योंकि मंदिर की बनावट के साथ इसे इंटरलॉक किया गया है।
17: आस्था के सैलाब में यहाँ जो भक्ति मूर्तिमंत होकर के दिख रही है, तो इसमें कहीं संदेह या संशय की बात नहीं है, क्योंकि सप्तैते चिरजीवनः श्री हनुमान जी को अमर अजर अमर गुणनिधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक शोहु। श्री हनुमान जी महाराज तो आस्था के प्रतीक हैं। समाज समस्त जो सनातन धर्म की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, उसके कुलाधिपति।
14: जानकारों के मुताबिक जब किसी प्रतिमा को गहराई के साथ जमीन में स्थापित किया जाता है तो ऊपरी ढांचे को हटाने से उसकी मुख्य नींव पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी बीच इतिहासकार भी हनुमान जी की प्रतिमा को बेहद प्राचीन बता रहे हैं। अनुमान के मुताबिक हनुमान जी की प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया के दौरान उसके खंडित होने का डर है और आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरी जगह ले जाना जरा मुश्किल है। अभी निर्माण की मजबूती हो या फिर हनुमान जी का चमत्कार, उज्जैन की ये घटना आज हर किसी के लिए अध्ययन और कौतूहल का विषय बन गई है। कंक्रीट का ढांचा हटने के बाद भी ये प्रतिमा अपने मजबूत आधार के साथ उसी स्थान पर खड़ी है। उज्जैन से संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: भारत के कई प्राचीन मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ मंदिर और निर्माण ऐसे भी हैं जिनसे जुड़े रहस्य आज भी लोगों और वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही मंदिर और विनिर्माण के बारे में।

0: का इतिहास गौरवशाली रहा है। मठ, मंदिर, सिद्ध पीठ, ज्योतिर्लिंग और गुफाएं सब अपने में एक चमत्कारिक कहानी संजोए हुए है। ऐसे ही चमत्कारों से रूबरू कराने की कोशिश में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की ज्वाला देवी मंदिर की। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। इस मंदिर में अनंत काल से ज्वाला निकल रही है, इसी कारण इसे ज्वाला देवी का मंदिर कहते हैं। देवी के शक्ति पीठों में से एक इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर ज्वाला निकलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर परिसर के पास ही एक जगह है गोरख डिब्बी, जो कि एक जल कुंड है। इस कुंड में गर्म खौलता हुआ पानी है, जबकि छूने पर कुंड का पानी ठंडा लगता है। सबसे बड़ी बात ये है कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती और ईंधन के प्राकृतिक रूप से जल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। 9 ज्वालाओं में प्रमुख ज्वाला जो चांदी के ज्वाला के बीच में है, इसे महाकाली कहा जाता है। ये ज्वालाएं अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवियों का प्रतीक है। ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना करते थे। वो माता के परम भक्तों में शामिल थे। एक बार गोरखनाथ को काफी तेज भूख लगी और उन्होंने माता से बोला कि आप आग जलाकर पानी गर्म करो, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता ने गोरखनाथ के कहने पर आग जला दी। काफी समय बीत जाने के बाद भी गोरखनाथ नहीं लौटे, इसलिए कहा जाता है कि तब से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ का इंतजार कर रही है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग आने पर ही गोरखनाथ मंदिर लौटेंगे, तब तक ये ज्वाला इसी तरह जलती रहेगी। कहा तो ये भी जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने एक बार लोहे के ढक्कन से आग को ढककर और पानी की व्यवस्था करके उसे बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने सभी प्रयासों में बुरी तरह असफल हुआ। तब अकबर ने मंदिर में सोने का एक छाता भेंट किया। हालांकि देवी की शक्ति के प्रति उनके संदेह के कारण सोना एक अज्ञात धातु में बदल गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद अकबर ने मन में देवी के प्रति आस्था और मजबूत हो गई। केदारनाथ मंदिर भी एक चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस पर कभी कोई परेशानी नहीं आती है, ये हमेशा से जैसा का तैसा खड़ा है। कहते हैं कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। जुलाई 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय हुई थी, उसके बाद भी मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ। इस जल प्रलय में जब पानी और मलबा सब कुछ बहाकर ले जा रहा था, तब मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान जिसे भीमशिला कहा जाता है आकर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे मुख्य मंदिर सुरक्षित बच गया। यही नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार लिटिल आइस एज लगभग 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान ये मंदिर करीब 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। इसके बावजूद इसकी मजबूत संरचना और पत्थरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। केदारनाथ मंदिर करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सीमेंट या कंक्रीट के विशाल ग्रेनाइट और एशलर पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़कर बनाया गया है। यही वजह है कि ये भारी भूकंप और तूफानों को झेलने में सक्षम है। कहा तो ये भी जाता है कि शीतकाल में 6 महीने के लिए जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं और भगवान को उखीमठ शिफ्ट किया जाता है, तब अंदर जलने वाला अखंड दीपक लगातार 6 महीने तक प्रज्वलित रहता है और कपाट खुलने पर वैसा ही जलता हुआ मिलता है। पूरी दुनिया में एकमात्र राम सेतु का स्थान ऐसा है जहाँ के पत्थर पानी में तैरते हैं। राम सेतु भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच समुद्र में फैली चूना पत्थर के टीलों और पत्थरों की एक श्रृंखला है, जिसे आस्था और विज्ञान दोनों के बीच एक बड़ा रहस्य माना जाता है। वैज्ञानिक भी राम सेतु के पत्थरों में चमत्कार की बात मानते हैं। राम सेतु की लंबाई लगभग 48 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में ऐसे पत्थरों का उपयोग किया गया था जिन पर राम नाम लिखा था और वे पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम और आसपास के कुछ मंदिरों में आज भी ऐसे पत्थर रखे हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिक राम सेतु को एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट मानते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे बनाने में प्यूमाइस स्टोन का उपयोग किया गया होगा। ये ऐसे पत्थर हैं जो ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। इनमें कई सारे छिद्र होने के कारण ये स्पंजी या खांकरा रूप ले लेते हैं और पानी में डूबते नहीं है। इस तरह के पत्थरों का वजन सामान्य से कम होता है। फिर भी इस पुल के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बारे में जानने के लिए लोगों में आज भी जिज्ञासा है। ओडिशा के नगरपुरी के तट पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर भी कई चमत्कारी बातें होती हैं। इस मंदिर को प्राचीन मंदिर माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। इसके अलावा इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके अलावा इसके गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी इन रहस्यों का खुलासा नहीं हो सका है। यहाँ भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। ऐसे ही कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में काल भैरव के मंदिर में भगवान को मदिरा पिलाने की परंपरा है। इसकी वैज्ञानिक जांच भी हुई कि आखिर ये मदिरा कहाँ जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। काल भैरव का ये मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। मदिरा पिलाने की प्रथा की वजह से भक्त यहाँ भगवान को मदिरा चढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, क्या है गणपति महोत्सव का पूजा विधान, गणपति की कृपा से कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भारत ने लगातार तीसरी बार जीता जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। पर्यटन सीजन के आगाज पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचा पैलेस ऑन व्हील्स का शाही काफिला, तिलक थुलमालाओं और सांस्कृतिक रंगों के साथ हुआ विदेशी मेहमानों का स्वागत। पश्चिम बंगाल में देवदूत बने बीएसएफ के जवान, 10 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाया, रेस्क्यू किए गए लोगों में एक नवजात और 2 बच्चे भी शामिल। देश भर में गणेश उत्सव की जबरदस्त तैयारियां, कोला में सजे बाजार, बाल गणपति से लेकर सेल्फी और माखन चोर तक कई रूपों ने जीता दिल। इंदौर में 200 साल पुरानी विरासत में सजे बप्पा। तमिलनाडु के शिवगंगा में गणेशोत्सव पर गणेश चतुर्थी रथ फेस्टिवल का आयोजन, विशेष रथ पर बप्पा को कराया गया नगर भ्रमण, आस्था और संस्कृति के अद्भुत रंग। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में रघुनंदन लीला समिति ने भूमि पूजन के साथ शुरू की रामलीला की तैयारियां, इस साल एआई तकनीक से जीवंत होंगे रामलीला के दृश्य।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्ने या टेलीविजन की स्क्रीन तक सीमित नहीं है रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसे कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, यहाँ पर वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम बेनकाब करते हैं। तो देखिए, आज हम फैक्ट चेक में सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक महिला पत्रकार को पीटा। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि बाढ़ के बीच बंदर का रेस्क्यू और जान बचाने के लिए खंभे से चिपकी बच्ची का ये वीडियो नेपाल का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिसकर्मी महिला पत्रकार को बेरहमी से पीट रही हैं। लेकिन जब वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया गया तो क्या सच और झूठ निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: महिला पत्रकारों ने हाल ही में आरोप लगाया कि 3 सितंबर को साउथ दिल्ली में एक पब्लिक इवेंट को कवर करने के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और साकेत थाने में उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। अब इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला पुलिसकर्मी जमीन पर पड़ी एक महिला को पीट रही है, लात मार रही है, महिला रो रही है, लेकिन इसके बावजूद महिला पुलिसकर्मी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। वीडियो पर लिखा है, दिल्ली पुलिस महिला पत्रकार को बेरहमी से मार रही है, ये पुलिस जब पत्रकार को मार सकती है तो और लोगों के साथ क्या करेगी। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने इस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर यूजर्स इसे लगातार शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला पुलिसकर्मी एक लड़की को पीटते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वीडियो में वर्दी में नजर आ रही महिला दिल्ली पुलिस की है और जमीन पर पड़ी जिस लड़की को पीटा जा रहा है वो एक पत्रकार है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें लोगों के सामने पेश की जाती हैं वो सही ही हों ऐसा जरूरी नहीं होता। फैक्ट चेक की टीम ने जांच की और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। देखिए सबसे पहले हमारी नजर जो है वो वर्दी में नजर आ रही महिला पुलिसकर्मी के बैच पर गई। इसमें केपी लिखा हुआ नजर आया। अगर इस महिला पुलिस का संबंध दिल्ली पुलिस से होता तो इनके बैच पर केपी नहीं डीपी यानी दिल्ली पुलिस लिखा होता। केपी का मतलब है कर्नाटक पुलिस। यहां से तो ये साफ हो गया कि दिल्ली पुलिस से ये जुड़ा मामला नहीं है। इसके अलावा वीडियो में सिर्फ एक कमरा नजर आ रहा है और कमरा किसी पुलिस चौकी के जैसा हमको नजर नहीं आया। फर्श और बैकग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी फ्लैट के अंदर का कमरा हो सकता है। पूरे वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं उसे सुनने पर ये कुछ कुछ कन्नड़ जैसा लग रहा है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये है कि अगर वीडियो दिल्ली का है तो यहां पर सिर्फ कन्नड़ आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? वीडियो में कहीं भी बवालात नहीं दिख रहा है। वीडियो में सिर्फ एक महिला पुलिस और एक लड़की जमीन पर लेटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि अगर वीडियो किसी थाने का है तो यहां पर दूसरे पुलिस वाले क्यों नहीं नजर आ रहे? और हमारा तीसरा और अहम सवाल, कहीं जानबूझकर एडिटेड वीडियो को वायरल करके लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
3: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें एक फेसबुक पेज पर 26 जून की पोस्ट में मिला। पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में इसे एक फिल्म शूटिंग से संबंधित बताया गया है। यहाँ वीडियो के साथ शॉर्ट फिल्म सीरीज और अनकट जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है। पेज के बायो सेक्शन के मुताबिक यहाँ वो अपनी फिल्मों के एक्टिंग सीन और पर्दे के पीछे के सीन के वीडियो पोस्ट करते हैं। सर्च के दौरान हमें इसका यूट्यूब चैनल भी मिला जहाँ शॉर्ट फिल्में अपलोड की जाती हैं। वीडियो में दिख रही पुलिसकर्मी और भी कई वीडियो में एक्टिंग करती हुई नजर आती है। साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो किसी असल घटना का नहीं है, ये महज एक फिल्म शूटिंग का हिस्सा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसमें भी वायरल वीडियो में नजर आ रही महिला पुलिसकर्मी देखी जा रही है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये किसी असल घटना का नहीं बल्कि एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: नेपाल में आई हालिया बाढ़ को लेकर सोशल मीडिया पर दो वीडियोस खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में एक बंदर बाढ़ में फंसा हुआ देखा जा सकता है तो वहीं पर रेस्क्यू टीम भी आती है और उसे बचा लेती है। वहीं पर दूसरा वीडियो में देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी तेजी से बह रहा है और एक छोटी बच्ची खुद को बचाने के लिए खंभे को पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों वीडियो को नेपाल की बाढ़ से जोड़कर देखा जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है? पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
4: नेपाल में 26 अगस्त को अचानक आई भीषण बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। इस आपदा में कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं। नेपाल में अभी भी राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये दो वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में दिख रहा है कि एक बंदर बाढ़ में फंसा है और कुछ लोग आकर उसे बचा लेते हैं। इसे शेयर करते हुए एक फेसबुक यूजर ने कैप्शन में लिखा, पहली नजर में विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन जब पक्का विश्वास हो गया तो फिर उसने हिम्मत जुटाकर रेस्क्यू टीम को अपना हाथ दे ही दिया। इसी तरह दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची बाढ़ में फंसी हुई है और खुद को बचाने के लिए एक खंभे को पकड़ कर खड़ी है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बाढ़ के तेज बहाव के बीच एक मासूम बच्ची खंभे को कसकर पकड़े नजर आई। चारों ओर बहता पानी, मलबा और तबाही के बीच बच्ची किसी तरह खुद को संभाले रही। ये दिल दहला देने वाला दृश्य प्राकृतिक आपदा के दौरान बच्चों की नाजुक स्थिति और समय पर राहत बचाव की जरूरत को दिखाता है। इन दोनों वीडियो को सोशल मीडिया पर नेपाल के रेस्क्यू का बताकर कई यूजर्स शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: देखिए सोशल

0: और एक छोटी बच्ची खुद को बचाने के लिए खंबे को पकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों वीडियो को नेपाल बाढ़ का बताकर लगातार वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। इस वीडियो को इसी दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे दोनों वीडियो का सच और झूठ जानना बहुत जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले दोनों वीडियो को बहुत गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में ऐसी कई गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के दावे पर शक हुआ। हमने पाया कि बंदर और बच्ची के हाव भाव काफी रोबोटिक नजर आए, जिसे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बच्ची और बंदर बर्ताव कर रहे हैं वो काफी अटपटा नजर आता है। वो एक ही तरह से रिएक्ट भी कर रहे हैं। बंदर का बूट पर बैठना भी काफी असामान्य जैसा नजर आता है। वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि बच्ची पलके भी नहीं झपक रही, बच्ची चीख रही है और जिस जगह बच्ची खंभे को पकड़कर खड़ी है उसके आगे पानी का बहाव ही नहीं देखा रहा। जबकि अमूमन ये होता है कि पानी जब रफ्तार में आगे बढ़ता है तो उसका असर जो है चारों तरफ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। इसके अलावा बंदर की प्रतिक्रिया भी सामान्य जैसी नजर नहीं आ रहा है। इसमें हमारा पहला सवाल यह है कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी हमें क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं एडिटेड मॉर्फ्ड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा। क्या कुछ सच निकलकर सामने आया, पड़ताल करती रिपोर्ट देखिए।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम दावे की पड़ताल में जुटी। दोनों वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने लगातार सर्च किया, लेकिन इस दौरान हमें इनके बारे में कोई भी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल हो रहे दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सही होता तो कहीं न कहीं इसके बारे में खबरें जरूर होती। इसके बाद हमने दोनों वीडियो को बारी बारी ध्यान से देखा। इस दौरान हमें इसमें कुछ गलतियां नजर आईं, जिससे हमें दावे की असलियत पर शक हुआ। बाढ़ में फंसे बंदर वाले वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने उसे AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन की मदद से सर्च किया। टूल के एनालिसिस के अनुसार वायरल वीडियो की AI निर्मित होने की करीब 100% संभावना है। हमने दूसरे AI डिटेक्शन टूल जीरो GPT की मदद से भी इस वीडियो को सर्च किया। इस टूल ने भी वीडियो के AI से बने होने के संकेत दिए। दूसरे वीडियो के बारे में जानने के लिए हमने AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन की मदद ली। इस टूल के एनालिसिस के अनुसार वायरल वीडियो के AI निर्मित होने की करीब 100% संभावना निकली। हमने वीडियो के की फ्रेम्स को AI डिटेक्शन टूल AI और नॉट से भी जांचा। इस टूल ने भी वीडियो के AI निर्मित होने के संकेत दिए। इस तरह हमारी पड़ताल में दोनों वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा झूठा साबित हुआ। नेपाल की बाढ़ में फंसे बंदर और बच्ची के रेस्क्यू के दोनों वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि AI निर्मित हैं। इन्हें अब गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: देखिए, सोशल मीडिया पर भारत का बताकर एक वीडियो खूब तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को हाथ बांधकर पूरी तरीके से पीटा गया। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, रिपोर्ट देखिए।
1: दीवार से एक व्यक्ति के हाथ बंधे हुए हैं और सामने दो लड़के हाथ में लाठी लिए हुए हैं। बिना रुके वो एक के बाद एक प्रहार करते जा रहे हैं। थक जाने के बाद एक युवक थोड़ी देर के लिए जरूर रुकता है, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद वो लाठियों की बरसात करने लगता है। पिटने वाला शख्स रहम की गुहार लगाता है, लेकिन इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता। एक महिला रोते रोते जरूर बीच में आ जाती है, उसे भी वहाँ से दूर चले जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। तुर्की का कुछ एक्स हैंडल्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया कि ये भारत में हो रहा है। एक एक्स यूजर ने तुर्की में वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, भारत में मानवता और न्याय को पैरों तले रौंदा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। हम दुनिया से इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करते हैं। हम तब तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता और उत्पीड़न समाप्त नहीं हो जाता। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिया की दीवार से एक व्यक्ति के हाथ को बांधकर पूरी तरीके से पीटा जा रहा है। वीडियो को धार्मिक एंगल देकर भारत का बताकर वायरल करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शख्स को बिना किसी कारण के खूब पीटा गया। जब वायरल वीडियो को तेजी से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने को लगा तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सच है या झूठ है। तो वीडियो की जांच के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे

0: पहले वायरल हो रहे वीडियो को देखा और इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे ये इशारा मिला कि वीडियो को लेकर गलत कहानी पेश की जा रही है। वीडियो में जो आवाजें हमको सुनाई थी वो बांग्ला की हैं, तो ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। लेकिन जब हमने पश्चिम बंगाल के लोकल मीडिया आउटलेट्स को खंगाला तो हाल फिलहाल में हमें ऐसी कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि इस वीडियो का संबंध पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर इससे मुद्दा जरूर बनाया जाता और विपक्षी पार्टियां पीछे नहीं हटती। वीडियो में एक जगह मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा है। जब हमने इसके बारे में पड़ताल की तो ये सामने निकल कर आया कि नंबर जो है बांग्लादेश के एक मदरसे का है। इससे यहां तो ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो बांग्लादेश का हो सकता है। तो देखिए, वीडियो में ये भी देखने को मिला कि जिसे देखकर हमें इसके दावे पर शक हुआ, सरेराह व्यक्ति को पीटा जा रहा है और लेकिन बचाने के लिए सिर्फ महिला ही सामने आती है, जबकि पुलिया के ठीक पीछे एक शख्स आराम इस घटना को देखते हुए मोबाइल से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। ये कैसे संभव है? अगर बिना वजह किसी व्यक्ति को इस तरीके से पीटा जाएगा तो शोर भी मचेगा और आसपास लोग भी इकट्ठा हो जाएंगे, पीटने की वजह भी पूछी जाएगी। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि सिर्फ धार्मिक पहचान की वजह से व्यक्ति को पीटा गया या इसके पीछे कोई और कारण है? पूरे वीडियो में बांग्ला टेक्स्ट लिखे हुए नजर आते हैं साफ तौर पर। जब हमने उसका अनुवाद किया तो इनका सारा संबंध जो है बांग्लादेश से निकल रहा है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल यह है कि सबसे अहम सवाल भी है ये कि बांग्लादेश के वीडियो को भारत का बताकर जानबूझकर धार्मिक रंग तो नहीं दिया जा रहा है? क्या कुछ सच?
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो जब तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 9 और 11 जुलाई को बांग्लादेश के एक फेसबुक यूजर के किए गए पोस्ट मिले। इनसे हमें ये जानकारी मिली कि ये वीडियो बांग्लादेश का है। वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें इस बात की पुष्टि करने वाले कुछ और सबूत मिले। पुलिया की साइड वॉल पर बांग्ला भाषा में लिखा था गुलशन अकादमी और कॉलेज। गूगल मैप्स पर सर्च करने पर हमें ये स्कूल बांग्लादेश के ढाका के ग्रेवयार्ड रोड पर मिला। इसके अलावा वीडियो में बाएं तरफ की बाड़ पर तहमीदुल कुरान कैडेट मदरसा में एडमिशन का विज्ञापन भी देखने को मिला। सर्च करने से पता चला कि इसी नाम का मदरसा ढाका शहर के उत्तर में अब्दुल्ला बाग में है। बाड़ के एक कोने पर एक बांग्लादेशी मोबाइल नंबर भी लिखा था। ये नंबर भी एक और मदरसे से जुड़ा हुआ था। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। रिद्धेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: घर में माहौल पूजा पाठ भक्ति और आराधना का हो तो इसे सीखने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद दिनचर्या में शामिल हो जाता है। देखिए इस छोटे से बच्चे को कैसे अपनी प्यारी प्यारी टूटी फूटी आवाज में भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणाम मंत्र गाने की कोशिश कर रहा है, मानो उसे सब आता है। बच्चे का ये अंदाज लोगों का दिल छू रहा है।

0: チャリポンコントラ。
1: सीखने की चाह हो तो उम्र मायने नहीं रखती, और फिर छोटे बच्चे तो कॉपी करने में माहिर होते हैं, बस दिलचस्पी होनी चाहिए। अब इस नन्हे उस्ताद को ही देख लीजिए, स्केटिंग में डबल क्रॉस ऐसे कर रहा है मानो कोई डांस मूव हो। जो भी हो, छोटे बच्चे का ये हुनर देखने लायक है। एक्टिंग में उस्ताद है ये लड़की। मौत का सामना कैसे करते हैं अलग अलग देशों के लोग बताने की कोशिश हो रही है। कोशिश है कि इसमें वहाँ के लोगों के जीने का अंदाज भी झलके। लोग बच्चे के सबने की जमकर तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं इन्हें भला ऑस्कर की क्या जरूरत,

0: देखते जाइए इन दोनों भाइयों की हरकतें, कोई कम नहीं है शरारत में। कपड़े सूख रहे हैं, एक को लगा कि चलो झूला झूल लेते हैं, दूसरा भी पीछे हो लिया, लेकिन इन्होंने जो किया उसने पहले की सांसें अटका दी। देखिए कैसे हवा में झूल गया बेचारा, रो रो कर बुरा हाल है। दोनों मासूम बच्चों की हरकत सोशल मीडिया यूजर्स के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। दोनों के बीच का प्यार और खुशी इंटरनेट की हर सीमा पार कर लोगों के दिलों को गहराई से छू रहा है। बिना पैर और एक हाथ वाले बच्चे और उसके पिता का ये प्यारा पल लोगों को भावुक कर रहा है। घर के दरवाजे के पीछे पिता खड़े हैं और फर्श पर उनका मासूम बच्चा लेटा हुआ है। बच्चा अपने पिता के साथ एक प्यारा सा प्रैंक कर रहा है और बेहद खुश नजर आ रहा है। ये पूरा भावुक पल बच्चे की माँ अपने कैमरे में कैद कर रही है। जैसे ही बच्चे को आहट होती है कि उसके पापा आ गए हैं, वो अपने एक हाथ के सहारे फर्श पर लुढ़कते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। फिर पापा पापा कहते हुए वो अपनी ही भाषा में खिलखिलाने लगता है। फिर पिता नाटक करता है कि वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा। इस पर बच्चे की खुशी और उत्साह देखने लायक है। थोड़ी देर बाद पिता नीचे झुककर बच्चे को गुदगुदी करते हैं और फिर उसे बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लेता है। इस मासूम चेहरे की मुस्कान ने सोशल मीडिया यूजर्स को इमोशनल कर दिया है। बच्चे के पास आधुनिक चित्रकारी के महंगे सामान या बड़े संसाधन नहीं है, लेकिन उसकी कला और रचनात्मकता का स्तर देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। बच्चे ने कागज, रंग और पत्तियों की आकृति का बेहद खूबसूरती से उपयोग करते हुए एक विशाल पत्ते पर विश्राम करते बाल कृष्ण और पास में खिले कमल के फूल की एक 3D जैसी कलाकृति तैयार की है। कृष्ण के माथे पर मुकुट, मोरपंख और उनके मुख के भाव इतने सजीव प्रतीत होते हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं।
1: और हम इतना मेहनत करते हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें।
0: ये अद्भुत वीडियो लोगों के बीच छाया हुआ है। आपने कभी ऐसी कार देखी है जो बाइक से भी पतली हो? इटली के एक जुगाड़ मैकेनिक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वाले दंग रह गए हैं। इस शख्स ने 1993 के पुराने फिएट पांडा कार को बीच से ऐसा काटा छांटा कि उसे दुनिया की सबसे पतली कार बना डाला। उत्तरी इटली के रहने वाले मैकेनिक एंड्रिया माराजी ने अपने इस पुरानी कार की चौड़ाई घटाकर सिर्फ एक तिहाई कर दी है। मजेदार बात ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसे दुनिया की सबसे संकरी कार मान लिया है। इस अजीबोगरीब कार की चौड़ाई महज 50.20 सेंटीमीटर है, जबकि लंबाई 3.40 मीटर और ऊंचाई 1.45 मीटर है। एंड्रिया को इसे तैयार करने में पूरे 12 महीने लगे, जिसमें उन्होंने जी तोड़ कटिंग और वेल्डिंग की है। ये पूरा प्रोजेक्ट एंड्रिया के परिवार के ऑटो रिसाइकलिंग बिजनेस यानी कबाड़खाने में तैयार किया गया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इस कार का 99% हिस्सा पुरानी फिएट पांडा के ओरिजिनल पार्ट से ही बना है। अब बात करें अंदर के स्पेस और स्पीड की, तो इसमें सिर्फ एक ही आदमी के बैठने की जगह है। गाड़ी में छोटा सा स्टीयरिंग व्हील, 4 पहिए, एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक हेडलाइट और 2 रियर लाइटें दी गई हैं। इस अनोखे वाहन का वजन सिर्फ 264 किलो है और इसकी टॉप स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कार पूरी तरह से फंक्शनल है, लेकिन सेफ्टी की वजह से अभी इसे सड़कों पर चलाने की कानूनी इजाजत नहीं मिली है। जब तकनीक और संस्कृति का मिलन होता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। माया नाम के एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने मराठी के एक सुपरहिट गाने पर गजब का भारतीय शास्त्रीय नृत्य पेश कर लोगों को हैरान कर दिया है। इस रोबोटिक चमत्कार के पीछे भारत के ट्यूजडे लैब्स और मास्टर्स यूनियन के होनहार छात्रों की टीम है, क्योंकि रोबोट से क्लासिकल डांस करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसे संभव बनाने के लिए डेवलपर्स ने सबसे पहले मोशन कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल करके एक असली शास्त्रीय नर्तकी के डांस मूव्स को रिकॉर्ड किया। इसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए माया को बिना अपना संतुलन खोए इन कठिन कदमों को बार बार दोहराने की ट्रेनिंग दी गई। यही वजह है कि वीडियो में माया बेहद सहजता और सफाई के साथ थिरकती हुई नजर आती है।

0: दर्जनों लोग जमीन की तरफ झुककर एक ब्रिज की तरह लाइन बनाकर खड़े नजर आ रहे हैं। इशारा मिलते ही ये डॉग तेज स्पीड में दौड़ता है, उन लोगों की पीठ पर दौड़ने लगता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे रास्ते उसने एक बार भी अपनी रफ्तार कम नहीं की है और न ही उसका संतुलन बिगड़ने दिया। इस कामयाबी के पीछे उसके मालकिन और ट्रेनर जेनिफर फ्रेजर का हाथ है। पूरे टास्क के दौरान वो कुत्ते के बगल में दौड़कर उसे गाइड करती दिखी। उनकी सटीक ट्रेनिंग के बदौलत ही ये डॉग बिना किसी गलती के इस मुश्किल टास्क को कम समय में पूरा करके कनाडा में इंसानों के ऊपर से सबसे ज्यादा बार कूदने का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस कुत्ते का नाम शार्डोने है और इसने महज 60 सेकंड में 56 लोगों की कतार को पार किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस कारनामे का वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत का टंका, लगातार चौथी बार बना चैंपियन साउथ कोरिया को हराकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया। दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की धांधली पर लगेगी लगाम, कैमरों से लैस होंगे सेंटर्स, कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच होगी हाईटेक। रिटर्न सीजन के आगाज पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचा पैलेस ऑन व्हील्स का शाही काफिला, तिलक फूल मालाओं और सांस्कृतिक रंगों के साथ हुआ विदेशी मेहमानों का स्वागत। पुणे में रेत में सजा बप्पा का पंचमुखी रूप, आस्था और कला का दिखा अद्भुत संगम, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई प्रतिमा। तमिलनाडु के शिवगंगा में गणेश उत्सव पर गणेश चतुर्थी रथ फेस्टिवल का आयोजन, विशेष रथ पर बप्पा को कराया गया नगर भ्रमण, आस्था और संस्कृति के दिखे रंग।
2: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, अच्छी खबर सच्ची खबर, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पहले शानदार खबर आपको दे दें, भारत ने दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराकर जूनियर हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया और इसके साथ ही टीम इंडिया ने जूनियर विश्व कप में भी जगह बना ली। आपको बता दें भारतीय जूनियर हॉकी टीम पिछले टूर्नामेंट में भी चैंपियन बनी थी और इस बार फिर से खिताब का बचाव करने में सफल रही है। चैंपियंस टीम के सदस्यों को 3 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने दक्षिण कोरिया को फिनाले में 4-1 से हरा दिया और जूनियर हॉकी एशिया कप 2026 का जो खिताब है वो अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही देखिए, लगातार ये दूसरी बार है जब टीम इंडिया ने जूनियर विश्व कप में भी अपनी जगह बनाई और भारतीय जूनियर हॉकी टीम पिछले टूर्नामेंट में भी जीती थी और एक बार फिर से अपने खिताब को बचाने में सक्सेसफुल रही है। 3 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का इनाम भी साथ में दिया जा रहा है। आपको बता दें जूनियर हॉकी एशिया कप में अब भारत जो है जीत चुका है। बात करेंगे गणेशोत्सव की, देखिए कल गणेश चतुर्थी है इसलिए कल से गणेशोत्सव की शुरुआत होगी, तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और बप्पा का आगमन हो जाएगा। भक्त जो है बेसब्री से विघ्नहर्ता का इंतजार कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शहरों की अलग अलग तस्वीरें, हर जगह भगवान गणेश के आगमन की तैयारियां तमाम चल रही हैं। इंदौर में मूर्तिकार विघ्नहर्ता की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगातार जुटे हुए हैं। यहाँ देखिए दूसरे शहरों से आकर देखिए मूर्तिकार जो है प्रतिमाएं बनाते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम देखें डिमांड दगड़ू शेठ और वक्रतुंड और सिद्धिविनायक स्वरूप की रहती है। महाराष्ट्र के अकोला में गणपति उत्सव की तैयारियां देखने ते ही बन रही हैं और बप्पा की स्थापना को लेकर बाजार अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से गुलजार हैं और भक्त अपने पसंदीदा बप्पा को घर लाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। गणपति की अलग अलग आकर्षक प्रतिमाओं से बाजार पूरी तरीके से सजे हैं, साथ ही सजावट के सामानों की भारी डिमांड देखने को मिल रही है। अब जरा इंदौर के गणपति को देखिए जहां के लंबोदर पर राजशाही का असर जो है देखने को मिला। यहां के बप्पा के सिर पर सजी है पगड़ी जो कभी होलकर राजघराने की पहचान हुआ करती थी। खास बात देखिए ये है इसमें कि इस परंपरा को निभाने के लिए परिवार की छठी पीढ़ी के साथ सातवीं पीढ़ी भी आगे आ रही है। विदेशों में रहने वाले परिवार के सदस्य भी गणेशोत्सव से पहले जो है इंदौर लौटकर इस विरासत में अपना योगदान देते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बीच भी दुर्ग में अगर हम देखें तो विराजमान जन जन के आराध्य देव भगवान त्रिनेत्र गणेश के 3 दिन के लक्की मेले की शुभारंभ हो चुका है और अपार श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा है आसपास और दूर दराज की बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश के दरबार में पहुंचे और कुशलता की कामना की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोमवारिया में विराजमान 15 फीट ऊंचे चिंतामण गणेश जी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। 1862 में रेत और चूने से निर्मित भगवान गणेश की एक विशाल प्रतिमा 164 साल बाद भी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। और कई शहरों में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: 14 सितंबर से भले ही गणपति उत्सव का शुभारंभ हो रहा हो, लेकिन उत्साह अभी से लोगों में भरना शुरू हो गया है। सबसे पहले बात मुंबई के सबसे अमीर गणपति यानी जीएसबी मंडल के गणपति की। जीएसबी सेवा मंडल किंग सर्कल के महागणपति बाप्पा का पर्दा उठ चुका है और उनकी पहली भव्य झलक सामने आ चुकी है। परंपरा के अनुसार बप्पा का ये पहला दिव्य दर्शन 12 सितंबर 2026 को रात ठीक 8 बजे भक्तों को कराया गया। हालांकि औपचारिक रूप से महागणपति के दर्शन गणेश चतुर्थी के दिन यानी कल 14 सितंबर से ही होंगे। देश के सबसे अमीर गणपति कहे जाने वाले बप्पा को इस बार भक्तों द्वारा चढ़ाए गए 66 किलो से अधिक सोने और 335 किलो से अधिक चांदी के बेशकीमती गहनों से सजाया गया है। इतना ही नहीं, इस साल जीएसबी मंडल ने पूरे आयोजन के लिए 703 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐतिहासिक बीमा कवर लिया है, जो कि भारत में किसी भी त्योहार के लिए अब तक का सबसे बड़ा बीमा है। बताया जा रहा है कि इस बार बप्पा की मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी से बनी है, और मंडल ने कागज बचाने के लिए रसीदों को डिजिटल यानी क्यूआर कोड आधारित कर दिया है। जीएसबी सेवा मंडल की ओर से इस बार 72वां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आमतौर पर मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणपति की मूर्तियां बनाई जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कादियम में एक नर्सरी में पौधों से लंबोदर की प्रतिमा बनाई गई है। पौधों की 9 फीट की प्रतिमा को बनाने में किसान को 2 साल का वक्त और मेहनत लगी है। युवा किसान डूलम धनराजू ने बड़े ही सलीके और धैर्य के साथ पौधों से गणपति की प्रतिमा बनाई है। सबसे पहले धनराजू ने लोहे का एक ढांचा बनाया, उसके चारों ओर मलिपिया के पौधों से घेराव किया और नियमित रूप से पौधों की शाखाओं की छटाई की। तब जाकर 2 साल की मेहनत के बाद गणपति की जीती जागती पौधों से प्रतिमा तैयार हुई। धनराजू इस अनोखी रचना को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को भेंट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी और एजुकेशन हब के रूप में पहचान रखने वाले भिलाई दुर्ग में गणेश उत्सव को लेकर इस बार एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है। यहां के कॉलेजों के छात्र भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा तैयार कर रहे हैं जो न केवल पूरी तरह इको फ्रेंडली है, बल्कि विसर्जन के बाद पौधों का रूप लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगी।
1: हमने गणेश जी बनाए अपने हाथ से जो कि इको फ्रेंडली हैं। इनको बनाते वक्त हमने इनमें गेंदे के और सरसों के बीज डाले हैं और धान से डेकोरेट किया है। बिल्कुल हर चीज़ें हैं जो वो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की है, किसी भी प्रकार के केमिकल्स का हमने यूज़ नहीं किया है, और इस सब के चलते हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं अपने समाज में।
2: प्राकृतिक गणेश की मूर्ति बनाई है जिसे हमने प्योर मिट्टी से बनाया है, और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक और पेरिस और किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ नहीं मिले हैं। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है।
0: इन प्रतिमाओं को बनाने में पौधों के बीजों का उपयोग किया गया है ताकि जब प्रतिमा का गमले में विसर्जन किया जाएगा तो ये पौधों का रूप ले लेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी का माहौल भी पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के भव्य आगमन को देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम गणपति के स्वागत में उमड़ रहा है। ढोल नगाड़ों बैंड और दमदार डीजे की गूंज के बीच युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। माहौल ऐसा हो गया है मानो गणपति उत्सव के लिए मुंबई की झलक झांसी की सड़कों पर उतर आई हो। आगे आगे गणपति की प्रतिमा और पीछे पीछे नाचते गाते युवाओं की भीड़, पूरा शहर अभी से ही गणेश उत्सव के रंग में रंग गया है। यूपी के संभल के चंदौसी में श्री गणेश चतुर्थी मेले का शुभारंभ हो गया है। अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों ने फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। मेले में स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। चंदौसी का गणेश चौथ मेला सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। पूजा के बाद भगवान श्री गणेश की मुख्य प्रतिमा को गणेश मंदिर से फूल डोल भी रखा गया। गाजे बाजे के साथ फूल डोल शोभा यात्रा गणेश मेला ग्राउंड पहुंची और इसके बाद सभी लोग मेला ग्राउंड स्थित गणेश स्तंभ पर पहुंचे। चंदौसी में लोग अपने घरों में भी भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और मेले में उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। महाराष्ट्र के अकोला शहर में गणेश उत्सव की अपनी अलग पहचान है। यहाँ विराजमान है अकोलियाचा राजा मनाचा श्री भारा भाई गणपति। करीब 250 साल पुरानी इस परंपरा की खासियत सिर्फ इसकी ऐतिहासिक विरासत नहीं बल्कि सामाजिक एकता, पीढ़ियों से चली आ रही सेवा और बप्पा के प्रति अटूट श्रद्धा है। 12 अलग अलग समाजों के लोगों ने मिलकर इस गणपति की स्थापना की थी और इसीलिए इनका नाम पड़ा बारा भाई गणपति। आज भी इस परंपरा से जुड़े परिवार अपनी कई पीढ़ियों की सेवा को उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
3: गणपति जी के 10 दिन जो होते हैं उसमें मतलब पूरा अकोला शहर जो है वो आनंदित रहता है। और जैसे हमारे जो गणपति बप्पा है ये मान के गणपति है, अकोला के जैसा प्रथम क्रमांक के गणपति है।
0: मोरना नदी के किनारे विराजमान बारा भाई गणपति की स्थापना पेशवा काल के दौरान करीब 1780 के दशक में हुई थी। 12 बलूतेदार समाज व्यवस्था से जुड़े 12 अलग अलग समाजों के लोगों ने मिलकर इस गणपति की स्थापना की थी। आज भी इस परंपरा की सबसे खूबसूरत तस्वीर आज भी गणेश उत्सव के दौरान देखने को मिलती है।
4: किसी जमाने में बहुत से पुराने लोगों ने कुछ 100-200 साल 150 साल पहले जब भी हुआ स्थापना हुई थी सब कुछ 12 लोगों ने मिलकर बिठाया था, वो चले गए। फिर बाद में इंगड़े परिवार के पास गणपति रहा, उन्होंने जब से वो लोग 150-200 साल हो रहे तब से बिठा रहे गणपति बिठा रहे हैं।
0: पीढ़ियां बदली, सेवा की परंपरा नहीं बदली, यानी बाप्पा की पालकी उठाने का मान एक पीढ़ी अपने बच्चों को सौंपती है और अगली पीढ़ी उसी श्रद्धा के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाती है। दुर्ग से रघुनंदन पंडा, झांसी से अजय झा, अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: देश में शहर शहर गणेशोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, इसके लिए शानदार तैयारियां चल रही हैं और हर तरफ कुछ अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो साथ ही साथ इस बार गणेशोत्सव के जरिए समाज में कुछ बेहतरी का संदेश देने का भी प्रयास है। रिपोर्ट देखिए।
6: हाथ में भले ही त्रिशूल है लेकिन ऐसा लगता है ये प्रतिमा जैसे जिरह बख्तर से लैस है। रोबोट की झलक वाली गणपति की ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। ये तस्वीरें हैदराबाद के उपगुड़ा इलाके के गणपति पंडाल की हैं। यहाँ सिर्फ गणपति ही नहीं बल्कि उनके वाहन मूषक राज भी अत्याधुनिक रोबोट के समान दिख रहे हैं। यहाँ पर गणपति और मूषक राज का ये रूप देश की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की झलक दिखला रहा है। हैदराबाद में इस साल गणेश उत्सव के सिलसिले में विकसित भारत 2047 की थीम पर अनोखा पंडाल सजाया गया है। इसमें गणपति प्रतिमा की अनोखी सजावट और झांकियों के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को दर्शाया गया है। पंडाल में खेती, मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक तकनीक के साथ साथ बुलेट ट्रेन का मॉडल भी पेश किया गया है।
7: यह हमारा 50th ईयर है, मतलब 50वीं साल है। इस बार हमारे पिताजी उनके तरफ से सीनियर लोग 4 जनरेशन होने के बाद यह अभी हमारा जनरेशन में आया। इस बार 2047 का विकसित भारत 2047 तक कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में रहता, अपना भारत कितना आगे जाके कितना स्मार्ट सिटी बनता, कितना स्मार्ट इंडिया बनता, वो हम दिखाने का प्रयत्न ही है। ये विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करने का वजह है। वही थीम में सिलेक्शन के वजह से गणेश जी को भी जी आर्मर के रूप में हम लोग कलाकार से तैयार कराए हुए हैं।
6: एक ओर गणपति के माध्यम से देश की विकास यात्रा दिखाई जा रही है तो दूसरी ओर गणेश उत्सव में पर्यावरण की रक्षा पर भी फोकस किया जा रहा है। ये तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां कारीगर गणेश प्रतिमाएं बनाने में अब केमिकल और POP का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। बप्पा की मूर्तियों को आकार और रंग देने का काम अंतिम चरण में है। और साथ ही साथ इनके जरिए आबो हवा को बचाने का भी संदेश दिया जा रहा है।
8: 14 सितंबर को गणपति आ रहे हैं तो हम इधर मूर्ति लेने के लिए आए हैं। इधर की मूर्ति बहुत ही मतलब अच्छी वगैरह है और ये जैसे केमिकल भी रहते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, ये पानी में भी आसानी से पिघल जाती है।
9: यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ है और ये केमिकल भी रहित है और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है।
6: वहीं गुजरात के सूरत में गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए मिट्टी से बनी गणपति प्रतिमाएं बांटने की पहल शुरू की गई है। इस अभियान के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर पिछले करीब 4 सालों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया जा रहा है।
10: मिट्टी की मूर्ति से वो मिट्टी जल्द पानी में घुल जाती है और ये हमारी जो मुहिम है उसके अंदर हम लोग वही करना चाहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति के हिसाब से जो कुंड है, जो फ्लावर पॉट आता है, उसके अंदर वो मूर्ति विसर्जन करेंगे तो उसपे एक छोड़ उत्पन्न होगा और छोड़ में रनछोड़ भी उसमें हो जाएगा। तो गणेश जी का ये कृपा सबको हर हमेश मिलती रहेगी।
11: आज हमारे यहाँ गणेश उत्सव समिति द्वारा कम से कम 250-300 मूर्ति का वितरण किया जाएगा जो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, जिनमें कई वनस्पति द्वारा बीज डाला गया है, जो अपने घर के अंदर या गमले के अंदर रखकर या छोटा सा बर्तन के अंदर रखकर विसर्जन कर सकते। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ये हमारे गणेशोत्सव समिति ने कम से कम 4 साल से ये निर्णय किया गया है और 4 साल से हम लोग ये मूर्ति वितरण कर रहे हैं।
6: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों को गणपति की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की कला सिखाई गई, ताकि बच्चों के जरिए समाज को भी पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश मिले।
12: उसमें बच्चों ने जो मूर्तियां तैयार की, करीब 70 मूर्तियां तैयार की गणेश की अलग अलग फॉर्म्स में, और उसमें मिट्टी का ही इस्तेमाल किया है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि कल को अगर ये विसर्जित करें तो पानी में किस तरीके का कोई केमिकल इन्वॉल्व ना हो या उसके अंदर मिक्सिंग ना हो जो नुकसान ना दे पर्यावरण को।
6: बच्चों ने भी मिट्टी की शानदार गणेश मूर्तियां बनाई, उनमें रंग भरे और इसके फायदे से वाकिफ दिखे।
13: मिट्टी के लिए इसलिए बनाई क्योंकि पानी में घुल सके, क्योंकि जो पीओपी पुट्टी की मूर्तियां होती हैं वो घुलती नहीं है, पानी में भी पॉल्यूशन होता है, मछलियां को भी परेशानी होती है, वो मर जाती हैं, इसलिए हमने मिट्टी के बनाई के पानी में जाकर मिल जाए।
14: कलर कैसे कौन सी किए इस पे?
13: वाटर कलर
14: इनकेबल कलर ना।
13: हाँ।
14: तो वो बना के अब क्या करोगे फिर?
13: अब इनके पूजा वगैरह करेंगे।
6: कुल मिलाकर शहर शहर गणपति उत्सव के अनोखे रंग देखे जा रहे हैं और ये त्योहार धार्मिक आयोजन से आगे बढ़कर समाज में बेहतरी का संदेश देने का माध्यम बन गया है, जिसका लाभ आने वाले समय में दिख सकता है। पठानकोट से पवन सिंह और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: देखिए, उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व कल मनाया जाएगा और इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं। तो चलिए विस्तार से जानें हरतालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजन विधि।

0: सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है हरितालिका तीज का त्योहार। पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिने निर्जला व्रत रखती है। ये व्रत अत्यंत कठिन और पुण्यदायिनी माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल तृतीया तिथि 13 से आरंभ होकर 14 सितंबर को समाप्त हो रही है। रविवार 13 सितंबर यानी आज 7:14 से तृतीया तिथि आरंभ हो चुकी है और ये 14 सितंबर सोमवार को सुबह 7:30 पर समाप्त होगी। इस तरह से उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का त्योहार 14 सितंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। ऐसे में हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सुयोग्य पति की कामना और जीवन साथी के दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। सौभाग्य बढ़ाने वाले व्रत शुभ और फलदायी कैसे हो, आइए जानते हैं। प्रातः काल से संकल्प लेकर निर्जला उपवास रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। शिव पार्वती के साथ ही गणपति का पूजन करें। सायंकाल भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। ये पूजा पंचोपचार या षोडशोपचार करनी चाहिए। नैवेद्य में सूखे मेवे, ऋतुफल, मिठाई अर्पित करें। माँ पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारण करें। इस बार महिलाएं सुबह के शुभ मुहूर्त में अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करेंगी। इसके ठीक बाद दोपहर में विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना कर गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। यानी एक ही दिन माता पार्वती, भगवान शिव और लाडले गजानन की एक साथ आराधना की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: दिल्ली छावनी की प्रसिद्ध श्री रघुनंदन लीला समिति की ओर से रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच भूमि पूजन और ध्वजा वंदन समारोह का आयोजन किया गया। तमाम तस्वीरें देखिए, समिति के प्रधान अरुण गोयल ने बताया कि देखिए इस वर्ष रामलीला का भव्य मंचन 11 अक्टूबर से 120x60 फीट के विशाल मंच पर होगा। रामलीला को और आकर्षक बनाने के लिए इस बार AI तकनीक का विशेष प्रयोग किया जाएगा, जिससे देखिए रामलीला के प्रमुख दृश्य बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जीवंत हो गए। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में 1954 से रामलीला का मंचन हो रहा है और वर्ष 2026 में ये अपने 72वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। सेना के जवानों और अधिकारियों के परिवारों सहित बड़ी संख्या में दर्शकों को रामलीला का बेसब्री से इंतजार रहता है। भूमि पूजन समारोह में विधायक श्याम शर्मा, भाजपा जिला प्रभारी मनीष सिंह, समाज सेवी इंद्रदेव त्रिपाठी और दिल्ली कैंट परिषद सदस्य राजेश गोयल सहित कई गणमान्य लोग जो हैं उपस्थित रहेंगे।
2: रामलीलाओं का शुभारंभ यानी श्री गणेश हो चुका है और पहले भूमि पूजन से शुरुआत होती है और कई रामलीलाओं में भूमि पूजन की ये परंपरा जो चलती है उसके तहत पितृपक्ष से पहले, उससे पहले का रविवार जिस दिन भूमि पूजन की परंपरा है और ये दिल्ली कैंट के रघुनंदन लीला समिति में भूमि पूजन का एक कार्यक्रम चल रहा है।
3: रामलीला की भूमि पूजन से हमारी लीला की शुरुआत हो जाती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। 71 साल हो गए, बदलते गए, हम भी बदलते गए, आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम रामलीला करते हैं। रामलीला कोई नाटक नहीं है, आत्मा से परमात्मा को मिला देती है रामलीला। तो सौभाग्य जी, हम सब लोगों को ये सौभाग्य मिला हुआ है जिसकी वजह हम रामलीला कर पा रहे हैं।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की, भगवान गणेश के विशिष्टता की और उनके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:55 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी के पर्व के बारे में, गणपति महोत्सव के बारे में, इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने में मासिक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन गणेश जी का अवतरण हुआ था। ये भी माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि, जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अवधि होती है अनंत चतुर्दशी तक, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार ये पर्व 14 सितंबर को आरंभ हो रहा है और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव समाप्त हो जाएगा। मेष राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बनते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, गणपति महोत्सव में हम अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की स्थापित करते हैं और अलग अलग तरह की भगवान गणेश की मूर्तियों का अलग अलग महत्व है। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। हैं तो सब गणपति की ही मूर्तियां, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा उपासना जिस मूर्ति की होती है वो होती है पीले रंग के गणपति की, और रक्त वर्ण लाल रंग के गणपति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। नीले रंग के जो गणेश जी की मूर्ति है इनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा नहीं होती। हल्दी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया गया हो उस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं, और ये हरिद्रा गणपति की मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए, जैसे विवाह और संतान के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, सांवले रंग के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है, जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। सफेद रंग के

शक्ति मिलेगी। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति, लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं, जो संकटों का नाश करते हैं। इनकी उपासना से जीवन के हर संकट का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण और 10 भुजा वाले गणपति को महागणपति कहा जाता है। इनके अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं, ये महागणपति हैं, सारे स्वरूप इनके अंदर विद्यमान होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप गणेश महोत्सव पर गणपति की स्थापना करना चाहते हैं तो गणपति की मूर्ति मध्यम आकार की होनी चाहिए। पीले रंग की या लाल रंग की मूर्ति स्थापित करना बेहतर होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय ना लें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, गणेश चतुर्थी के अवसर पर अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तब तो आपको पूजा करनी ही है, और अगर आपने मूर्ति स्थापित नहीं भी की है तो भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसका सही तरीका क्या होगा? गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना, मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय में करिएगा, और अगर आपने पूरे गणेश महोत्सव के लिए गणपति की मूर्ति स्थापित की है तो साथ में कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। दिन भर अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर लिक्विड डाइट, जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास जितना संभव हो भगवान गणेश की पूजा करें। घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं या एक ही लड्डू को उतने बार अर्पित करें। साथ ही साथ दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित

अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गणेश वक्रतुंडाय हूम, या संकट नाशन गणपति स्तोत्र, या गणपति अथर्व शीर्ष, जो संभव हो उसका पाठ करिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन निगाह नीची करके अर्घ दीजिएगा। चतुर्थी के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखेंगे तो आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्र का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार करिए, भगवान गणेश के मंत्र का जप करिए, या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिएगा, इस दोष का उपचार हो जाएगा। जब आपकी पूजा हो जाए तब प्रसाद लोगों में बांटिए, प्रसाद का वितरण करिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं इस सरल तरीके से, चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, छोटी यात्रा हो सकती है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। गणेश चतुर्थी का पर्व हम सबको मनाना है, भले ही हम घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित ना करें, लेकिन 14 सितंबर को हम सबको गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए। क्या सावधानियां रखेंगे? चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा, काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। गणेश जी की मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो मध्यम आकार की होनी चाहिए। अगर खुद नदी से मिट्टी ला करके आप गणेश जी की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन मत करिएगा। नजर नीची रख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा।
गणेश जी को फल फूल मिठाई धूप दीप नैवेद्य जो चाहे चढ़ाएं प्रेम और श्रद्धा से, लेकिन गणेश जी को कभी भी तुलसी दल न चढ़ाएं। और अगर चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं तो बेवजह क्रोध ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, सात्विकता बनाए रखें। इस बार जो गणपति की स्थापना का और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 14 सितंबर को होगा प्रातः 11:01 से दोपहर 1:30 के बीच में। इस समय में अगर आप गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको लाभ होगा। देखिए गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, आपके घर में पहले से ही गणपति की मूर्ति जरूर होगी, आप उन्हीं गणपति की पूजा गणेश चतुर्थी पर यानी 14 सितंबर को दोपहर के समय में करिएगा, आरती करिएगा, मंत्र पढ़िएगा और संध्या काल में उनकी पूजा करिए, चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए। बिना प्रतिमा स्थापित किए हुए भी अगर आप नियम और श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करेंगे या करेंगी तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप गणेश महोत्सव में गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करते हैं तो नियमित रूप से सुबह शाम उनकी उपासना करें और घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखें। घर का भोजन माहौल वातावरण जितना पवित्र होगा उतना ही बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर क्या करेंगे, गणेश चतुर्थी पर एक दूर्वा की माला हरे या पीले धागे में गूंथ करके दूब घास की माला बना लें, वो गणपति जी को पहनाएं। माला अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहें और ये माला अनंत चतुर्दशी पर जल में प्रवाहित कर दें, इसको हटा दें। आपकी बड़ी से बड़ी कामना बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मौड़ धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत का डंका, लगातार चौथी बार बना चैंपियन साउथ कोरिया को हराकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया। दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की धांधली पर लगेगी लगाम, कैमरों से लैस होंगे सेंटर्स, कमर्शियल वाहनों की फिटनेस जांच होगी हाईटेक। पर्यटन सीजन के आगाज पर जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचा पैलेस ऑन व्हील्स का शाही काफिला, तिलक फूलमालाओं और सांस्कृतिक रंगों के साथ हुआ विदेशी मेहमानों का स्वागत। पुणे में रेत में सजा बप्पा का पंचमुखी रूप, आस्था और कला का दिखा अद्भुत संगम, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई प्रतिमा। तमिलनाडु के शिवगंगा में गणेशोत्सव पर गणेश चतुर्थी प्रातः फेस्टिवल का आयोजन, विशेष रथ पर बप्पा को कराया गया नगर भ्रमण, आस्था और संस्कृति के दिखे रंग।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।

गणपति का कैसे करें स्वागत, आज बात इसी को लेकर होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। 14 तारीख यानी कि सोमवार से गणेशोत्सव की शुरुआत होने जा रही है और इसी को लेकर बप्पा के स्वागत के लिए न सिर्फ जोरदार तैयारियां चल रही बल्कि उनके लिए शानदार और भव्य पूजा पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। खासकर मुंबई की अगर हम बात करें और साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में एक से बढ़कर एक थीम वाले बप्पा के पंडाल सजाए गए हैं जो अभी से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। तो आ रहे हैं मंगलकारी, हो रही है खूब तैयारी। गणपति के 32 स्वरूपों में छिपा जीवन सूत्र, घर आएंगे बप्पा, घर आएंगी खुशियां। गणपति का कैसे करें स्वागत, कौन सी लाए मूर्ति, इसी पर आज हम हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो बप्पा आ रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर शहर बप्पा के रंग में रंगने वाला है और गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां तेज हैं। मुंबई और दूसरी जगहों की बात करें तो बप्पा के पंडाल से लेकर बप्पा के श्रृंगार तक भव्यता के तमाम रंग नजर आ रहे हैं। गुजरात के सूरत की बात हो जहां पर गणेश उत्सव को लेकर गणेश मंडलों और आयोजकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो एक तरफ जहां बप्पा की विशाल और आकर्षक प्रतिमाएं तैयार की जा रही, वहीं दूसरी तरफ गणपति के भव्य श्रृंगार के लिए खास आभूषण भी बनवाए जा रहे हैं। सूरत में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए चांदी के भारी भरकम और आकर्षण आभूषण तैयार किए जा रहे हैं। भक्त अपनी पसंद और प्रतिमा के आकार के हिसाब से आभूषण के लिए विशेष ऑर्डर भी कर सकते हैं। उधर झांसी की बात करें या जयपुर की बात करें तो गणेश उत्सव की खास तैयारी वहां पर भी देखने को मिल रही है।

0: तो विघ्नहर्ता आ रहे हैं। 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर्व है। सोमवार से 10 दिन के उत्सव की शुरुआत हो जाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को सुबह 7:06 से हो रही है और फिर इस तिथि का समापन 15 सितंबर को सुबह 7:44 पर होगा। गणेश चतुर्थी पर रवि योग का संयोग भी बन रहा है। गणेश चतुर्थी पर ही हरतालिका तीज भी है और इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। वहीं 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होगा। 1893 से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की परंपरा रही है। गणपति जी को प्रथम पूजनीय देवता भी कहा जाता है। हर मांगलिक कार्य से पहले गणपति की ही पूजा होती है। माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र गणपति जी हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनका जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यता ये भी है कि मध्यान्ह काल में उनका जन्म हुआ था। उन्हें बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। बुद्धि विवेक के अश्रिता विघ्न विनाशक हैं विनायक। बप्पा के हर स्वरूप का कोई ना कोई संदेश है। तो देश भर में गणपति पंडाल सज चुके हैं। मुंबई, सूरत, हर जगह गली गली बप्पा की गूंज अभी से ही सुनाई देने लगी है। हर जगह पर इस उत्सव को लेकर अलग ही रौनक दिखाई दे रही है।
1: भगवान को सबसे पहले तो गणेश पंचरात्र, गणेश पुराण और गणपत्य जो संप्रदाय है उसमें इस प्रकार से वर्णन है कि ये गणेश जी इस 4 युगों में अलग अलग प्रकार से इनके अवतारी हैं, परंतु हर अवतार का मूल अवधारणा इस संसार का कल्याण करना ही है। भगवान के शिव के जितना स्वरूप भगवान शिव का प्रिय है, उनके ये पुत्र जो गणेश रूप में विख्यात हैं, उनका सारा स्वरूप, उनका सिर हो, चाहे उनके नेत्र हो, चाहे उनके कान हो, चाहे सूंड हो और चाहे उनका उदर ही हो, हर स्वरूप का अलग प्रभाव से बताया गया है फल। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का बड़ा मस्तक भगवान की तीव्र बुद्धि और ज्ञान के बारे में बताता है। इसी प्रकार के स्वरूप से हर प्रकार का अंग उनका विशेष फलदायी बताया गया है।
0: तो देखिए, तैयारियां शहर शहर हो रही हैं। हर जगह पर बप्पा के पंडाल सज चुके हैं और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि क्योंकि 14 तारीख को सभी लोग बप्पा को घर लेकर आएंगे, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर अभी से ही बप्पा को लाया जा रहा है, क्योंकि शुभ मुहूर्त का भी लोग इंतजार करते हैं कि वो शुभ घड़ी कौन सी हो और हर कोई चाहता है कि उस शुभ मुहूर्त पर ही बप्पा उनके घर पर पधारे। और इसीलिए कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी जगहों पर ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति हो जाती है तो मुहूर्त आगे पीछे भी चला जाता है। इसीलिए लोग किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। अभी से ही बहुत से ऐसे पंडाल भी हैं जहां पर बप्पा का स्वागत हो चुका है। हालांकि विधि विधान से जो पूजा होगी वो 14 तारीख को ही होगी और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्री बुकिंग्स भी कर रखी हैं ताकि उस दिन जब बप्पा को लेने जाएं तो किसी भी तरह की कोई बाधा न आए, समय से बप्पा को घर लेकर आ जाए शुभ मुहूर्त के हिसाब से। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें, मंदिरों की बात करें तो देखिए किस तरीके से मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई हैं। तमाम गणेश पंडाल सजाए गए हैं और भक्तों का रेला बस इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब बप्पा आएंगे और वो पहुंचेंगे पंडालों में बप्पा के दर्शन करने के लिए। अपनी अपनी मनोकामना के साथ भक्त पहुंचते हैं और इंतजार हर किसी को इसी घड़ी का रहता है, गणेश चतुर्थी का, जब बप्पा पधारते हैं और हर किसी के संकट हर लेते हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं और बप्पा का स्वागत कैसे किया जाए और इस बार गणेश चतुर्थी किन मायनों में खास है, और साथ ही साथ अगर आप अपनी मनोकामना के हिसाब से बप्पा की मूर्ति ला रहे तो उस मूर्ति की खासियत क्या होनी चाहिए, सवाल है तमाम ऐसे जिसका जवाब आज हम आपको देंगे क्योंकि तैयारी आप भी कर रहे हैं बप्पा को घर लाने की। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ संजय शर्मा जी मौजूद हैं और मेरे साथ नंदिता जी भी जुड़ चुकी हैं। आचार्य राज मिश्रा, पहले सवाल सीधा आपसे यही है, हम लौटेंगे कि किस तरह की मूर्ति मनोकामना पूर्ति के लिए लाई जाती, लेकिन इस बार गणेश चतुर्थी किन मायनों में बहुत खास हो जाती है, गृह दशा बताइए इस बार कैसी है।
2: अगर मैं इस बार की गणेश चतुर्थी की खासियत की बात करूं तो सबसे पहले नवजोत जी कह सकता हूं कि बुद्धि को, सिद्धि बुद्धि को प्रदान करने वाले भगवान गणेश जी, दोनों पत्नियां उनकी सिद्धि और बुद्धि, जब भी हम बात करते हैं ग्रह के स्वरूप में कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिससे हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है ग्रह बुद्ध, जो कि श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंद करो कर जोर और हो प्रसन्न पुरव सकल मंज मनोरथ मोर। मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले अगर कोई माने जाते हैं देवता तो भगवान गणेश जी और ग्रह बुद्ध को कहा जाता है। और सौभाग्य की बात देखिए कि जिस दिन गणपति आ रहे हैं उस दिन बुद्ध जो है वो अपने स्वराशि यानी उच्चगत राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। इससे बेहतर बुद्ध की परिस्थिति शायद नहीं कही जा सकती। और ये बहुत रेयर होता है कि जब बुध साल में एक ही बार उच्चस्थ होते हैं और वो इस समय पर हो, ये बहुत रेयर मिलता है। तो ये इस बार के सौभाग्य की बात है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम सांसारिक सुखों के लिए और जिनको लक्ष्मी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट वीनस और वो भी चंद्रमा के साथ और बृहस्पति से केंद्र में, यानी गज के सही योग का निर्माण करते हुए चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में होंगे और शुक्र के साथ होंगे और वहां पर भी शुक्र स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे होंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संयोग है, यानी इस बार गणपति बप्पा की आराधना सांसारिक सुख को तो प्रदान करने वाली होगी, साथ में मानसिक प्रसन्नता को देने वाली होगी, पारिवारिक प्रेम को प्रदान करने वाली होगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय की अगर मैं बात करता हूं, बृहस्पति का उच्चस्थ होना और जिस दिन गणपति बप्पा को आना है उस दिन चंद्रमा से केंद्र, चंद्रमा से दशम भाव के अंतर्गत गोचर करना और मंगल जो कि प्राकर्म के कारक हैं उनका तीसरी राशि जो प्राकर्म की मिथुन राशि मानी जाती है वहां पर गोचर करना, ये अपने आप में सबसे यूनिक परिस्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट विषय, इस बार अगर देखेंगे भगवान गणेश जी जब आएंगे तो दो बार हमें सर्वासिद्धि योग मिलेगा, 16 तारीख को और 21 तारीख को। जब तक गणपति जी की जो 10 दिन का उनका जन्मोत्सव हम मनाएंगे उसमें 16 और 21 तारीख दो दिन सर्वासिद्धि योग, फिर 16 तारीख को साथ में अमृत सिद्धि योग और फिर 14 और 16 तारीख को रवि योग। तो जो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी के लिए लिखा कि जो सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करीवर वदन, जिनके स्मरण से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, करह अनुग्रह सोए बुद्धि राश शुभ गुण सदन, जो बुद्धि की वृद्धि कर देते हैं उन मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपा सो दयालु द्रवु सकल कलिमल दहन, जिनके स्मरण से कलिकाल के सारे दुख मिट जाते हैं, उन गणेश के आराधना पर इस बार का जो योग है वो अपने आप में सबसे सुंदर है। और मैं पुनः धन्यवाद करूं आपका और जीएनटी का कि आपके माध्यम से पूरे विश्व को पूरी दुनिया को शुभ मुहूर्त और वास्तविकता में पूजन आदि कैसे करना चाहिए जानकारी।
0: अच्छा जल्दी से एक लाइन में शुभ मुहूर्त क्या है जब स्थापना होगी?
2: अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात कर लेता हूं तो सुबह, क्योंकि सोमवार के दिन स्थापना हो रही है, सोमवार 7:30 से 9 राहु काल का समय होगा, एक बहुत सुंदर मुहूर्त है जब तुला लग्न विद्यमान होगा और इस समय क्योंकि तुला लग्न के अंतर्गत स्वयं चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रह होंगे, 9 बजे से लेकर के 10:36 का जो समय होगा मॉर्निंग का, वो समय मेरे दृष्टि से एक बहुत अनुकूल समय है। और वैसे तो मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, गणेश जी की जब भी आप स्थापना कर लेते हैं गणेश जी विघ्नों को दूर करते करके अपने आप उस समय को सुख देते हैं।
0: ठीक है, चलिए अब वाना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए तैयारियां हर घर चल रही हैं, हर कोई बप्पा को लाना चाहता है, लेकिन हमें प्रोटोकॉल का बहुत ख्याल रखना होगा। भाई देखिए रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बप्पा पधार रहे हैं, प्रथम पूज्य हम इनको कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं किसी चीज की कमी ना रह जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी टू द पॉइंट, कौन कौन से ऐसे विशेष पॉइंट्स हैं जिनका हमें बहुत खास ख्याल रखना है जब हम बप्पा को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं।
3: बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है नवजोत जी। जब भी हम बप्पा की जो है जब भी हम आराधना करते हैं तो कुछ खास चीजों का हमको ध्यान रखना है। जब भी हम बप्पा को लेके आएंगे, जितने दिन हमारे घर में स्थापना है उसमें जो है हम कोई भी नॉनवेज या अल्कोहल का जो है प्रयोग नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए जब आप बप्पा को लाते हैं तो आप जो है इको फ्रेंडली बप्पा अगर लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे जो है आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी जो है आप उस चीज को जो है रोक पाएंगे। बप्पा को जब आप लाते हैं तो आपको एक चौकी जो है साथ में आपको जरूर लानी है, उनके लिए जो है आप मोदक जो है वो आप जरूर बनाएं अपने हाथों से, और जो बप्पा का अभिषेक होता है यानी कि स्नान होता है वो आप पंचामृत से कर सकते हैं या फिर आप जो है गंगा जल से भी कर सकते हैं। बप्पा के लिए एक साइड जो है आपको दो सुपारी रखनी है, एक रिद्धि जी के लिए और एक सिद्धि जी के लिए, तो वो जो है दो सुपारी भी होनी चाहिए। प्लस आप जो है कलश स्थापना जो है वो भी करेंगे, तो कलश स्थापना के लिए आपको कलश चाहिए और जो है अक्षत चाहिए, और जो है उसमें आप अशोक या आम के पांच पत्ते जो है वो भी आप रख सकते हैं। और जो है बप्पा से जो है जब आप पहले अपने पूरे घर की जो है सफाई करके उसकी जो जब आप स्थापना करेंगे और इसमें जो है आप जो है गणेश जी की आरती भी करेंगे, वहां पर आप दिया जलाएंगे, मौसमी फल जो है मौसमी फल जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो भी जो है आप सीजनल फ्रूट्स जो है इस टाइम पर रख सकते हैं, मोदक रखें या फिर पीले जो है आप बेसन के लड्डू रख सकते हैं, नॉर्मल लड्डू रख सकते हैं या फिर कोई भी पीली मिठाई जो है वो भी आप रख सकते हैं। ये मोदक जो है आप अपने घर में जो है वो भी आप अपने घर में जो है अपनी एनर्जी से बना सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम अपनी एनर्जी से बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्योर और सात्विक होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, प्लस ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम गण गण पते नमः का जो है वो भी आप जाप कर सकते हैं, गणेश ऋण मोचक स्रोत जो है वो कर सकते हैं, गणेश रक्षा स्रोत कर सकते हैं। आपके कुंडली में अगर बुध और केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो भी जो है आप जरूर गणपति की आराधना करें। आपके बच्चों का ध्यान अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो भी आप गणपति जी की आराधना बच्चों को भी करवाएं। और मैं एक रिक्वेस्ट जीएनटी के माध्यम से आप सबसे करना चाहूंगी कि जब भी आप स्थापना करते हैं तो उस टाइम पर जैसे हमारे घर में हमारा कोई गेस्ट आता है हम कैसे वेलकम करते हैं, सो मेक श्योर आपके बच्चे और आपके आपकी लाइफ पार्टनर हस्बैंड भी जो है इस पूजा में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो जो प्रोस्पेरिटी है उसका वो मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट टाइम्स हो जाती है। तो मेक श्योर आप अपने घर में हर मेंबर को जो है अपने घर में शामिल करें, और जितने दिन बप्पा घर में रहते हैं उनको तीनों टाइम जो है आप भोग जरूर लगाएं, आप आरती जरूर करें, रात को जो रूम में जहां पर आपने बप्पा की स्थापना की है वहां पर आप लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी आप ऑफ ना करें।
4: बिल्कुल।
3: इसके अलावा आप जैसे ये आपकी अपनी इंटेंट है कि आप डेढ़ दिन के लिए रखना चाहते हैं, तीन दिन के लिए रखना चाहते हैं, और या फिर फाइव डेज के लिए, सेवन डेज के लिए, या फिर आप पूरा प्रॉपर जो है इलेवन डेज के लिए करना चाहते हैं, और अगर आपने इको फ्रेंडली बप्पा रखे हैं तो उसको जो है विसर्जन आप अपने घर में भी जो है आप उसमें कर सकते हैं।
4: वो भी कर सकते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। एक बार नंदिता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नंदिता जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, देखिए किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल रहता है बप्पा को ला रहे हैं ये तो हमने वान्या जी से समझ लिया, अब मैं आपसे जानना ये चाहूंगी क्योंकि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, बप्पा कहाँ विराजमान होने चाहिए, सून किधर राइट या लेफ्ट साइड होनी चाहिए, बप्पा के हाथ में क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस पर मैं चाहूंगी कि जरा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो गुड न्यूज टुडे के माध्यम से इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दीजिए। चलिए, अगर संजय शर्मा मेरा प्रश्न आपने सुन लिया है तो यही प्रश्न आपसे है सर।
5: जी बहुत सुंदर, और मैं एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा और सभी को अनंत चतुर्दशी की और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और जीवन में गणपति महाराज जो है रिद्धि सिद्धि के कारक हैं, और कहा जाता है कि प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज, क्योंकि गणपति को जो है पहला निमंत्रण दिया जाता है, कोई भी शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, तो प्रथम पूज्य हैं। तो एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम, क्योंकि विघ्न हरता है। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि इनके हाथों में क्या है, मोदक है। आप समझें कि गणेश जी जो है सब कुछ देने वाले हैं, दीर्घ मस्तिष्क है इसलिए ज्ञान के दाता हैं, सूंड लंबी है, और कहा जाता है कि आप जब सूंघते हैं कोई भी चीज तो सूंघ कर ही जान लेते हैं, उनकी जो शक्ति है बहुत ज्यादा है। और उनकी सूंड के बारे में आपने पूछा, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है गणेश जी के हमेशा राइट हैंड पे होती है, तो इसलिए सूंड का जो मुख है वो राइट पे हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और श्वेत गणपति की पूजा के कहा जाता है, श्वेतार्क जो गणपति है, आप देखिए नेचुरल जो उत्पन्न होते हैं प्रकृति से श्वेतार्क गणपति होते हैं, उनकी पूजा अगर करते हैं, या आप मार्बल का बना हुआ गणपति या मिट्टी का बना हुआ गणपति, और मिट्टी से ही सारी चीजें बनी है, प्रकृति नेचर सब मिट्टी से बना है, मिट्टी के गणपति को जो है कम से कम जो है आप 2 फीट की ऊंचाई पर जो है, और एक वस्त्र अच्छा सा नया वस्त्र लेकर के और स्थापित करें और उनके पास में जल रखें, मोदक रखें, लड्डू रखें और उनकी उपासना करें सुबह और शाम। नित्य नियम से जो है दोनों टाइम जो है उनकी आरती करें और घर को जो है बंद कर करके सूना करके ना जाएं। गणपति अगर आपने घर में विराजमान किए हैं तो 9 दिन जो है, कहा जाता है 10 दिन है पर 9 दिन अनंत चतुर्दशी तक जो है आप उनकी पूजा करें। 1 दिन का रखें, 5 दिन का रखें, 7 दिन 9 दिन का गणपति आप स्थापित करें और उनका ध्यान मगन रहें। कहा जाता है गणपति जो है सब कुछ देने वाले हैं, रिद्धि और सिद्धि के दाता तो हैं, कि उनका जो परिवार है संपूर्णता को देने वाला है और उनकी पूजा जब आप करते हैं तो कहा जाता है जो 32 नाम है उसमें आप देखें कि जो सबसे पहला नाम आता है वो बाल गणपति का आता है, फिर तरुण गणपति का आता है, फिर वीर गणपति का आता है, फिर शक्ति गणपति का आता है। तो ये जो नाम है गणपति के वो हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य सब कुछ होना चाहिए। और कहते हैं कि जिस प्रकार से गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, हमारे जीवन में जो है सब कुछ जो है हमें अन्न जल सब कुछ देने वाले गणपति हैं। और इसमें जो है गणेश जी की पूजा, गणेश पंच महारत्नम का पाठ जरूर कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं या फिर प्राणम शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम, इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
4: बिल्कुल।
5: और आज के दिन जब भी चतुर्दशी का चौथ का जब दिन होता है, चौथ माता का, उस दिन जो है कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा भी नहीं देखना चाहिए। तो ये जो दिन है और आज के अब हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे जीवन में शुभता देने वाला है और गणपति बाबा आ चुके हैं और हमारे जीवन में शुभता ही शुभता करते जाएंगे।
4: नंदिता जी मेरी आवाज, संजय जी लौटूंगी, नंदिता जी मेरी आवाज आप तक आ रही है?
6: मुझे तो आ रही है, आई होप आपको भी आ रही है।
4: बिल्कुल बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। जो सवाल आपसे किया था संजय जी ने उसका उत्तर दे दिया, लेकिन उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरह के गणपति को घर पर लाना चाहिए?
6: सबसे पहले तो जी एनटीवी के सभी दर्शकों को गणेश प्राकट्योत्सव की अनंत शुभकामनाएं। और गणपति तो वैसे भी अनंत देव माने जाते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, पहले तो किस धातु से या किस चीज से गणपति को बनाए, तो इस समय मिट्टी से बनाया जाता है स्पेशली, और लाल मिट्टी अगर हो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसको शाडू मिट्टी भी बोला जाता है। इस मिट्टी से आप गणपति को बनाए और इसे मैं छोटे छोटे से उपाय अगर बता रही हूँ कि आपको घर पे बहुत ज्यादा अपनी सुख समृद्धि चाहिए, सारे विघ्न हटाने, तो आप दुर्वा घास होती है ना उसको छोटा छोटा काट के उसको मिट्टी में मिला करके अगर आप गणपति बनाते हैं बहुत उत्तम होता है।
4: बिल्कुल। अब राजमिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हर जगह पर अलग अलग तरह से अलग अलग मनोकामना के लिए बप्पा विराजमान होते हैं, चाहे हम पंडालों की बात करें या घर की भी बात करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बुद्धि चाहिए या कहें कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको धन संपत्ति चाहिए, कुछ ऐसे सुख शांति के लिए, कुछ अच्छी सेहत के लिए, तो इन तमाम चीजों को अगर देखें तो किस तरह के बप्पा को घर पर लेकर आया जाए, किस मनोकामना के लिए?
2: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये सत्य कहा जाता है, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि भगवान गणेश जी यदि आपके हृदय में और आपके जीवन में आए तो आपके जीवन को निश्चित रूप से परिवर्तित कर देते हैं, वो किसी भी स्वरूप में आते हैं। लेकिन क्योंकि ये श्वेत कल्प है, जिस कल्प में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, गणेश आदि गणेश हैं, अलग अलग कल्प के अंतर्गत उनका अलग अलग उस पर अवतार होता है, लेकिन जिस कल्प की आज हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो श्वेत कल्प है। इसीलिए जब संकल्प इत्यादि घर में बोला जाता है तो बोला था श्री श्वेत बारह कल्पे, तो ये श्वेत कल्प के अंतर्गत यदि आपको अपने सभी कामनाओं को पूर्ण करना है तो जो हरिद्र स्वरूप के गणपति हैं, जो पीले स्वरूप है, जिनका पूरा जिनका स्पष्ट बनाया ही पीले तरीके से गया है, ऐसे गणपति को लाने से आपके घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं, आपके घर में प्रेम होता है, आपके घर में प्रसन्नता होती है। लेकिन यदि स्पेशली विवाह नहीं हो रहा हो, घर के अंदर वैवाहिक परिस्थिति में दिक्कत चल रही हो, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत हरे रंग के जो गणपति का स्वरूप है या उनको बनाया इस प्रकार हरे रंग के स्वरूप के अंतर्गत बनाया गया है, उनको लाने से विवाह या विवाह से संबंधित जितनी दिक्कतें हैं वो स्वतः दूर हो जाती हैं और घर में प्रसन्नता और प्रेम इत्यादि भी होता है। अगर मान लिया जाता है कि घर के अंतर्गत जो रोग है वो दूर नहीं हो रहा होता है, रोग से बार बार आप परेशान हो रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु गणेश जी मेरे घर के अंदर आए और मेरे घर में रोग दूर हो जाए या आलस्य दूर हो जाए, तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत जो रक्त वर्ण गणपति हैं, जो करीब लाल रंग के गणपति हैं, जिनमें अधिकतम लाल रंग का प्रयोग किया गया है, ऐसे गणपति को लेकर के आने से आपके घर के अंतर्गत का रोग है वो दूर हो जाता है और घर में ऊर्जा इत्यादि की वृद्धि होती है। अगर मान लिया जाता है कि आप आध्यात्मिक रूप से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सत्य गणपति आएंगे तो अपने आप सब दूर हो जाएगा, प्रॉब्लम तो रहेगी नहीं, तो मैं अलग अलग चीज के लिए क्यों लेकर के आऊं, मैं सिर्फ गणेश जी से मोक्ष की प्राप्ति या उनकी भक्ति मुझे जीवन के अंदर वो चाहिए। तो फिर जो धूम्र गणपति हैं, जिनको धूम्र केतु भी कहा जाता है, जो धुएं के रंग के जो ग्रे कलर के गणपति हैं, उनको लेकर के आने से निश्चित रूप से आपकी ये परिस्थितियां दूर होती हैं। अब मान लिया जाता है कि ठीक है, गणपति को कौन से, मान लिया जाए कि गणपति उस स्वरूप के नहीं मिल पाते हैं, तो जो मैंने बताया इस स्वरूप के वस्त्र से गणपति जी को पूरी तरीके से तैयार कर दीजिए। इस स्वरूप का जो वस्त्र है, जो मैंने कलर बताया है, इस कलर के आप वस्त्र यदि उनको धारण कराते हैं वो फायदेमंद है। गणपति जी को यदि मोर पंख लगा हुआ मुकुट, यदि आप चाहते हैं कि गणेश जी के साथ शिव जी की भक्ति प्राप्त हो, तो मोर पंख लगा हुआ मुकुट भगवान गणेश जी को अर्पण करें, इससे गणेश जी के साथ शिव कृपा भी आपको जीवन के अंतर्गत जरूर प्राप्त होती है।
4: चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बप्पा पधार रहे हैं, लेकिन बप्पा को घर किस तरीके से लाया जाए, वो कौन सी चीजें हैं, चाहे वो आपकी मनोकामना पूर्ति की बात हो या फिर किस तरीके से बप्पा को घर पर लाना है, क्या है इसका पूरा प्रोटोकॉल, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: के बाद आपका स्वागत है। आ रहे हैं गणपति, आ रहे हैं बप्पा, तो स्वागत कैसे किया जाए। वैसे इस बार तो लोग कह रहे हैं कि भाई बप्पा आ रहे हैं तो स्वागत से स्वागत होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नियम कायदे होते हैं और वो नियम कायदे क्या हैं, ये सब आज हम अपने खास मेहमानों से जान रहे हैं। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आपको हम बता चुके हैं और इसी के साथ साथ बप्पा के हर रूप की भी व्याख्या आगे करेंगे। मनोकामना पूर्ति के लिए किस तरह के बप्पा को घर लाए, ये भी तमाम खास मेहमानों से जान रहे हैं। अब 32 स्वरूपों की बात जब वान्या जी होती है आपके पास आऊंगी तो वो कौन कौन से स्वरूप है जरा ये भी बताते चलिए हमारे दर्शकों के लिए।
1: जी, अगर हम बप्पा की बात करते हैं तो बेसिकली जो गणपति बप्पा के स्वरूप हैं वो टोटल 32 स्वरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसमें से 8 जो होते हैं जो उनकी मेन कॉस्मिक वर्जन्स हैं वो आपकी टोटल 8 स्वरूप हैं, जिसका सबसे ज्यादा वर्णन जो है वो शास्त्रों में किया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो वक्र तुंड जो उनका रूप है, जिसमें उनकी जो सूंड है वो धूमावर सूंड है, और उनकी सूंड हमें लाइफ में एक मैसेज देती है क्योंकि उनकी सूंड में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो इसका ये मतलब होता है कि लाइफ की हर सिचुएशन में जो है हमें फ्लेक्सिबल रहना है और हमें बहुत ही ज्यादा एडेप्टिव रहना है जैसी हमें स्थिति मिले, जैसे वो कहावत है जिस विधि राखे राम। फिर अगला जो उनका स्वरूप है वो इनका है गजानन स्वरूप, ये है हाथी का मुख। गज जो होता है वो हमेशा हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो है जोड़ता है, और गज में इसका एक और मीनिंग भी होता है कि लोभ पर विजय, कि हमें लाइफ में बहुत ज्यादा लोभी या लस्ट के पीछे जो है हमें नहीं भागना है अगर हमें अपनी लाइफ में पीस और विजडम चाहिए। फिर है इनका शिव पार्वती का एक इनका जो स्वरूप होता है, क्योंकि शिव पार्वती इनके माता पिता के रूप में जाने जाते हैं और इनके पुत्र के रूप में वो प्रकट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है हमें लाइफ में कि पेरेंट्स से बढ़कर हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, चाहे हम जितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन असली तीर्थ जो है वो हमारे माँ बाप के चरणों में ही है। फिर अगला स्वरूप इनका आता है लंबोदर स्वरूप, जिसमें इनका पेट जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है। इसका ये मतलब है कि हमें लाइफ में हर सिचुएशंस, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें उनको एक्सेप्ट करना है। और लंबा पेट इसका ये मतलब भी है कि हमें लाइफ में बहुत ज्यादा पेशेंस जो है वो अपनी लाइफ में मेंटेन करके चलना है, और बहुत सारी चीजें जो है वो हमें अपने अंदर ही डाइजेस्ट करनी है। अगर किसी ने हमें कुछ कम्युनिकेशन दिया है तो नॉट नेसेसरी कि अगर किसी ने हमें कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बताया, सो वी हैव टू कीप दैट लाइक कम्युनिकेशन विद आवरसेल्व्स ओनली। अगला रूप है इनका विकट, जिसका कोई मीन्स शेप नहीं है, बहुत विकार रूप है, और काम वर्णा वाले इनको जो है काम वर्णा पर विजय, मीन्स लस्ट जो होता है हमारी लाइफ में, जो हमारे डिजायर्स होते हैं उस पर जो है हमें लाइफ में विजय पानी है। फिर है आपका महोदर, महोदर भी अगेन आपका बड़ा पेट है और ये हमें कहता है कि मोह से हमारे जीवन में हमारी लाइफ में मुक्ति। फिर है एक दंत, एक दंत कहता है कि अहम का हमें अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज्ञान और अज्ञानता को ये हमारी लाइफ से दूर करता है क्योंकि वो बुद्धि के कारक हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज्यादा विजडम देता है और विजडम के साथ साथ ये हमें क्लैरिटी भी देता है। फिर है हमारा विघ्नराज, विघ्नराज होता है बाधाओं के राजा, जो भी आप नेम, जैसे कि नेम की भी एनर्जी है विघ्नराज, तो जो भी हमारे जीवन में, जो भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको जो है ये हमारी लाइफ में क्लियर करता है। फिर है धूमावरण, जो आप इनका जो लास्ट कॉस्मिक वर्जन है, ये इनका जो कलर भी जो होता है जो धूम्र की तरह होता है, सिंह पर सवार होता है, और ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हमें बनाता है, और इसका मीनिंग होता है अज्ञानता से मुक्ति, हमारी लाइफ में अहंकार से मुक्ति। तो हर वर्जन जो है अपने आप में एक मैसेज देता है, और मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें ये बताता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, हमें विजडम चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें क्लियर कंसाइज क्रिस्प कम्युनिकेशन चाहिए, तो हमें अपने लोभ को त्यागना होगा, हमें अपने मोह को त्यागना होगा, हमें अपने जीवन में अपने अहंकार को त्यागना होगा, अपने ईगो को त्यागना होगा, अपने अंदर हमें बहुत ज्यादा पेशेंस लाना पड़ेगा, और हमें अपने अंदर बहुत ज्यादा रेजिलियंस जो है अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। और एक और चीज, क्योंकि जैसे उनके कान बहुत बड़े हैं तो हमें एक गुड लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुंह छोटा है मतलब हम कम बोलेंगे, जितना हम लाइफ में कम बोलेंगे हमारे वर्ड्स की उतनी जितनी वैल्यू होगी हमारी वेटेज उतनी बढ़ेगी, और जब हम अच्छे गुड लिसनर्स होते हैं
2: हाँ.
1: तो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि हम दूसरों के वर्जन को भी सुनते हैं और दूसरे के वर्जन को भी हम समझते हैं.
0: बिल्कुल. इतना हमारा कम्युनिकेशन क्लियर. संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी. संजय जी, जरा ये भी हमें बताते चलिए, क्योंकि बप्पा को घर पे ला रहे हैं तो पूजा विधान क्या रहेगा, किस तरीके से पूजा करें, सामग्री क्या रहेगी पूजा की, ये भी एक बार बताते चलिए.
3: जी, बहुत सुंदर प्रश्न है. पहले गणपति को ला करके और सबसे पहले स्नान कराएं, दूध से, दही से, शहद से और गंगा जल से स्नान कराएं, और स्नान कराने के पश्चात पंचामृत से स्नान कराएं. उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा करके गणपति की मूर्ति को जो भी लेकर के आए उसको साफ करके और जो है वस्त्र धारण कराएं. वस्त्र धारण कराने के पश्चात एक माला जो है जरूर पहना दें उनको, और आसन दें, और आसन के ऊपर जो है एक कटोरी में मोदक रख दें, लड्डू रख दें, और थोड़ा सा अगर हो सके तो मोदक के साथ दूर्वा अर्थात घास का जो है प्रयोग करें, और उसको थोड़ा मंडप को अच्छा सा सजा लें, और गणेश जी के आगे जो है थोड़ा सा जल भी जो है भर करके रख दें, और उसमें आपको फल मिठाई ये सब रखना चाहिए, और अगर हो सके तो दीपक, घी का दीपक जो है अवश्य जला दें, और आराधना करें उनकी, और उनके ऊपर जो है सुपारी और आपका पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब का जो है बेड़ा बना करके अर्पित करें, और उनको प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें. और अभी जिस तरीके से जो है 32 नामों की चर्चा करी, उसमें मैं दो चीजें और जोड़ूंगा. एक सिंह गणपति. सिंह गणपति है पावर के प्रति, क्योंकि गणपति वैसे हाथी का स्वरूप है, गज का स्वरूप है, पर पावर में जो है सबसे ज्यादा है. और आप देखें कि उनका जो स्वरूप है आपके जीवन में हमेशा जो है समृद्धि को देने वाला है, रिद्धि को देने वाला है, ज्ञान को देने वाला है. तो उस स्वरूप की पूजा करें और आरती जो है सुबह शाम अवश्य करें. और गणेश जी के जो मंत्र हैं, गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारिकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम महा. इसके अलावा जो गणेश पंच महारत्नम का पाठ जो थोड़ा दीर्घ स्वर में करें, मुदा करात मोदिकम सदा विमुक्ति साधिकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुना सुनासिकम नमामितम विनायकम. इन मंत्रों का करें, या फिर गजानन वाला मंत्र करके, और ओम गण गणपति नमः. गणपति का अर्थ होता है जो गणों के पति हैं. कहते हैं कि जो शिव जी के जितने गण हैं, गणेश भी कहते हैं, गण जमा ईश गणेश कहा जाता है, और गणपति जो है गणों के जो रक्षा करता है, ईश्वर के आराध्य हैं, और सबसे प्रथम पूज्य हैं वो गणपति हैं, और वो गणपतियों के पति गणपति कहलाते हैं, और वो सबकी रक्षा करने वाले. और
0: नंदिता जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही, देखिए प्रथम पूज्य हम उनको कहते हैं. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर करनी हो तो कहा जाता है, स्वतः ही मुंह से निकल जाता है कि श्री गणेश करते हैं. तो अब तो बप्पा खुद आ रहे हैं. ये भी चाहूंगी जरा दर्शकों के लिए समझाते चलिए कि बप्पा को कितने दिन के लिए, क्योंकि वैसे तो मैक्सिमम 10 डेज का ड्यूरेशन होता है, 10 दिन के लिए बप्पा को रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो वक्त की कमी या फिर परिस्थितियों के हिसाब से कम समय के लिए रखते हैं, तो उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो भी बताइए जरा.
4: जी, बहुत सुंदर प्रश्न. क्योंकि गणपति जब स्थापित होते हैं वैसे भी विघ्न हटता है, और उनके साथ साथ श्री की पुष्टि और रिद्धि, जो उनकी 5 पत्नियां थी उन सभी की स्थापना भी की जाती है सुपारी के रूप में. एक कलश जरूर स्थापित करिएगा जिसमें नारियल अंदर जल डाल के आम पत्र डालकर के मौली कलश के गले में मारते, और सभी वरुण आदि देवी देवताओं का आह्वान करके नारियल रखें. जटाएं उसके ऊपर की तरफ रहें तो ज्यादा रहेगा, नारियल का मुख आपकी तरफ से और ज्यादा सुंदर है.
0: राज मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी. दो सवाल है सर आपसे. एक तो यही बताइएगा कि जब हम बप्पा के स्वरूप को देखते हैं, किस स्वरूप में बप्पा को घर लाना है. आप सबने बताया कि अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप क्या चाहते हैं उस हिसाब से आप बप्पा को घर ला सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ओवरऑल स्वरूप की बात करें तो वो क्या दिखाता है, क्या संदेश हम यहां से ले सकते हैं, बप्पा के संदेश क्या है.
5: देखिए, अगर मैं भगवान गणेश जी की, सबसे पहले तो वान्या जी का, खैर मैं वो सब चीजें सुन रहा था और वान्या जी ने बड़ा सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया,
0: उसी को आगे बढ़ाइए.
5: यस, मैं अगर उस स्वरूप की भगवान गणेश जी की बात करता हूं ना, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी कौन है, मंगल करता. हमको स्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरित मानस लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा, वर्णा नाम और प्रसंगा नाम रसा नाम छंद श्यामपी मंगला नाम चकर तारो वंदे वाणी विनायको. आपका जीवन में लोगों के आपके कारण मंगल हो, अमंगल ना हो। सबसे पहला जो भगवान गणेश जी का संदेश है, मंगला नाम चकरतारो, यानी दूसरे के जीवन में आपके प्रयास से खुशियां आनी चाहिए। अगर आपके प्रयास, आपके किसी भी एक्ट से, किसी भी बिहेवियर से दूसरे के जीवन में अगर अप्रसन्नता होती है, दुख होता है, इट मींस कि आप भगवान गणेश जी आपकी आराधना स्वीकार नहीं करते हैं। ये उनका सबसे पहला संदेश है। अगर मैं उनके स्वरूप की बात करूंगा, आप सोचिएगा, भगवान गणेश जी के हम सबसे पहले पेट की ही बात करते हैं। लोग जनरली पेट की चर्चा करते हैं, भगवान गणेश जी का पेट बड़ा है, भगवान गणेश जी का पेट बड़ा है। अरे पेट ही इस दुनिया में बड़ा होना चाहिए, लेकिन पेट किस प्रकार से बड़ा होना चाहिए? भगवान गणेश जी का जो बड़ा पेट है उसका तात्पर्य क्या है? आपके अंदर चीजों को बर्दाश्त करने की, हजम करने की क्षमता होनी चाहिए, जो आपके जीवन में आप बातों को पचा पाए, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो एक शब्द कहा जाता है ना, किसको कुछ पचता नहीं है। तो भगवान गणेश जी का संदेश है कि दुनिया को सुनिए, उसको डाइजेस्ट कीजिए, और फिर क्या लोगों को बोलना है वो बड़ी सूर प्रकट करती है कि जिससे लोगों को प्रसन्नता पहुंचे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं नवजोत जी जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। भगवान गणेश जी के बड़े कान सबको सुनने की शक्ति रखने की का उत्तरदायित्व देते हैं कि सबको सुनने की शक्ति रखिए। हमेशा बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, समाज क्या कह रहा है, कौन सी बात आपको ग्रहण करनी है, कौन सी नहीं ग्रहण करनी है, सबको सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। ये अगर देखा जाए तो भगवान गणेश जी के द्वारा हम सबको सुनने को मिलता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर जगह पर भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा किया जाता है, लेकिन

0: हूं तो मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लोगों ने वो रिस्पेक्ट प्रदान कर दिया, उसको उन्होंने स्वीकार कर दिया, ना तो प्रसन्नता किसी पद को पा करके और ना अगर उन्होंने युद्ध किया या भगवान शंकर ने उस परिस्थिति बस उनके सर को धड़ से अलग किया तो ना ही किसी के प्रति द्वेष की भावना। आज के जेंजी को गणेश जी से बहुत सीखने की आवश्यकता है कि अगर आपको आईफोन ना मिले तो आप माता पिता से बात नहीं करते हैं, और जो गणपति बप्पा आ रहे हैं उनका सर भी धड़ से अलग हो गया तो उनके अंदर दोष नहीं, द्वेष नहीं कहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संदेश तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बप्पा पधार रहे हैं तो बहुत जरूरी है इन तमाम खास बातों का ख्याल रखना जो आज हमारे खास मेहमानों ने बताई हैं, और इसी तरीके से बप्पा का स्वागत करना। वैसे आपको बता दें कि उत्सव मतलब गुड न्यूज टुडे होता है, तो ये इंडिया का फेस्टिवल शुरू हो गया और गुड न्यूज टुडे का फेस्टिवल भी शुरू हो गया, तो गणेश उत्सव के तमाम रंग आपको सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर दिखते भी रहेंगे और हम आपको बताते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए आप हमारे साथ।
2: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा? गणेश महोत्सव में क्या होगा गणपति का पूजा विधान? कैसे मिलेगी भगवान गणेश की कृपा? कैसे मिलेंगे वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव का शुभारंभ होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, शहर शहर इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। और इसी सिलसिले में अब आपको दिखाते हैं खबर अकोला की। अकोला में बप्पा के स्वागत करने के लिए दो रंग नजर आए, कहीं पर भजन कीर्तन सुनाई दिए तो कहीं पर ढोल ताशे और डीजे पर झूमते हुए नजर आए भक्त। गणपति स्थापना से कुछ घंटे पहले अकोला में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई तो भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखा।

नाचते गाते और भक्ति में झूमते हुए बप्पा का स्वागत। कोई डमरू बजा रहा है, शंखनाद कर रहा है। तो तमाम लोग मंजीरे बजाते हुए और भजन गाते हुए बप्पा के आगमन पर खुशियां व्यक्त कर रहे हैं।

0: ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के अकोला की। यहाँ पर मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के तर्ज पर पिछले 21 साल से अकोला में विराजमान होने वाले 21 फीट ऊंचे लाल बागचा राजा की शोभा यात्रा शानदार तरीके से निकाली गई और भक्तों का उल्लास चरम पर नजर आया। इस दौरान महाराष्ट्र की वारकारी धार्मिक परंपरा के भजन कीर्तन की धुन सुनाई देती रही।
1: अकोला में जो है अकोला का लालबाग का राजा जो है इसकी एंट्री हुई। आप देख सकते हो कि यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ साथी के साथ जो है यहाँ पर लालबाग के राजा की जो है सवारी बड़े जल्लोष के साथ और धूम के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। अब बप्पा आने के बाद में जो है, क्योंकि बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, विघ्न जो सबसे बड़ा विघ्न था बारिश नहीं थी, वो कल से जो है हमारी बारिश जो है वो शुरू हुई है।
0: अकोला के लाल बागचा राजा पीताम्बर धारी हैं। उनका एक हाथ और दोनों पांव चांदी के हैं। प्रतिमा का श्रृंगार और सजावट देखते ही बनते हैं। लाल बागचा राजा की सवारी को भक्त खुद अपने हाथों से खींचते हुए लाते नजर आए। भक्तों ने खुद रथ की रस्सियां थामी और पूरे भक्ति भाव के साथ बप्पा के रथ को आगे बढ़ाया। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया का एक ही जय घोष गूंजता रहा।
1: पारंपरिक आगमन सोहरा है और ये 23 फुट की लालबाग के राजा की मूर्ति स्थापना होती है और लालबाग अकोला में आने के 20 साल हो चुके हैं।
0: वहीं दूसरी तरफ अकोला के ही कल्याण गणेश उत्सव मंडल की भी शोभा यात्रा भव्य तरीके से निकली। इस दौरान भक्त ढोल ताशे और डीजे की धुन पर जमकर नाचते झूमते नजर आए। बच्चे हों, युवा हों या महिलाएं या बुजुर्ग, हर कोई बप्पा के आगमन की खुशी में झूमता दिखा।
2: उत्साह तो बहुत है, जैसे सब है, सबके चेहरे पे खुशी है। आप देख रहे हो कल्याण गणेश उत्सव मंडल है, सब बापा को एकदम धूमधाम से लेके आ रहे, बारिश भी लेके आए बापा साथ में। काफी आनंद की बात है, बड़ा संकट था जो बापा अपने साथ हरने की बात कर रहे हैं।
1: अगले 10 दिन कितनी खुशी है, कितना जल्लोष होगा?
2: अगले 10 दिन तो ऐसी खुशी है जैसे ये 10 दिन खत्म ही ना हो, काफी आनंद है।
0: अकोला में गणपति स्थापना से कुछ घंटे पहले निकली गणपति की इन शोभा यात्रा ने भक्ति के दो खूबसूरत रंग दिखाए। कहीं सादगी में श्रद्धा तो कहीं संगीत और नृत्य के साथ जश्न का माहौल, लेकिन मंजिल एक ही, सब गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया की गूंज के बीच पूरे उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। 7 नवंबर को होने वाले इस भव्य आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या में इस वर्ष आयोजित होने वाला दीपोत्सव भव्यता, आध्यात्मिकता और अवध की सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत संगम का साक्षी बनने जा रहा है। एक और जहाँ पर दीपोत्सव को के माध्यम से जो है विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां तेज चल रही हैं, वहीं पर दूसरी ओर सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभूति कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए।
0: रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से लाखों दीपों की भव्य छटा देखने को मिलेगी। एक बार फिर से यहां पर सरयू नदी के घाट दीपों से जगमग होंगे। जब लंका विजय के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दशरथपुरी में वापसी की याद में दीपावली मनाने के लिए यहां पर अनगिनत दीप जलाकर शानदार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में लगातार 10वीं बार यहां पर दीपोत्सव मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
4: अयोध्या के इस बार के दीपोत्सव को खास रंग और रूप और रेखा तैयार कर दी गई है। यही वह स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहां पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे, तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है।
0: हर साल की तरह इस बार भी दीपावली से एक दिन पहले अयोध्या में सरयू किनारे दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस बार 7 नवंबर को दीपोत्सव होगा। इसे भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी जारी है।
5: तो अभी हम लोग इसको धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे, जिस तरह के निर्देश आते रहे।
0: इस बार दीपोत्सव के सिलसिले में राम की पैड़ी से लेकर सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट के पूरे इलाके को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट अलौकिक नजर आएगा। दीपोत्सव की तैयारियों के लिए 2 महीने से भी कम समय बचा है, लिहाजा प्रशासन की ओर से तेजी से इंतजाम किए जा रहे हैं।
6: घाट के रेनोवेशन का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था, जिसको UPPCL कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा। और साथ ही साथ वहां पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है। और उम्मीद है कि दीपोत्सव इस बार बहुत भव्य तरीके से होगा। विश्वविद्यालय से हम लोगों ने टाई अप किया है, जो वॉलंटियर्स उनके प्रोवाइड किए जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से आते हैं, ये सभी व्यवस्थाएं कराई जा रही है।
0: आपको बता दें, अयोध्या में सरयू तट पर दीपोत्सव मनाने का सिलसिला 2017 से शुरू किया गया था। तब यहां पर लगभग 2.25 लाख दिए जलाए गए थे। वहीं साल दर साल इस आयोजन में दीपों की संख्या बढ़ती जा रही है, हर साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले साल 2025 में यहां पर 26 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए गए और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया। माना जा रहा है कि इस बार के दीपोत्सव में भी नया रिकॉर्ड बनेगा।
7: देखिए, अयोध्या का दीपोत्सव अब पूरे दुनिया में एक अयोध्या की पहचान बनकर उभरा है। पूरी दुनिया को उत्सुकता रहती है अयोध्या के दीपोत्सव की, दीपों की वह श्रृंखला, दीपों की वह संख्या, उसकी व्यवस्था, ये सारी चीजें कुल मिला के एक अद्भुत वातावरण अयोध्या में बनाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार का दीपोत्सव और दिव्यता और भव्यता के साथ संपन्न होगा। हम लोगों की सारी टीमें, सबका गठन हो चुका है, सब अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ सारी चीजों को कर रहे हैं।
0: दीपोत्सव के अवसर पर सरयू की लहरों के बीच जगमगाते हजारों दीप श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र होंगे। इस दौरान सरयू के घाटों पर भव्य महाआरती भी होने वाली है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और हजारों दीपों की जगमगाहट के बीच महाआरती में अयोध्या की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। ऐसे में अयोध्या का दीपोत्सव इस बार सिर्फ रोशनी का उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता, संस्कृति और भव्यता के दिव्य संगम का शानदार आयोजन बनने जा रहा है, जो एक बार फिर से सबके लिए यादगार हो सकता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, पंजाब की पहली रिवर राफ्टिंग टीम अमृतसर में तैयार हो रही है। आमतौर पर रिवर राफ्टिंग पहाड़ी नदियों, डैम या तेज बहाव वाले इलाकों में देखने को मिलती है, लेकिन यहां कुछ नया है। पंजाब की इस पहली रिवर राफ्टिंग टीम की बेसिक ट्रेनिंग जो है अमृतसर की UBDC नहर में हो रही है और खिलाड़ी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो रोज सुबह और शाम नारावाला पुल के पास करीब 3-3 घंटे कड़ी मशक्कत करते हैं।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू। मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए सीईओ और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। कोलकाता में माँ दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल। दूर दूर से पंडाल देखने और बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं भक्त। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए माँ पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना।
1: एवरेस्ट शुद्ध केसर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: ये तैयारी है दुश्मन से 100 कदम आगे चलने की। ये रणनीति है दो दो मोर्चों पर घात लगाए दुश्मन को पटखनी देने की। ये हुंकार है चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों को कुचलने की। LAC से लेकर LOC तक भारतीय सेना को पावरफुल बनाने के लिए भारतीय सेनाओं के हाथ ऐसे ऐसे नए हथियार लगने वाले हैं जो बिना शोर मचाए दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील की है। डिफेंस एक्सपोजिशन काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि भारतीय सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा और इसके साथ ही साथ भारत आत्मनिर्भरता के अपने लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और इसीलिए 98% डील ऐसी हुई है जिसमें डील सीधे तौर पर भारतीय उद्योगों के साथ ही होगी, यानी भारत अपने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ भी आगे बढ़ेगा और सेना को भी इससे मजबूती मिलेगी। भारत के सामने एक साथ दो तरह की सैन्य चुनौतियां हैं, चीन के साथ लंबी और कठिन पहाड़ी सीमा, जबकि पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चे पर अलग तरह की सुरक्षा चुनौती बनी हुई है। ऐसे में सेना को उन रक्षा उपकरणों और हथियारों की जरूरत है जो विषम चुनौतियों के बीच भी दुश्मन पर बढ़त दिलाने का काम करे। सेना के लिए इस खरीद पैकेज में CBRN रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक्स, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, आरुद्रा रडार, मरीन गैस टोबाइन, ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर्स, डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम, तमाम चीजें शामिल हैं।
1: ये हम ईयरमार्क कर रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है और इसके जो स्पेसिफिक राइट्स हैं जो बेचने के या हमारे खरीदने के, वो होगी हमारी घरेलू इंडस्ट्री। और घरेलू इंडस्ट्री का मतलब क्या निकल कर आएगा? सीधी बात है कि टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव करेगी, इकोनॉमी में हम सेव करेंगे, हमारे जो वेपन सिस्टम्स, क्योंकि हम अकेले वो कंट्री हैं जिसके वेपन सिस्टम वॉर टेस्टेड माने जाते हैं, और अगर वॉर टेस्टेड वेपन जैसे कि ब्रह्मोस हो गया, इवन आकाश स्पीर हो गया, आप देख रहे हैं कि दुनिया में तहकला मचा हुआ है कि जनाब हमें यही वेपन सिस्टम चाहिए। सो मुझे सीधे सीधे लगता है टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक सेविंग, और आज नहीं तो कल जब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक ट्रेड और इकोनॉमिक एनहांसमेंट, तीनों ही चीजें होंगी।
0: एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद प्रस्तावों में सबसे पहला नाम आता है CBRN रेकी व्हीकल का। इसकी खरीद का मुख्य मकसद युद्ध या फिर आपातकाल के दौरान सैनिकों को अदृश्य और जानलेवा खतरों से बचाना और उनकी मारक क्षमता को बनाए रखना है। इसका पहला काम है खतरों का पता लगाना। ये वाहन युद्ध क्षेत्र या फिर प्रभावित इलाकों में छिपे हुए हानिकारक रसायनों, खतरनाक वायरस, बैक्टीरिया और न्यूक्लियर रेडिएशन का रियल टाइम में पता लगा सकते हैं। अगर किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो परमाणु विस्फोट के बाद का माहौल सबसे अधिक घातक हो सकता है, क्योंकि परमाणु धमाके के बाद बड़े पैमाने पर अदृश्य रेडियोएक्टिव फॉलआउट हवा और जमीन में फैल जाएंगे। ऐसे विनाशकारी समय में सामान्य वाहनों या फिर पैदल सैनिकों का जाना तुरंत मौत को बुलावा देना है। किसी भी तरह के परमाणु हमले के बाद सबसे पहले भारतीय सेना के पास मदद पहुंचाने में सबसे अव्वल होते हैं CBRN व्हीकल्स। ये ऐसे व्हीकल्स हैं जो परमाणु हमले के तुरंत बाद सेना को पूरी ताकत से मदद भी पहुंचाते हैं और उन्हें सेफगार्ड भी देते हैं। युद्ध क्षेत्र में CBRN रेकी व्हीकल सिर्फ रासायनिक गैस जैसे सरीन या मस्टर्ड गैस या खतरनाक वायरस या न्यूक्लियर रेडिएशन का पता नहीं लगाएंगे, बल्कि ये सेना को आगे बढ़ने या फिर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ता भी तैयार कर सकते हैं। CBRN रेकी व्हीकल्स की एक और जिम्मेदारी है सुरक्षित रास्तों की मैपिंग करना। ये दूषित इलाकों में जाकर सुरक्षित और असुरक्षित रास्तों को मार्क करते हैं ताकि पीछे से आ रही मुख्य सेना और टैंक सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। सीबीआरएम ब्रेकी व्हीकल्स का तीसरा काम है सैनिकों को ब्लास्ट इफेक्ट से बचाना। इसमें ओवर प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल होता है, यानी सीबीआरएम ब्रेकी व्हीकल्स के केबिन के अंदर हवा का दबाव बाहरी वातावरण से अधिक रखा जाता है, जिससे बाहर की कोई भी जहरीली गैस या रेडियो डस्ट अंदर प्रवेश न कर पाए। चौथा और बेहद खास काम है कमांड सेंटर को रियल टाइम डेटा भेजना। ये वाहन आधुनिक सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़े होते हैं। जैसे ही इन्हें किसी खतरे का पता चलता है, ये तुरंत कमांड सेंटर को भेज देते हैं।
1: आज से पहले हमारे पास होता था न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल कैपेबिलिटी। जब हम सीबीआरएन की बात करते हैं, दैट इज केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। सीवी अगर बातें करे जाए तो ये हमारे पास एक ट्रैक्ड व्हीकल होगी, एक व्हील्ड व्हीकल होगी। ये हमारे अनकन्वेंशनल वॉर के लिए है, क्योंकि हमें मालूम है दुनिया का सिर्फ एक ही कंट्री है जो हमारा एडवर्सरी है, जो अनकन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। अगर सीधी तौर पर बात करी जाए तो ये एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा कि जहां पर आप रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको रियल टाइम में डिटेक्ट कर मैप कर पाएंगे कि कहां से लेके कहां तक है, और जो उसके अंदर क्रू है उसको प्रोटेक्शन दे पाएंगे। सो सीधी बात करेंगे, आप जिस चीज को जितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाते हैं उतनी जल्दी ही उसके खिलाफ आप एक्शन ले पाते हैं।
0: चीन की चुनौती से निपटने के लिए सेना को ताकत का बूस्टर दिया जा रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर सैनिकों और भारी हथियारों की फौरन तैनाती के लिए बड़ी तादाद में नए स्वदेशी हाई मोबिलिटी व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। युद्ध सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सही रणनीति और सही समय पर लिए गए फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत है एचएमवी व्हीकल्स। भारत को दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ती है, एक तरफ है चीन और एक तरफ है पाकिस्तान। ऐसे में एचएमवी व्हीकल्स भारत के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। एलएसी पर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। चीन के लिहाज से देखें तो हमारी सेना के लिए निगरानी, पहाड़ी इलाकों में सैन्य रसद और तेज आवाजाही बेहद जरूरी हो जाती है। लिहाजा पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भारतीय सेना की मोबिलिटी और निगरानी बढ़ाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मल्टी व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां होती हैं, जैसे कि 4x4, 6x6 या 8x8। इन वाहनों के सभी पहियों को इंजन से सीधे पावर मिलती है। इससे ये भारी वजन उठाने के बाद भी कीचड़, गहरी रेत और खड़ी चढ़ाई पर आसानी से चढ़ सकते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की पावरफुल M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, धनुष और K9 वज्र तोपों को पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाने के लिए 6x6 और 8x8 हैवी हाई मोबिलिटी ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके बिना भारी हथियारों को पहाड़ों पर ले जाना नामुमकिन माना जाता है। चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए भारत को चंद घंटों में हजारों सैनिकों को सीमा पर तैनात करना पड़ सकता है। ऐसे में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स सामान्य ट्रकों के मुकाबले दुगनी रफ्तार से सैनिकों को बिना थकाए सीधे फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं। युद्ध के समय फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ रहे सैनिकों को लगातार गोला बारूद, राशन, मेडिकल किट और ईंधन की जरूरत होती है। दुश्मन अक्सर मुख्य रास्तों और पुलों को बमबारी करके तबाह कर देता है। ऐसे समय में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स नदी नालों को पार करके कच्चे रास्तों से होते हुए फॉरवर्ड पोस्ट तक रसद की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देते। यही नहीं, सर्दियों में जब लद्दाख और सिक्किम में भारी बर्फबारी होती है, तब हाई मोबिलिटी व्हीकल्स -30 डिग्री तापमान में भी सेना के काम में जुटे रहते हैं। हाई मोबिलिटी व्हीकल में सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम लगा होता है, जिसमें व्हीकल के अंदर बैठे ड्राइवर के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो टायरों की हवा को कम या ज्यादा कर सकता है। और ये उस स्थिति में होता है जब ड्राइवर या तो दलदली जमीन की तरफ अपने व्हीकल को बढ़ा रहा हो या फिर पहाड़ी रास्तों में। इससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाने से वो सड़क पर भी आसानी से इसे चला सकेगा और इतना ही नहीं दलदली जमीन में भी ये अपने रण कौशल का बाखूबी प्रदर्शन कर पाएगा।
1: ये हाई मोबिलिटी व्हीकल जो है अपने आप में लकीली हमने अपने आर्टिलरी में इसे इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं जरा अच्छे से बता पाऊंगा कि जो हमारी हैवी ड्यूटी लॉजिस्टिक व्हीकल्स होती हैं जिनके अंदर जो कि हमें अलग अलग टेरेन पर चलाना पड़ता है, तो उसमें हाई मोबिलिटी सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन से फायदा ये होता है कि टायर का प्रेशर आप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। मुझे टायर का प्रेशर कम चाहिए डेजर्ट्स में, मुझे चाहिए स्नो के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली एक बटन दबाने से उसका टायर प्रेशर कम हो जाएगा, टायर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, बढ़ने की वजह से उसका जो जमीन से ट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर सेम गाड़ी जब मेन रोड्स पर आती है, प्लेन्स में आती है, रगेड टेरेन में आती है, तो उस प्रेस ऑफ बटन से वो टायर इन्फ्लेट हो जाएगा।
0: चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारतीय सेना की आक्रामक और त्वरित जवाबी कार्रवाई यानी शूट एंड स्कूट रणनीति हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ही टिकी हुई है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर ब्रह्मोस और पिनाका जैसी घातक मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से फिट किए जाते हैं।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल शूट एंड स्कूट का सीधे सीधे मतलब ये होता है कि जब आप एक आर्मर्ड गाड़ी के अंदर आप हाई मोबिलिटी एबिलिटी रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो सीधी सीधी बात है, एक तो सब तरह के टेरेन्स के ऊपर चल सकता है, चाहे वो स्नो हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे वो डिफिकल्ट टेरेन के लिए बात करें, और उसके ऊपर जो लगे हुए हैं ड्रोन्स और यूएवी वो उसको फायर कर सकता है, जो बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स हैं वो भी जो लगे हैं वो एनिमी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनिमी को डिटेक्ट कर वहां से गायब हो सकते हैं, दूसरा आप उसके ऊपर फायर कर उसका वापसी फायर आने से पहले स्कूट कर जाएंगे। शूट का मतलब होगा आपने फायर किया, स्कूट का मतलब होगा आप वहां से फायर करते ही निकल पड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपके ऊपर एक एडवर्सरी भी वापस अटैक करेगा।
0: अगर चीन या पाकिस्तान सीमा पर अचानक तनाव बढ़ता है तो मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को ट्रेनों या फिर बड़े मालवाहक जहाजों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये हाई मोबिलिटी ट्रक खुद सड़क मार्ग से कुछ ही घंटों में सीधे फ्रंट लाइन तक पहुंच सकते हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए धड़ल्ले से हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल सैन्य रणनीति में एक जगह स्थिर रडार या फिर मोबाइल बेस को दुश्मन के सैटेलाइट आसानी से ट्रैक करके उसे तबाह कर सकते हैं, और इसीलिए वायुसेना और नौसेना अपने रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ट्रकों पर माउंट करके एक चलता फिरता किला बना सकती है ताकि दुश्मन को ट्रैक किया जाए और उस पर नजर रखी जा सके। भारतीय वायुसेना अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए 6x6 और 8x8 और 10x10 वाहनों का रणनीतिक उपयोग करती है। वायुसेना के बेड़े में शामिल आकाश और समर शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम 8x8 और 6x6 ट्रकों पर तैनात है। वायुसेना के अत्याधुनिक अरुद्रा और अश्विनी रडार भी हाई मोबिलिटी वाहनों पर फिट होते हैं। दुश्मन के हमले की आशंका होने पर यह रडार 15 मिनट में पैक होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। भारत का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस 400 ट्रायंफ भारी भरकम 8x8 और 10x10 वाहनों पर तैनात है।
1: हाई मोबिलिटी व्हीकल एक्चुअली देखा जाए तो एयरफोर्स और आर्मी के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि हमारे पास दोनों ही जगहों पर बड़े डिफिकल्ट और वेरिड टेरेन है। एयरफोर्स को भी ऑपरेट करना पड़ता है हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, डिफिकल्ट एरियाज में, डेजर्ट एरिया में वगैरह वगैरह। सो इन सब जगहों पर अगर आपके पास एक हाई टेरेन व्हीकल है, हाई मोबिलिटी व्हीकल है, आप उसके ऊपर अपने रडार्स लगा सकते हो, आप अपने उसके ऊपर मिसाइल्स लगा सकते हो, एयर डिफेंस रिलेटेड आइटम्स लगा सकते हो, और उन्हें उस जगह पर पहुंचा पाते हो जहां पर एनिमी आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। मेरा कहने का मतलब होगा स्पीड और सरप्राइज हाई मोबिलिटी व्हीकल डेफिनेटली एयरफोर्स को एक एज देगा कि आप फॉरवर्ड एरियाज में जो बिल्कुल LAC, LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हैं, आप वहां से दुश्मन को न केवल मॉनिटर कर पाओगे रडार्स द्वारा, बट इवन एंगेज कर पाओगे अपनी मिसाइल्स द्वारा।
0: भारतीय नौसेना मुख्य रूप से समंदर में युद्धपोतों पर लड़ती है, लेकिन तटीय सुरक्षा और समुद्री हवाई स्टेशनों की सुरक्षा के लिए भी वो हाई मोबिलिटी व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करती है। नौसेना अपनी लंबी बाउंड्री की रक्षा के लिए ब्रह्मोस तटरक्षक सुरक्षा मिसाइल का इस्तेमाल ज्यादा करती है। ये मिसाइल 8x8 मोबाइल ऑटोनमस लॉन्चर ट्रकों पर तैनात होती है। इन्हें समुद्र तट के पास किसी झाड़ीदार इलाके में तैनात कर दिया जाता है, जहां से ये दुश्मन पर लगातार नजर रखती है और मौका पड़ने पर ये एक्शन में भी आ सकती है। सात सितंबर 2026 को रक्षा खरीद में नौसेना के हवाई स्टेशन के लिए नए अरुद्रा रडार को मंजूरी मिली। नौसेना इन रडार्स को मोबाइल ट्रकों पर रखती है ताकि नेवल एयरफील्ड पर आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों और टोही ड्रोनों पर लगातार नजर रखी जा सके और जरूरत पड़ने पर रडार की पोजीशन बदली जा सके।
1: अगर अरुद्रा रडार की बात करें तो बेसिकली हम नेवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक मीडियम पावर्ड मीडियम रेंज एयर सर्वेलेंस सिस्टम है जो दूरी तक हमारे को सर्वेलेंस का अब एबिलिटी देता है। जो के जो नेवल हमारा एयर स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो एक अपग्रेडेड वर्जन के तौर पर इसके अंदर देखा जा सकता है। कोस्टल डिफेंस के लिए जो ट्रैकिंग है, जो डिफेंसिव ट्रैकिंग सिस्टम है कोस्टल एरियाज में, ये उसको स्ट्रेंथन करता है और टोटल जिसको बोलते हैं ना एयर डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नेवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैरिटाइम बॉर्डर्स हमारे लंबे चौड़े हैं, इलाका टू बी मॉनिटर्ड बहुत लंबा चौड़ा है और रडार अरुद्रा टाइप हमारे पास होने से ऑब्वियस एडवांटेज नेवी को पूरी तरह मिलती है।
0: भारत की 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की रक्षा खरीद से ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि भारत किसी खास युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये ज्यादा व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण का हिस्सा है और इसी कड़ी में भारतीय सेना सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स भी खरीद रही है।
2: भारत सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर खरीदने का भी मन बना रहा है। दरअसल पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में जहां पर थल सेना सबसे ज्यादा मोर्चा संभालती है, ये वहां पर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल ज्यादातर एंटी टैंक मिसाइल बिछाने के लिए भी होता है, जिससे दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती है और उस पर हमला भी सटीक किया जा सकता है।
0: पहले के समय में सैनिकों को फावड़े लेकर हाथ से जमीन खोदनी पड़ती थी और बारूदी सुरंगें चबानी पड़ती थी, जिससे बहुत ज्यादा समय लगता था और जवानों की जान का खतरा हमेशा बना रहता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब मशीनों के जरिए एंटी टैंक माइंस बिछाई जा सकती हैं। अब ये तकनीक कैसे काम करती है ये भी जान लीजिए। सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट होती है। इसके पीछे एक विशेष मैकेनिकल आर्म लगा होता है जो चलते चलते जमीन को खोदता है और उसमें एंटी टैंक माइन को सटीक दूरी पर रखता जाता है, उसे एक्टिव करता है और वापस मिट्टी से ढक देता है। जहां हाथ से माइन बिछाने में कई दिन लग जाते थे, वहीं सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स महज कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर लंबा बारूदी सुरंग का अभेद जाल बिछा सकता है।
1: MMLSP जिसको बोलते हैं मैकेनिकल माइन लेयर सेल्फ प्रोपेल्ड जो है हमारा, वो एक मल्टीपल यूज प्लेटफॉर्म है जो कि मैकेनिकल है और माइन लेइंग का मतलब है कि मैकेनिकली ऑटोमेटिकली आप कैनिस्टर्स के अंदर से माइन जमीन के ऊपर लगाते चले जाएं, क्योंकि आपके पास जो अदरवाइज जमीन का जो वैरायटी अवेलेबल है, रगेड टेरेन है जहां डिफिकल्ट है, वहां पर आपको एफर्ट ज्यादा लगता है, एनिमी ऑब्जर्व कर पाता है, मे बी एनिमी आपको डिसरप्ट कर पाता है। सो तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ माइंस अगर कभी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऑपरेशनल एरिया में जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।
2: चीन और पाकिस्तान सीमा पर सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के साथ पंजाब और राजस्थान के मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध की स्थिति में दुश्मन के टैंक तेजी से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं तनाव की स्थिति में एलएसी पर चीन भी अपने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर बेहद कम समय में रक्षात्मक घेरा यानी कि माइन फील्ड तैयार कर सकते हैं, जिससे पार करने का मतलब है कि दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों की तबाही। सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइनलेयर्स केवल बारूदी सुरंगें नहीं बिछाता बल्कि कहां कहां सुरंगें बिछी हैं इसका पूरा डेटा इसके पास होता है, यानी कि पूरी जीपीएस लोकेशन इसके पास होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि युद्ध खत्म होने के बाद या फिर युद्ध के समय जब दुश्मन आगे बढ़ जाता है तो भारतीय सेना यदि आगे बढ़ती है तो उसे अपनी ही बिछाई हुई माइंस का ट्रैक पूरी तरह से पता होगा, जिससे वो खुद की बिछाई माइंस के दायरे से बाहर रह सकेंगे और युद्ध लड़ सकेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। मल्टी रोल क्षमता से लैस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर सैनिकों के परिवहन, घायलों को निकालने, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने में भी सक्षम है।

0: चीन और पाकिस्तान जैसी दुर्गम पहाड़ियां जहां पर कई रास्ते ऐसे हैं जो सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह से ढक जाते हैं, जहां पर सड़क का नामो निशान तक नहीं रहता, वहां पर ALH ध्रुव सबसे कारगर साबित होता है, क्योंकि ऐसे समय में ALH ध्रुव ही वहां तक राशन, दवाइयां, गोला बारूद सही समय पर पहुंचाता है।
1: मल्टी रोल क्षमता से लैस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर कितना दमदार है और भारतीय सेना इस पर क्यों सबसे ज्यादा भरोसा करती है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। ALH ध्रुव की सबसे बड़ी खासियत इसका शक्तिशाली शक्ति इंजन है, जो 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारी वजन के साथ उड़ान भर सकता है और लैंड भी कर सकता है। इसमें अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट और इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर डिस्प्ले सिस्टम है, जो पायलट को रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक उड़ान भरने में मदद करता है। सीमा पर किसी भी घुसपैठ या आपातकालीन स्थिति के दौरान यह हेलीकॉप्टर 12 से 14 सशस्त्र सैनिकों को दुश्मन की नजरों से बचाकर सीधे युद्ध क्षेत्र में उतार सकता है।
2: ALH ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मेरा भारतीय है, हमने अपने आप बनाया है। जो चीज आप अपने आप बनाते हैं ना, उसका कहीं कोई पैरेलल नहीं होता, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि ALH ध्रुव हमारा एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो मेरे हिसाब से सर्वेलेंस के बड़ा काम आता है, इवन ट्रुप्स के लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा रोल अदा करता है, कॉम्बैट और आर्मर्ड रोल में इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी ये बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसे एक बहुत अच्छी सेफ्टी देती है।
0: रण क्षेत्र में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

चतुर्थी के पर्व की महिमा, गणेश महोत्सव में क्या होगा गणपति का पूजा विधान, कैसे मिलेगी भगवान गणेश की कृपा, कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती है तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज, अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू, मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए सीईओ और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा। कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, दूर दूर से पंडाल देखने और बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं भक्त। तमिलनाडु में भी गणेश चतुर्थी की भव्य तैयारियां, जबरदस्त रोशनी से सजा करपागा विनयागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान, कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक, 150 फीट गहराई से एसडीआरएफ के जवानों ने बचाई जान। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार 4वीं जीत, वर्ल्ड कप में जगह पक्की। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया, दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। शानदार खबर आपको दे दें, देखिए बात करेंगे क्रिकेट से जुड़ी हुई शानदार खबर की। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे T20 मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की है। जी हां, 3 मैचों की सीरीज का आज पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 156 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का पहला विकेट संजू सैमसन के रूप में गिरा, वो 10 रन बनाकर आउट हो गया। उसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान शानदार तूफानी पारी के लिए, अभिषेक शर्मा ने महज 32 गेंदों में 82 रन जड़ दिए और भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। तो तीनों मैच हिंदुस्तान जीत चुका है, शानदार खबर आपको दे रहे हैं। 7 विकेटों से हराकर भारत ने मात्र 13 ओवर 4 गेंदों में ही इस जीत को हासिल कर लिया है और ये शानदार खबर है। इंडिया की टीम ये मैच जीत चुकी है, महज 13 ओवर 4वीं बॉल पर ही 7 विकेटों के साथ अफगानिस्तान को धूल चटा दी। और आइए अब देखते हैं खबरें फटाफट जीएनटी एक्सप्रेस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: गणेश उत्सव को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी, कल धूमधाम से गजानन की स्थापना होगी। ब्रह्म योग में कल विराजेंगे गजानन, 10 दिनों तक चलेगा भव्य गणेश उत्सव। मुंबई में गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 14,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। मुंबई पुलिस ने उत्सव के दौरान लोगों से भीड़ वाली जगहों पर संयम बरतने की अपील की। महाराष्ट्र के ठाणे में रेत पर सजे बप्पा के 5 रूपों की भव्य दर्शन, आस्था और कला का अद्भुत दृश्य। तमिलनाडु में भी गणेशोत्सव की धूम, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर विनयगर मंदिर में निकाली गई भव्य रथ यात्रा। भारी संख्या में रथ यात्रा देखने के लिए पहुंचे भक्तगण, ढोल बजाकर धूमधाम से निकाली गई बप्पा की यात्रा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में विराजमान है गजानन की 164 साल पुरानी 15 फीट की प्रतिमा। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। त्रिनेत्र गणेश के जयकारों से गूंजा पूरा रणथंभौर, लक्की मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। संबल गणेश चतुर्थी और गणेश चौथ मेले का शानदार आगाज, 5 विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुभारंभ हुआ। गणेश चौथ मेला पिछले 66 वर्षों से लगातार किया जा रहा है आयोजित। 2 अक्टूबर तक चलेगा गणेश चौथ मेला, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। हैदराबाद में विकसित भारत 2047 थीम पर स्थापित की गई गणेश प्रतिमा गणेश चतुर्थी समारोह की 50वीं वर्षगांठ को लेकर भव्य समारोह। गणेश जी की प्रतिमा को दिया जा रहा है विशेष रोबोटिक आकार, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत भारत का प्रतीक। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा झांसी शहर, गजानन के स्वागत में 20 से 25 हजार श्रद्धालु पहुंचे। ढोलना काली बैंड और डीजे की धुन पर झूमे युवा, झांसी की सड़कों पर दिखी मुंबई जैसी गणपति की झलक। झांसी शहर के 12 से 15 इलाकों में गणपति प्रतिमाओं का आगमन, मानिक चौक समेत कई जगहों पर हुआ भव्य स्वागत। मानिक चौक के राजा गजानन का आगमन बना आकर्षण। मुरादाबाद में छात्रों ने बनाई गजानन की इको फ्रेंडली प्रतिमा, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हरिद्वार में भी गणेश चतुर्थी को लेकर मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं की बड़ी मांग, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। आंध्र प्रदेश में पौधों से बना अनोखे गणपति हुए तैयार, 2 साल की मेहनत से किसान ने खड़े किए 9 फीट के गणेश। लोहे के ढांचे पर 4 पौधों को दिया गणेश जी का आकार, उसके बाद तैयार किया। 9 फीट ऊंचे लिविंग गणेश को देखने के लिए उमड़ रहे हैं लोग, किसान धनराजू डिप्टी सीएम को गिफ्ट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कॉलेज छात्रों के अनोखी पहल, बीजों और फूलों की पत्तियों से तैयार किया गजानन की प्रतिमा। अकोला में सजा गणपति बप्पा का भव्य बाजार, बाल गणपति से सेल्फी और माखन चोर तक की प्रतिमा है। बप्पा के आगमन से पहले अकोला में झमाझम बारिश, भक्तों में उत्साह का माहौल, उत्सव की खरीदारी जारी। अकोला के एसीसी ग्राउंड के गणपति बाजार में उमड़ी भीड़, पुणे कुंकड़ और पेन की मशहूर प्रतिमाएं मौजूद। केक काटते हुए और सेल्फी लेते हुए नजर आए गणपति बप्पा, अनोखे रूप में बच्चों को कर रहे हैं आकर्षित। बप्पा की स्थापना को देखते हुए भक्तों में खास उत्साह, परिवार के साथ बाजार पहुंच रहे हैं भक्त। मुंबई के किंग्स सर्कल में जीएसबी महागणपति दर्शन को मर रहे हैं भक्त, 66 किलो से ज्यादा सोने के सजे गजानन। जीएसबी महागणपति को मिला 703 करोड़ का ऑर्डर्स, रिकॉर्ड इंश्योरेंस। सोने चांदी की चमक के साथ वैदिक परंपरा भी खास, पूजा सेवा और अन्नदान से जुड़ा जीएसबी महागणपति उत्सव। 21 फीट ऊंचे लाल बक्षा राजा की भव्य शोभा यात्रा, सादगी और भक्तिभाव के साथ निकाली गई बप्पा की यात्रा। इंदौर में 200 साल पुरानी विरासत में सजे बप्पा बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। देशभर में कल मनाया जाएगा हरतालिका तीज का उत्सव, व सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कल महिलाएं रखेंगी व्रत, बहुत कठिन और पुण्यदायी माना जाता है व्रत। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना का विशेष विधान। हरतालिका तीज को लेकर बाजारों में बड़ी रौनक, मेहंदी श्रृंगार और पूजन सामग्री। कल तीज पर गूंजेंगे हर हर महादेव के जयकारे, व्रत के साथ शिव पार्वती के विवाह की होगी पूजा। अयोध्या में 7 नवंबर को भव्य दीपोत्सव तैयारियां तेज, सरयू घाटों की सजावट और रोशनी बनेगी खास आकर्षण। दीपोत्सव पर सरयू तट पर बदलेगा भव्य स्वरूप, पुल के लक्ष्मण घाट तक 1 किलोमीटर तक का सजेगा क्षेत्र। हजारों दीपों से जगमगाएगा अयोध्या का सरयू तट, महाआरती में दिखेगा अवध की धार्मिक परंपरा का रंग। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजेंगे सरयू घाट, शाम ढलते ही अलौकिक नजर आएगा रामनगरी का घाट। दीपोत्सव को लेकर प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारियां, घाटों का रेनोवेशन का काम हो रहा है पूरा। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप से भारत के लिए शानदार खबर, लगातार तीसरी बार जीता खिताब। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल में ही मेजबान चीन को 1-0 से हरा दिया, सनिका ने 17वें मिनट में किया इकलौता गोल। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम का FIH जूनियर विश्व कप में खेलने का मौका। हॉकी इंडिया ने की विजेता टीम के लिए 3-3 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड की घोषणा।

और रहा कामयाबी, भारत लगातार चौथी बार बना चैंपियन। साउथ कोरिया को हराकर तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड, FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह पक्की की। दिल्ली में प्रदूषण जांच केंद्रों की धांधली पर लगेगी लगाम, कैमरों से लैस होंगे सेंटर्स। पश्चिम बंगाल में देवदूत बने BSF के जवान, 10 बांग्लादेशी नागरिकों को बचाया। गढ़वा के जंगल में दिखा बाघ के पैरों का निशान, ट्रैप के लिए वन विभाग ने लगाया कैमरा। लद्दाख मैराथन 2026 का भव्य आगाज हुआ, जी विनय कुमार सक्सेना ने शिरकत की। लद्दाख की ऊंचाइयों पर दौड़े 5,000 से ज्यादा धावक, 3 कैटेगरी में हुआ मुकाबला। दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली मैराथन में दिखा जोश, देश विदेश के धावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छी खबर, पुलिस ने 40 लाख रुपए के 200 मोबाइल वापस लौटाए। दिल्ली NCR में फिर बारिश के आसार, अगले 3 दिन तक छा रहेंगे बादल। कल सुबह से दोपहर के बीच में कुछ जगहों पर हो सकती है हल्की बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। बारिश के बीच दिल्ली की हवा फिलहाल संतोषजनक, आज शाम 6 बजे तक 86 दर्ज किया गया AQI। नवसारी में बारिश के चलते अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर। शिखरी की कावेरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुंबई के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश जारी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास भरा पानी। नवसारी और डांग जिले में लंबे समय के बाद बारिश का दौर शुरू, डांग में कई इलाकों में झमाझम बारिश। बिहार के भागलपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से अभी भी ऊपर, SDRF की टीम ने 300 लोगों को बाहर किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बढ़ा कागन नदी का जलस्तर। जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ सुहाना, डल झील में पर्यटक उठा रहे हैं मौसम का लुत्फ। मलयालम महीने चिंगम का अंतिम रविवार विवाह के लिए माना जाता है शुभ। केरलम के गुरुवायूर मंदिर में चिंगम पर 400 से ज्यादा जोड़ों का हुआ विवाह। मुंबई में गणेश ज्ञानार्थी प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ हुआ, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री हमेशा शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शिव महापुराण का भव्य आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने शिरकत की। अमृतसर में तैयार हो रही है पंजाब की पहली रिवर राफ्टिंग टीम, खिलाड़ियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। जैसलमेर पहुंची विश्व प्रसिद्ध पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी अंदाज में हुआ देशी विदेशी मेहमानों का स्वागत। राजस्थानी गीत, ढोल नगाड़े और रेड कार्पेट पर हुआ पर्यटकों का भव्य स्वागत। नए पर्यटन सीजन में पैलेस ऑन व्हील्स का नया अंदाज, 6 कमरों में मार्बल फ्लोरिंग। रेल में देखा राजस्थानी शिल्प और आधुनिक लग्जरी का मेल। चर्चित फिल्म हनुमान अंश की युवा प्रोड्यूसर अनुप्रिया नगर पहुंची कैंची धाम, बाबा नीम करौरी महाराज के दर्शन आशीर्वाद। कानपुर विश्वविद्यालय में AI 2.0 मंथन को लेकर सम्मेलन हुआ, स्मार्टफोन से कैंसर की पहचान से लेकर TB उन्मूलन तक की चर्चा हुई। प्रयागराज में ठीकुआ रामवन गमन मार्ग कुछ दिन पहले आई थी दरार। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चला जाएगा सेवा संकल्प अभियान, 19 से वडनगर तक निकाली गई भव्य यात्रा। दिल्ली विधिविधान से श्री रघुनंदन लीला समिति का भूमि पूजन हुआ। मुरादाबाद के सेमली गांव में वन विभाग के पिंजरे में पकड़ा गया तेंदुआ। तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ आगाज किया, अफगानिस्तान की टीम को मात दी। अफगानिस्तान ने खेलते हुए 20 ओवर्स में 157 रनों का लक्ष्य दिया था, 13 ओवर 4 गेंदों में ही हासिल कर ली जीत। अफगानिस्तान की ओर से
अजमतुल्ला।

0: नाबाद 64 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके। अभिषेक शर्मा ने खेली तूफानी पारी, 32 गेंदों में 82 रन। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया मैच, 15 सितंबर को खेला जाएगा अगला मुकाबला। डकार पहुंची यूथ ओलंपिक की मशाल, सेनेगल की राजधानी में ओलंपिक का फ्लेम का भव्य स्वागत हुआ। अफ्रीका में पहली बार यूथ ओलंपिक की तैयारी, सेनेगल के राष्ट्रपति ने किया ओलंपिक मशाल का स्वागत, संगीत और नृत्य की परफॉर्मेंस ने जीता दिल। चीन के नर्रा मंगोलिया में डेजर्ट फूलों का रोमांच, रेगिस्तान में दौड़े ऊंट। ऊंटों पर सवार खिलाड़ियों का जोरदार मुकाबला हुआ, चीन में डेजर्ट पोलो को मिला सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। डेजर्ट पोलो के साथ हुई तीरंदाजी, चार वाहनी पारंपरिक प्रतियोगिता में भाग लिया। वॉशिंगटन के नेशनल जू में पांडा किंग बाओ के चौथे जन्मदिन पर मना जश्न, पांडा के लिए फल और सब्जियों से बना विशेष केक। पांडा ने चटकर दिया बर्थडे केक, जन्मदिन पर गुब्बारों से खेलती हुई नजर आई पांडा किंग बाओ। चीन के गुईझोऊ में बना नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1835 लोगों ने एक साथ कॉकटेल शेक किया। चीन में शुरू हुई रोबोट बनाने वाली रोबोट फैक्ट्री ग्वांगशी में रोबोट अब खुद को बना रहे हैं। 40,000 साल पुराने घोड़े को मिला नया रूप, चीन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया 3D मॉडल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या है गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा, गणेश महोत्सव में क्या होगा गणपति का पूजा विधान, कैसे मिलेगी भगवान गणेश की कृपा, कैसे मिलेंगे वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे डॉगी से जो प्यार दुलार और मुस्कुराहट से मरीजों को जीने का हौसला दे रहा है। जी हाँ, यह है ग्रीस का पहला एनिमल हेल्थ केयर वर्कर जिसको हेल्थ सिस्टम में शामिल किया गया है।
2: यह है डायलन, ग्रीस का पहला डॉगी जो अस्पताल में भर्ती कैंसर मरीजों की सेवा में लगा है। ये अस्पताल में भर्ती कैंसर मरीजों से मिलता है और उन्हें जिंदगी जिंदा दिली से जीने की प्रेरणा देता है, उनका उत्साह बढ़ाता है। डायलन की चर्चा ग्रीस में खूब हो रही है क्योंकि इसके अस्पताल में मौजूदगी से ही मरीजों की जिंदगी में मुस्कुराहट लौट आती है। डायलन की मदद से अस्पताल प्रशासन मरीजों के डर को कम करने की कोशिश करते हैं।
3: Είναι ο πρώτος σκύλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εντάχθηκε ως υγειονομικός υπάλληλος. Ποια είναι η δουλειά του? Η δουλειά του είναι να επισκέπτεται τους ασθενείς στις πιο δύσκολες στιγμές τους, την ώρα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, και να τους παίρνει λίγο το μυαλό, να τους κάνει λίγο να ξεφεύγουν από αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Οι ογκολογικοί ασθενείς είναι ασθενείς που έρχονται αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη δυσκολία, έστω μεγαλύτερη δυσκολία της ζωής τους. Οπότε ο Ντίλαν με την παρουσία του τους χαρίζει.
2: कैंसर मरीजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीमारी से लड़ना। इस तनाव में डायलन महज अपनी मौजूदगी से मरीजों में हंसी खुशी और राहत के पल लाता है, क्योंकि एक बार कैंसर का पता चलने के बाद मरीजों के जीवन से वो बेपरवाही का एहसास गायब हो जाता है और मुस्कान की वापसी हुई है।
4: Πρώτη φορά που τον βλέπω είμαι κατενθουσιασμένη. Πέρασε η θεραπεία, δεν την κατάλαβα καθόλου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
5: Μου έδωσε μια θετική ενέργεια. Μόνο λίγο τον χάιδεψα και τον άγγιξα, ένιωσα σαν να με καταλαβαίνει, σαν να μου παίρνει τη θλίψη από μέσα, να μου μεταδίδει τη δική του ενέργεια, τη δική του αύρα.
2: Dog therapy trainer और handler का मानना है कि भले ही वो मरीजों का शारीरिक इलाज नहीं कर सकते, लेकिन वो उनको जल्द ठीक होने में मदद जरूर करते हैं। कहा भी गया है कि अगर प्यार और आत्मीयता से किसी जरूरतमंद से जोड़ा जाए तो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: अब आपको दिखाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक फेरी की तस्वीरें। पूरी तरह बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक फेरी चाइना जोरेला ऑस्ट्रेलिया से उरुग्वे तक का लंबा सफर पूरा करने के बाद शनिवार को उरुग्वे के नोएवा पाल्मेरा बंदरगाह पर पहुंची और इस जहाज को तस्मानिया में बनाया गया था और उरुग्वे की शिपिंग कंपनी बुकेबस ने इसे खरीदा है। आपको बता दें बुकेबस का कहना है ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक जहाज है जो ट्रांसपोर्टेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। इसे ब्यूनस आयर्स और कोलोनिया के बीच में कमर्शियल सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इस जहाज की लंबाई 130 मीटर है और इसका निर्माण पूरी तरीके से मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम से किया गया है। इस जहाज में 2100 यात्री और 225 गाड़ियां आ सकती हैं। इसका नाम उरुग्वे की एक्ट्रेस कॉन्सेप्टिसियन चाइना के नाम पर रखा गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज, अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार 4वीं जीत, वर्ल्ड कप में जगह पक्की। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया, दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू, मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए सीईओ और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह, कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान, कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक, 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले जेएनटी के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके लिए पंडित जी से हम जानेंगे श्री गणेश की महिमा के बारे में और गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव को मनाने के तरीके क्या होने वाले हैं, पूजन कैसे करना है, इसकी विधि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले वक्त हो चला है जानने का कि आज का गुडलक मंत्र क्या है।
1: अगर आप गणेश महोत्सव में गणपति जी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करते हैं तो नियमित रूप से सुबह शाम उनकी उपासना करें और घर में पूर्ण सात्विकता बनाए रखें। घर का भोजन, माहौल, वातावरण जितना पवित्र होगा उतना ही बेहतर रहेगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी से जान लेंगे 14 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 7:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 1:55 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब जान लेते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है।
1: जी, आज हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी के पर्व के बारे में, गणपति महोत्सव के बारे में, इसकी महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने में मासिक गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की महिमा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसी दिन गणेश जी का अवतरण हुआ था। ये भी माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि जिसमें गणेश जी धरती पर निवास करते हैं, ये अवधि होती है अनंत चतुर्दशी तक, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक भगवान गणेश धरती पर निवास करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार ये पर्व 14 सितंबर को आरंभ हो रहा है और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव समाप्त हो जाएगा।
0: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
1: मेष राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बनते हैं, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए पंडित जी से जान लेंगे भगवान गणेश की प्रतिमाओं के बारे में। आखिर अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या होता है और इसे घर में या फिर किसी और जगह पर स्थापित किस प्रकार करना चाहिए?
1: देखिए, गणपति महोत्सव में हम अलग अलग मूर्तियां भगवान गणेश की स्थापित करते हैं और अलग अलग तरह की भगवान गणेश की मूर्तियों का अलग अलग महत्व है। गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। हैं तो सब गणपति की ही मूर्तियां, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। सबसे ज्यादा उपासना जिस मूर्ति की होती है वो होती है पीले रंग के गणपति की, और रक्त वर्ण लाल रंग के गणपति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। नीले रंग के जो गणेश जी की मूर्ति है इनको उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना तंत्र की उपासना है और इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। सामान्यतः नीले रंग के गणपति की पूजा नहीं होती। हल्दी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति या जिस मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया गया हो उस मूर्ति को हरिद्रा गणपति कहते हैं, और ये हरिद्रा गणपति की मूर्ति कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए, जैसे विवाह और संतान के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। एक दंत गणपति श्याम वर्ण के होते हैं, सांवले रंग के होते हैं। इनकी उपासना से अद्भुत पराक्रम की प्राप्ति होती है, जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहा जाता है। इनकी अगर आप पूजा करें, श्वेत गणपति की उपासना करें, तो कर्जों से, ऋणों से आपको मुक्ति मिलेगी। चार भुजाओं वाले रक्त वर्ण के गणपति, लाल रंग के गणपति को संकष्ट हरण गणपति कहते हैं, जो संकटों का नाश करते हैं। इनकी उपासना से जीवन के हर संकट का नाश होता है। त्रिनेत्रधारी, रक्त वर्ण और 10 भुजा वाले गणपति को महागणपति कहा जाता है। इनके अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं, ये महागणपति हैं, सारे स्वरूप इनके अंदर विद्यमान होते हैं। सामान्यतः पीले रंग की या रक्त वर्ण की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो, अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप गणेश महोत्सव पर गणपति की स्थापना करना चाहते हैं, तो गणपति की मूर्ति मध्यम आकार की होनी चाहिए। पीले रंग की या लाल रंग की मूर्ति स्थापित करना बेहतर होगा।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
1: कर्क राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता समाप्त होगी, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए, अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेंगे?
1: जी, आज का पहला प्रश्न पुष्पलता जी ने हमें लिखा है। पुष्पलता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 नवंबर 1998। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन प्रशासनिक सेवा में होगा? पुष्पलता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको यूपीएससी के अलावा यूपीपीसीएस की तैयारी भी करनी चाहिए। इस क्षेत्र में आपको प्रशासनिक नौकरी मिलेगी। साल 2028 आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो प्रशासनिक सेवा के साथ साथ एजुकेशन के फील्ड में भी नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकती हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक मूंगा बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित जी से जान लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न आप किसका लेने वाले हैं।
1: जी अगला प्रश्न नरेंद्र जी का है और नरेंद्र जी ने हमें सिरसा हरियाणा से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1964। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है सिरसा हरियाणा। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेके परिवार में एक मुकदमा चल रहा है। काफी समय से मैं इसको सुलझाना चाहता हूं, मुकदमा सुलझ नहीं पा रहा है, तो प्रॉपर्टी का लाभ कब तक हो सकेगा? नरेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी का मामला है वो इस साल के आखिरी तक आपसी सुलह समझौते से हल होगा और अगले साल के शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी का फायदा हो जाएगा। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर मंगलवार को गुड़ का या हलवा पूड़ी का दान निर्धनों में करिए। आपकी मुश्किल हल हो जाएगी।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में, गणेश महोत्सव के बारे में। पंडित जी से ये जान लेते हैं कि आखिर पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए, इसका विधि विधान क्या होना चाहिए।
1: देखिए, गणेश चतुर्थी के अवसर पर अगर आपने मूर्ति स्थापित की है तब तो आपको पूजा करनी ही है, और अगर आपने मूर्ति स्थापित नहीं भी की है तो भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। उसका सही तरीका क्या होगा? गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना, मूर्ति की स्थापना दोपहर के समय में करिएगा, और अगर आपने पूरे गणेश महोत्सव के लिए गणपति की मूर्ति स्थापित की है तो साथ में कलश भी स्थापित करिएगा। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके मूर्ति की स्थापना करें। दिन भर अगर आप उपवास रखते हैं तो दिन भर लिक्विड डाइट जलीय आहार ग्रहण करें या केवल फलाहार करें। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास जितना संभव हो भगवान गणेश की पूजा करें। घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं या एक ही लड्डू को उतने बार अर्पित करें। साथ ही साथ दूर्वा यानी दूब घास भी अर्पित करिएगा। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम गं गणपतये नमः, ओम गणेश वक्रतुंडाय हूम या संकट नाशन गणपति स्तोत्र या गणपति अथर्व शीर्ष जो संभव हो उसका पाठ करिएगा। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, लेकिन निगाह नीची करके अर्घ दीजिएगा। चतुर्थी के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा को देखेंगे तो आपको अपयश मिल सकता है। अगर चंद्र का दर्शन हो गया है तो उसके दोष का उपचार करिए, भगवान गणेश के मंत्र का जप करिए या भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिएगा, इस दोष का उपचार हो जाएगा। जब आपकी पूजा हो जाए तब प्रसाद लोगों में बांटिए, प्रसाद का वितरण करिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। अगर आप ऐसा करते हैं इस सरल तरीके से, चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जानेंगे दैनिक राशि फल के बारे में। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में जानते हैं।
1: तुला राशि, नए काम में आपको सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, करियर में बड़े निर्णय ना लें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, छोटी यात्रा हो सकती है। अनाज का प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल और भाग्य

0: सेक्टर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो गणेश चतुर्थी पर पूजा कैसे करनी है ये पंडित जी ने बताया। इसी के साथ पंडित जी से ये भी जान लेंगे कि क्या कुछ सावधानियां रखें गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने में, जिससे आपकी पूजा अर्चना में कोई बाधा ना आए।
0: गणेश चतुर्थी का पर्व हम सबको मनाना है, भले ही हम घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित ना करें, लेकिन 14 सितंबर को हम सबको गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना चाहिए। क्या सावधानियां रखेंगे? चतुर्थी के दिन या पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा, काले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। गणेश जी की मूर्ति अगर घर में स्थापित करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो मध्यम आकार की होनी चाहिए। अगर खुद नदी से मिट्टी ला करके आप गणेश जी की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। और अगर आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए व्रत का समापन मत करिएगा। नजर नीची रख करके आप चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। गणेश जी को फल फूल मिठाई धूप दीप नैवेद्य जो चाहें चढ़ाएं प्रेम और श्रद्धा से, लेकिन गणेश जी को कभी भी तुलसी दल न चढ़ाएं। और अगर चतुर्थी की पूजा कर रहे हैं तो बेवजह क्रोध ना करें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, सात्विकता बनाए रखें। इस बार जो गणपति की स्थापना का और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 14 सितंबर को होगा प्रातः 11:01 से दोपहर 1:30 के बीच में। इस समय में अगर आप गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं तो आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

व्यस्तता रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाणी पर और क्रोध पर

0: नियंत्रण रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के आपके तीसरे सवाल की ओर। पंडित जी से जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न पारिजात जी ने हमें लिखा है और पारिजात जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, महिला हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1998। जन्म का समय शाम के 7:35। जन्म स्थान है लखनऊ। पारिजात कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पारिजात आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप टीचिंग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक में या फाइनेंस में कोशिश करें तो इन क्षेत्रों में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और साल 2027 इसके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा कंसंट्रेशन आपका कमजोर है, उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें और मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
1: और चलिए आज का आपका आखिरी सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिस पर आप मेल कर सकते हैं और पंडित जी तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी आज का चौथा सवाल आप किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न अमित जी ने हमें लिखा है और अमित जी हमें हापुड़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1999। जन्म का समय शाम के 4:35। जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं बने रहिए, वही आपके लिए बेहतर है। आगे और किसी नौकरी में जाएंगे ऐसा कम लगता है, लेकिन ये लगता है कि नौकरी के साथ साइड में कोई व्यापार करेंगे आप, खाने पीने की चीज़ों का, कपड़ों का या दवाइयों का, और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से 2028 के नवंबर के बाद से आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो पंडित जी जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो लोग अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं करते हैं वो गणेश चतुर्थी का लाभ कैसे ले सकते हैं।
0: जी देखिए, गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आपके घर में पहले से ही गणपति की मूर्ति जरूर होगी, आप उन्हीं गणपति की पूजा गणेश चतुर्थी पर यानी 14 सितंबर को दोपहर के समय में करिएगा, आरती करिएगा, मंत्र पढ़िएगा और संध्या काल में उनकी पूजा करिए, चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए। बिना प्रतिमा स्थापित किए हुए भी अगर आप नियम और श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करेंगे या करेंगी तो आपके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी।
1: और चलिए अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 14 सितंबर को है। आप सभी को हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब पंडित जी से आपके लिए जान लेते हैं कि आपका

0: आने वाला साल कैसा रहेगा।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 14 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। साल के अंत में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि गणेश जी की उपासना की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, जहां तक संभव हो इनकी पूजा दोपहर के समय में करिए। सुबह और शाम भी करना अच्छा है, लेकिन पूर्ण लाभ लेने के लिए इनकी पूजा दोपहर को करें। पूजा में दूर्वा अवश्य अर्पित करें और संपूर्ण लाभ के लिए रोज कर सकें तो रोज या जब भी मौका मिले गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपके लिए शुभ होगा।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जान लेने का कि 14 सितंबर 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है।
1: दिनांक 14 सितंबर 2026 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 14 सितंबर सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है ये जान लेने का कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सी धातु का प्रयोग करना चाहिए। आज की गुडलक राशि है मकर। आपको एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपका करियर और आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से ले लेते हैं अपना जरूरी सवाल। पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है।
1: जी, अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर क्या करेंगे? गणेश चतुर्थी पर एक दूर्वा की माला हरे या पीले धागे में गूंथ करके दूब घास की माला बना लें, वो गणपति जी को पहनाएं। माला अर्पित करते समय मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहें और ये माला अनंत चतुर्दशी पर जल में प्रवाहित कर दें, इसको हटा दें। आपकी बड़ी से बड़ी कामना, बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होगी।
0: पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियों को पहुंचाने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ गुडलक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: संभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेशोत्सव की बात करेंगे। देखिए, कल गणेश चतुर्थी है, इसलिए कल से गणेशोत्सव की शुरुआत होगी। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और बप्पा का आगमन हो जाएगा। भक्त बेसब्री से विघ्नहर्ता का इंतजार कर रहे हैं।

0: 14 सितंबर से भले ही गणपति उत्सव का शुभारंभ हो रहा हो, लेकिन उत्साह अभी से लोगों में भरना शुरू हो गया है। सबसे पहले बात मुंबई के सबसे अमीर गणपति यानी जीएसबी मंडल के गणपति की। जीएसबी सेवा मंडल किंग सर्कल के महागणपति बाप्पा का पर्दा उठ चुका है और उनकी पहली भव्य झलक सामने आ चुकी है। परंपरा के अनुसार बप्पा का ये पहला दिव्य दर्शन 12 सितंबर 2026 को रात ठीक 8 बजे भक्तों को कराया गया। हालांकि औपचारिक रूप से महागणपति के दर्शन गणेश चतुर्थी के दिन यानी कल 14 सितंबर से ही होंगे। देश के सबसे अमीर गणपति कहे जाने वाले बप्पा को इस बार भक्तों द्वारा चढ़ाए गए 66 किलो से अधिक सोने और 335 किलो से अधिक चांदी के बेशकीमती गहनों से सजाया गया है। इतना ही नहीं, इस साल जीएसबी मंडल ने पूरे आयोजन के लिए 703 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऐतिहासिक बीमा कवर लिया है, जो कि भारत में किसी भी त्योहार के लिए अब तक का सबसे बड़ा बीमा है। बताया जा रहा है कि इस बार बप्पा की मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी मिट्टी से बनी है, और मंडल ने कागज बचाने के लिए रसीदों को डिजिटल यानी क्यूआर कोड आधारित कर दिया है। जीएसबी सेवा मंडल की ओर से इस बार 72वां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आमतौर पर मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणपति की मूर्तियां बनाई जाती है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कादियम में एक नर्सरी में पौधों से लंबोदर की प्रतिमा बनाई गई है। पौधों की 9 फीट की प्रतिमा को बनाने में किसान को 2 साल का वक्त और मेहनत लगी है। युवा किसान डूलम धनराजू ने बड़े ही सलीके और धैर्य के साथ पौधों से गणपति की प्रतिमा बनाई है। सबसे पहले धनराजू ने लोहे का एक ढांचा बनाया, उसके चारों ओर मलिपिया के पौधों से घेराव किया और नियमित रूप से पौधों की शाखाओं की छटाई की। तब जाकर 2 साल की मेहनत के बाद गणपति की जीती जागती पौधों से प्रतिमा तैयार हुई। धनराजू इस अनोखी रचना को आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को भेंट करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी और एजुकेशन हब के रूप में पहचान रखने वाले भिलाई दुर्ग में गणेशो उत्सव को लेकर इस बार एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है। यहाँ के कॉलेजों के छात्र भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा तैयार कर रहे हैं जो न केवल पूरी तरह इको फ्रेंडली है, बल्कि विसर्जन के बाद पौधों का रूप लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे।
1: हमने गणेश जी बनाए अपने हाथ से जो कि इको फ्रेंडली हैं। इनको बनाते वक्त हमने इनमें गेंदे के और सरसों के बीज डाले हैं और धान से डेकोरेट किया है। बिल्कुल हर चीज़ें हैं जो वो हर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की है, किसी भी प्रकार के केमिकल्स का हमने यूज़ नहीं किया है। और इस सब के चलते हम पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दे रहे हैं अपने समाज में।
2: प्राकृतिक गणेश की मूर्ति बनाई है जिसे हमने प्योर मिट्टी से बनाया है और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्लास्टिक और पेरिस और किसी भी प्रकार के हानिकारक पदार्थ नहीं मिले हैं। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है।
0: इन प्रतिमाओं को बनाने में पौधों के बीजों का उपयोग किया गया है ताकि जब प्रतिमा का गमले में विसर्जन किया जाएगा तो ये पौधों का रूप ले लेंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी का माहौल भी पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में गणपति प्रतिमाओं के भव्य आगमन को देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम गणपति के स्वागत में उमड़ रहा है। ढोल नगाड़ों बैंड और दमदार डीजे की गूंज के बीच युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। माहौल ऐसा हो गया है मानो गणपति उत्सव के लिए मुंबई की

झलक झांसी की सड़कों पर उतर आई हो। आगे आगे गणपति की प्रतिमा और पीछे पीछे नाचते गाते युवाओं की भीड़, पूरा शहर अभी से ही गणेश उत्सव के रंग में रंग गया है। यूपी के संभल के चंदौसी में श्री गणेश चतुर्थी मेले का शुभारंभ हो गया है। अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों ने फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया।

0: आशीर्वाद मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। मेले में स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। चंदौसी का गणेश चौथ मेला सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। पूजा के बाद भगवान श्री गणेश की मुख्य प्रतिमा को गणेश मंदिर से फूल डोल में रखा गया। गाजे बाजे के साथ फूल डोल शोभा यात्रा गणेश मेला ग्राउंड पहुंची और इसके बाद सभी लोग मेला ग्राउंड स्थित गणेश स्तंभ पर पहुंचे। चंदौसी में लोग अपने घरों में भी भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और मेले में उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं। महाराष्ट्र के अकोला शहर में गणेश उत्सव की अपनी अलग पहचान है। यहाँ विराजमान है अकोलियाचा राजा मानाचा श्री भाराभाई गणपति। करीब 250 साल पुरानी इस परंपरा की खासियत सिर्फ इसकी ऐतिहासिक विरासत नहीं बल्कि सामाजिक एकता, पीढ़ियों से चली आ रही सेवा और बप्पा के प्रति अटूट श्रद्धा है। 12 अलग अलग समाजों के लोगों ने मिलकर इस गणपति की स्थापना की थी और इसीलिए इनका नाम पड़ा बारा भाई गणपति। आज भी इस परंपरा से जुड़े परिवार अपनी कई पीढ़ियों की सेवा को उसी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
1: गणपति जी के 10 दिन जो होते हैं उसमें मतलब पूरा अकोला शहर जो है वो आनंदित रहता है। और जैसा हमारे जो गणपति बप्पा है ये मान के गणपति है अकोला के, जैसा प्रथम क्रमांक के गणपति है।
0: मोरना नदी के किनारे विराजमान बारा भाई गणपति की स्थापना पेशवा काल के दौरान करीब 1780 के दशक में हुई थी। 12 बलुतेदार समाज व्यवस्था से जुड़े 12 अलग अलग समाजों के लोगों ने मिलकर इस गणपति की स्थापना की थी। आज भी इस परंपरा की सबसे खूबसूरत तस्वीर आज भी गणेश उत्सव के दौरान देखने को मिलती है।
2: किसी जमाने में बहुत से पुराने लोगों ने कुछ 100-200 साल 150 साल पहले जब भी हुआ स्थापना हुई थी सब कुछ 12 लोगों ने मिलकर बिठाया था, वो चले गए। फिर बाद में इंगड़े परिवार के पास गणपति रहा, उन्होंने जब से वो लोग 150-200 साल हो रहे तब से बिठा रहे गणपति बिठा रहे हैं।
0: पीढ़ियां बदली सेवा की परंपरा नहीं बदली, यानी बाप्पा की पालकी उठाने का मान एक पीढ़ी अपने बच्चों को सौंपती है और अगली पीढ़ी उसी श्रद्धा के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाती है। दुर्ग से रघुनंदन पंडा, झांसी से अजय झा, अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देश में शहर शहर गणेशोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, इसके लिए शानदार तैयारियां चल रही हैं और हर तरफ कुछ अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो साथ ही साथ इस बार गणेशोत्सव के जरिए समाज में कुछ बेहतरी का संदेश देने का भी प्रयास है। रिपोर्ट देखिए।
4: हाथ में भले ही त्रिशूल है लेकिन ऐसा लगता है ये प्रतिमा जैसे जिरह बख्तर से लैस है। रोबोट की झलक वाली गणपति की ये प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है। ये तस्वीरें हैदराबाद के उपगुड़ा इलाके के गणपति पंडाल की हैं। यहाँ सिर्फ गणपति ही नहीं बल्कि उनके वाहन मूषक राज भी अत्याधुनिक रोबोट के समान दिख रहे हैं। यहाँ पर गणपति और मूषक राज का ये रूप देश की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति की झलक दिखला रहा है। हैदराबाद में इस साल गणेश उत्सव के सिलसिले में विकसित भारत 2047 की थीम पर अनोखा पंडाल सजाया गया है। इसमें गणपति प्रतिमा की अनोखी सजावट और झांकियों के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को दर्शाया गया है। पंडाल में खेती, मैन्युफैक्चरिंग और आधुनिक तकनीक के साथ साथ बुलेट ट्रेन का मॉडल भी पेश किया गया है।
5: यह हमारा 50th ईयर है, मतलब 50वीं साल है। इस बार हमारे पिताजी उनके तरफ से सीनियर लोग, 4 जनरेशन होने के बाद यह अभी हमारा जनरेशन में आया। इस बार 2047 का विकसित भारत, भारत 2047 तक कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में रहता, अपना भारत कितना आगे जाके कितना स्मार्ट सिटी बनता, कितना स्मार्ट इंडिया बनता, वो हम दिखाने का प्रयत्न ही ये विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करने का वजह है। वही थीम में सिलेक्शन के वजह से गणेश जी को भी जी आर्मर के रूप में हम लोग कलाकार से तैयार कराए हुए हैं।
4: एक और गणपति के माध्यम से देश की विकास यात्रा

0: दिखाई जा रही है, तो दूसरी ओर गणेश उत्सव में पर्यावरण की रक्षा पर भी फोकस किया जा रहा है। ये तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां कारीगर गणेश प्रतिमाएं बनाने में अब केमिकल और पीओपी का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। बप्पा की मूर्तियों को आकार और रंग देने का काम अंतिम चरण में है और साथ ही साथ इनके जरिए आबो हवा को बचाने का भी संदेश दिया जा रहा है।
1: 14 सितंबर को गणपति आ रहे हैं तो हम इधर मूर्ति लेने के लिए आए हैं। इधर की मूर्ति बहुत ही मतलब अच्छी वगैरह है और ये जैसे केमिकल भी रहते हैं, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी है, ये पानी में भी आसानी से पिघल जाती है।
2: यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ है और ये केमिकल भी रहित है और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है।
0: वहीं गुजरात के सूरत में गणेशोत्सव के दौरान पर्यावरण बचाने का संदेश देने के लिए मिट्टी से बनी गणपति प्रतिमाएं बांटने की पहल शुरू की गई है। इस अभियान के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। यहां पर पिछले करीब 4 सालों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने का अभियान चलाया जा रहा है।
3: मिट्टी की मूर्ति से वो मिट्टी जल्द पानी में घुल जाती है और ये हमारी जो मुहिम है उसके अंदर हम लोग वही करना चाहते हैं कि मिट्टी की मूर्ति के हिसाब से जो कुंड है, जो फ्लावर पॉट आता है, उसके अंदर वो मूर्ति विसर्जन करेंगे तो उसपे एक छोड़ उत्पन्न होगा और छोड़ में रनछोड़ भी उसमें हो जाएगा। तो गणेश जी का ये कृपा सबको हर हमें मिलती रहेगी।
4: आज हमारे यहाँ गणेश उत्सव समिति द्वारा कम से कम 250-300 मूर्ति का वितरण किया जाएगा, जो मिट्टी की मूर्ति बनी हुई है, जिनमें कई वनस्पति द्वारा बीज डाला गया है, जो अपने घर के अंदर या गमले के अंदर रखकर या छोटा सा बर्तन के अंदर रखकर विसर्जन कर सकते। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ये हमारे गणेशोत्सव समिति ने कम से कम 4 साल से ये निर्णय किया गया है और 4 साल से हम लोग ये मूर्ति वितरण कर रहे हैं।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूली बच्चों को गणपति की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की कला सिखाई गई, ताकि बच्चों के जरिए समाज को भी पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश मिले।
5: उसमें बच्चों ने जो मूर्तियां तैयार की, करीब 70 मूर्तियां तैयार की गणेश की अलग अलग फॉर्म्स में, और उसमें मिट्टी का ही इस्तेमाल किया है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और प्राकृतिक कलर का इस्तेमाल किया, जिससे कि कल को अगर ये विसर्जित करें तो पानी में किस तरीके का कोई केमिकल इन्वॉल्व ना हो या उसके अंदर मिक्सिंग ना हो जो नुकसान ना दे पर्यावरण को।
0: बच्चों ने भी मिट्टी की शानदार गणेश मूर्तियां बनाई, उनमें रंग भरे और इसके फायदे से वाकिफ दिखे।
6: मिट्टी के लिए इसलिए बनाई क्योंकि पानी में घुल सके, क्योंकि जो पीओपी पुट्टी की मूर्तियां होती हैं वो घुलती नहीं है, पानी में भी पॉल्यूशन होता है, मछलियां को भी परेशानी होती है, वो मर जाती हैं, इसलिए हमने मिट्टी के बनाई के पानी में जाकर मिल जाए।
7: और कलर कैसे, कौन सी किए इस पे?
6: वाटर कलर
7: इंटीबल कलर ना।
6: हाँ।
7: तो वो बना के अब क्या करोगे फिर?
6: अब इनकी पूजा वगैरह करेंगे।
7: विसर्जन करोगे?
6: हाँ।
0: कुल मिलाकर शहर शहर गणपति उत्सव के अनोखे रंग देखे जा रहे हैं और ये त्योहार धार्मिक आयोजन से आगे बढ़कर समाज में बेहतरी का संदेश देने का माध्यम बन गया है, जिसका लाभ आने वाले समय में दिख सकता है। पठानकोट से पवन सिंह और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: देखिए, उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का पर्व कल मनाया जाएगा और इस दिन जो है भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनते हैं। तो चलिए विस्तार से जानें हरतालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजन विधि।

0: सुहागिन महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है हरितालिका तीज का त्योहार। पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिने निर्जला व्रत रखती है। ये व्रत अत्यंत कठिन और पुण्यदायिनी माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल तृतीया तिथि 13 से आरंभ होकर 14 सितंबर को समाप्त हो रही है। रविवार 13 सितंबर यानी आज 7:14 से तृतीया तिथि आरंभ हो चुकी है और ये 14 सितंबर सोमवार को सुबह 7:30 पर समाप्त होगी। इस तरह से उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का त्योहार 14 सितंबर को मनाया जाएगा। मान्यता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। ऐसे में हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन पर्व के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती के कठोर तप को देखकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सुयोग्य पति की कामना और जीवन साथी के दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। ये पर्व मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री इस व्रत को रख सकती है। सौभाग्य बढ़ाने वाले व्रत शुभ और फलदायी कैसे हो, आइए जानते हैं। प्रातः काल से संकल्प लेकर निर्जला उपवास रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। शिव पार्वती के साथ ही गणपति का पूजन करें। सायकाल भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। ये पूजा पंचोपचार या षोडशोपचार करनी चाहिए। नैवेद्य में सूखे मेवे, ऋतुफल, मिठाई अर्पित करें। माँ पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद ही इस व्रत का पारण करें। इस बार महिलाएं सुबह के शुभ मुहूर्त में अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना करेंगी। इसके ठीक बाद दोपहर में विघ्नहर्ता श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना कर गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। यानी एक ही दिन माता पार्वती, भगवान शिव और लाडले गजानन की एक साथ आराधना की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: दिल्ली छावनी की प्रसिद्ध श्री रघुनंदन लीला समिति की ओर से रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच भूमि पूजन और ध्वजा वंदन समारोह का आयोजन किया गया। तमाम तस्वीरें देखिए। समिति के प्रधान अरुण गोयल ने बताया कि देखिए इस वर्ष रामलीला का भव्य मंचन 11 अक्टूबर से 120x60 फीट के विशाल मंच पर होगा। रामलीला को और आकर्षक बनाने के लिए इस बार AI तकनीक का विशेष प्रयोग किया जाएगा, जिससे देखिए रामलीला के प्रमुख दृश्य बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे जीवंत हो गए। दिल्ली कैंट रामलीला मैदान में 1954 से रामलीला का मंचन हो रहा है और वर्ष 2026 में ये अपने 72वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। सेना के जवानों और अधिकारियों के परिवारों सहित बड़ी संख्या में दर्शकों को रामलीला का बेसब्री से इंतजार रहता है। भूमि पूजन समारोह में विधायक श्याम शर्मा, भाजपा जिला प्रभारी मनीष सिंह, समाज सेवी इंद्रदेव त्रिपाठी और दिल्ली कैंट परिषद सदस्य राजेश गोयल सहित कई गणमान्य लोग जो हैं उपस्थित रहेंगे। देखिए पंजाब की पहली रिवर राफ्टिंग टीम अमृतसर में तैयार हो रही है। आमतौर पर रिवर राफ्टिंग पहाड़ी नदियों, डैम या तेज बहाव वाले इलाकों में देखने को मिलती है, लेकिन यहां कुछ नया है। पंजाब की इस पहली रिवर राफ्टिंग टीम की बेसिक ट्रेनिंग जो है अमृतसर की UBDC नहर में हो रही है और खिलाड़ी भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो रोज सुबह और शाम तारावाला पुल के पास करीब 3-3 घंटे कड़ी मशक्कत करते हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति की। घर घर में विनायक विराजेंगे। मुंबई सहित महाराष्ट्र और देश के भी तमाम शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाल सज चुके हैं। आम लोग भी अपने घरों में गणपति को लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए भरपूर उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाई जा रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं हम कि 10 दिनों के उत्सव के दौरान गणपति को किस तरह से दिव्य भोग लगाने की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है, कितनी रौनक चारों ओर इस उत्सव के सिलसिले में देखने को मिल रही है। तो वहीं अपने स्पेशल शो में हम आपको विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, मंगल मूर्ति की महिमा भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो क्यों प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनकी पूजा क्यों की जाती है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में है, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उससे अलौकिक मायने क्या है और क्या वो हमारे जीवन से किस प्रकार से गहरे जुड़े हुए हैं, देखिए।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार कर्तव्य सरलता ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है, यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को यह संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए वो स्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी बिनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूल काय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती हैं? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी है। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा हैं, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम है शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी का आह्वान किए बगैर सनातन का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि चाहे राम कृष्ण हो या जगत जननी माँ जगदम्बा, सबकी पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान क्यों है? गणपति बप्पा की पौराणिक कथाओं के माध्यम से आप ये बात शायद जानते भी हो, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसका बेहद ही गूढ़ और अलौकिक रहस्य। दरअसल गणपति के प्रथम पूज्य होने का हमारे शरीर के भीतर गुप्त रूप से मौजूद चक्रों का बहुत अद्भुत रिश्ता है। गणपति का स्थान हमारे मूलाधार चक्र में भी माना जाता है और मूलाधार को जागृत किए बगैर मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है।

0: मौजूदा युग में हम भगवान गणेश के लौकिक स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। अपने मौजूदा स्वरूप में गणपति बप्पा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धि प्रदायक हैं और शुभ और लाभ के अधिष्ठाता हैं। पर गणेश का पारलौकिक स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। शास्त्र कहते हैं कि गणपति की पूजा से हम ज्ञानवान होते हैं, लेकिन योग शास्त्र के मुताबिक गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे स्थूल शरीर में 7 चक्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, जिनका स्थान हमारी रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक माना गया है।
1: ये जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। ये चक्र शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं, शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित रहता है, संतुलित व्यवहार करता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की संतुलन के लिए इन केंद्रों का, इन ऊर्जाओं का, इन चक्रों का सक्रिय होना बहुत आवश्यक होता है।
0: अगर किसी इंसान को अपने जन्म का मूल हेतु जानना है तो उसे बाह्य जगत से विमुख होकर अंतर की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जाना होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 7 चक्र का स्थान कहाँ है और कौन उनके स्वामी हैं। इनमें से पहला है मूलाधार चक्र, जिसका स्थान है बॉटम स्पाइन यानी रीढ़ का निचला हिस्सा। गणपति इस चक्र के देवता माने जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका स्थान है जननांग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इसके स्वामी माने जाते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान है नाभि के ठीक पीछे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र, जिसका स्थान हृदय के बीचों बीच है। भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। पांचवा है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान गले के बीचों बीच कंठ के पास है। माँ सरस्वती इस चक्र की स्वामिनी मानी जाती हैं। छठा है आज्ञा चक्र, जिसका स्थान दोनों भौहों के ठीक बीच में है। ये वही स्थान है जहाँ शिव का तीसरा नेत्र है, इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती को इस चक्र का स्वामी माना जाता है। सातवा और अंतिम है सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसका स्थान मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में माना गया है और साक्षात शिव इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी इंसान को मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो उसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है। चूंकि गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, इसलिए मूलाधार को जागृत करने के लिए गणपति के रूप स्वरूप का ध्यान और उनकी वंदना अनिवार्य मानी जाती है। यही वजह है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है।
1: भगवान गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। अगर किसी कारण से यह चक्र असंतुलित है तो भगवान गणेश का चिंतन करने से, भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश के मूल मंत्रों का जप करने से, भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है तथा मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र संतुलित होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं, मूलाधार चक्र के जो देवता हैं, वो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश पृथ्वी तत्व को निरूपित करते हैं और मूलाधार चक्र भी इस पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। इस कारण से जब भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उसमें स्थिरता आती है, जागृति आती है और मूलाधार चक्र में संतुलन बना रहता है।
0: मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी गुप्त रूप में विद्यमान है। मूलाधार चक्र की साधना से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत ऊर्जा का स्रोत से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होते ही इस संसार की निस्सारता और परम तत्व के महात्म का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कुंडलिनी जागरण गणपति की कृपा के बिना संभव नहीं है।
1: मोक्ष का जो पहला द्वार बताया गया है, वह बताया गया है भगवान गणेश जी को। कारण क्या है कि जब तक भगवान गणेश जी की साधना पूर्ण नहीं होगी, भगवान गणेश जी का ध्यान पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम आगे के चक्रों में कुंडलिनी के अग्र भाग में नहीं पहुंच सकते, ऊपरी भाग में नहीं पहुंच सकते। चूंकि यह मूल है, प्रथम है, इसलिए इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो सातों चक्रों में प्रथम सोपान जो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी हो गए गणेश जी, और गणेश जी की आराधना बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता है। इसलिए मोक्ष के प्रथम द्वार के जो अधिष्ठाता है वह भगवान गणेश जी है। तो व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग जब प्रशस्त करना हो, उस मार्ग पर चलना है या जीवन चक्र के बंधन से मुक्त होना है, तो उसमें भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है।
0: यह अत्यंत गूढ़ विषय है। दरअसल इस सृष्टि के मूल में प्रणव तत्व है, जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में ओमकार रूप में प्रकट होता है। शब्दाकार ओम का स्वरूप भगवान गणपति के स्वरूप से काफी मिलता है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम भी कहा गया है। इस एक अक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला हिस्सा भगवान गणपति का मस्तक माना जाता है, नीचे का भाग उदर यानी पेट माना जाता है। चंद्रबिंदु मोदक स्वरूप है और मात्रा ही सूंड है। यही वजह है कि गणेश जी को सृष्टि का अनादि देव माना गया है।
1: ओम शब्द का जो स्वरूप भी है वह भगवान गणेश के स्वरूप से मिलता जुलता है, और यह जो ओमकार है, ओम शब्द है, यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि मंत्र है। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश के बड़े पेट में इनकी आकृति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेशन है। इसी कारण से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा जो मूलाधार चक्र है वह एक्टिव हो, सक्रिय हो, जिससे कि हम कुंडलिनी जागरण करके अगले चक्र में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। इस कारण से भगवान गणेश की ऊर्जा के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, विवेक के स्रोत हैं।
0: हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी गहन साधना और तपस्या के दौरान अनुभूति की कि ओम के जप से मूलाधार चक्र में हलचल शुरू हो जाती है। ओमकार के निरंतर जप से मूलाधार चक्र जागृत होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। इसे आप साधना का प्रथम सोपान मान सकते हैं, यानी मूलाधार चक्र के बिना ऊपर की यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हुए बिना आपका चिंतन शुद्ध या सात्विक नहीं हो सकता, वासना रहित नहीं हो सकता। इसका साफ मतलब है कि गणपति की कृपा के बिना द्विगुणात्मक संसार के सुख दुख, मान सम्मान, राग द्वेष, जन्म मृत्यु जैसे बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है।
1: ओम शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ध्वनि मंत्र है। इसको किसी भी मंत्र के आरंभ में लगाने से यह माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम सहजता से एक मंत्र के सहारे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भगवान गणेश के मंत्र के साथ यदि हम ओम शब्द का जप करते हैं या ओंकार का जप करते हैं या ब्रह्मांडी मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्रोत भगवान गणेश जी हैं। मूलाधार चक्र मूल चक्र के स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, और ब्रह्मांडी ऊर्जा के जो ध्वनि मंत्र है उसका जब जप करेंगे तो दोनों का संतुलन बन जाता है। ऐसे में भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
0: अंतर की यात्रा बाह्य जगत के आडंबरों से बिल्कुल अलग होती है। परम तत्व यानी ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। इस यात्रा का श्री गणेश जी की आराधना से ही होता है। मूलाधार से शुरू कर और बीच के पांचों चक्र को भेद कर जब हम सहस्रार चक्र यानी ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्म परमेश्वर यानी शिव तत्व का साक्षात्कार होता है और भगवान गणपति लौकिक जगत में शिव के पुत्र माने जाते हैं जो शिव की पावन गोद में विराजमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पारमार्थिक मार्ग के पथिक की यात्रा की शुरुआत गणेश जी की साधना से होती है और जब ये परम लक्ष्य तक पहुंचता है तो वहां भी साध्य के रूप में गणपति ही विद्यमान रहते हैं।
1: इस प्रकार देखा जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चक्रों में भगवान गणेश की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ भी किया जाता है, गणेश जी की आराधना माता सरस्वती के साथ भी किया जाता है और गणेश जी की आराधना भगवान शिव के साथ परिवार के रूप में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सभी चक्रों में कहीं ना कहीं भगवान गणेश का महत्व सबसे ज्यादा दिखाता है।
0: गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसीलिए माना गया है क्योंकि एक बार मूलाधार चक्र की साधना संपन्न होते ही वे आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो जाते हैं। अपने दिव्य प्रकाश से पारमार्थिक यात्रा की बाधाओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। मन में गणपति का ध्यान करने से मानसिक विकारों की दुर्धर्ष सत्ता तिरोहित होने लगती है और जब मन से विकार तिरोहित होने लगते हैं तो आनंद, उमंग और उत्साह का संचार होने लगता है। संसार के माया मोह में फंसा इंसान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आनंद की ही तलाश कर रहा है लेकिन सतपथ का ज्ञान उसे नहीं है। विघ्नहर्ता विनायक अपने ज्ञान प्रकाश से उसे सतपथ का पता बता देते हैं।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार चौथी जीत। वर्ल्ड कप में जगह पक्की। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया। दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू। मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए CEO और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह। कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल। तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान। कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक। 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: क्रेबुज पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि रही काए खुमर रही ऐसे वर के लाने।

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीब करौरी बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल के बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाक्य के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना।

0: और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
1: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना, यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजॉल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है, और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाले इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
2: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए, और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहें उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया

कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है।

0: हनुमान अंश में नीब करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीब करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीब करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीब करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीब करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर किया, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से हमने चंदन
3: लिया,
2: बहुत ही फेमस चौपाई है, चंदन गिठे हैं जैसे, और
3: तिलक करे रघुवीर
2: इसका, वहीं पे उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनो सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी, कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीब करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, पर शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीब करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीब करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को

0: बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी एमएमएस रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल सीआईडी के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
1: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
2: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि।

0: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीम करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: समझाने पहुंचे सप्तऋषि, सप्तऋषि ही सप्तऋषि, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, काय जिद कर रही, काय खुमर रही है सेवर के लाने।
1: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
2: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
1: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने 3 शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार 4th जीत। वर्ल्ड कप में जगह पक्की। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया। दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू। मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए CEO और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह। कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल। तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान। कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक। 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति की। घर घर में विनायक विराजेंगे। मुंबई सहित महाराष्ट्र और देश के भी तमाम शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाल सज चुके हैं। आम लोग भी अपने घरों में गणपति को लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए भरपूर उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाई जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं हम कि 10 दिनों के उत्सव के दौरान गणपति को किस तरह से दिव्य भोग लगाने की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है, कितनी रौनक चारों ओर इस उत्सव के सिलसिले में देखने को मिल रही है। तो वहीं अपने स्पेशल शो में हम आपको विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, मंगल मूर्ति की महिमा भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो क्यों प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनकी पूजा क्यों की जाती है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में है, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उससे अलौकिक मायने क्या है और क्या वो हमारे जीवन से किस प्रकार से गहरे जुड़े हुए हैं, देखिए।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार कर्तव्य सरलता ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है, यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को यह संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए वो स्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी विनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूल काय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती है? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी है। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा है, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम है शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी का आह्वान किए बगैर सनातन का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि चाहे राम कृष्ण हो या जगत जननी माँ जगदम्बा, सबकी पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान क्यों है? गणपति बप्पा की पौराणिक कथाओं के माध्यम से आप ये बात शायद जानते भी हो, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसका बेहद ही गूढ़ और अलौकिक रहस्य। दरअसल गणपति के प्रथम पूज्य होने का हमारे शरीर के भीतर गुप्त रूप से मौजूद चक्रों का बहुत अद्भुत रिश्ता है। गणपति का स्थान हमारे मूलाधार चक्र में भी माना जाता है और मूलाधार को जागृत किए बगैर मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है।

0: मौजूदा युग में हम भगवान गणेश के लौकिक स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। अपने मौजूदा स्वरूप में गणपति बप्पा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धि प्रदायक हैं और शुभ और लाभ के अधिष्ठाता हैं। पर गणेश का पारलौकिक स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। शास्त्र कहते हैं कि गणपति की पूजा से हम ज्ञानवान होते हैं, लेकिन योग शास्त्र के मुताबिक गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे स्थूल शरीर में 7 चक्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, जिनका स्थान हमारी रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक माना गया है।
1: ये जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। ये चक्र शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं, शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित रहता है, संतुलित व्यवहार करता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की संतुलन के लिए इन केंद्रों का, इन ऊर्जाओं का, इन चक्रों का सक्रिय होना बहुत आवश्यक होता है।
0: अगर किसी इंसान को अपने जन्म का मूल हेतु जानना है तो उसे बाह्य जगत से विमुख होकर अंतर की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जाना होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 7 चक्र का स्थान कहाँ है और कौन उनके स्वामी हैं। इनमें से पहला है मूलाधार चक्र, जिसका स्थान है बॉटम स्पाइन यानी रीढ़ का निचला हिस्सा। गणपति इस चक्र के देवता माने जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका स्थान है जननांग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इसके स्वामी माने जाते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान है नाभि के ठीक पीछे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र, जिसका स्थान हृदय के बीचों बीच है। भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। पांचवा है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान गले के बीचों बीच कंठ के पास है। माँ सरस्वती इस चक्र की स्वामिनी मानी जाती हैं। छठा है आज्ञा चक्र, जिसका स्थान दोनों भौहों के ठीक बीच में है। ये वही स्थान है जहाँ शिव का तीसरा नेत्र है, इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती को इस चक्र का स्वामी माना जाता है। सातवा और अंतिम है सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसका स्थान मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में माना गया है और साक्षात शिव इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी इंसान को मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो उसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है। चूंकि गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, इसलिए मूलाधार को जागृत करने के लिए गणपति के रूप स्वरूप का ध्यान और उनकी वंदना अनिवार्य मानी जाती है। यही वजह है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है।
1: भगवान गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। अगर किसी कारण से यह चक्र असंतुलित है तो भगवान गणेश का चिंतन करने से, भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश के मूल मंत्रों का जप करने से, भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है तथा मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र संतुलित होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं, मूलाधार चक्र के जो देवता हैं, वो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश पृथ्वी तत्व को निरूपित करते हैं और मूलाधार चक्र भी इस पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। इस कारण से जब भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उसमें स्थिरता आती है, जागृति आती है और मूलाधार चक्र में संतुलन बना रहता है।
0: मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी गुप्त रूप में विद्यमान है। मूलाधार चक्र की साधना से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत ऊर्जा का स्रोत से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होते ही इस संसार की निस्सारता और परम तत्व के महात्म का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कुंडलिनी जागरण गणपति की कृपा के बिना संभव नहीं है।
1: मोक्ष का जो पहला द्वार बताया गया है, वह बताया गया है भगवान गणेश जी को। कारण क्या है कि जब तक भगवान गणेश जी की साधना पूर्ण नहीं होगी, भगवान गणेश जी का ध्यान पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम आगे के चक्रों में, आग कुंडलिनी के अग्र भाग में नहीं पहुंच सकते, ऊपरी भाग में नहीं पहुंच सकते। चूंकि यह मूल है, प्रथम है, इसलिए इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो सातों चक्रों में प्रथम सोपान जो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी हो गए गणेश जी, और गणेश जी की आराधना बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता है। इसलिए मोक्ष के प्रथम द्वार के जो अधिष्ठाता है वह भगवान गणेश जी है। तो व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग जब प्रशस्त करना हो, उस मार्ग पर चलना है या जीवन चक्र के बंधन से मुक्त होना है, तो उसमें भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है।
0: यह अत्यंत गूढ़ विषय है। दरअसल इस सृष्टि के मूल में प्रणव तत्व है, जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में ओमकार रूप में प्रकट होता है। शब्दाकार ओम का स्वरूप भगवान गणपति के स्वरूप से काफी मिलता है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम भी कहा गया है। इस एक अक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला हिस्सा भगवान गणपति का मस्तक माना जाता है, नीचे का भाग उदर यानी पेट माना जाता है। चंद्रबिंदु मोदक स्वरूप है और मात्रा ही सूंड है। यही वजह है कि गणेश जी को सृष्टि का अनादि देव माना गया है।
1: ओम शब्द का जो स्वरूप भी है वह भगवान गणेश के स्वरूप से मिलता जुलता है, और यह जो ओमकार है, ओम शब्द है, यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि मंत्र है। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश के बड़े पेट में इनकी आकृति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेशन है। इसी कारण से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा जो मूलाधार चक्र है वह एक्टिव हो, सक्रिय हो, जिससे कि हम कुंडलिनी जागरण करके अगले चक्र में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। इस कारण से भगवान गणेश की ऊर्जा के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, विवेक के स्रोत हैं।
0: हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी गहन साधना और तपस्या के दौरान अनुभूति की कि ओम के जप से मूलाधार चक्र में हलचल शुरू हो जाती है। ओमकार के निरंतर जप से मूलाधार चक्र जागृत होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। इसे आप साधना का प्रथम सोपान मान सकते हैं, यानी मूलाधार चक्र के बिना ऊपर की यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हुए बिना आपका चिंतन शुद्ध या सात्विक नहीं हो सकता, वासना रहित नहीं हो सकता। इसका साफ मतलब है कि गणपति की कृपा के बिना द्विगुणात्मक संसार के सुख दुख, मान सम्मान, राग द्वेष, जन्म मृत्यु जैसे बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है।
1: ओम शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ध्वनि मंत्र है। इसको किसी भी मंत्र के आरंभ में लगाने से यह माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम सहजता से एक मंत्र के सहारे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भगवान गणेश के मंत्र के साथ यदि हम ओम शब्द का जप करते हैं या ओंकार का जप करते हैं या ब्रह्मांडी मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्रोत भगवान गणेश जी हैं, मूलाधार चक्र मूल चक्र के स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, और ब्रह्मांडी ऊर्जा के जो ध्वनि मंत्र है उसका जब जप करेंगे तो दोनों का संतुलन बन जाता है। ऐसे में भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
0: अंतर की यात्रा बाह्य जगत के आडंबरों से बिल्कुल अलग होती है। परम तत्व यानी ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। इस यात्रा का श्री गणेश जी की आराधना से ही होता है। मूलाधार से शुरू कर और बीच के पांचों चक्र को भेद कर जब हम सहस्रार चक्र यानी ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्म परमेश्वर यानी शिव तत्व का साक्षात्कार होता है और भगवान गणपति लौकिक जगत में शिव के पुत्र माने जाते हैं जो शिव की पावन गोद में विराजमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पारमार्थिक मार्ग के पथिक की यात्रा की शुरुआत गणेश जी की साधना से होती है और जब ये परम लक्ष्य तक पहुंचता है तो वहां भी साध्य के रूप में गणपति ही विद्यमान रहते हैं।
1: इस प्रकार देखा जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चक्रों में भगवान गणेश की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ भी किया जाता है, गणेश जी की आराधना माता सरस्वती के साथ भी किया जाता है और गणेश जी की आराधना भगवान शिव के साथ परिवार के रूप में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सभी चक्रों में कहीं ना कहीं भगवान गणेश का महत्व सबसे ज्यादा दिखता है।
0: गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसीलिए माना गया है क्योंकि एक बार मूलाधार चक्र की साधना संपन्न होते ही वे आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो जाते हैं। अपने दिव्य प्रकाश से पारमार्थिक यात्रा की बाधाओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। मन में गणपति का ध्यान करने से मानसिक विकारों की दुर्धर्ष सत्ता तिरोहित होने लगती है और जब मन से विकार तिरोहित होने लगते हैं तो आनंद, उमंग और उत्साह का संचार होने लगता है। संसार के माया मोह में फंसा इंसान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आनंद की ही तलाश कर रहा है लेकिन सतपथ का ज्ञान उसे नहीं है। विघ्नहर्ता विनायक अपने ज्ञान प्रकाश से उसे सतपथ का पता बता देते हैं।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज, अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार 4वीं जीत, वर्ल्ड कप में जगह पक्की। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया, दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू, मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए CEO और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह, कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान, कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक, 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: जब जुद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खुमर रही काय जिद कर रही काय खुमर रही ऐसे वर खेलाने काय से

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीम करौली बाबा की कृपा है। पहली सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है। जिस कहानी को बोल के बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई, और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोले या एक मिरेकल के तौर पे बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाकये के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन नींव करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मना स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नींव करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाले इस फिल्म के 4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नींव करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नींव करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3rd दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के 2nd असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए। और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहे उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने

0: पदे पर सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखी कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनव सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनव सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनव सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनव सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर किया, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से हमने चंदन
3: लिया,
2: चौपाई है चंदन गिठे हैं जैसे, और
3: तिलक करे रख भी
2: इसका वहीं को उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनव सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी, कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गुरुता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, और शोभिनव सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनव सत्य साल 2009 से ही नीव करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनव की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनव की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनव को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनव ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनव का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है

0: वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
1: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
2: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुँचे सप्तऋषि।

0: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: स्थान है।
1: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
2: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
1: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने 3 शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: उस पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज। 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार 4थी जीत। वर्ल्ड कप में जगह पक्की। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया। दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू। मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए CEO और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह। कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल। तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान। कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति की। घर घर में विनायक विराजेंगे। मुंबई सहित महाराष्ट्र और देश के भी तमाम शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाल सज चुके हैं। आम लोग भी अपने घरों में गणपति को लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए भरपूर उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाई जा रही हैं। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं हम कि 10 दिनों के उत्सव के दौरान गणपति को किस तरह से दिव्य भोग लगाने की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है, कितनी रौनक चारों ओर इस उत्सव के सिलसिले में देखने को मिल रही है। तो वहीं अपने स्पेशल शो में हम आपको विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, मंगल मूर्ति की महिमा भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो क्यों प्रथम पूज्य है, सबसे पहले उनकी पूजा क्यों की जाती है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में है, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उससे अलौकिक मायने क्या है और क्या वो हमारे जीवन से किस प्रकार से गहरे जुड़े हुए हैं, देखिए।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार कर्तव्य सरलता ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है, विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है। यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को ये संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए गोस्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहुं चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी बिनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूलकाय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती हैं? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड़ दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तय निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी है। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा हैं, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व तो आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम हैं शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी का आह्वान किए बगैर सनातन का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि चाहे राम कृष्ण हो या जगत जननी माँ जगदम्बा, सबकी पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान क्यों है? गणपति बप्पा की पौराणिक कथाओं के माध्यम से आप ये बात शायद जानते भी हो, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसका बेहद ही गुड़ और अलौकिक रहस्य। दरअसल गणपति के प्रथम पूज्य होने का हमारे शरीर के भीतर गुप्त रूप से मौजूद चक्रों का बहुत अद्भुत रिश्ता है। गणपति का स्थान हमारे मूलाधार चक्र में भी माना जाता है और मूलाधार को जागृत किए बगैर मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है।

0: मौजूदा युग में हम भगवान गणेश के लौकिक स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। अपने मौजूदा स्वरूप में गणपति बप्पा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धि प्रदायक हैं और शुभ और लाभ के अधिष्ठाता हैं। पर गणेश का पारलौकिक स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। शास्त्र कहते हैं कि गणपति की पूजा से हम ज्ञानवान होते हैं, लेकिन योग शास्त्र के मुताबिक गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे स्थूल शरीर में 7 चक्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, जिनका स्थान हमारी रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक माना गया है।
1: ये जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। ये चक्र शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं, शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित रहता है, संतुलित व्यवहार करता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की संतुलन के लिए इन केंद्रों का, इन ऊर्जाओं का, इन चक्रों का सक्रिय होना बहुत आवश्यक होता है।
0: अगर किसी इंसान को अपने जन्म का मूल हेतु जानना है तो उसे बाह्य जगत से विमुख होकर अंतर की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जाना होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 7 चक्र का स्थान कहाँ है और कौन उनके स्वामी हैं। इनमें से पहला है मूलाधार चक्र, जिसका स्थान है बॉटम स्पाइन यानी रीढ़ का निचला हिस्सा। गणपति इस चक्र के देवता माने जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका स्थान है जननांग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इसके स्वामी माने जाते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान है नाभि के ठीक पीछे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र, जिसका स्थान हृदय के बीचों बीच है। भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। पांचवा है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान गले के बीचों बीच कंठ के पास है। माँ सरस्वती इस चक्र की स्वामिनी मानी जाती हैं। छठा है आज्ञा चक्र, जिसका स्थान दोनों भौहों के ठीक बीच में है। ये वही स्थान है जहाँ शिव का तीसरा नेत्र है, इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती को इस चक्र का स्वामी माना जाता है। सातवा और अंतिम है सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसका स्थान मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में माना गया है और साक्षात शिव इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी इंसान को मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो उसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है। चूंकि गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, इसलिए मूलाधार को जागृत करने के लिए गणपति के रूप स्वरूप का ध्यान और उनकी वंदना अनिवार्य मानी जाती है। यही वजह है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है।
1: भगवान गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। अगर किसी कारण से यह चक्र असंतुलित है तो भगवान गणेश का चिंतन करने से, भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश के मूल मंत्रों का जप करने से, भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है तथा मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र संतुलित होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं, मूलाधार चक्र के जो देवता हैं, वो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश पृथ्वी तत्व को निरूपित करते हैं और मूलाधार चक्र भी इस पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। इस कारण से जब भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उसमें स्थिरता आती है, जागृति आती है और मूलाधार चक्र में संतुलन बना रहता है।
0: मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी गुप्त रूप में विद्यमान है। मूलाधार चक्र की साधना से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत ऊर्जा का स्रोत से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होते ही इस संसार की निस्सारता और परम तत्व के महात्म का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कुंडलिनी जागरण गणपति की कृपा के बिना संभव नहीं है।
1: मोक्ष का जो पहला द्वार है, मोक्ष का जो पहला द्वार बताया गया है, वह बताया गया है भगवान गणेश जी को। कारण क्या है कि जब तक भगवान गणेश जी की साधना पूर्ण नहीं होगी, भगवान गणेश जी का ध्यान पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम आगे के चक्रों में आग कुंडलिनी के अग्र भाग में नहीं पहुंच सकते, ऊपरी भाग में नहीं पहुंच सकते। चूंकि यह मूल है, प्रथम है, इसलिए इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो सातों चक्रों में प्रथम सोपान जो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी हो गए गणेश जी, और गणेश जी की आराधना बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता है। इसलिए मोक्ष के प्रथम द्वार के जो अधिष्ठाता है वो भगवान गणेश जी है। तो व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग जब प्रशस्त करना हो, उस मार्ग पर चलना है या जीवन चक्र के बंधन से मुक्त होना है, तो उसमें भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है।
0: यह अत्यंत गूढ़ विषय है। दरअसल इस सृष्टि के मूल में प्रणव तत्व है, जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में ओमकार रूप में प्रकट होता है। शब्दाकार ओम का स्वरूप भगवान गणपति के स्वरूप से काफी मिलता है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम भी कहा गया है। इस एक अक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला हिस्सा भगवान गणपति का मस्तक माना जाता है, नीचे का भाग उदर यानी पेट माना जाता है। चंद्रबिंदु मोदक स्वरूप है और मात्रा ही सूंड है। यही वजह है कि गणेश जी को सृष्टि का अनादि देव माना गया है।
1: ओम शब्द का जो स्वरूप भी है वह भगवान गणेश के स्वरूप से मिलता जुलता है, और यह जो ओंकार है, ओम शब्द है, यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि मंत्र है। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश के बड़े पेट में इनकी आकृति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेशन है। इसी कारण से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा जो मूलाधार चक्र है वह एक्टिव हो, सक्रिय हो, जिससे कि हम कुंडलिनी जागरण करके अगले चक्र में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। इस कारण से भगवान गणेश की ऊर्जा के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, विवेक के स्रोत हैं।
0: हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी गहन साधना और तपस्या के दौरान अनुभूति की कि ओम के जप से मूलाधार चक्र में हलचल शुरू हो जाती है। ओमकार के निरंतर जप से मूलाधार चक्र जागृत होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। इसे आप साधना का प्रथम सोपान मान सकते हैं, यानी मूलाधार चक्र के बिना ऊपर की यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हुए बिना आपका चिंतन शुद्ध या सात्विक नहीं हो सकता, वासना रहित नहीं हो सकता। इसका साफ मतलब है कि गणपति की कृपा के बिना द्विगुणात्मक संसार के सुख दुख, मान सम्मान, राग द्वेष, जन्म मृत्यु जैसे बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है।
1: ओम शब्द ब्रह्मांडी ऊर्जा का ध्वनि मंत्र है। इसको किसी भी मंत्र के आरंभ में लगाने से यह माना जाता है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा को हम साधुता से एक मंत्र के सहारे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भगवान गणेश के मंत्र के साथ यदि हम ओम शब्द का जप करते हैं या ओंकार का जप करते हैं या ब्रह्मांडी मंत्र का जप करते हैं तो भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्रोत भगवान गणेश जी हैं, मूलाधार चक्र मूल चक्र के स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, और ब्रह्मांडी ऊर्जा के जो ध्वनि मंत्र है उसका जब जप करेंगे तो दोनों का संतुलन बन जाता है। ऐसे में भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
0: अंतर की यात्रा बाह्य जगत के आडंबरों से बिल्कुल अलग होती है। परम तत्व यानी ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। इस यात्रा का श्री गणेश गणेश जी की आराधना से ही होता है। मूलाधार से शुरू कर और बीच के पांचों चक्र को भेद कर जब हम सहस्रार चक्र यानी ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्म परमेश्वर यानी शिव तत्व का साक्षात्कार होता है और भगवान गणपति लौकिक जगत में शिव के पुत्र माने जाते हैं जो शिव की पावन गोद में विराजमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पारमार्थिक मार्ग के पथिक की यात्रा की शुरुआत गणेश जी की साधना से होती है और जब ये परम लक्ष्य तक पहुंचता है तो वहां भी साध्य के रूप में गणपति ही विद्यमान रहते हैं।
1: इस प्रकार देखा जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चक्रों में भगवान गणेश की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ भी किया जाता है, गणेश जी की आराधना माता सरस्वती के साथ भी किया जाता है और गणेश जी की आराधना भगवान शिव के साथ परिवार के रूप में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सभी चक्रों में कहीं न कहीं भगवान गणेश का महत्व सबसे ज्यादा दिखता है।
0: गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसीलिए माना गया है क्योंकि एक बार मूलाधार चक्र की साधना संपन्न होते ही वे आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो जाते हैं। अपने दिव्य प्रकाश से पारमार्थिक यात्रा की बाधाओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। मन में गणपति का ध्यान करने से मानसिक विकारों की दुर्धर्ष सत्ता तिरोहित होने लगती है और जब मन से विकार तिरोहित होने लगते हैं तो आनंद, उमंग और उत्साह का संचार होने लगता है। संसार के माया मोह में फंसा इंसान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आनंद की ही तलाश कर रहा है, लेकिन सतपथ का ज्ञान उसे नहीं है। विघ्नहर्ता विनायक अपने ज्ञान प्रकाश से उसे सतपथ का पता बता देते हैं।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: तीन मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज, अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया, अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार चौथी जीत, वर्ल्ड कप में जगह पक्की, महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया, दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू, मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा, 15 सितंबर को नए CEO और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह, कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान, कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक, 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम की दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: क्रैब युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खो मर रही काय जिद कर रही काय खो मर रही ऐसे वर खेलाने

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीब करौरी बाबा की कृपा है। पहले सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पर बोले या एक मिरेकल के तौर पर बोले कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाक्य के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सब सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाली इस फिल्म के 4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहें उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा

0: ट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ, जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनव सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
1: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर किया, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
2: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
1: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही तुलसी घाट से हमने चंदन
2: लिया,
1: एक बहुत ही फेमस वो चौपाई है, तुलसीदास चंदन गिठे हैं जिसे, और
2: तिलक करे रघुवीर,
1: तो इसका वहीं को उसी से चंदन किया।
0: ऑडिशन की अग्नि परीक्षा में शोभिनव सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे, लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी, कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गुरुता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था, पर शोभिनव सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
3: कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनव सत्य साल 2009 से ही नीव करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनव की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनव की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनव को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनव ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनव का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनव पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
4: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बहुत बड़ा योगदान है।

0: जेवर के लाने।
1: हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है। दरअसल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
2: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: स्थान है।
1: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
2: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है, लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए, इनके निर्देशन में बात बनी।
1: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे मेहदम में आज आपने 3 शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज। अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया। अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार 4th जीत। वर्ल्ड कप में जगह पक्की। महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया। दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू। मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा। 15 सितंबर को नए CEO और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह। कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल। तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान। कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक। 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीएनटी पर हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति की। घर घर में विनायक विराजेंगे। मुंबई सहित महाराष्ट्र और देश के भी तमाम शहरों में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पंडाल सज चुके हैं। आम लोग भी अपने घरों में गणपति को लाने के लिए, उनके स्वागत के लिए भरपूर उल्लास, उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से तैयारियां कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे पर लगातार दिखाई जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं हम कि 10 दिनों के उत्सव के दौरान गणपति को किस तरह से दिव्य भोग लगाने की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है, कितनी रौनक चारों ओर इस उत्सव के सिलसिले में देखने को मिल रही है। तो वहीं अपने स्पेशल शो में हम आपको विघ्नहर्ता सुखकर्ता मंगल मूर्ति की महिमा भी बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो क्यों प्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उनकी पूजा क्यों की जाती है। आप बस बने रहिए हमारे साथ। गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन पुराणों में है, सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि भगवान गणेश का जो लौकिक स्वरूप है उससे अलौकिक मायने क्या है और क्या वो हमारे जीवन से किस प्रकार से गहरे जुड़े हुए हैं, देखिए।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिया जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार कर्तव्य सरलता ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है, यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को ये संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए गोस्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी विनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूलकाय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती है? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया, इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड़ दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तय निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी है। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा हैं, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व तो आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम है शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी का आह्वान किए बगैर सनातन का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता। अब सवाल यही है कि चाहे राम कृष्ण हो या जगत जननी माँ जगदम्बा, सबकी पूजा से पहले गणपति की पूजा का विधान क्यों है? गणपति बप्पा की पौराणिक कथाओं के माध्यम से आप ये बात शायद जानते भी हो, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसका बेहद ही गुण और अलौकिक रहस्य। दरअसल गणपति के प्रथम पूज्य होने का हमारे शरीर के भीतर गुप्त रूप से मौजूद चक्रों का बहुत अद्भुत रिश्ता है। गणपति का स्थान हमारे मूलाधार चक्र में भी माना जाता है और मूलाधार को जागृत किए बगैर मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है।

0: मौजूदा युग में हम भगवान गणेश के लौकिक स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। अपने मौजूदा स्वरूप में गणपति बप्पा बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुयायी अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से करते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सुख समृद्धि प्रदायक हैं और शुभ और लाभ के अधिष्ठाता हैं। पर गणेश का पारलौकिक स्वरूप अत्यंत दिव्य और गूढ़ है। शास्त्र कहते हैं कि गणपति की पूजा से हम ज्ञानवान होते हैं, लेकिन योग शास्त्र के मुताबिक गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे स्थूल शरीर में 7 चक्र सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं, जिनका स्थान हमारी रीढ़ के निचले हिस्से से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से तक माना गया है।
1: ये जो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। ये चक्र शारीरिक संतुलन को बनाए रखते हैं, शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित रहता है, संतुलित व्यवहार करता है। शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की संतुलन के लिए इन केंद्रों का, इन ऊर्जाओं का, इन चक्रों का सक्रिय होना बहुत आवश्यक होता है।
0: अगर किसी इंसान को अपने जन्म का मूल हेतु जानना है तो उसे बाह्य जगत से विमुख होकर अंतर की यात्रा पर निकलना पड़ेगा। मूलाधार से शुरू होकर सहस्रार चक्र तक जाना होगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में 7 चक्र का स्थान कहाँ है और कौन उनके स्वामी हैं। इनमें से पहला है मूलाधार चक्र, जिसका स्थान है बॉटम स्पाइन यानी रीढ़ का निचला हिस्सा। गणपति इस चक्र के देवता माने जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसका स्थान है जननांग के ठीक पीछे और नाभि के नीचे। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी इसके स्वामी माने जाते हैं। तीसरा है मणिपुर चक्र, जिसका स्थान है नाभि के ठीक पीछे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। चौथा है अनाहत चक्र, जिसका स्थान हृदय के बीचों बीच है। भगवान राम, माता सीता और भक्त हनुमान इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। पांचवा है विशुद्धि चक्र, जिसका स्थान गले के बीचों बीच कंठ के पास है। माँ सरस्वती इस चक्र की स्वामिनी मानी जाती हैं। छठा है आज्ञा चक्र, जिसका स्थान दोनों भौहों के ठीक बीच में है। ये वही स्थान है जहाँ शिव का तीसरा नेत्र है, इसीलिए भगवान शिव और माँ पार्वती को इस चक्र का स्वामी माना जाता है। सातवा और अंतिम है सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इसका स्थान मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में माना गया है और साक्षात शिव इस चक्र के स्वामी माने जाते हैं। अगर किसी इंसान को मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो उसे सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है। चूंकि गणपति मूलाधार चक्र के स्वामी हैं, इसलिए मूलाधार को जागृत करने के लिए गणपति के रूप स्वरूप का ध्यान और उनकी वंदना अनिवार्य मानी जाती है। यही वजह है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है।
1: भगवान गणेश जी मूलाधार चक्र के देवता माने गए हैं। अगर किसी कारण से यह चक्र असंतुलित है तो भगवान गणेश का चिंतन करने से, भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश के मूल मंत्रों का जप करने से, भगवान गणेश के स्वरूप का ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर स्थिरता आती है तथा मूलाधार चक्र जागृत होता है, मूलाधार चक्र संतुलित होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। क्योंकि मूलाधार चक्र के जो स्वामी हैं, मूलाधार चक्र के जो देवता हैं, वो भगवान गणेश हैं। भगवान गणेश पृथ्वी तत्व को निरूपित करते हैं और मूलाधार चक्र भी इस पृथ्वी तत्व को निरूपित करता है। इस कारण से जब भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो उसमें स्थिरता आती है, जागृति आती है और मूलाधार चक्र में संतुलन बना रहता है।
0: मूलाधार चक्र में ही हमारी कुंडलिनी गुप्त रूप में विद्यमान है। मूलाधार चक्र की साधना से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और जैसे ही कुंडलिनी जागृत होती है, इस ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत ऊर्जा का स्रोत से हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। कुंडलिनी जागृत होते ही इस संसार की निस्सारता और परम तत्व के महात्म का भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। कुंडलिनी जागरण गणपति की कृपा के बिना संभव नहीं है।
1: मोक्ष का जो पहला द्वार है, मोक्ष का जो पहला द्वार बताया गया है, वह बताया गया है भगवान गणेश जी को। कारण क्या है कि जब तक भगवान गणेश जी की साधना पूर्ण नहीं होगी, भगवान गणेश जी का ध्यान पूर्ण नहीं होगा, तब तक हम आगे के चक्रों में आज कुंडलिनी के अग्र भाग में नहीं पहुंच सकते, ऊपरी भाग में नहीं पहुंच सकते। चूंकि यह मूल है, प्रथम है, इसलिए इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो सातों चक्रों में प्रथम सोपान जो है मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के स्वामी हो गए गणेश जी, और गणेश जी की आराधना बिना जीवन में संतुलन नहीं आ सकता है। इसलिए मोक्ष के प्रथम द्वार के जो अधिष्ठाता है वो भगवान गणेश जी है। तो व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग जब प्रशस्त करना हो, उस मार्ग पर चलना है या जीवन चक्र के बंधन से मुक्त होना है, तो उसमें भगवान गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी आवश्यक हो जाती है। इसी कारण से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है।
0: यह अत्यंत गूढ़ विषय है। दरअसल इस सृष्टि के मूल में प्रणव तत्व है, जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में ओमकार रूप में प्रकट होता है। शब्दाकार ओम का स्वरूप भगवान गणपति के स्वरूप से काफी मिलता है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम भी कहा गया है। इस एक अक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला हिस्सा भगवान गणपति का मस्तक माना जाता है, नीचे का भाग उदर यानी पेट माना जाता है। चंद्रबिंदु मोदक स्वरूप है और मात्रा ही सूंड है। यही वजह है कि गणेश जी को सृष्टि का अनादि देव माना गया है।
1: ओम शब्द का जो स्वरूप भी है वह भगवान गणेश के स्वरूप से मिलता जुलता है, और यह जो ओमकार है, ओम शब्द है, यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि मंत्र है। इसका अर्थ है कि भगवान गणेश के बड़े पेट में इनकी आकृति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का समावेशन है। इसी कारण से सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारा जो मूलाधार चक्र है वह एक्टिव हो, सक्रिय हो, जिससे कि हम कुंडलिनी जागरण करके अगले चक्र में पहुंचकर मोक्ष को प्राप्त कर लें। इस कारण से भगवान गणेश की ऊर्जा के स्रोत हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, विवेक के स्रोत हैं।
0: हमारे प्राचीन मनीषियों ने अपनी गहन साधना और तपस्या के दौरान अनुभूति की कि ओम के जप से मूलाधार चक्र में हलचल शुरू हो जाती है। ओमकार के निरंतर जप से मूलाधार चक्र जागृत होता है, कुंडलिनी जागृत होती है। इसे आप साधना का प्रथम सोपान मान सकते हैं, यानी मूलाधार चक्र के बिना ऊपर की यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हुए बिना आपका चिंतन शुद्ध या सात्विक नहीं हो सकता, वासना रहित नहीं हो सकता। इसका साफ मतलब है कि गणपति की कृपा के बिना द्विगुणात्मक संसार के सुख दुख, मान सम्मान, राग द्वेष, जन्म मृत्यु जैसे बंधनों से मुक्ति संभव नहीं है।
1: ओम शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ध्वनि मंत्र है। इसको किसी भी मंत्र के आरंभ में लगाने से यह माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम सहजता से एक मंत्र के सहारे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में भगवान गणेश के मंत्र के साथ यदि हम ओम शब्द का जप करते हैं या ओंकार का जप करते हैं या ब्रह्मांडी मंत्र का जप करते हैं, तो भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडी ऊर्जा के स्रोत भगवान गणेश जी हैं। मूलाधार चक्र मूल चक्र के स्वामी हैं, अधिष्ठाता हैं, और ब्रह्मांडी ऊर्जा के जो ध्वनि मंत्र है उसका जब जप करेंगे तो दोनों का संतुलन बन जाता है। ऐसे में भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
0: अंतर की यात्रा वाह्य जगत के आडंबरों से बिल्कुल अलग होती है। परम तत्व यानी ईश्वर के साथ एकाकार हो जाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। इस यात्रा का श्री गणेश गणेश जी की आराधना से ही होता है। मूलाधार से शुरू कर और बीच के पांचों चक्र को भेद कर जब हम सहस्रार चक्र यानी ब्रह्म रंध्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर ब्रह्म परमेश्वर यानी शिव तत्व का साक्षात्कार होता है और भगवान गणपति लौकिक जगत में शिव के पुत्र माने जाते हैं जो शिव की पावन गोद में विराजमान रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पारमार्थिक मार्ग के पथिक की यात्रा की शुरुआत गणेश जी की साधना से होती है और जब ये परम लक्ष्य तक पहुंचता है तो वहां भी साध्य के रूप में गणपति ही विद्यमान रहते हैं।
1: इस प्रकार देखा जाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी चक्रों में भगवान गणेश की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश की पूजा माता लक्ष्मी के साथ भी किया जाता है, गणेश जी की आराधना माता सरस्वती के साथ भी किया जाता है और गणेश जी की आराधना भगवान शिव के साथ परिवार के रूप में किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सभी चक्रों में कहीं ना कहीं भगवान गणेश का महत्व सबसे ज्यादा दिखाता है।
0: गणपति को विघ्नहर्ता माना गया है, इसीलिए माना गया है क्योंकि एक बार मूलाधार चक्र की साधना संपन्न होते ही वे आगे की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हो जाते हैं। अपने दिव्य प्रकाश से पारमार्थिक यात्रा की बाधाओं को दूर करना शुरू कर देते हैं। मन में गणपति का ध्यान करने से मानसिक विकारों की दुर्धर्ष सत्ता तिरोहित होने लगती है और जब मन से विकार तिरोहित होने लगते हैं तो आनंद, उमंग और उत्साह का संचार होने लगता है। संसार के माया मोह में फंसा इंसान भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आनंद की ही तलाश कर रहा है, लेकिन सतपथ का ज्ञान उसे नहीं है। विघ्नहर्ता विनायक अपने ज्ञान प्रकाश से उसे सतपथ का पता बता देते हैं।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज में भारत ने जीत के साथ किया आगाज, अफगानिस्तान को 7 विकेटों से हराया, अभिषेक ने 32 गेंदों पर शानदार 82 रन बनाए। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत की लगातार चौथी जीत, वर्ल्ड कप में जगह पक्की, महिला हॉकी टीम ने भी चीन को 1-0 से हराया, दोनों टीम को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सोमवार को मनाया जाएगा हरतालिका तीज का पर्व, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के वरदान के लिए मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से होगी पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक शुरू, मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं पर होगी चर्चा, 15 सितंबर को नए CEO और निर्माण समिति के चेयरपर्सन की होगी मुलाकात। गणेशोत्सव पर देश भर में उत्साह, कोलकाता में मां दुर्गा की तर्ज पर सजा बप्पा का पंडाल, तमिलनाडु में जबरदस्त रोशनी में नहाया करपागा विनियागर मंदिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सफल रेस्क्यू अभियान, कुकड़ी खापा वाटरफॉल में फंसे नागपुर के 4 युवक, 150 फीट गहराई से SDRF के जवानों ने बचाई जान।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम। एक बार फिर से लेकर एक नहीं बल्कि तीन तीन दमदार शख्सियतों का अनोखा सफरनामा। आपको बता दें, आज की हमारी तीनों दमदार शख्सियतों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा के दम पर सिनेमा जगत का एक ऐसा शाहकार तैयार किया है कि बॉक्स ऑफिस पर सुनामी सी आ गई है।

तो आप समझ गए होंगे कि बंदी में है दम के दमदार शो में आज हम जिन तीन शख्सियतों का अनूठा सफरनामा लेकर हाजिर हुए हैं, उन तीनों ने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में एक ऐसी अमर सिनेमाई कृति तैयार की है जो बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन कर रही है। नीम करौली बाबा के दिव्य अलौकिक जीवन पर आधारित हनुमान अंश फिल्म को बनाने की प्रेरणा सबसे पहले विशाल चतुर्वेदी के दिमाग में आई थी। विशाल ही इस फिल्म के निर्देशक और कहानीकार हैं। बेहद कम रिसोर्सेज में गुमनाम कलाकारों, संगीतकारों और तकनीकी एक्सपर्ट्स को जोड़कर विशाल ने जो शाहकार तैयार किया है, उसने सिनेमाई इतिहास की सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं।

0: हकीकत जब तसव्वुर की हदों को पार कर कभी ना देखे और ना सुने जाने वाला अफसाना बन जाए तो दुनिया उस हकीकत को चमत्कार मानने लगती है। ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है सिल्वर स्क्रीन पर हनुमान अंश के रूप में। सात अगस्त को गुमनामी की चादर ओढ़े रिलीज हुई हनुमान अंश तीसरे हफ्ते के बाद से बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी सुनामी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि भारतीय सिनेमा की कामयाबी के सारे पुराने कीर्तिमान फीके पड़ गए हैं। 2 करोड़ से भी कम की लागत से बनकर 200 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली इस फिनोमिनल फिल्म के रचनाकार हैं विशाल चतुर्वेदी। MBBS डॉक्टर से डायरेक्टर बने विशाल चतुर्वेदी ने बॉलीवुड की चमक दमक और गिमिक से दूर रहकर ऐसी फिल्म बना दी है कि कामयाबी के पैमाने छोटे पड़ गए हैं।
1: जब युद्ध पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि काय जिद कर रही काय खुमर रही काय जिद कर रही काय खुमर रही ऐसे वर खेलाने काय

0: आपको बता दें कि 20वीं सदी के महान आध्यात्मिक संत नीब करौरी बाबा के अद्भुत अलौकिक जीवन पर कला की सतरंगी रोशनी बिखेरने वाली हनुमान अंश की मेकिंग अपने आप में एक दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक घटना है। इसीलिए इसकी कामयाबी की तस्वीर भी पारलौकिक सत्ता की सरपरस्ती की सरगोशी कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि लागत के मुकाबले कई गुना कलेक्शन के मामले में हनुमान अंश शोले और जय संतोषी माँ से लेकर दंगल और धुरंधर तक को इतना पीछे छोड़ चुकी है कि ऐसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आउट ऑफ फ्रेम हो चुकी हैं। 30 मई 1975 को रिलीज हुई जय संतोषी माँ की लागत 25 लाख रुपए थी, जबकि इसने 5 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले 20 गुना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज क्रिएट करने वाली शोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का कुल बजट 3 करोड़ रुपए था। शोले ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले लगभग 12 गुना। 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कुल बजट 4 करोड़ था और इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने करीब 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 26 गुना। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल की लागत 70 करोड़ रुपए थी, जबकि इसने 2000 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, यानी लागत के मुकाबले करीब 30 गुना। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई धुरंधर की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि इसने 1852 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, यानी लागत के मुकाबले 7 गुने से थोड़ा ज्यादा। अब हनुमान अंश को देख लीजिए। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश की लागत 2 करोड़ से भी कम है, जबकि इसने 200 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है, यानी लागत के मुकाबले 100 गुना। कहने की जरूरत नहीं कि बजट और कलेक्शन के रेशो के नजरिए से हनुमान अंश भारतीय सिनेमा के करीब 100 साल के इतिहास की सफलतम फिल्म बन चुकी है। कमाल तो ये है कि लागत के मुकाबले 100 गुने से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स धराशायी करने वाली हनुमान अंश की बम्पर कमाई का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साफ है कि हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक फिनोमिनल आइकन बनकर उभरे हैं। ये अलग बात है कि स्वयं विशाल इस कामयाबी को नीब करौरी बाबा और बजरंग बली की कृपा मान रहे हैं।
1: पूरी तरह से नीब करौरी बाबा की कृपा है। पहली सबसे पहले बात तो ये बात हमको बतानी चाहिए कि उनकी कहानी है ये, हमारी कहानी तो बाद में है। हमने तो कहानी बाद में बोली, लेकिन महाराज जी की कहानी है जिस कहानी को बोल के बोल रहे थे हम, और वो कहानी इतनी बड़ी हो गई। और महाराज जी की कृपा और हनुमान जी कृपा से के ऊपर कुछ भी नहीं है इसमें।
0: दरअसल विशाल चतुर्वेदी स्वयं नीब करौरी बाबा के अनन्य अनुयायी हैं। विशाल नीब करौरी बाबा के भक्त कैसे बने, इसके पीछे एक रहस्यमय लेकिन अलौकिक आध्यात्मिक घटना का हाथ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से साल 2006 में एमबीबीएस करने के बाद विशाल चतुर्वेदी की पहली पोस्टिंग हल्द्वानी में हुई। उसी दौरान एक दिन वो अपने कुछ मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान और घनघोर बादलों की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। पहाड़ी रास्तों पर ऐसे नामाकूल मौसम में कार चलाना खतरे से खाली नहीं था, लिहाजा इन्होंने कार सड़क किनारे पार्क कर मौसम ठीक होने का इंतजार करने का फैसला किया। पर उसके बाद जो हुआ उसने विशाल चतुर्वेदी की दुनिया ही बदल दी।
1: 2006 की बात है कि मैं हल्द्वानी में पोस्टेड था एज ए मेडिकल ऑफिसर, और वहां से मैं एक कोइंसिडेंस के तौर पे बोलें या एक मिरेकल के तौर पे बोलें कि हमारी मेरे दोस्तों की गाड़ी एक जगह रुक जाती है जहाँ बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रही थी। जब आंधी तूफान थमता है कुछ सेकंड्स में तो हम देखते हैं कि वो हम कैंची धाम के गेट के नीचे ही खड़े हैं। तो उस दिन से महाराज जी का एक कनेक्शन तो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो कहानी चल रही थी।
0: जाहिर है इस अविश्वसनीय वाकये के बाद विशाल चतुर्वेदी के मन में नीब करौरी बाबा के प्रति जिज्ञासा के साथ ही आस्था भी पनपने लगी। बाबा की जीवनी के बारे में जब उन्होंने जानना पढ़ना और समझना शुरू किया तो मन में एक विचार अनायास घर करने लगा, बाबा की जीवनी पर फिल्म बनानी है। साल 2006 में उपजे इस विचार को अमली जामा पहनाने में पूरे 20 साल लग गए, पर इन 20 सालों के दौरान हर गुजरते दिन दीप करौरी बाबा के प्रति विशाल चतुर्वेदी की आस्था और प्रगाढ़ होती चली गई। यही वजह है कि हनुमान अंश की मेकिंग एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह की गई है, साधना और उपासना की तरह की गई है। कमाल तो यह है कि फिल्म की मेकिंग के बाद विशाल अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं।
2: हम सबके जीवन में परिवर्तन हमें महसूस भी हो रहा है, जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है। सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि हमें ईश्वर को सरेंडर करना यानी उनको समर्पित करना अपने आप को सीखा है हमने। क्योंकि जब जब हम किसी समस्या में फंसते थे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते पूरी टीम ने ऐसा महसूस किया कि हमारी जो है ना समस्याएं थी वो रिजोल्व हो जाती थी। तो इसलिए सारी टीम मेंबर्स ने इस बात को महसूस किया है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि हमने ईश्वर में श्रद्धा होने के अलावा आपको उनमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि हल्द्वानी वाली विलक्षण घटना के बाद भी विशाल की मन स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई थी। डॉक्टर होने के बाद भी उनका झुकाव कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, लेखन और शोध कार्यों की ओर हो गया। बाद में उन्होंने द इंडियन थिंग और होली का होम प्रोडक्शंस जैसे प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने कई ब्रांड्स और प्रोजेक्ट्स के लिए कंटेंट तैयार किया। कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग की बारीकियों से बाबस्ता होने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि नीब करौरी बाबा पर फिल्म बनाने के सपने में हकीकत का रंग भरने का समय अब आ गया है। हालांकि फिल्म के लिए पैसों का इंतजाम अभी भी बड़ी चुनौती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2 करोड़ से भी कम की लागत वाले इस फिल्म के 4-4 प्रोड्यूसर्स हैं, जबकि कुछ पैसा खुद विशाल चतुर्वेदी ने भी लगाया है। जीवन की गहन अनुभूतियां बताती हैं कि कुछ चीजें की नहीं जाती बल्कि हो जाती हैं, और जो चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं वो मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। हनुमान अंश इस सत्य का अनुपम उदाहरण है। काबिले गौर है कि विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश बनाने से पहले नीब करौरी बाबा की जीवनी को लेकर एक OTT प्लेटफॉर्म से चर्चा की थी। विशाल ने OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधि को कहानी तो भावना में डूब कर सुनाई थी, लेकिन प्रतिनिधि ने पूरी बेरुखी के साथ उसे रिजेक्ट कर दिया। उस क्षण उनके मन में नीब करौरी बाबा की जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा और प्रबल हो गई। मन का सोचा हो तो ईश्वर की कृपा, मन का सोचा ना हो तो ईश्वर की असीम कृपा। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी होती तो परिदृश्य शायद इतना विशाल और विराट नहीं होता।
3: हनुमान अंश फिल्म की फिनोमिनल सक्सेस में उस बंदे के योगदान को कौन नकार सकता है जिसने नीम करौली बाबा के केंद्रीय किरदार में अपनी सहज, सरल और सात्विक अदाकारी से जान फूंक दी। इस दमदार कलाकार का नाम है शोभिनव सत्य। कमाल तो ये है कि शोभिनव सत्य फिल्म की मेकिंग शुरू होने के 3 दिन बाद तक पर्दे के पीछे की भूमिका निभा रहे थे। जी हाँ, नीम करौली बाबा की भूमिका निभाने वाले शोभिनव के लिए इस फिल्म में पर्दे के सामने छोटा मोटा किरदार भी मुकर्रर नहीं था, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 3रे दिन ऐसी लीला हो गई कि अचानक ही फिल्म के सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनव लीड एक्टर की भूमिका में आ गए और ऐसा लगता है कि सामने से विशाल चतुर्वेदी तो नेपथ्य से कोई अदृश्य शक्ति इस फिल्म का निर्देशन कर रही थी।

0: किस्मत रूठ जाए तो सौरी हुई जिंदगानी भी दुश्वार हो जाती है, किस्मत मेहरबान हो जाए तो सिसकियां भी तबस्सुम में तब्दील हो जाती हैं। क्या कहें उस शख्स के बारे में जिसकी जिंदगी एक झटके में गुमनामी के अंधेरे से निकलकर मकबूलियत का दैदीप्यमान शिखर चूमने लगे। ये कोई फिल्मी फसाना नहीं, शायर का ख्वाब नहीं, बल्कि कामयाबी का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली फिल्म हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का केंद्रीय किरदार निभाने वाले शोभिनो सत्य की जिंदगी की हकीकत है। जिस फिल्म में शोभिनो सत्य को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर पर्दे के पीछे गुमनाम रहना था, उसी फिल्म में नीव करौरी बाबा की भूमिका निभाकर इतने विख्यात हो गए कि बड़े बड़े स्टार्स की चमक उनके आगे फीकी पड़ गई है। हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का मुख्य किरदार मिलना शोभिनो सत्य के लिए एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अलौकिक चमत्कार है। सोचिए कि शोभिनो सत्य इस फिल्म में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पर विधाता को जब अपनी विराट अलौकिक योजना को मूर्त रूप देना होता है तो वो लौकिक जगत के तयशुदा कार्यक्रम में अनायास ही हल्का सा विक्षेप डाल देते हैं। काबिले गौर है कि हनुमान अंश फिल्म में नीव करौरी बाबा के अमर किरदार को निभाकर रातों रात विख्यात होने वाले शोभिनो सत्य इस फिल्म में पर्दे पर नमूदार होने वाले छोटे छोटे किरदारों की सूची में भी शामिल नहीं थे, पर विधाता के एक मामूली विक्षेप ने पूरी लीला ही बदल दी। हुआ ये कि हनुमान अंश में नीव करौरी बाबा का किरदार निभाने वाले कलाकार शूटिंग शुरू होने के तीसरे ही दिन बीमार पड़ गए और तभी निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की मन की आंखों के गुप्त पर्दे पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर शोभिनो सत्य नीव करौरी बाबा के रूप में साकार हो गए। कमाल देखिए कि कमाल की बुलंदी पर पहुंचने के बाद शोभिनो सत्य को एहसास हो रहा है कि ये सारे कमाल नीव करौरी बाबा के हैं।
1: बहुत ही अच्छा लग रहा है और रोल कैसे मिला इसकी कहानी तो अब तो लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। तो मैं इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर था और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये रोल मिला और मैं आज रात असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, कल सुबह इस फिल्म का हीरो बन गया, तो बस उनकी कृपा से।
0: करीब एक दशक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े होने वाले शोभिनो सत्य को पहली बार पर्दे पर प्रकट होने का अलौकिक अवसर मिला तो ऑडिशन भी पारलौकिक तरीके से ही हुआ। शोभिनो सत्य का ऑडिशन चित्रकूट में बहने वाली उसी मंदाकिनी नदी की पावन धाराओं के बीच हुआ जिसके तट पर कभी भगवान राम, उनकी अर्धांगिनी माँ सीता और अनुज लक्ष्मण ने वनवास के दौरान 11.5 वर्ष बिताए थे। हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने नौका पर बैठकर मंदाकिनी नदी की कलकल बहती धारा के बीच शोभिनो सत्य का करीब 5 घंटे तक ऑडिशन किया था।
2: हमने चित्रकूट के घाट पे हमने मंदाकिनी रिवर पे एक नाव हायर की, उसको बोला कि हमें कुछ पूछना मत भाई, जितने घंटे होगा 4-5 घंटे तक नाव ऐसे जाती वापस आते जाती, मैंने उसको किनारे मत लगा।
3: ऑडिशन का भी बहुत सुंदर तरीका था कि आप कोहरा पड़ रहा है, चारों तरफ धुंध छाई हुई है और आप नदी में नाव पे आपका ऑडिशन हो रहा है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल चीज थी।
2: तो खैर उस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी और ये सब हो रहा था, इसको मैंने वही

0: सत्य निर्देशक विशाल चतुर्वेदी की कसौटी पर 100% खरे उतरे। लेकिन असली परीक्षा तो अब होनी थी, कैमरे के सामने एक ऐसे महान संत का किरदार निभाना जिसकी ख्याति भारत की सरहदों के पार अमेरिका तक है, हरगिज आसान नहीं था। एक ऐसी महान विभूति जो जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी भाषा समझता था, उसकी गूढ़ता को आत्मसात कर लेना खेल नहीं था। जाहिर है कि ऊपरी चेहरे के साथ भीतरी मन के भाव को पकड़े बगैर नीव करौरी बाबा के किरदार के साथ न्याय संभव नहीं था। और शोभिनो सत्य ने अपने लौकिक प्रयास को नीव करौरी बाबा की अलौकिक कृपा के साथ समन्वित कर दिया। कृपा का भाव प्रबल होते ही अभिनय की हर मुश्किल आसान होती चली गई।
1: कोई समस्या नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि इतने महान संत का कैरेक्टर प्ले करना वो तभी हो सकता है जब आपको उनका आशीर्वाद मिले, और जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो कोई समस्या नहीं होती है।
0: आपको बता दें कि शोभिनो सत्य साल 2009 से ही नीव करौरी बाबा के भक्त रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन इन सब के साथ ही अभिनय में शोभिनो की रुचि नई नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर के खैराबाद इलाके में जन्मे शोभिनो की अभिनय की शुरुआती ट्रेनिंग लखनऊ के ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म से हुई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इसी संस्थान में उन्होंने बतौर टीचर भी कुछ दिन काम किया, लेकिन एक्टिंग की हसरत ज्यादा बड़ी होने की वजह से बाद में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। FTII से ग्रेजुएशन करने के बाद भी शोभिनो को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला, हालांकि छोटे मोटे काम लगातार मिलते रहे। साल 2019 में आई वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न्स में अभिनव ने बतौर ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। सोनी टीवी के चर्चित सीरियल CID के 4 एपिसोड के लिए उन्होंने बतौर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। इसके अलावा फिल्म महापौर में भी सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। टीवी सीरीज हैप्पीली एवर आफ्टर में शोभिनो ने सुपरवाइजर के तौर पर काम किया। कमाल तो यह है कि 10 साल से इंडस्ट्री से जुड़े रहने और देश के सबसे प्रतिष्ठित एक्टिंग स्कूल से डिग्री हासिल करने के बाद भी पर्दे पर नमूदार होने का उन्हें छोटा मोटा मौका भी नहीं मिला। मुमकिन है इस दौरान उन्हें निराशा भी हुई हो, लेकिन निराशा के दौर में सब्र ने शोभिनो का साथ नहीं छोड़ा। जो सब्र की राह में खामोश चला जाता है, वक्त उसके लिए मंजिले सजा जाता है। 10 साल के संघर्ष के बाद पहली बार जब पर्दे पर उतरने का मौका मिला तो ऐसा कमाल हुआ कि शोभिनो पूरी दुनिया में विख्यात हो गए।
2: हनुमान अंश की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी में फिल्म के अलौकिक संगीत का बहुत बड़ा योगदान है, और फिल्म में मुख्य तौर पर संगीत दिया है ग्वालियर के साधु तिवारी ने। साधु तिवारी हनुमान अंश के कुछ गानों के गीतकार, संगीतकार और सिंगर तीनों हैं। फिल्म में उनके सुर और स्वर ने जो जादू किया है, उसका प्रभाव साफ तौर पर दर्शकों के दिलो दिमाग पर देखा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता में साधु तिवारी के गीत संगीत का बहुत बड़ा योगदान है।
3: अब जिद पे आ गई पार्वती, पार्वती पार्वती, समझाने पहुँचे सप्तऋषि,

हनुमान अंश की ऐतिहासिक सफलता के पीछे नीब करौरी बाबा की जीवन लीला का जो योगदान है सो तो है, लेकिन हृदय में उतरकर आत्मा को तृप्त कर देने वाले संगीत का योगदान कतई कमतर नहीं है। हनुमान अंश के अलौकिक संगीत के शिल्पकार हैं साधु तिवारी। साधु तिवारी ने हे खरारी, आवागमन मिटा दो भोले शंकर और बजरंग बाका जैसे मर्म स्पर्शी गानों से हनुमान अंश के संगीत को जीवंत कर दिया है। पर उनके जब जिद पर आ गई पार्वती गाने ने ऐसा जादू किया है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के दिल और जुबां पर इसी गीत की प्रतिध्वनि गूंजती है। कमाल यह है कि साधु तिवारी ने हनुमान अंश के कुछ गानों के बोल भी तैयार किए हैं, धुन भी बनाई है और अपनी सुरीली आवाज का संस्पर्श भी दिया है।

0: कल जो संगीत दिल से निकलता है वो सीधे दिल में उतर भी जाता है।
1: मेरा नाम है साधु तिवारी। मैंने हनुमान अंश फिल्म में कुछ गाने कंपोज किए हैं, गाए भी हैं। उसमें एक गाना है पार्वती सॉन्ग, दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो सोचा आपको गुनगुना के सुनाया जाए गिटार पे। सुनिए।

0: भगवान है।
1: मध्य प्रदेश में चंबल के जो बीहड़ किसी जमाने में खूंखार डकैतों और लुटेरों के लिए कुख्यात रहे, उसी चंबल क्षेत्र के करैया भितरवार इलाके में जन्मे साधु तिवारी ने बम और बंदूक की जगह सुर और संगीत को अपना हथियार बनाया और हनुमान अंश में हृदय स्पर्शी सुर और स्वर देकर फिल्म की संगीत में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हनुमान अंश की अभूतपूर्व सफलता का एक श्रेय अगर शोभिनव सत्य के सहज सरल सात्विक अभिनय को जाता है तो साधु तिवारी के आत्मा को झंकृत कर देने वाले सुर और स्वर को भी जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं साधु तिवारी श्रेय लेने की रेस में शामिल होने से परहेज कर रहे हैं।
2: वो तो जो डायरेक्टर्स के निर्देश होते हैं उन निर्देशों का पालन करके कोई भी कंपोजर गाने कंपोज करता है लिखता है, तो सौभाग्य से मैंने कंपोज किए इनके निर्देशन में बात बनी।
1: कहानी की मांग पर भक्ति संगीत को नया आयाम देने वाले साधु तिवारी का एकेडमिक करियर भी काफी अच्छा रहा है। साधु तिवारी ग्वालियर के साइंस कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कुछ कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने भी जाते थे, लेकिन संगीत से शुरू से ही गहरा लगाव था, इसीलिए इस विधा में गहरे उतरते चले गए। हनुमान अंश से पहले साधु तिवारी ने साल 2019 की लैला द रेड लैंड, साल 2014 की गुलाब गैंग और साल 2022 की जनहित में जारी जैसे प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, लेकिन हुनर का असली निखार तो हनुमान अंश के जरिए ही सामने आया।

0: दो करोड़ से भी कम की लागत से बनकर तैयार हुई और 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करने वाली हनुमान अंश की मेकिंग आसमानी योजना के क्रियान्वयन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि विशाल चतुर्वेदी, शोभिनो सत्य और साधु तिवारी जैसे बेहतरीन शिल्पकारों के भीतर अदृश्य पल रही प्रतिभाएं इस फिल्म में पूर्णता को प्राप्त हुई हैं। इतने कम रिसोर्सेज में इतने अनुपम शाहकार का निर्माण प्रयास साध्य तो नहीं हो सकता।
1: तो बंदे में है दम में आज आपने तीन शख्सियतों के अनूठे सफरनामे को देखा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर हनुमान अंश के रूप में शानदार अमर सिनेमाई कृति तैयार की। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और बेमिसाल शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।